0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अशोक कुमार चौरसिया का शहनाई वादन। आपने प्रस्तुत किया राग रामकली। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 6 बजने वाले हैं, लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड

तो वाक् चतुर्य से उसका बयान नहीं किया जा सकता। मेरे गुरु ने मुझे एक पाठ पढ़ाया है कि ये सबके स्वामी हैं, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए।

श्रोताओं, मनुष्य वरदान प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान भी उस प्रार्थना को स्वीकार कभी नहीं, ऐसा नहीं होता कि नहीं कर सकते, क्योंकि उदार मन से देते रहते हैं सभी कुछ वो। जब सर्वत्र भगवान का ही है तो उनके चरण कमलों पर भला हम क्या समर्पित कर सकते हैं, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए भला हम क्या कह सकते हैं।

श्रोताओं, भगवान सत्य है, उनका पवित्र नाम सत्य है, उनके प्रेम को असीम कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त के अमृत में, उषा काल में, उस देवी, उस शब्द, उस भगवान साथ एक रूप हो जाओ। उस भगवान की महिमा का ध्यान करना ही सबसे ज्यादा हमारे जीवन की बड़ी महिमा है।

श्रोताओं, यदि हम केवल सद्गुरु के उपदेशों को आचरण में लाएं तो हमारे अंतर में छिपी अपार आध्यात्मिक संपत्ति हमें मिल जाएगी। जहाँ कहीं भी हम देखते हैं, यही दिखाई देता है कि प्रभु के संसार में किसी ने चाहे कितने भी कर्म किए हों, उसकी अनुकंपा के बिना किसी को मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती है।

श्रोताओं, कहते हैं कि परमेश्वर की एकमात्र कर्ता है, उन्हें छोड़कर और कोई नहीं। जिस तरह उन पर अपने आप को न्यौछावर करना है, जो जल, धरती और आकाश में व्याप्त हैं। अरे चलो भाई।

बात उस समय की है जब देश गुलाम था और देश पर अंग्रेजों का शासन था। स्कूल में भी बच्चे अंग्रेजों का नाम लेते हुए डरते थे, लेकिन गोपाल नाम का बालक बहुत निडर था। एक दिन खेल खेल में एक बच्चे ने उससे पूछा, क्या तुम्हें अंग्रेजों से डर नहीं लगता? गोपाल ने कहा, मैं भला उनसे क्यों डरूं? डरना तो कायरों का काम है। तभी एक दूसरा लड़का वहां पर आया और बच्चे से बोला, अरे भाई, तुमने तो प्रश्न ही गलत पूछ लिया। तुम्हें ये पूछना चाहिए था कि गोपाल, क्या अंग्रेज तुमसे डरते हैं? ये सुनकर गोपाल बोला, हाँ हाँ, बिल्कुल डरते हैं। इस पर वह बच्चा बोला, ये बताओ, अंग्रेज भला तुमसे कैसे डरते हैं? इस पर गोपाल बोला, अंग्रेज मुझसे ही नहीं बल्कि सबसे डरते हैं, पूरे देशवासियों से डरते हैं। तभी तो वे घोड़े पर सवार होकर हाथ में चाबुक लेकर चलते हैं और बात बात पर गरीब जनता पर चाबुक चला देते हैं। वे हमें इसलिए डराते हैं क्योंकि वास्तव में वे डरपोक हैं। यदि उन्हें हमारा डर नहीं है तो वे निर्भय होकर क्यों नहीं घूमते, हाथों में चाबुक लेकर घोड़े पर क्यों चलते हैं? ये सुनकर उसकी कक्षा के सभी लड़के गोपाल की वाहवाही करने लगे और तालियां बजाने लगे। कक्षा का एक लड़का बोला, वाह गोपाल, तुम्हारे विचार तो बहुत उच्च हैं और तुम तो बड़े ही निडर हो, तुम्हारे साथ रहकर तो हम भी निडर बन सकते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आई, ये क्या हो रहा है? कक्षा के सभी बच्चों ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया स्कूल के प्रधान अध्यापक खड़े हुए थे। मुख्य अध्यापक को देखकर सभी बच्चे सहम गए। सबने उनको प्रणाम किया और खड़े हो गए। फिर उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी बेंत को मेज पर मारा तो सभी छात्र घबरा गए। सबको लगा कि आज तो गोपाल की खैर नहीं, लेकिन गोपाल उनके आगे निर्भीकता से खड़ा रहा और प्रधान अध्यापक से बोला, सर, भला हम अंग्रेजों से क्यों डरे? हमारा देश और वे हमें हमारे ही देश में आकर डराए, भला ये कहां का न्याय हुआ? फिर हम अपने देश में उन गोरों से क्यों डरे? गोपाल की बात सुनकर प्रधान अध्यापक ने उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहा, शाबाश बच्चे, बड़े होकर तुम अवश्य एक दिन देश का इतिहास रचोगे, मुझे तुम पर गर्व है। जी हां, आपने सही समझा, ये बालक कोई और नहीं बल्कि भारतीय जन जन में स्वाधीनता की अलख जगाने वाले गोपाल कृष्ण गोखले थे।

भरत के शील तथा यश को निर्मल चंद्रमा की संज्ञा देते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने कवि की सुबुद्धि को चकोरी के समान माना है। श्री रामचंद्र से भरत के गुण छिपे नहीं हैं, जो उन्हें धर्म की धुरी धारण करने वाला मानते हैं। पिता की अकाल मृत्यु से उत्पन्न स्थिति में राज्य का कार्यभार, कुल की प्रतिष्ठा, धर्म की मर्यादा, पृथ्वी, धन तथा घर परिवार का पालन करके ही सूर्य कुल की रक्षा की जा सकती है। अनुज भरत के लिए श्री राम की आज्ञा है कि वे ऐसा ही करें।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा।

0: अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः ईरानस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन इत्यनेन सह दूरभाष माध्यमेन संभाषणम् अकरोत्। संभाषणावधौ राष्ट्रपतिना पेजेश्कियन इत्यनेन पश्चिम एशियायाः घटनाक्रमस्य विषये प्रोदीरितम्। प्रधानमंत्रिणा उभयोर देशयोर मध्ये संजातं सहमतिं स्वागतीकृतम्। सहैव तेन भारतस्य निरंतर नीतिः पुनः प्रतिपादिता यत् सर्वेषां समाह्वानानां समाधानं केवलं संवादेन सुष्ठु नीत्या एव भवितुमर्हति। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी इत्याख्यः अधिनियमः अद्यारभ्य अर्थात् जुलाई मासस्य एक दिनांकात् कृत्स्नेही ग्रामीण भारते प्रवृत्तो भविष्यति। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25-उत्तरैकशत दिनानां सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तिकरणं विधास्यति। देशे अस्य नूतन तंत्रस्य क्रियान्वयनार्थं अस्य वित्तीय वर्षस्य कृते 92.6 लाख करोड़ रुपयेकाणां प्रावधानं विहितम्। उपक्रमस्य अस्य प्रवर्तने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अवोचत् यत् कोऽपि अर्हः ग्रामीण श्रमिकः एकमपि दिनं कार्यं विना न भवेत्। श्री चौहानेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वकारेण राज्यैः केन्द्रशासित प्रदेशैः च साकं दृढ समन्वयं विधाय अस्याः नूतन व्यवस्थायाः निर्बाध संचालनाय सर्वाः प्रशासकीय वित्तीय च सज्जता विहिता। अवधेयास्पदं वर्तते यत् 25-उत्तरैकशत दिनानां वर्धिता अयं वृत्त्यवसरः ग्रामीण आजीविकां सुदृढां करिष्यति, चिरस्थायी सामुदायिक सम्पत्तीनां निर्माणं च विधास्यति। अनेन सहैव विकसित भारतस्य संकल्पं तीव्रगत्या प्रवर्तयिष्यते। जापान देशस्य प्रधानमंत्री साने तकाइची अद्य सायं त्रिदिवसीय भारत यात्रा प्रसंगे नवदेहलीं प्राप्स्यति। इयं तस्याः प्रथमा आधिकारिकी भारत यात्रा वर्तते। सा श्वः प्रधानमंत्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह षोडशे भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। इदं शिखर सम्मेलनं उभयोर देशयोः कृते द्विपक्षीय सहयोगस्य समग्र क्षेत्रस्य समीक्षां सुदृढीकरणं च विधातुं सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां विनिमयीकरणं कर्तुमेकं प्रकृष्टं अवसरं प्रदास्यति। उत्तराखंड राज्यस्य मदरसा शिक्षा प्रणाल्यां अद्यारभ्य एकं बृहत् परिवर्तनं प्रवृत्तं संजातम्। अस्याः नूतन व्यवस्थायाः अन्तर्गतं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद पूर्णतया निष्क्रियो भविष्यति। सहैव राज्यस्य सर्वाः अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाः एकेन विनूत्नेन तंत्रेण संचालिताः भविष्यन्ति। अद्य जुलाई मासस्य एक दिनांकतः उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियमः 20-26 तथा उत्तराखंड सर्वकारीयेतर अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता नियमावली 20-19 इत्येते सर्वे निष्प्रभाविनः अभवन्। राज्य प्रशासनेन उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिनियमस्य अंतर्गतम् एका नूतना व्यवस्था प्रवर्तिता। अस्य प्रत्यग्र तंत्रस्य अंतर्गतम् उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरणमेव शिक्षायै उत्तरदायी भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बात की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले किए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
2: सम्मेलन में 1,000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2,700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया है। पहले कल मंगलवार तक ये छूट दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीत का। आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और अब वक्त हुआ है श्रोताओं आपकी पसंद यानी कि गुड मॉर्निंग गीतों भरी का। जी हाँ, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों, अब जब हम बात करते हैं गीतों की, संगीत की, तो ऐसा मन करता है कि संगीत की दुनिया में खो जाएं, गुनगुनाते रहें और गीत गाते रहें और स्ट्रेस को अपने पास भी ना आने दें। तनाव चिंता दूर से दूर रहे हमसे, उतना अच्छा है। और सुबह सवेरे का संगीत तो और भी खूबसूरत और मीठा लगता है।

दोस्तों, हमारा मतलब संगीत सुनने से है और सुनाने से भी है। कहने का मतलब, अगर आप संगीत सुनना पसंद करते हैं तो आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं। इंसान के ज़िंदगी से संगीत का रिश्ता हमेशा से अटूट रहा है।

आप सुन रहे हैं सिमरन कौर के साथ गीतों भरी गुड मॉर्निंग। कहते हैं हकीकत की भीड़ में कुछ गुमशुदा सपने ढूंढ रहे हैं, आजकल हम अपनों में कुछ अपने ढूंढ रहे हैं।

और गीत संगीत कैसा भी हो, सभी तरह का संगीत हमें और आपको अच्छा लगता है। क्यों, सही बात कही ना मैंने? क्योंकि जिस तरह हमारे शरीर को पौष्टिक खाने की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारी आत्मा को स्वस्थ और सकारात्मक रखने के लिए संगीत की ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे हमारा मूड भी अच्छा रहता है और अकेलापन और तनाव दोनों दूर होते हैं।

दोस्तों, संगीत किसी भी समय सुनें, हमेशा दिमागी सुकून ही मिलता है और साथ ही ब्रेन फंक्शन भी बेहतर होता है। और ऐसे में अगर आप जीवन भर तनाव से दूर रहना चाहते हैं तो जल्दी ही संगीत से रिश्ता कायम कर लीजिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस्ट चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, TRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर

0: अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रुपए, गोवा में 406 रुपए और केरल में 401 रुपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
3: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27

0: अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
3: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
4: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
3: सभी मदरसों को UDIS, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
5: स्वगणना की प्रक्रिया पूरे होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है, उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जांच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी से इकट्ठा करेंगे। स्मिथि एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुर

0: जिले के जंतुलूरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली NCR को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में DRDO द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। विकसित भारत जी राम जी स्कीम कम्स इन टू फोर्स अक्रॉस द कंट्री टुडे, रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग MG नरेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स टू ईरानियन प्रेसिडेंट, स्ट्रेस्ड नीड फॉर कंटिन्यूड एफर्ट्स टू सिक्योर लास्टिंग पीस इन वेस्ट एशिया एंड सेफगार्डिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड कॉमर्स। जापानीज प्राइम मिनिस्टर सनाए तकाईची to arrive in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. France beat Sweden 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup football. and India's men's cricket team to begin their

0: वर्ग पर अमल दरामद के लिए रवा माली साल में 95,692 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वीबी जी राम जी कानून ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी कानून एमजी नरेगा 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का मकसद गारंटी वाले रोजगार में इजाफा करना है। इस कानून के तहत माली साल में अब तक 100 दिन की गारंटी दी जाती थी, लेकिन अब से 125 दिन की गारंटी दी जाएगी। गारंटी वाले रोजगार में इस इजाफे का मकसद देही तरक्की की रफ्तार में तेजी लाना, मजीद आमदनी की यकीन दहानी करना और देही घरों को बाइख्तियार बनाना है। इस कानून में बरवक्त शफाफ और जवाबदेही पर मबनी उजरत की अदायगी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई है। इस नए कानून के तहत ये सहूलत फराहम की गई है कि अगर किसी को मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर काम फराहम नहीं किया गया तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। विकसित भारत जी राम जी कानून एक जामे फ्रेमवर्क है जिसे 2047 तक विकसित भारत के कौमी तस्वूर के मुताबिक देही रोजगार फराहम करने के लिए तश्कील दिया गया है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
0: देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने इस मिशन पर अमल दरामद के बारे में कहा कि कोई भी अहल देही वर्कर एक दिन के लिए भी बगैर कामकाज के न रहे। जनाब चौहान ने कहा कि हुकूमत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ करीबी ताम रखते हुए सभी इंतजामी माली और तकनीकी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं ताकि नए फ्रेमवर्क पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। वजीर मौसूफ ने कहा कि भरपूर माली वसाइल दस्तयाब कराए गए हैं, लिहाजा अमल दरामद का निज़ाम पूरी तरह तैयार है और जो काम जारी हैं वो बिला रुकावट जारी रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 125 दिन की उजरत वाले रोजगार की इस गारंटी से देही गुजर बसर को इस्तेहकाम हासिल होगा, लोगों को मुस्तकिल असासे फराहम होंगे और विकसित भारत के तसव्वुर पर अमल दरामद में तेजी आएगी। मरकजी हुकूमत ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी जी राम जी कानून 2025 के लिए गारंटी के तहत उजरतों में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी किया है जो आज से लागू हो गया है। देही तरक्की की वजारत की तरफ से जारी किए गए इस नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरत की शरहों में सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में इजाफा किया गया है। इसमें कहा गया है कि ऐसा पहली बार है कि 300 रुपए रोजाना की उजरत आरजी बुनियाद पर शुरू की गई है, जिसके तहत इस बात को यकीनी बनाया गया है कि इस प्रोग्राम के तहत नोटिफिकेशन में शामिल कोई भी उजरत इस सतह से कम न हो। एमजी नरेगा के तहत कौमी सतह पर औसत उजरत पहले 298.80 रुपए थी, जिसे अब वीबी जी राम जी के तहत 327.40 रुपए रोजाना कर दिया गया है, जो औसतन 10% से ज्यादा है। उत्तराखंड अकीलती तालीमी इतारे अथॉरिटी आज से नाफिज हो गई है, जो रियासत में मदरसा बोर्ड की जगह लेगी। इस तरह उत्तराखंड में सभी 456 मदरसे रियासती सरकार और मरकजी हुकूमत दोनों के जेर निगरानी रहेंगे। रियासत के समाजी बहबूद और अकलियतों की बहबूद के वजीर खजान सिंह ने कहा कि रियासत में सभी मौजूदा तस्लीम शुदा मदरसे अब उत्तराखंड अकलियती तालीमी इदारे अथॉरिटी के तहत आएंगे। ये मदरसे उत्तराखंड के स्कूली तालीम के बोर्ड के साथ भी मुंसलिक होंगे ताकि तलबा कौमी तालीमी मयारात के ऐन मुताबिक पढ़ाई कर सकें।
2: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया, उनको समय भी दिया गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा और इससे जुड़िएगा, सबकी एक शिक्षा होगी, एक सम्मान होगा। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और अल्पसंख्यक में मुस्लिम ही नहीं, सिख भी है तो ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है।
0: सभी मदरसों को तालीम से मुतालिक मुत्तहिदा जिला इत्तिलाती निजाम के नंबर अलॉट किए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरमू जिले में जंतुलूरू के मकाम पर आंध्र प्रदेश की मरकजी यूनिवर्सिटी के पहले तकसीम असनाद जलसे में शिरकत करेंगी। वो उन 1268 तलबा को डिग्रीज अता करेंगी जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों में कामयाबी हासिल की है। वो 56 तलबा को उनकी गैर मामूली तालीमी कारकर्दगी पर गोल्ड मेडल भी अता करेंगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेजिशकियां से टेलीफोन पर बात की। इस गुफ्तगू के दौरान ईरान के सदर ने जनाब मोदी को मगरबी एशिया के हालात और वाकयात और आगे बढ़ने के लिए इकदामात से वाकिफ कराया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुफाहमत पर इत्तेफाक राय होने का खैर मकदम किया और भारत के

0: इस मौकिफ को दोहराया कि सभी मामलात मुजाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल किए जाने चाहिए। जनाब मोदी ने खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने और बहरी जहाज़ों की बिला रुकावट आमदोरफ्त के तहफ्फुज़ नीज तजारत के लिए कोशिशें जारी रखे जाने की ज़रूरत दोहराई। ईरान के सदर ने टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान अमन इस्तेहकाम और इलाकाई इश्तराक की हिमायत करने में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़ाती रोल की सदाइश भी की। इधर भारत में ईरान के सफारतखाने के मुताबिक इस बातचीत में सदर पेजिशकियान ने भारत में ब्रिक्स के तवानाई महकमे के वजीरों की मीटिंग की मेज़बानी और इसकी कामयाब मनसूबाबंदी के तहत इत्मीनान का इजहार भी किया। जापान की वजीर आजम सनाई तकाईची भारत के 3 दिन के दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही है। ये भारत का उनका पहला सरकारी दौरा होगा। मुहतरमा तकाईची वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ कल 16वीं भारत जापान सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगी। इस सरबराह मुलाकात से तरफेन को इलाकाई और बाहमी मफाद के आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करने के साथ साथ बाहमी इश्तराक के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेने और उन्हें मुस्तहकम बनाने का मौका मिलेगा। हमारे नामनिगार ने बताया है कि भारत और जापान की दोस्ती तवील अरसे से कायम है और ये सदियों से सकाफती और तहजीबी तबादले, रूहानी रिश्ते, नीज आज़ादी, जमहूरियत और कानून की अमलदारी के तई एहतराम की मुश्तरका अकदार पर मबनी है। एक रिपोर्ट।
1: भारत जापान बाहमी ताल्लुकात को 2014 में खुसूसी कलीदी और आलमी साझेदारी की सतह पर पहुंचाया गया था। अब जबकि दोनों मुल्क अगले साल अपने सफारती ताल्लुकात के कयाम को 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने की तरफ बढ़ रहे हैं तो मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इसमें तिजारत, सरमायाकारी, इक्तसादी सिक्योरिटी, दिफा, साइंस, टेक्नोलॉजी, सकाफत और अवाम से अवाम के राबते भी शामिल हैं। भारत जापान जाम इक्तसादी साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 को नाफिज हुआ था। इधर साल 2025-26 के दौरान बाहमी तिजारत 27 अरब डॉलर से भी तजावुज कर गई। जापान भारत में सरमायाकारी करने वाला 5वां सबसे बड़ा मुल्क है। जापान ने अप्रैल 2000 और मार्च 2026 के दरमियान 48 अरब 17 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी की। सकाफती इश्तराक भी काफी मजबूत है और जापान ने योग समेत भारतीय सकाफत में बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया है। दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: मरकज ने आज से 15 दिन के लिए बरामद किए जाने वाले पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर आयद महसूल की शरों में तब्दीली की है। वजारत खजाना की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक इन नई शरहों के तहत बरामद किए जाने वाले पेट्रोल पर 4 रुपये फी लीटर मुकर्रर किए गए हैं। डीजल पर यह महसूल 8.5 रुपये होगा जबकि पहले यह महसूल 14 रुपये था। वजारत ने बताया कि हवाई जहाज के ईंधन की बरामदात पर आयद खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी को 12.5 रुपये से कम करके 7.5 रुपये कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक जब यह बरामदाती ड्यूटी इब्तदाई तौर पर नाफिज की गई थी तो बरामद किए जाने वाले पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर सरकारी शोबे की तेल कंपनियों ने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए छूट फराहम की थी। अब इस छूट में तौसी कर दी गई है और इसमें मॉरिशस और मालदीव भी शामिल कर लिए गए हैं। 29वीं कौमी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस आज जयपुर में शुरू हो रही है। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम इंतजामी असलाहत और अवामी शिकायत के महकमे, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी महकमे की वजारत नीज राजस्थान सरकार ने मुश्तरका तौर पर किया है। इस साल की कॉन्फ्रेंस का मौजू है विकसित भारत 2047, मसनूई जहानत और डेटा पर मबनी महफूज डिजिटल हुक्मरानी। राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया है। कॉन्फ्रेंस के दौरान राजस्थान सरकार के डिजिटल गवर्नेंस के कई इकदाम और इख्तियारात का आगाज किया जाएगा। फिल्म थिएटर की मारूफ शख्सियत विजय मेहता का कल रात मुंबई में उनकी रिहाइशगाह पर इंतकाल हो गया। वो 92 साल की थी। उनका शुमार मराठी तजर्बाती थिएटर के कायदीन में होता था। फुटबॉल में न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में आज सुबह खेले गए मैच में फ्रांस स्वीडन को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। फ्रांस की तरफ से किलियान एम्बापे ने 2 गोल किए। इस तरह वो वर्ल्ड कप में 18 गोल कर चुके हैं और अब वो लियोनेल मेसी से सिर्फ 1 गोल पीछे हैं। इससे पहले टेक्सास में नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 1-2 गोल से हरा दिया और इस तरह नॉर्वे भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। अब इतवार की रात को प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला ब्राजील से होगा। मर्दों

0: क्रिकेट में भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज चेस्टरली स्ट्रीट में रिवरसाइड ग्राउंड पर खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। श्रेयस अय्यर के जेरे कमान भारतीय टीम गुजश्ता सीरीज में आयरलैंड से 2-0 से हारने के बाद खेल में वापसी की भरपूर कोशिश करेगी। सबकी निगाहें उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर होंगी। इसके बाद भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज भी होगी। खवातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप में लंदन के ओवल मैदान पर खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। ओवल मैदान पर ही कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीम ने आमने सामने होंगी। राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक से टकराने के बाद स्लीपर बस में आग लगने के वाकये में 7 अफराद की मौत हो गई जबकि 12 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। यह हादसा बंदीकुई के नजदीक रात देर गए 3 बजे के आसपास पेश आया। यह बस ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी। भारत के महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के अगले 2 दिन के दौरान दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब में पहुंचने का इम्कान है। इधर मानसून मध्य प्रदेश के कुछ और इलाकों छत्तीसगढ़ झारखंड और बिहार के बकिया हिस्सों उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों नीज उत्तराखंड के बेशतर हिस्सों में मजीद आगे बढ़ गया है। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं कलीम अहमद।
1: शुक्रिया असलम। दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग को नुमाया किया है जिसमें कारोबार और रहन सहन में आसानी और खुदकफील भारत जैसे अहम मौजूद पर तबादला ख्याल किया गया। अखबार की एक और अहम सुर्खी है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ के ओहदे से सुबुकदोश, नए जनरल धीरज सेठ ने फौजी सरबराह की जिम्मेदारी संभाली। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, दिल्ली समेत 5 रियासतों में SIR का अमल शुरू, महाराष्ट्र कर्नाटक मेघालय और झारखंड में होगा SIR। अखबार की बैन अलाक़वामी सुर्खियां इस तरह हैं, खाने काबा को गुस्ल देने की रूह परवर सालाना तकरीब मुनक़िद, यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला बर्रे आज़म।
0: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर, विकसित भारत जी राम जी स्कीम आज से पूरे मुल्क में नाफिज हो रही है जो मौजूदा MG नरेगा की जगह लेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर से फोन पर बात की और मगरबी एशिया में पायदार अमन के हुसूल के लिए कोशिशें जारी रखने, नीज बहरी जहाज़ों की बिला रुकावट आमदोरफ्त और तजारत के तहफ़ की ज़रूरत पर जोर दिया। जापान की वज़ीर आज़म सनाई तकाईची भारत के 3 दिन के दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुँच रही हैं। फुटबॉल में फ्रांस स्वीडन को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। और भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम आज मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज का आगाज कर रही है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और अब वक्त हुआ है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरगंगा का। स्वर प्रस्तुति है शुभम कुमार की और राग है नट भैरव। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। स्वर प्रस्तुति थी शुभम कुमार की और राग था नट भैरव।
1: मैं हूं आपका जलदाता ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहां धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देते। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं? क्या लिखूं अपना दर्द? अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद।
0: और अब कार्यक्रम का वक्त हुआ है साइंस मैगजीन का, तो आइए सुनते हैं ये प्रोग्राम।
2: वेलकम टू साइंस मैगजीन। Entrepreneurship and skill development provide technical and business skills to the target group, fostering a mindset and enhancing the career success. To know more about it, listen to an interview with Professor Dr. Ashok Kumar Nagawat, Delhi Skill and Entrepreneurship University, Delhi, on the topic Skill Development and Entrepreneurship, a National Need for a Self-Reliant India. Interviewer is Dr. Lucy Gabriel Chattopadhyay.
3: Hello and welcome to this program once again. And today we are talking about a subject that is becoming increasingly important in India's future, that is skill education. For many years, education in our country focused mainly on degrees and academic qualification, but today the conversion is changing. There is a growing recognition that skills, practical knowledge and industry readiness are equally important. This shift has also been strongly emphasized in the National Education Policy 2020, which encourages

द्वारा पुरस्कार ते मान हासिल होया सी। इस तो बाद मैं ते मैं आरती अलविदा बिरहड़ा असा जौबन रुते मरना आदि प्रकाशित होईयां सन। उन्हां दियां कवितावां दा प्रमुख विशा प्यार अनुभव व्यक्तिगत पीड़ बिरहा आदि रहा है। बिरहा दे कवि वजों आधुनिक समय दौरान उन्हां नूं बहुत महत्वपूर्ण मन्या गया सी। उन्हां दी काव्य रचनावां अज दे समय विच खास प्रासंगिकता सिरजदियां हन। प्यार दा जज्बा खास करके जदों असफल अनुभव विचों लंघदा है तां मनुख अंदर तैंदियां कलावां दी स्थिति नूं उजागर करदा है, जिस लई अपने चौगिरदे नाल टक्कर लैण दी दलेरी नहीं आउंदी। कवि इस पक्खों बिरहा दे वख वख रूपां नूं रोजाना जिंदगी कुदरत दे नाल जोड़दे होए वख वख बिंबां नूं लैंदा होया पंजाबी सभ्याचार नाल जुड़े रीतां रस्मां विच्चों लै के काव्य पेशकारी करदा है। उस दी कविता सृजनात्मक तौर ते ऊंची कल्पना दी समर्था नूं गूढ़े रंग देंदी उभारदी है। माए मेरे गीतां दे नैणां विच बिरहों दी रड़क पवे अद्धी अद्धी राती उठ रोण मोए मित्रां नूं माए सानू नींद ना पवे। एक शहर दे नां इस काव्य रचना विच वी उन्हां दी कल्पना ते शब्द समर्था साफ झलकदी है। अज रुत्तां ने वटणा मल्या चिट्टा चन व्याया चलिया रुखां दे गल लग लग पौणा ईकण शहर तेरे चों लंघण जीकण तेरे धर्मी बाबल तेरे गौण बिठाए सुत्ता कुक मोतिए रंगा चानण तोता शहर है तेरा। इवें जीकण तेरा होए डोला अंबर जीकण तेरा वीरा बन्ने बाहीं चन कलीरा तारे सोन जकराए। इवें मिर्चां दे पत्तर कविता बिंबात्मक अते शब्द समर्था नूं वक्री नुहार देंदी होई नज़र आंदी है। पुन्या दे चन नूं कोई मस्या कीकण अरग चढ़ाए वे क्यों कोई डाची सागर खातर मारूथल छड़ जाए वे। कर्मा दी मेहंदी दा सजना रंग किवें दस चढ़दा वे गम दा मोतिया उतर आया सिदक मेरे दे नैणी वे प्रीत नगर दा औखा पेंडा जिंदड़ी किंज मुकावे वे। उस दियां वख वख रचनावां अंदर वख वख किस्म दी बिंबावली शब्द काढ़त अते अलंकार ते प्रतीकां दी वरतों साडे सामें दृश्य चित्तर उजागर करदी है। अजिही समर्था ही उसनूं कलम दा धनी ते कलम दा जादूगर भी बनाउंदी है। उस दियां आरंभलियां कवितावां रोमांटिक प्रवृत्ति अधीन दर्द बिरहा उदासी इकलापे दे मनोभावां नूं महत्व देंदियां हन। सरोदी रंग दी मिठास अते उदासी दा सुमेल निखड़वी विशेषता दी दस पाउंदा है। उस दियां कवितावां वर्णन योग हन भट्टी वालिए कंडियाली थोर पंछी हो जावां विधवा रुत की पुछदे हो हाल फकीरां दा पीड़ां दा परागा रुख आदि। इवें उस दियां कवितावां गीतां विच्चों किस्सियां सूफी मिठास परे मुहावरे दे नालों नाल लोक गीतां दी महक दा सुमेल पुनर्सुरजीत हो के सानू बहुत प्रभावित करदा है। अगे शिव कुमार दी काव्य रचनावां अस्तित्व चेतना दे नाल जुड़ के प्रयोगशील होंदी नज़र आउंदियां हन। उस दी वड्डी सफल देन काव्य नाटक लूणा बनदी है, जिस विच पूरन भगत दी पूर्व प्रचलित कहानी अंदर नामुखी निंदन योग पात्र लूणा दी स्थिति अते दशा बारे वापरे दुखांत नूं चितरदा है। शिव कुमार बटालवी ने लूणा दी वेदना दी उपज ते जिम्मेवार अणजोड़ वर अते अंदरली औरत दी लुकी इच्छा नूं पेश कीता है। लूणा जे मां बनना लोचदी है तां हाण दे नाल मेल तों प्राप्त संतान तों अते इस तों बगैर जैविक पद्धर ते अपनी मर्जी नाल मां बनना लोचदी है। नारी मन नूं शिव रचित लूणा चिरां तों दबी अबोल जां निरजीबी

0: परंपरागत लूणा तो मुक्त करके वखरे बोल देंदा नज़र आउंदा है। इस कावनाट विच औरत लूणा दी पहल नू वाजब करार किता गया है। नारी चेतना दी दृष्टि तो भी शिव रचित लूणा अधीन औरत दे अतृप्त वलवले दा संचार प्रभावित करदा है। इवें शिव कुमार ने काव संग्रह मैनू विदा करो आरती विच लोक तारा दी मिठड़ी उक्ति दे नाल नाल जोड़ के अपनी काव कौशलता दा परिचय भी सहज ही दिता है। उन्होंने रेडियो कवि दरबारा लई सोहणे सोहज रखदे गीत भी लिखे सन जिन्हां दियां धुनां हरमन प्यारियां सन। अलविदा सागर ते कणियां काव संग्रह विच रेडियो लई लिखियां गईयां कवितावां ते गीतां नूं उन्हां दी मौत तो पिछों छापिया भी गया। उसकी रचनात्मक खूबी दरअसल ए सी कि वह जिंदगी नूं प्यार समझदा सी। जदों जिंदगी विच्चों प्यार खारज नज़र आउंदा सी तां प्यार भाव कुड़ी दी कल्पना अधीन इश्तिहार वांग सच नूं वी दर्शाउंदा नज़र आउंदा है। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है गुम है गुम है साध मुरादी सोनी फब्बत गुम है गुम है गुम है। अजिहा सच उसकी कविता नूं प्रसिद्धि देंदा है। इनू सुपने वांग वेखदा होया नवे अर्थ नाल काव पेशकारी करदा है। इवे शिव कुमार बटालवी दा जीवन काव सिरजना एक लीजेंड वांग समय दी सदीवता दसदी होई हमेशा प्रासंगिक है। बेशक उदासी इकलता बिरहा वर्गे विषय नू अपने कलावे च लैंदी है फिर भी ये सारा कुछ तां साडे मनुखी जीवन दी रहिंद खुंद नाल जुड़दा होया अटल सच है। ये पाठकां सरोतियां नू वखरी दुनिया वल लै के जाउंदे होए संतुलित सोच वल भी जोड़दा है। इवे शिव कुमार बटालवी बच्चियां वर्गी मासूमियत नाल फकीराना अंदाज विच काव सिरजना नू इबादत मनदा है। साडे चेतियां विच हमेशा शिव कुमार बटालवी वसदा रहेगा।
1: हुणे असीं सुन रहे सी एक वार्ता जिसका विशा सी कलम दे तनी शिव कुमार बटालवी ते वार्ताकार सन डॉक्टर सारिका शर्मा। ते आओ हुण सुनदे हां गीत तुसी केड़ी रुत्ते आए। सुनदे हां ए गीत चित्रा सिंह दी आवाज़ विच।

हुणे असीं चित्रा सिंह दी आवाज़ विच गीत सुन रहे सी। अगला गीत है गिद्दा गिद्दा नी तेरा गिद्दा। सुनदे हाँ ये गीत अशोक मस्ती दी आवाज़ विच।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू होंगी। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपये से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत तथा राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। फिल्म और रंगमंच की लोकप्रिय हस्ती विजया मेहता का 92 वर्ष की आयु में कल रात मुंबई में उनके आवास पर निधन हो गया। वे प्रयोगधर्मी मराठी रंगमंच की अग्रणी प्रतिभाओं में से एक थी। एक रिपोर्ट।
1: विजया मेहता ने रंगायन नाट्य समूह के माध्यम से मराठी रंगमंच को नई नाट्य भाषा, नई दृष्टि और वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया। उनके चर्चित नाटकों में बैरिस्टर, सखाराम बाइंडर, हयवदन और वाड़ा चिरेबंदी शामिल है। रंगमंच के अलावा उन्होंने फिल्मों और टेलीविजन कृतियों में अपनी विशिष्ट पहचान भी बनाई। विजया मेहता को वर्ष 1975 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 1986 में फिल्म राव साहेब के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता त्रिका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को दर्शाता है। ये दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रुपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस कटौती के बाद अब 19 किलोग्राम का व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 2,930 रुपये में मिलेगा। इस फैसले से रेस्तरां, ढाबा, होटल और अन्य खानपान व्यवसायियों को लाभ होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। तीसरा 7 जुलाई, चौथा 9 जुलाई तथा पांचवां और अंतिम मैच 11 जुलाई को साउथहम्पटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। As the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Grameen Viksit Bharat G. Ramji Act 2025 came into force today, Union Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan termed the occasion a historic milestone. In a social media post, Mr. Chauhan said, the act marks a new chapter in ensuring dignity, self-respect and secure livelihoods for millions of rural workers. He said the act provides rural families with a statutory right to 125 days of employment. Expressing confidence in the initiative, Mr. Chauhan said it will create new livelihood opportunities in villages, accelerate the creation of sustainable assets, empower women and give fresh momentum to the vision of a self-reliant rural India. Oil marketing companies have reduced the price of a 19-kilogram commercial LPG cylinder by 183.50 rupees today. According to Indian Oil Corporation Limited, the new prices for commercial LPG cylinders have come into effect from today. After the reduction, new rate for 19-kilogram commercial LPG cylinder price in Delhi has been slashed to 2,930 rupees. This decision will provide relief to restaurants, dhabas, hotels and those involved in the food and beverage business. Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi, will arrive in New Delhi this evening on a three-day visit to India. This will be the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit tomorrow with Prime Minister Narendra Modi. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation, as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. National Doctors' Day is being celebrated today across the country to honour doctors for their dedication, compassion and invaluable contribution to protecting and improving public health. The theme for this year is Behind the Mask, Who Heals the Healers, which highlights the importance of supporting the mental, emotional and physical well-being of doctors who dedicate their lives to caring for others. Prime Minister Narendra Modi extended greetings to the doctors of the country by saying that their hard work, compassion and commitment form the backbone of India's healthcare system. 78th National Chartered Accountants CA Day is being celebrated today across the country. The day marks the establishment of the Institute of Chartered Accountants of India in 1949 and honours the vital role chartered accountants play in financial transparency, corporate governance and economic growth. Vice President C.P. Radhakrishnan will participate in the 78th CA Day celebrations as chief guest at Vigyan Bhavan in New Delhi. Seven people were killed and more than 12 got injured after a sleeper bus caught fire following a collision with a truck on the Delhi-Mumbai Expressway in Rajasthan's Dausa district. The accident occurred at around 3 a.m. near Tanwar village close to Bandikui. The bus, which was travelling from Rishikesh to Indore, rammed into a truck and caught fire soon after the impact. Several passengers were trapped inside the burning bus and did not get an opportunity to escape. Police have launched an investigation to determine the cause of the accident, while efforts are underway to identify the deceased. Domestic equity benchmarks traded higher this morning, tracking firm global cues. Sensex jumped over 200 points to hit an intraday high of 76,697 in early trade, while Nifty rose 70 points to 23,934. Buying was seen in media, auto consumer durables, FMCG, IT, realty and pharma stocks. Death toll in Venezuela earthquakes has risen to 1,943, while the number of injured almost doubled to 10,571. The number of official rescues have drastically dropped in the last 3 days. The Venezuelan government said 5,380 people were saved in the first 2 days after the quakes, but on Monday, the authorities found only 4 people alive. In football, Mexico defeated Ecuador 2-0 in the round of 32 clash at the Mexico City Stadium to qualify for the round of 16 of FIFA World Cup this morning. Raul Jimenez and Julian Quiñones scored for Mexico. This marked Mexico's first World Cup knockout stage win in 40 years. The co-hosts will now face either England or the Democratic Republic of Congo in round of 16 at the same venue on Sunday. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त हो चुका है सुबह के ठीक 10:10 और पूरे 20 सेकंड्स, और साथ ही साथ वक्त हो चुका है आप सभी के अपने पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद का। और इस खूबसूरत से कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना। कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जी हाँ दोस्तों, जानकार बनिए और सतर्क रहिए, क्योंकि सतर्कता में ही कहते हैं ना भलाई है, और साथ ही साथ आपके पैसे की, आपकी मेहनत की कमाई की जो है ना वो सुरक्षा भी है। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने खूबसूरत से कार्यक्रम आपकी पसंद में। और दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़े, ताकि जो हमारा इस एक 45 मिनट्स का जो भी हमारा एक सफ़र है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है ना वो तय हो सके, और एक यादगार सफ़र जो है वो तय हो सके। और इसके लिए क्या करना होगा, छोटा सा एक काम है जो आपको करना होगा। आपको हमें अपने जो संदेश है वो हमें मेल पर भेजने होंगे, अपनी पसंद की जो भी गीत आप सुनना चाहते हैं, जो भी बातें आप अपने दिल की कहना चाहते हैं हमसे, वो हमें आप भेज सकते हैं एक छोटे से खूबसूरत से ईमेल आईडी पर। और ईमेल आईडी हम आपको बता दें, वैसे तो आप हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं, आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ कुछ नए नए श्रोता जो है ना हमसे जुड़ जाते हैं और हमें संदेश भेजते हैं। और संदेश भेजने के लिए उन्हें भी तो मालूमात होनी चाहिए ना कि आखिर उन्हें संदेश कहाँ भेजना है, किसे भेजना है। तो आप संदेश हमें भेज सकते हैं ipradiodelhi@gmail.com पर। जी हाँ, ipradiodelhi@gmail.com पर इस ईमेल आईडी पर आप अपने संदेश हमें भेजें और हमारे इस खूबसूरत से कार्यक्रम के साथ जुड़ें। फिलहाल शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ, उसके बाद आपके संदेश लेंगे, आपसे बातें करेंगे और आपकी पसंद के गीत वो जो है ना आपको सुन

जी हाँ दोस्तों, आज का दिन उन लोगों को समर्पित है जिनके हाथों में सिर्फ और सिर्फ दवाइयां नहीं होती है बल्कि आंखों लोगों की उम्मीदें भी होती हैं। जी हाँ, और आज है विश्व डॉक्टर दिवस यानी वर्ल्ड डॉक्टर्स डे। और कहते हैं ना, जब हर उम्मीद धुंधली पड़ने लगती है तब एक डॉक्टर की मुस्कान ही नए जीवन का विश्वास बन जाती है। डॉक्टर केवल बीमारी का इलाज नहीं करते हैं दोस्तों, बल्कि टूटे हुए मन में भी हिम्मत जगाते हैं। दिन हो या रात, त्योहार हो या छुट्टी, वो हर पल लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। जैसे कोरोना महामारी के कठिन दौर ने हमें ये एहसास कराया कि डॉक्टर किसी योद्धा से कम नहीं होते हैं। उन्होंने अपने परिवार से दूर रहकर अपनी जान की परवाह किए बिना अनगिनत लोगों की जिंदगियां बचाई। आज आइए हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी हमारा इलाज करने वाले हर डॉक्टर को दिल से धन्यवाद कहें, उनका सम्मान करें, क्योंकि उनका समर्पण अनमोल है दोस्तों। और चाहते हैं कि अगर आपके साथ भी किसी ऐसे डॉक्टर का जो है आपके जीवन में आना हुआ है, जिनसे आप इंस्पायर हुए हो, या फिर जिन्होंने आपके जो है ना होठों पर मुस्कान लाई हो, ऐसे कोई वाक्य अगर आपके साथ हुए हैं, किसी डॉक्टर की वजह से आपके जीवन में खुशियां आई हैं, तो ज़रा हमारे साथ भी शेयर कीजिए ताकि हमारे इस खूबसूरत से कार्यक्रम में और चार चांद जो है ना वो लग जाए और कार्यक्रम सुनने का और मुझे यहाँ से प्रस्तुत करने का मज़ा आने लगे।

जी हाँ, ये जब ऑल इज वेल सुनते हैं ना, और वो भी किसी डॉक्टर के मुंह से, तो कितना अच्छा लगता है कि भाई जिस बीमारी को, जिस टेंशन को लेकर हम डॉक्टर के पास आए थे, आखिरकार उस डॉक्टर ने उस परेशानी को दूर कर दिया और कह दिया कि भाई ऑल इज वेल। वाकई में बहुत ही कहते हैं ना कि अच्छा लगता है जब हम ये शब्द डॉक्टर के मुंह से सुनते हैं। चलिए आज मैं आपको एक तो छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, कैसे ही डॉक्टर की, जिन्हें कहते हैं ना कि डॉक्टर से भगवान कहते हैं, धरती पर जो भगवान है अगर किसी को मानते हैं तो वो डॉक्टर है। डॉक्टर के रूप में आप भगवान को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, मान सकते हैं। और डॉक्टर एक ऐसा इंसान होता है भगवान के बाद जो आपकी लाइफ को बचाता है, आपकी ज़िंदगी को नई रोशनी देता है। ऐसे एक डॉक्टर की कहानी आज मैं आपको सुनाती हूँ जिसने ये साबित कर दिया कि डॉक्टर का असली परिचय उसकी डिग्री से नहीं बल्कि उसके दिल से होता है। एक बार की बात है, एक छोटे से कस्बे में एक डॉक्टर का क्लिनिक था। वो बहुत अनुभवी थे लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी इंसानियत। जहाँ एक दिन एक बुजुर्ग किसान अपनी पत्नी को लेकर उनके क्लिनिक पहुँचते हैं। पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो बहुत घबराए हुए होते हैं। डॉक्टर ने तुरंत उनकी पत्नी को देखा, उनके स्वास्थ्य की जांच की, दवाई दी और इलाज शुरू कर दिया। इलाज पूरा होने के बाद किसान ने अपनी जेब टटोली, उसमें कुछ सिक्के और बस कुछ मुड़े टुड़े से ना नोट थे, पुराने थे जो गले हुए थे। वो शर्माते हुए डॉक्टर से बोले, डॉक्टर साहब मेरे पास ना पूरी फीस नहीं है, बाकी पैसे मैं फसल कटने के बाद, बिकने के बाद दे दूँ तो चलेगा क्या? डॉक्टर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, आपकी पत्नी का स्वस्थ होना ही मेरी सबसे बड़ी फीस है, पैसों की चिंता आप मत कीजिए जनाब। कुछ महीनों बाद किसान फिर क्लिनिक पर आते हैं और उसके बाद क्या होता है कि उनके हाथ में ना कुछ ताज़ी सब्जियां और फलों की एक छोटी सी टोकरी होती है। और किसान जो है वो डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पास देने के लिए आज भी ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये मेरे खेत की पहली फसल है जिसे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपका प्यार, आपका विश्वास और जो है ना उसके लिए मैं ये फसल और जो है मेरे खेत की, वो सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और आप इसे ही मेरी जो है ना फीस समझ के आप इसे स्वीकार कर लीजिए। तो इस पर डॉक्टर की जो आंखें हैं ना, उनकी बातें सुनकर, यानी किसान की बातें सुनकर जो है ना बहुत ही आंख भर आती हैं। उन्होंने जो उसकी टोकरी होती है किसान की, वो स्वीकार करते हुए

हमें खुशी आई है तो आप उस वाक्य को हमारे साथ शेयर कीजिए जिसे यहाँ पे शेयर करेंगे हम बाकी अपने श्रोताओं के साथ और इस खूबसूरत से कार्यक्रम को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे।

संदेश हमें मिल रहा है एक गूगल मेल 3 TD से. ये कहते हैं, यस वन डॉक्टर इज डॉक्टर अमनदीप सिंह. ही इज अ फिजिशियन एंड नोन टू मी. व्हाइल आई वाज रिक्वायरिंग एलिमेंट टू प्रोवाइडेड द बेस्ट रेमेडीज फॉर द प्रॉब्लम्स एंड क्योर्ड मी. इवन ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक ही स्टूड एज अ रॉक विद अस. ड्यूरिंग पीक ऑफ कोरोना ही आस्क्ड अस टू विजिट हिज हाउस फॉर गेटिंग प्रॉपर चेकअप. वाकई में कोरोना के टाइम पर जितने भी डॉक्टर्स थे, जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर्स थे, उन्होंने बहुत बहुत बहुत सामंजस्य के साथ, हिम्मत के साथ हम सभी की देखभाल की, हमें कोरोना से बचाया और कोरोना को क्योर होने में भी बहुत मदद की. आप हमें लिख रहे हैं TD मल्होत्रा सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से. साथ में इनके हैं ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप. बस ऐसे ही छोटे छोटे से किस्से, खूबसूरत से किस्से आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे आपके अपने इस कार्यक्रम में, आपके पसंद कार्यक्रम में. और आपके साथ आज मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त. ईमेल आपको पता है ipradiodelhi@gmail.com. इस छोटे से खूबसूरत से मेल आईडी पर अपना संदेश जो है ना वो हमें भेज सकते हैं.

अगला संदेश लेते हैं तुलसी मस्किन जी का। ये कहते हैं, प्रिय होस्ट अर्चना जी नमस्कार, डॉक्टर दिवस की बधाई। नाइस सॉन्ग सिटी बजा के बोल, इन्हें एक गाना बेहद पसंद आया है और साथ ही इन्होंने अपना संदेश जो हमें भेजा है, लिखते हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से। साथ में इनके हैं वीना मस्किन, आशीष राजा चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशव खुराना।

जी आप सुन रहे हैं आपकी पसंद कार्यक्रम आपके साथ हूं मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना। और वक्त हो चुका है 10:26 और पूरे 26 सेकेंड्स। आज है वर्ल्ड डॉक्टर्स डे और आज हम इस बारे में अपने शो में बात कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप भी इस बारे में हमसे जो है बातें करें, अपने वाक्य अपने किस्से हमारे साथ शेयर करें। इसी वेरिस्ट में अगला संदेश हम लेते हैं सतीश अनेजा जी का। ये कहते हैं अर्चना बहन जी नमस्कार, विश्व डॉक्टर दिवस की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच और सभी डॉक्टर्स को हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं की तरफ से ढेर सारी विश्व डॉक्टर दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।

जी हाँ दोस्तों, जो दर्द में भी मुस्कुराना सिखा दे, जो टूटती उम्मीदों को फिर से जगा दे, उन हाथों को दिल से सलाम हमारा, जो हर धड़कन को जीना सिखा दे।

बहके। अगला संदेश हमें मिला है हरजिंदर सिंह भाटिया जी का। ये कहते हैं, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आपको भी सत श्री अकाल सर, और आपका स्वागत है, ऑलवेज बी हैप्पी। ये खूबसूरत सा संदेश जो है ना इन्होंने हमें भेजा, और ये कहते हैं किसी भी गीत पे इन्हें शामिल करें। बाकी इनके साथ हैं अंजल भाटिया, पप्पी भाटिया और सोनू भाटिया, बट हमेशा की तरह आप हमें भेजते हमारे रेलिवेंट क्वेश्चन या फिर बात या टॉपिक से रिलेटेड बातें, वो इस बार आपने नहीं भेजी हैं सर, सो प्लीज़ जल्दी से भेजिए। अगर कुछ ऐसा वाक्य आपकी ज़िंदगी में भी हुआ है, किसी डॉक्टर की वजह से आपके होठों पर मुस्कान आई है, आपके चेहरे पर मुस्कान आई है, तो ज़रा शेयर तो कीजिए उस बात को।

अगला संदेश लेते हैं नीटू मल्होत्रा जी का। ये कहते हैं हमें भी शामिल करें और इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल आपका इंतजार खत्म हो चुका है और आपका संदेश जो है ना वो भी शामिल हो चुका है। आप लिख रहे हैं खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का। दोस्तों एक पल के लिए अपने जीवन के उस डॉक्टर को याद कीजिए जिसने कभी आपकी, आपके माता पिता, दादा दादी, भाई बहन या फिर किसी अपने की मदद की हो। शायद आज आप जो मुस्कुरा रहे हैं उसमें उनका भी एक बहुत बड़ा सा योगदान हो। बस उस योगदान को हमारे साथ भी शेयर कीजिए, हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए अपने संदेशों के जरिए और शेयर कीजिए वो खूबसूरत याद जो कभी किसी डॉक्टर के साथ जुड़ी हुई हो, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे वर्ल्ड डॉक्टर्स डे। अगला संदेश हमें ले रहे हैं राजेश सैन जी का। ये कहते हैं मैं अपने जीवन से जुड़ी एक बात को आपको बताना चाहता हूँ। आज से लगभग 25 साल पहले मेरे पेट का अल्सर फूट गया था और मैं जीवन और मृत्यु के बीच में जंग लड़ रहा था। पर उस दिन डॉक्टर साहब ने मुझे आश्वासन देकर कहा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आज वो डॉक्टर साहब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनकी और उनके द्वारा किया गया ऑपरेशन आज सफल हुआ है और आज मैं कुशल जीवन जी रहा हूं। आप लिख रहे हैं छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सैन। वाकई में देखा कितना खूबसूरत एक चीज, एक लम्हा, एक याद आपके जीवन में जुड़ी उस डॉक्टर साहब की वजह से। बेशक वो आज आपके जिंदगी में नहीं है, अपनी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो उन्होंने काम आपके लिए किया, जो अपना कर्तव्य उन्होंने आपके प्रति निभाया, वो कर्तव्य, वो काम आज आपको जीवन दे रहा है। आप सकुशल जीवन जी रहे हैं और खूबसूरत जीवन जी रहे हैं थैंक्स टू दैट डॉक्टर की। उन्होंने आपको इतना ब्लेस्ड किया इस चीज़ के लिए कि आप जो है आज अपने जीवन में सकुशल अपने जो लाइफ को है वो जी रहे हैं।

सतीश अनेजा जी का एक बार और संदेश आया और उन्होंने इस बार रेलिवेंट मैसेज हमें भेजा है। ये कहते हैं विश्व डॉक्टर दिवस की शुभकामनाएं तो पहले ही दे चुके हैं ये, और ये कहते हैं कि 5 अप्रैल 2025 को मनाली हिमाचल में रात को मेरा पांव जल गया था। सर्दी बहुत ज्यादा थी और ऊपर से स्नोफॉल भी हो रहा था। 6 अप्रैल को राम नवमी की वजह से सारा मनाली बंद था। मनाली में मेरे अंकल ने मिशन हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से प्रार्थना की और मुझे अस्पताल ले गए। पांव ज्यादा जला हुआ था, मेरा अच्छे से इलाज किया। डॉक्टर मेरा दोस्त बन गया और मेरा हाल पूछता रहा और मेरे कहने पर परिवार सहित चंडीगढ़ उनके घर भी आए। मेरे लिए तो वो डॉक्टर भगवान थे जो मुझे संभाला। उसके बाद मैं 5-6 बार मनाली गया हूँ और डॉक्टर के पास जाता हूँ, बहुत खुशी मिलती है। देखा, एक जो आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम आई थी उसे तो सॉर्ट आउट किया ही उन डॉक्टर ने, और साथ ही साथ आपको एक अच्छा जो है ना जो डॉक्टर दोस्त है वो भी आपको आपकी लाइफ में मिल गया। वाकई में बहुत ही खूबसूरत ये जो आपने याद हमारे साथ शेयर की है उसके लिए थैंक यू सो मच। आपने संदेश हमें भेजा, अपनी याद हमारे साथ शेयर की, थैंक यू।

जल्दी जल्दी अगले संदेश की ओर चलते हैं। ये भेजा हमें बबलेश पवार जी ने। ये कहते हैं, सफेद कोट पहने जो आता है दुआ बनकर जीवन में छा जाता है, बीमारी के उस घने अंधेरे में वह उम्मीद की एक नई किरण जगाता है, दर्द से जब तड़पता है इंसान तब देवदूत बनकर आता है वो महान, अपनी नींद और चैन को भुला कर बचा लेता है किसी की कीमती जान, दवाइयों से तो सिर्फ मर्ज कटता है पर उसकी मीठी सांत्वना से दर्द घटता है, स्टेथोस्कोप से जब वह धड़कने सुनता है मरीज के दिल में जीने का भरोसा बुनता है, चाहे दिन हो या काली रात हो वह सेवा के लिए सदा तैयार रहता है, ईश्वर का ही रूप है वो इस जमीन पर, तभी तो जग उसे मसीहा कहता है। वाकई में बहुत खूबसूरत लाइनें आपने हमें यहाँ पे भेजी हैं लिखकर बबलेश पवार जी, और थैंक यू सो मच ये खूबसूरत संदेश हमारे साथ शेयर करने के लिए, हम तक भेजने के लिए।

गाव्या मल्होत्रा का अगला संदेश हमें मिल रहा है, कहते हैं विश्व डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जी। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा भाई, सुच्चा सिंह पाठक, अनारकली बाजार, जगराओ पंजाब से हमें संदेश भेज रहे हैं।

अगला संदेश हमें मिल रहा है सुधाकर राजे माधव जी का। प्रशांत राजे माधव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सर्वद और ये हैं कौन साथ में हैं, हर्षदा देशमुख, सर्वद देशमुख, ये कहते हैं मेरे को 4 साल पहले अपर कैंसर हुआ था। हमारा जालना जिला के अंदर दीपक हॉस्पिटल बोल की है, वह गायकवाड़चा डॉक्टर आहे, उन्होंने मेरी के ऊपर इलाज मेरा इलाज किया और मुंह का कैंसर जो है वो ठीक हो गया। अच्छा, आपको मुंह का कैंसर हुआ था जिसका इलाज एक डॉक्टर ने किया। अभी भी मैं आपके अंदर एक दिन उनको हॉस्पिटल में मिलने को जाता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है दोस्त। अगर आप की जो बीमारी थी वो उन डॉक्टर ने काट दी, क्योर कर दी, और आप का जो रिश्ता है वो अभी भी उन डॉक्टर के साथ कायम है, तो बहुत ही खूबसूरत सी बात है जो आपने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच, आपने अपना ये जो संदेश है हम तक पहुंचाया।

अगला संदेश टीके पी परिहार का आया है और ये कहते हैं, नमस्कार, डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर तो भगवान ही होते हैं, दवाइयों पर जितना विश्वास नहीं होता उतना डॉक्टर पर, उनकी बातों पर विश्वास होता है। डॉक्टर साहब द्वारा दिया गया आश्वासन मरीज को तुरंत ठीक कर देता है। साथ में आपके हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार, भोपालगढ़ राजस्थान से। वाकई में पता है, मैंने अपने पापा से एक बात जरूर सुनी थी कि डॉक्टर जो होते हैं ना, अगर डॉक्टर मतलब अगर हंसकर आपसे कोई भी बीमारी की बात करता है, आप बीमार हैं, आप जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर सिर्फ हंसकर आपसे आपकी बीमारी की बारे में पूछते हैं, तो आधी बीमारी जो है ना दोस्त, वो बस ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। एक कंफर्टेबल आपको बना देते हैं डॉक्टर, आपके साथ कंफर्ट जोन में जाकर आपसे बात करते हैं, आपकी बीमारी के बारे में बात करते हैं, उसका इलाज करते हैं। और कहते हैं ना, जब डॉक्टर अच्छा मिल जाए तो बीमारी रफू चक्कर हो जाती है और बस डॉक्टर का मुस्कुराना ही ना आपकी बीमारी का इलाज बन जाता है।

वक्त हो चुका है 10:39 और पूरे 30 सेकंड्स। आप सुन रहे हैं आपकी पसंद, मैं हूं आपके साथ आज की आपकी रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना। अगला संदेश लेते हैं हीरामन शिंदे जी का। बहुत सारे संदेश आ रहे हैं, बहुत सारे श्रोता है जो अपनी बातें हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप सभी श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो लेते हैं हीरामन शिंदे जी का ये संदेश, खूबसूरत सा। ये कहते हैं मरीज डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मैं रोज 50 रुपये की दवाई ले रहा हूँ पर कोई फायदा नहीं हो रहा। डॉक्टर अब तुम मुझसे 40 रुपये वाली दवाई ले जाओ, इससे तुम्हें रोज 10 रुपये का फायदा होगा। ये तो आपने बहुत ही खूबसूरत सा जोक भेज दिया, लेकिन देखिए दवाई तो उन्हें फिर भी लेनी पड़ी क्योंकि बिना दवाई लिए तो उनको फायदा होने वाला भी नहीं है। अगर कोई बीमारी है तो उसके लिए दवाई तो लेनी पड़ेगी ना दोस्त। ये लिख रहे हैं हमें किशोर नगर अमरावती से हीरामन शिंदे और सिद्धार्थ गोंडा ने।

देखिए एक बहुत ही खूबसूरत सा संदेश हमें भेजा है संदीप मक्कर जी ने, और ये कहाँ से लिख रहे हैं, गोराया पिंगा वाला चौक गोराया जालंधर से, सात मिन के ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, ये कहते हैं कि हमारे यहाँ भी ना एक फौजी डॉक्टर है, फौजी डॉक्टर साहब है। अब जब भी उनसे पैसे पूछते हैं कि भाई दवाई के कितने पैसे हुए, तो वो कहते हैं कि पहले ठीक हो जाओ। देखा कितने अच्छे डॉक्टर हैं, पहले ठीक हो जाओ उसके बाद वो आपसे फीस लेंगे, और हो सकता है ना भी ले, आपकी और उनकी दोस्ती हो जाए, कि दोस्ती यारी में कहते हैं ना कि बस दवाई भी मिल गई, बीमारी भी ठीक हो गई, और एक अच्छा सा दोस्त भी आपको मिल गया।

अगला संदेश हमें मिल रहा है राशिद हुसैन अंसारी जी का। ये कहते हैं, आरजे अर्चना जी नमस्कार, आपको प्यार भरा आदाब। प्यारी सिस्टर जी, आप हमारे लिए एक डॉक्टर से कम नहीं है, हम सब इंद्रप्रस्थ चैनल के मरीज हैं। आप हमारे मेलों को प्रोग्राम में शामिल करके दिन भर की खुशियां देती हैं, ये क्या डॉक्टर से कम है। आई एम सो ग्लैड कि आपने मुझे आज डॉक्टर बना दिया, आज इसे सीधे मैं डॉक्टर बन गई। और वाकई में आपके जो आप भी हमारे लिए एक डॉक्टर के समान ही है दोस्तों, और श्रोता जितने भी हमारे ना खूबसूरत से, वो सभी हमारे लिए डॉक्टर के समान ही है, क्योंकि इनके खूबसूरत खूबसूरत से जो संदेश है वो हम तक आते हैं, और उनको पढ़कर, उनको सुनकर, उनकी तारीफें सुनकर पढ़कर मैं तो, मेरी तो हर कोई भी प्रॉब्लम होती है ना वो सॉल्व हो जाती है। कोई

बीमारी होती है ना वो सॉल्व हो जाती है। मैं तो आप लोगों को ही, आप श्रोताओं को ही डॉक्टर समझती हूँ। आप लिख रहे हैं हमें जैन मंदिर वाली कुरावली से, राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी और नौरीन अंसारी।

अगला संदेश लेते हैं शीशपाल वर्धन जी का। ये कहते हैं, डॉक्टर दूसरा भगवान होता है गजब से। वाकई में दूसरा भगवान भी होता है, और अगर आप चाहें तो उस भगवान को अपना दोस्त भी बना सकते हैं।

दोस्तों हम चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई जानकारी हो ना डॉक्टर से रिलेटेड तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, बट ऑथेंटिक होनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। संदेशों की ओर बढ़ते हैं, अगला संदेश लेते हैं अहमद भगवान जी का। अहमद बागवान जी का ये कहते हैं, आदाब और नमस्कार, सदा खुश रहें। थैंक यू सो मच, आप भी खुश रहें सर। विश्व डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ये हमें दे रहे हैं। कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। एक महिला डॉक्टर थी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसने मेरी मरहूम माँ को बचाया था। जब सभी ने इनकार कर दिया था तब उसने हिम्मत दी, हमें हिम्मत देते हुए कहा कि मैं कोशिश करती हूँ और उनकी कोशिश कामयाब हो गई और हमारी माँ ठीक हो गई। वाकई में डॉक्टर का सिर्फ ये कहना कि आप ना उम्मीद ना हो, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, तो बस यही जो कोशिश है ना वो कामयाब होती है और आपके जीवन में एक नई रोशनी लाती है डॉक्टर के जरिए। ये लिख रहे हैं फ्रेंड्स रेडियो ग्रुप, छोटी बलिया मुंबई कटजत से।

अगला संदेश लेते हैं अनिल जैन जी का। ये कहते हैं, कैसे हैं आप? जय जनेंद्र जी, जय जनेंद्र जी। ये कहते हैं, दी 9 अप्रैल को मेरे स्टमक में बहुत जबरदस्त पेन हुआ। मेरा बेटा मेरठ में डॉक्टर बाली के पास लेकर गया। उन्होंने टेस्ट करवाने के बाद कहा कि ऑपरेशन होना है। मेरे से डॉक्टर साहब बोले, चिंता मत करो जैन साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 11 अप्रैल को मेरा ऑपरेशन हुआ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखा, बस ये बोल देना कि आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा, बस यही काफ़ी होता है। जी हाँ, चाहे आपकी बीमारी क्योरेबल हो या नॉन क्योरेबल हो, बट अगर दोस्त अगर डॉक्टर ने बोल दिया ना कि चिंता मत करो, मैं हूँ, सब ठीक कर दूंगा, बस छोड़ दीजिए डॉक्टर के ऊपर। आप लिख रहे हैं मलियान सरधना मेरठ से, साथ में है संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जिवयम जैन।

अगला संदेश हमें मिल रहा है राजेश शर्मा जी का। ये कहते हैं, दीदी जी नमस्कार, एनी सॉन्ग प्लीज थैंक्स। बस ये लिखकर इन्होंने हमें भेजा है। वाकई में छोटा सा लेकिन प्यारा सा मैसेज है और ये कहते हैं प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है, प्लीज मेरे मैसेज को भी शामिल कर लिए, थैंक्स। बिल्कुल, आपका जो संदेश है वो हमने शामिल कर लिया आपके साथ है। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा।

ईमेल मेरा भी ईमेल शामिल करें जी, हम गरीबों का ईमेल भी शामिल करें आप, एक बहुत आपकी बहुत कृपा होगी दीदी जी, एनी सॉन्ग। और साथ में इनके लग रहे हैं करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, किरण ठाकुर, जग्गी दुआ जी, राम राम जी। थैंक यू सो मच राम राम जी, आपने हमें संदेश भेजा।

दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वे कभी गलती नहीं करते, बल्कि ये भी कि वे हर दिन पूरी निष्ठा से लोगों की मदद करने का प्रयास करते हैं। उनकी मेहनत, संवेदनशीलता और सेवा भाव उन्हें समाज में एक विशेष स्थान दिलाता है। दोस्तों, विश्व डॉक्टर दिवस हमें केवल शुभकामनाएं देने का अवसर नहीं देता, बल्कि ये भी सिखाता है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, डॉक्टरों को सम्मान करें और उनकी सलाह का पालन करें।

जी हाँ, कितना अच्छा लगता है ना जब डॉक्टर के मुंह से सुनते हैं कि आप चिंता ना करें, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा, आप बस अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और जैसा मैं कहता हूं, जैसा मैं कहती हूं वैसा करते जाए, समय पर खाना खाएं, समय पर दवाइयां खाएं, समय पर परहेज करें। जी हाँ, अगर आप कह देना कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई बीमारी हुई है और उसमें परहेज करके आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकते हैं, तो आप डॉक्टर का कहा माने, परहेज करें। और डॉक्टर को कहते ना कि अगर आप रिवर्ट करना चाहते हैं, रिटर्न में कुछ देना चाहते हैं, तो बस परहेज करें, उनकी बात माने। यही जो है ना डॉक्टर के एक रिस्पेक्ट में आपका जो रिवर्ट होगा वो यही होगा। अगला संदेश हमें मिल रहा है प्रकाश वर्मा जी का, कहते हैं डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ परिवार को भी। थैंक यू सो मच इंद्रप्रस्थ आकाशवाणी परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से आपको थैंक यू सो मच। आप लिख रहे हैं काला छत्तीसगढ़ पलारी से, साथ में प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।

हमारे बहुत सारे श्रोता ऐसे भी हैं जिन्होंने डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जो है वो हम तक भेजी, उन्हीं में से एक है रमेश चौहान जी, लिख रहे हैं कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से। साथ में इनके हैं मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमांश।

अगला संदेश हमें मिला है रोजी डिकैस्ट्रो का. ये कहते हैं, थैंक्स फॉर प्लेइंग लवली सॉन्ग्स. आई होप आपको टॉपिक भी पसंद आ रहा होगा रोजी जी. और आपने इसके बारे में कुछ लिखकर नहीं भेजा बशर्ते, लेकिन आप चाहें तो अभी भी वक्त है, आप हम तक संदेश पहुंचा सकती हैं. अभी भी है हमारे पास 8 मिनट, तो जल्दी से भेज दीजिए. साथ में है आपके पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो, लिख रहे हैं जनकपुरी सहारनपुर से.

मुझसे कहो, जी हाँ मुझसे कहिए, अपने दिल की बात हम तक पहुंचाइए। गुलाबदास मानिकपुरी जी का संदेश हमें मिल रहा है, ये कहते हैं डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दुनिया के सभी डॉक्टर्स को मेरा प्रणाम, ईश्वर ने तो जन्म दिया लेकिन जिंदगी की देखभाल के लिए अपने दूसरा रूप में डॉक्टर को भेज दिया, जिसे मेरा बार बार नमन। हॉस्पिटल्स में हमें आशा और निराशा दोनों हाथ लगते हैं, बिल्कुल हमें दोनों ही चीजें हाथ लगती हैं, आशा भी और निराशा भी, बशर्ते हमें उनके साथ डील करने आना चाहिए। आप लिख रहे हैं लेवाई छत्तीसगढ़ से, गुलाबदास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी।

अगला संदेश हमें मिल रहा है बबल 363 का, ये कहते हैं दीदी जी अब तक हमारी मेल शामिल नहीं हुई है, लाइव प्रोग्राम सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप लाइव प्रोग्राम हमारा सुन रहे हैं तो आपको पता होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आपने उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं भेजा, एनीवेज आपने जो भी भेजा बहुत खूबसूरत भेजा, थैंक यू सो मच। आप लिख रहे हैं मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा आपके साथ हैं।

अगला संदेश हमें मिल रहा है किशन वंजानी जी का। ये कहते हैं, गुड मॉर्निंग, विश डॉक्टर दिवस की सभी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान के बाद भी दूसरा भगवान हम डॉक्टर को मानते हैं। किसी भी गीत में हमारा नाम शामिल करें। किशन वंजानी, स्वाति और केशु, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से ये हमें लिख रहे हैं। वाकई में आपने इतना खूबसूरत संदेश हमें भेजा, गुड मॉर्निंग भी विश किया और हार्दिक शुभकामनाएं जो है वो भी हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच अपना संदेश हम तक पहुंचाने के लिए।

अगला संदेश हमें मिल रहा है सुदर्शन मुखी जी का, ये लिख रहे हैं साथ में इनके सुनीता मुखी, सिमरन मुखी फ्रॉम शांति नगर सोनीपत से, कहते हैं आदरणीय अर्चना जी सादर प्रणाम, विश्व डॉक्टर दिवस की कोटि कोटि हार्दिक बधाई है, शुभकामनाएं, धरती के प्रभु होते हैं डॉक्टर, आपका दिवस और जीवन बहुत शुभ और सुखद हो, कोटि कोटि थैंक यू सो मच, आपने मेरे संदेश भेजा और वाकई में धरती के भगवान होते हैं डॉक्टर्स और हमें डॉक्टर्स की बहुत इज्जत करनी चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए, हमेशा उनकी सेवाओं का जो है ना सम्मान करना चाहिए।

वक्त हो चुका है स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 10:58 हो चुके हैं, यानी 2 मिनट्स जो है ना शेष बचे हैं हमारे इस कार्यक्रम को समाप्त होने में। और आई होप कि इस कार्यक्रम को जो है ना एंड की ओर ले जा रहे हैं, और आशा करती हूँ मैं यहाँ पर से कि आपको ये कार्यक्रम जो है ना बेहद पसंद आया होगा और आज की जो जानकारी है, आज की जो बातें, आज का जो टॉपिक है वो भी बेहद पसंद आया होगा। और बस इसी तरीके से आप जो है ना अपना प्यार हम तक पहुँचाते रहिए, आप सभी श्रोताओं का, जिन भी श्रोताओं ने हमें संदेश हमें भेजे, हम तक भेजे, उन सभी श्रोताओं को तहे दिल से धन्यवाद और तहे दिल से माफ़ी। जिन भी श्रोताओं के जो संदेश हैं वो मैं अपने इस कार्यक्रम में आज शामिल नहीं कर पाई, उसके लिए बेहद अफसोस है, और नेक्स्ट टाइम ज़रूर उन सभी श्रोताओं को अपने इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे, संदेशों को शामिल करेंगे। इसी आशा के साथ आपसे जल्द से जल्द मिलने का वादा लिए आपसे इजाज़त चाहती है आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना। और आप बस इसी तरीके से हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए, अपना प्यार हमें यूं ही भेजते रहिए, अपना प्यार हम पर इतना ऐसे ही लुटाते रहिए। थैंक यू सो मच, आप जल्दी मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के ठीक 11 बजने को है, आपसे थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीवीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इसे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जीरामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू होंगी। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है। इस पहल में विश्वास व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे गांवों में आजीविका के नए अवसर सृजित होंगे, परिसंपत्ति सृजन की गति तेज होगी, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और स्वावलंबी ग्रामीण भारत के लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजिश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत तथा राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए की गई है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित होगी। सरकार देश के विनिर्माण क्षेत्र की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर को लाभ होगा। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रूपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस कटौती के बाद अब 19 किलोग्राम का व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 2,930 रूपये में मिलेगा। इस फैसले से रेस्तरां, ढाबा, होटल और अन्य खानपान से जुड़े व्यवसायियों को लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति तथा आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Sunil Verma. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Viksit Bharat G. Ramji Act 2025 has come into force across rural India with effect from today. The Rural Development Ministry said that the Act, which guarantees 125 days of wage employment in every financial year, will empower rural India. Our correspondent reports that a provision of 95,692 crore rupees has been made in the current financial year for operationalization of the new framework across the country. As the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Viksit Bharat G. Ramji Act 2025 came into force today, Union Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan termed the occasion a historic milestone. In a social media post, Mr. Chauhan said, "The Act marks a new chapter in ensuring dignity, self-respect and secure livelihoods for millions of rural workers." He said the Act provides rural families with a statutory right to 125 days of employment. Expressing confidence in the initiative, Mr. Chauhan said it will create new livelihood opportunities in villages, accelerate the creation of sustainable assets, empower women, and give fresh momentum to the vision of a self-reliant rural India. The central government has notified revised wage rates under the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Viksit Bharat G. Ramji Act 2025, effective from today. According to the notification issued by the Rural Development Ministry, wage rates have been enhanced across all states and union territories. It said for the first time, an interim base wage rate of 300 rupees per day has been introduced, ensuring that no notified wage under the program falls below this level. The national average wage has risen from 298.8 rupees per day under MG Narega to 327.4 rupees per day under Viksit Bharat G. Ramji, marking an average increase of over 10%. 21 states and administrative units, which previously had wages below 300 rupees, have now been brought up to the new benchmark. Newly appointed Chief of Army Staff, General Dheeraj Seth, has stressed the need to advance the modernization of the army to tackle the challenges of the evolving security environment. addressing the media today after assuming charge

0: आपका जलदाता ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देते। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं? क्या लिखूं अपना दर्द? अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के ठीक 11:30 होने को है। अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी। इसमें आज आप सुनेंगे राजपाल सिंह द्वारा राग बसंत मुखारी में गायन।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी में अभी आप आनंद उठा रहे थे राजपाल सिंह द्वारा राग बसंत मुखानी में गायन का।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर दोपहर के ठीक 12 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। वॉशिंगटन डीसी में आयोजित 9वें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन में श्री क्वात्रा ने कहा कि ये परिवर्तन मजबूत आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों से प्रेरित है। श्री क्वात्रा ने इसका श्रेय भारत के घरेलू आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों को दिया। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल धीरज सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति और आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में तेजी का रुख रहा। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 428 अंक की बढ़त के साथ 76,906 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 137 अंक चढ़कर 24,003 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay.

घर आंगन। कुछ रिश्ते छांव की तरह होते हैं, कुछ यादें तुलसी के पौधे सी महकती हैं, कुछ बातें रसोई से उठती खुशबू की तरह मन में बस जाती हैं। घर इन्हीं से बनता है और आंगन इन्हीं से आबाद होता है। नमस्कार दोस्तों, 100.1 MHz FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर आंगन और इसी के साथ आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर भी। आज आपके साथ इस सफर में हम सफर रहूंगी मैं, आपकी रेडियो हम सफर सोनाली। तो आइए जिंदगी की इसी गर्माहट और साथ ही मौसम की इसी खूबसूरती को महसूस करते हैं हमारे घर आंगन में।

फिल्म सत्ते पे सत्ता से आप सुन रही थी आशा भोसले, दिलराज कौर और साथियों की आवाज़ में ये गीत। दोस्तों, कहते हैं कुछ रिश्ते उम्र के साथ बदल जाते हैं, लेकिन कुछ यादें कभी पुरानी नहीं होती। आज कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसे ही सवाल से करते हैं जिसका जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, क्या आज भी आपका अपने बचपन के दोस्तों से संपर्क है? क्या कभी अचानक किसी पुराने दोस्त का फोन आया और बरसों पुरानी यादें ताजा हो गई? या फिर जिंदगी की भागदौड़ में वे दोस्त कहीं पीछे छूट गए, लेकिन उनकी यादें आज भी आपके साथ हैं? तो हमें लिख भेजिए ना अपने बचपन के किसी ऐसे दोस्त की कहानी जिससे जुड़ी कोई याद आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती हो या आंखें नम कर जाती हो। आपका जवाब हम ईमेल के माध्यम से जरूर जानना चाहेंगे। हमारा ईमेल आईडी तो आपको पता ही है ना? जी हाँ, वो है fmgoldga@gmail.com। तो इंतजार रहेगा आपकी खूबसूरत ईमेल्स का और साथ ही आपके और आपके दोस्त के इस खूबसूरत रिश्ते की कहानी का भी।

जी हाँ दोस्तों, फिल्म याराना से आप ये गाना सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। और आपका और हमारा याराना भी यहाँ पर कायम रहता है। जी हाँ, किसके ज़रिए और किसके माध्यम से, वो है हमारा ईमेल आईडी जो है fmgoldga@gmail.com। और आज हम आपसे जानना चाहते हैं आपके बचपन के ऐसे किसी दोस्त के बारे में, ऐसी किसी सहेली के बारे में जो आपसे बहुत समय बाद दोबारा मिली, या फिर ये भी हो सकता है कि बचपन से लेकर आज तक वो दोस्ती कायम है और वो लगातार और ज़्यादा गाढ़ी होती जा रही है, जैसी आपकी और हमारी दोस्ती भी लगातार लगातार गाढ़ी हो रही है और परिपक्व भी हो रही है। तो बस देखिए हमारे साथ कौन जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मोतीनगर नई दिल्ली से नवीन भाटिया, लिखते हैं टेंथ में पढ़ते थे मनीष सैनी और सुनील सैनी, तो काफ़ी साल बाद वो मुझे लास्ट ईयर मिले तो आंखों में खुशी के आंसू आ गए। क्या बात है। देखिए ऐसा ही होता है, क्योंकि जब आप दोस्तों से मिलते हैं ना, और अगर इतना ज़बरदस्त आपका रिश्ता उनके साथ हो और बचपने का जो एक मासूम सा रिश्ता होता है वो जीवन भर अगर बना रहे तो क्या बात है, है ना। क्योंकि इस तरह से तो दोस्तों के साथ लगातार बने रहना हमारी खुशकिस्मती है। और आप बहुत खुशकिस्मत हैं नवीन जी कि आपके साथ आपके बचपने के दोस्त दोबारा जुड़े। तो हम भी चाहेंगे हमारे बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़े और अपने किस्से, अपनी बातें, अपनी यादें हमारे साथ साझा करें। दोस्तों बचपन के दोस्त हमारी यादों का हिस्सा होते हैं, उसी तरह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अगर जीवन को स्वस्थ रखना है तो प्रकृति का स्वस्थ रहना भी उतना ही जरूरी है। संयोग से आज से वन महोत्सव सप्ताह की शुरुआत हो रही है, और आज यानी 1 जुलाई, जी हाँ, और आज ही के दिन हम राष्ट्रीय

अवसर देता है, एक जो हमारी सेहत की रक्षा करते हैं और दूसरा जो हमें स्वच्छ हवा, जल और जीवन प्रदान करता है। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस आप सभी जानते हैं दोस्तों, भारत में हर वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिन महान चिकित्सक, शिक्षाविद और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय की स्मृति में मनाया जाता है। उनका जन्म और निधन संयोगवश आज ही के दिन यानी 1 जुलाई को हुआ है, और ये दिन उन सभी चिकित्सकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है जो दिन रात हमारी सेवा में समर्पित रहते हैं। उनके ज्ञान, संवेदनशीलता और सेवा भाव के कारण अनगिनत लोगों को नया जीवन और नई उम्मीद मिलती है। इसी के साथ आज से 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह भी मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत ना वर्ष 1950 में हुई थी, और वर्षा ऋतु आप जानते हैं बस उसका आगमन हो ही चुका है और मानसून की आमद हो चुकी है, तो वर्षा ऋतु को वृक्षारोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है, और इसीलिए इस सप्ताह देश भर में पौधारोप, पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब आप भी जानते हैं कि पेड़ जो होते हैं वो केवल हमें ऑक्सीजन नहीं देते बल्कि जल संरक्षण, जैव विविधता, मिट्टी के संरक्षण और संतुलित पर्यावरण के लिए भी बहुत जरूरी है। तो बस आज ही का ये जो दिन है ये हमें एक बहुत सुंदर संदेश देता है कि अपने डॉक्टरों का सम्मान कीजिए और धरती को हरा भरा बनाने में अपना योगदान भी दीजिए, क्योंकि स्वस्थ जीवन के लिए एक कुशल चिकित्सक और स्वस्थ पर्यावरण दोनों का साथ होना बेहद जरूरी है।

फिल्म साजन बिना सुहागन में आप सुन रहे थे येसुदास की आवाज में ये गीत। दोस्तों देखिए, हमारे साथ हमारे और भी दोस्त जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं उग्रसेन यादव, नई दिल्ली से लिख रहे हैं। सोनाली जी, आपको हमारा सप्रेम नमस्कार। आपको भी हमारा नमस्कार उग्रसेन जी। आप लिखते हैं कि बचपन की कोई याद जो कभी भी भूल नहीं सकता। अच्छा, बचपन की वो याद जो कभी भी भूल नहीं सकते, वो है उस समय जब हमें किसी भी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता था। मैं और मेरा दोस्त 4:30 बजे चले जाते थे बाग में एक्सरसाइज के लिए। पर जब आज सोचते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। कभी हम हर पल साथ रहते थे। अरे आप अभी उनको सोच के आंसू ना बहाइए। देखिए कौन कितनी दूरी पर है। आजकल तो सोशल मीडिया, डिजिटल दुनिया, आपके हाथ का आपका फ़ोन, सब इतनी फटाफट आपको आपके दोस्तों के साथ मिला सकते हैं। बस उनको एक बारी फ़ोन कीजिए, उनसे एक बार जाकर मिल लीजिए अगर पास में कहीं रहते हैं। और फिर आपने बताया कि आप उन्हें याद कर रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो इस जरिए भी तो आप अपने दोस्त के साथ ही है ना। तो आप उनसे बिल्कुल बिना किसी झिझक के, बिना देरी किए एकदम जाकर के मिल लीजिए, फ़ोन कर लीजिए और अपने उसी दोस्त को दोबारा अपने जीवन में ले आइए। और अभी भी अगर आप सुबह 4:30 बजे सैर करने, व्यायाम करने बाग में जाएंगे तो आप दोनों के लिए भी उतना ही अच्छा रहेगा और दोस्ती और ज़्यादा प्रगाढ़ होगी, है ना। और देखिए अब हमारे साथ कौन जुड़े हैं। ये है राजू अग्रवाल, केशव, प्रियांशी, गांव चौधरी वास, जिला हिसार, और इनको हमारा प्रोग्राम सबसे अच्छा लगता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमें बहुत अलग चीज़ लिख रहे हैं। देखिए ये लिख रहे हैं कि एक महिला चाहे बूढ़ी हो जाए फिर भी बाबुल का कच्चा आंगन कभी नहीं भूलती। रही बात बचपन की, तो मैं हर वक्त बचपन की बातें दूसरों को बताता हूँ। बचपन याद करने से सुकून मिलता है। बहुत अच्छी बात है, बचपन को तो हमेशा याद करते रहना चाहिए। उन पलों को कौन भूलना चाहता है जब हम एकदम बिना किसी परेशानी के, बिना किसी सोच के लगातार अपने दुनिया में मगन रहते थे, खेलते थे, कूदते थे और एकदम माँ बाप के संरक्षण में सुख से अपना जीवन बिताते थे। तो हम आपसे जानना चाहते हैं आपके बचपन का ऐसा कौन सा दोस्त है जो आज भी आपके साथ है, आपके साथ उनकी दोस्ती अभी भी कायम है, और नहीं भी है तो क्या आप दोबारा उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्हीं सारी बातों को आप हमारे साथ साझा कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। दोस्तों हमने बात की सेहत की। जी हाँ, अच्छी सेहत जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है क्या? सुरक्षित रहना। आज की महिलाएं पढ़ाई, नौकरी और दूसरे कई कामों के लिए अकेले सफर करती हैं। ऐसे में जो हमारा हैंडबैग या पर्स होता है ना, उसमें सिर्फ जरूरत का सामान ही नहीं रखा जाता। आपको पता है कई कई बार ना वो आपको बहुत सारी मुश्किलों से भी आपको निकाल सकता है, और ऐसे मुश्किल वक्त में वो आपका बहुत बड़ा सहारा भी बन सकता है। कैसे? अरे हम है ना आपको बता रहे हैं। देखिए क्या होता है कि हमारे पर्स में हम लोग

हमेशा रोज़मर्रा की ऐसी बहुत सी चीज़ें रखती हैं जो अक्सर ना अगर ऐसी आप किसी स्थिति में पड़ जाएं जहां से आपको निकलने के लिए किसी सहायता की ज़रूरत हो, कुछ सुरक्षा की किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो ये आपका जो पर्स है ना, इसके अंदर मौजूद बहुत सी चीज़ें आपके बहुत काम आ सकती हैं। अक्सर क्या होता है कि जब हम अकेले कैब में सफ़र करते हैं तो कैब में बैठते ही उसकी जानकारी और अपनी लाइव लोकेशन आप सबसे पहले ना अपने घर के किसी भी सदस्य को या अपने किसी दोस्त को या किसी ऐसे भरोसेमंद साथी को ज़रूर उसके साथ साझा कर दीजिए। और फिर ना अपना जो मोबाइल नंबर है उसमें आपके इमरजेंसी जो नंबर हैं उनको अपने एकदम टिप पर रखिए। सबसे पहले उनको अपने मोबाइल में उनका हमेशा मौजूद रहना ज़रूरी है उन नंबर्स का। फिर जितने भी हमारे इमरजेंसी के जो नंबर्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, उनको भी अपने फ़ोन में हमेशा सेव करके रखें। अब जो अब आपका जो पर्स है ना, आप उसको खोल कर देखिए, उसके अंदर चाबियों का गुच्छा तो हम महिलाओं के पास मिल ही जाता है। अब ये जो चाबियों का गुच्छा है ना, इसको कोशिश करें कि हमेशा अपने हाथ में रखें, अपने हाथ के आसपास रखें, ताकि पर्स में हाथ डालते ही वो आपके हाथ में आ जाए। और ये एक ऐसी चीज़ है जो मुश्किल वक्त में आपके हाथ में आ जाए ना, तो आप इसकी मुट्ठी बनाकर अपने बचाव के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर पेपर स्प्रे, जी हाँ, पेपर स्प्रे जिसमें मिर्च का स्प्रे होता है, वो भी आपके पास में होना आपके पर्स में अगर है तो आपके लिए बहुत सुरक्षित एक बचाव का साधन हो सकता है, और ज़रूरत पड़ने पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक और चीज़ है, परफ्यूम या डिओड्रेंट तो हम सभी के पास में होता ही है। ये भी ना, अगर आपके पास में पेपर स्प्रे नहीं है तो परफ्यूम और डिओड्रेंट ये भी आपके लिए उसी के जैसा ही काम आ सकता है, बिल्कुल। और इसके अलावा देखिए, पेन तो हम सभी के पास होता है, फिर औरतें हमेशा नेल फाइलर भी अपने पास में रखती हैं, या फिर कंघी भी होती है हमारे पर्स में तो ज़रूर होती है। ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो किसी भी आपात स्थिति में हमारे लिए मददगार साबित हो सकती हैं। ये रोज़मर्रा की चीज़ें हमेशा अपने पास अगर पर्स में नहीं भी रखती हैं ना, तो रखना शुरू कर दीजिए। फिर इसके बाद में एक चीज़ और है, वो है सेफ्टी पिन या हेयर पिन, ये भी हमारे पास मौजूद होती है, और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी आपात स्थिति में आप इसका इस्तेमाल बाकायदा अपनी सुरक्षा के लिए कर सकती हैं। फिर पानी की बोतल, मौसम कैसा भी हो एक पानी की बोतल हम लोग हमेशा अपने पास रखते हैं, उसे भी अपने साथ रखिए, भले ही वो स्टील की ना हो, अगर वो प्लास्टिक की भी है या किसी और मेटल की भी है तो वो बिल्कुल वही काम करेगी जो हमें चाहिए। और मोबाइल फ़ोन आजकल हमारे हाथ में हमेशा रहते हैं, उनको भी हमेशा अपने साथ में रखिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ड्राइवर बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है, या बिना वजह आपसे ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रहा है, या जो आपका तय रास्ता है उसको बदल रहा है, तो चुप ना रहें। किसी भी को भी अपने किसी भी परिचित या अपने किसी भी घर के सदस्य को फ़ोन करें, और किसी भी भीड़ भरी वाली जगह पर गाड़ी रुकवाएं और वहां से उतर जाएं। डरना नहीं है, लेकिन लापरवाह भी नहीं होना है। थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी तैयारी और सही समय पर लिया गया फैसला कई बार बड़ी मुसीबत को टाल सकता है, और इन आते जाते खूबसूरत रास्तों में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी हो सकती हैं। तो अपने मन को और अपने दिमाग को हमेशा शांत रख करके बाहर निकलिए, और अपने हाँ पर्स को इन सभी चीज़ों से हमेशा लबरेज रखिए।

फिल्म अनुरोध में आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में ये गीत। दोस्तों, सुरक्षित रहना जरूरी है, लेकिन अपने शरीर और मन का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर रोज थोड़ा सा समय अपने लिए निकाला जाए तो योग उसकी एक अच्छी शुरुआत हो सकता है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने एक नई पहल की है, जिससे योग को लोगों के घर और मोहल्ले के और करीब लाने की कोशिश की जा रही है। योग को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग पार्क पोर्टल शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य देश भर की मौजूदा पार्कों को ऐसे सामुदायिक स्थानों के रूप में विकसित करना है, जहां लोग ना नियमित रूप से योग, ध्यान और दूसरी स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में भाग ले सकें। दोस्तों, इन योग पार्कों में ना योग अभ्यास के लिए विशेष स्थान, ध्यान के लिए शांत वातावरण और सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इस पहल में ना नगर निकायों, ग्राम पंचायतों, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, योग संस्थानों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी रहेगी और कॉरपोरेट कंपनियां भी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR के तहत योग पार्क विकसित करने में सहयोग कर सकेंगी। अगर आपकी संस्था या आपके क्षेत्र में कोई ऐसा पार्क है जो योग पार्क के रूप में विकसित किया जाना चाहता है या उसे किया जा सकता है, तो इसके लिए आप योग पार्क पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं और पोर्टल पर जो इसके दिशा निर्देश है ना, उसको ज़रूरी जो भी जानकारी है और जो दिशा निर्देश हैं उनको आप इस पोर्टल में जाकर के पता कर सकते हैं। और आज की आप जानते ही हैं कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पास अपने लिए समय ही नहीं है। शायद ऐसी पहल उस दूरी को थोड़ा कम कर दे। हो सकता है कल आपके घर के पास का वही पार्क जहां आज बच्चे खेलते हैं और बुजुर्ग टहलते हैं, वहीं सुबह योग की कक्षाएं भी लगने लगे। धीरे धीरे ये पार्क पूरे मोहल्ले की सेहत, अपनापन और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाएंगे, है ना, अगर हमने उसे योग पार्क पोर्टल में उनको अगर बदल दिया तो। और अगर आप इस पहल के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं ना, तो आप आयुष मंत्रालय की वेबसाइट जो है yoga.ayush.gov.in, इस पर जाकर योग पार्क पोर्टल देख सकते हैं। और आप जानते ही हैं कि जब तन स्वस्थ होता है तो मन भी झूमता है, गाता है और मुस्कुराता है। किस तरह? इस तरह।

ये झूमता गाता गीत आप सुन रहे थे फिल्म पराया धन से, और इसमें जो गाने की आवाज़ थी जिनकी, वो थी किशोर कुमार और आशा भोसले। देखिए हमारे साथ जुड़े हैं, जी हाँ, कौन है ये? ये है रेखा देवी चौधरी। ये भी हरियाणा से हमें लिख रही हैं कि बचपन की सहेलियों से आज भी बात होती है, बच्चों को खेलता हुआ देखकर अपना बचपन याद आ जाता है। मेरे ससुर राजू अग्रवाल रेडियो सुनते हैं, मैं भी काम करते हुए आपका प्रोग्राम सुनती हूँ। देखिए यही तो खूबसूरती है बताए रेडियो की, कि आप ना कुछ भी कर रहे हो आप साथ साथ में रेडियो भी सुन सकते हैं। यह आपको किसी भी काम से रोकता नहीं है, ना आपके हाथ बांधता है। आप पूरे समय अपना मूड बहुत अच्छा रख सकते हैं, खूबसूरत गाने सुन सकते हैं। कहाँ? FM गोल्ड 7.1 MHz पर हमारे साथ दिन दिन भर। और आप अच्छे गाने सुनिए, अच्छा स्वस्थ अपना मन हमेशा स्वस्थ रखिए, स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रखिए, और हमारे साथ लगातार बने रहिए। फिर हमारे साथ एक और हैं, जी हाँ, हमारे एक और दोस्त हैं, वो हैं सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से लिख रहे हैं। सोनाली जी सादर प्रणाम, आपका भी हमारा प्रणाम। आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, इन्हें जानकारियाँ और बातें अच्छी लग रही हैं। फिर ये लिखते हैं कि स्कूल कॉलेज का कोई साथी मिलता है तो बचपन की बहुत मीठी यादें ताज़ा हो जाती हैं, बिल्कुल जाती है, और यही तो खुशी होती है, और यही तो एक सुख है दोस्तों के साथ रहने का, और उनके साथ में बने रह करके अपने मन को हमेशा हल्का करने का। तो देखिए हमने बात की योग की, हमने बात की स्वास्थ्य

अब रोज थोड़ा सा योग शरीर और मन दोनों को तरोताजा कर देता है, और जब बात मन को सुकून देने की हो तो खुशबू का जिक्र अपने आप आ जाता है। आइए आज आपको ले चलते हैं भारत के एक ऐसे शहर में जिसकी पहचान ही उसकी महक है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज है ना, ये सदियों से इत्र बनाने की अपनी अनूठी परंपरा के लिए जाना जाता है, और यही वजह है कि इसे भारत की इत्र नगरी कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ इत्र बनाने की कला लगभग 2000 वर्ष पुरानी है, और आज भी कई परिवार पीढ़ियों से इस विरासत को संजोए हुए हैं। कन्नौज की ना जो सबसे बड़ी पहचान है वो है मिट्टी का इत्र। पहली बारिश के बाद भीगी धरती से उठने वाली सुंधी महक को यहाँ के कारीगर पारंपरिक देग भाप का विधि से इत्र में बदल देते हैं। इसके अलावा गुलाब, चमेली, केवड़ा, मोगरा और खस जैसे फूलों से भी प्राकृतिक इत्र तैयार किए जाते हैं। कन्नौज के जो इत्र है ना, उसकी जो विशिष्टता और विशेषता है वो पारंपरिक कला के लिए GI टैग भी इसको मिल चुका है। यही वजह है कि यहाँ की खुशबू देशी नहीं विदेशों तक अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। कहते हैं ना दोस्तों, कुछ शहर अपनी इमारतों से पहचाने जाते हैं, कुछ अपने इतिहास से, लेकिन कन्नौज ऐसा शहर है जिसकी पहचान उसकी खुशबू है, और ये खुशबू सिर्फ इत्र की नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत की भी है। कुछ खुशबुएं सिर्फ महकती नहीं है, याद भी रह जाती हैं, है ना? तो आइए सुनते हैं इन्हीं खुशबुओं और फूलों से महकता हुआ ये बहुत प्यारा सा गीत।

फिल्म रजनीगंधा में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। दोस्तों, हम लोग हमेशा बचत के कोई ना कोई नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। आजकल बचत के तरीके भी बदल रहे हैं। अब सोना खरीदने के लिए हमेशा ज्वेलरी की दुकान तक जाना जरूरी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ डिजिटल गोल्ड के बारे में, और इसे खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी हम आपको आज बताएंगे। डिजिटल गोल्ड सोना खरीदने का एक ऑनलाइन तरीका है। इसमें आप मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से अपनी सुविधा और बजट के अनुसार बहुत छोटी राशि से भी सोना खरीद सकते हैं। आपके नाम पर खरीदा गया सोना सुरक्षित वॉल्ट में रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर आप उसे बेच सकते हैं या तय शर्तों के अनुसार सिक्के या बार के रूप में मंगवा भी सकते हैं। हालांकि डिजिटल गोल्ड खरीदने से पहले ना कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप हमेशा विश्वसनीय और प्रतिष्ठित मंच का ही चुनाव करें, और ये भी देख लें कि सोना 24 कैरेट और 99.5% यानी 99.5% या उससे अधिक शुद्धता का ही हो। और हमेशा ध्यान रखें कि आप जहाँ से भी ले रहे हो वो ऑथेंटिकेट जगह हो और प्रामाणिक जगह से ही चीज़ें लें, और भंडारण शुल्क, डिलीवरी शुल्क और अन्य नियमों की जानकारी पहले ही पढ़ लें। ये भी ध्यान रखें कि डिजिटल गोल्ड भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित निवेश उत्पाद नहीं है। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें और अपनी जरूरत और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखें। बचत का कोई भी तरीका चुनें, लेकिन सबसे जरूरी बात है समझदारी से निर्णय लेना, है ना। जानकारी जितनी भी सही होगी आपका फैसला भी उतना ही बेहतर होगा। और सोना चाहे तिजोरी में रखा हो या डिजिटल रूप में, भारतीय घरों में उसकी चमक और अपनापन हमेशा खास रहा है।

दोस्तों आप सुन रही हैं फिल्म दोस्त दो रास्ते फिल्म में लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत और इस गीत के साथ ही मैं यानी आपके रेडियो हम सफ़र आपसे आज के इस कार्यक्रम घर आंगन से इजाज़त चाहूँगी। दोबारा मिलने के वादे के साथ नमस्कार।

घर आंगन आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जीराम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जीराम जी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीराम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सतत जल प्रबंधन और सिंचाई के विस्तार से सिंचाई आधारित कृषि के 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं। पहली जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेतों में जल दक्षता में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते

0: Federation Amistad. In a social media post, he said that in such a challenging time, the efforts to serve those in need are shining examples of how medical professionals rise to the occasion every time the society faces a challenge. India launched Operation Amistad in response to devastating earthquakes in Venezuela that caused extensive loss of life, injuries, and widespread destruction. Operation Amistad is a humanitarian assistance and disaster relief mission in a gesture of solidarity with the people of Venezuela. On the second day of the higher-level assessment tour, Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju, accompanied by Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu, conducted an aerial survey of flood-hit areas in the state today. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। वक्त हुआ है दोपहर के 1:10 और 15 सेकंड और ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक ही फिल्म से। प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से,
3: फसा। अनजान ऐप से बचें।
4: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: जी हाँ दोस्तों, आज हम टाइम मशीन में बैठकर पीछे चलेंगे पूरे 32 साल। जी हाँ, 32 साल पीछे, और वो साल था 1994, जब थिएटर के बाहर लंबी कतारें लगी थी, ब्लैक में टिकट बिक रही थी और हवाओं में सिर्फ एक ही धुन गूंज रही थी, चेहरा क्या देखते हो। आप समझ गए ना हम किस दौर की बात कर रहे हैं और किस फिल्म की बात कर रहे हैं। एक ऐसी फिल्म की जो ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, एक ऐसी फिल्म जिसने बड़े बड़े खान्स के दौर में बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल दिखाया कि लोग देखते ही रह गए। तो आज की महफिल सजी है साल 1994 की उस फिल्म के नाम जिसने नए कलाकारों के साथ भी संगीत प्रेमियों के दिलों में खास जगह बनाई। तो चलिए इसी फिल्म के बारे में आज आपसे हम बात करेंगे और इसी फिल्म के गीत भी आज हम आपको सुनवाएंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और अपने दिल की बात कहने का जो तरीका है, जो हाल बताने का रास्ता है, माध्यम है, वो तो आप जानते ही हैं, मेल। और इस फिल्म से जुड़ी जो बातें हैं वो भी आप इसी के जरिए हम तक पहुंचाएंगे। मेल भेजने का मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। और इन सब बातों के बीच में मैं ये बताना तो भूल ही गई कि आज आपके साथ मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। इस गीत को सुनिए और उसके बाद हमेशा की तरह सही जवाब आप हम तक पहुँचा दीजिए।

फिलहाल यहाँ हमारा दिल टूटा नहीं है, दिल तो हमारा जुड़ने वाला है उस फिल्म के साथ जिसने तहलका मचा दिया था। और जब आपके गीत, जब आप तक गीत पहुँचेंगे और आपका जो संदेश है, जो जवाब हम तक पहुँचेंगे, तो फिर तो दिल गदगद होगा।

तो सोच में आपको तो पढ़ना ही नहीं है, और हम जानते हैं कि आप सोच में पढ़े भी नहीं हैं, क्योंकि आपके जिस तरीके से जवाब पहुंच रहे हैं, आपने झट से इस फिल्म को पहचान लिया जो आज हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो सबसे पहले खोलते हैं इस फिल्म की कुंडली। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था शाहरुख सुल्तान ने, और पर्दे पर नजर आए थे दो बिल्कुल नए चेहरे, अयूब खान और संयुक्ता सिंह। कहानी में देशभक्ति का जज्बा, पुलिस फोर्स का एक्शन और एक ऐसी लव स्टोरी थी जिसने उस दौर के युवाओं के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी थी। लेकिन जानते हैं आप कि जो फिल्म का संगीत था वो किसने दिया था? मशहूर जोड़ी नदीम श्रवण ने, जबकि गीतों को शब्दों से सजाया था समीर ने, मदन पाल और अन्य गीतकारों ने। बहुत ही दिलचस्प पर्दे के पीछे की कहानी भी है इस फिल्म से जुड़ी हुई, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें शॉर्ट में इस फिल्म की कहानी क्या थी। फिल्म का नायक विजय एक ईमानदार सैन्य कैडेट है, उसे सभी से प्यार हो जाता है, लेकिन सभी की पुरानी और दर्द भरी यादों के कारण वो

कुछ रिश्ते उसके खिलाफ भी हो जाते हैं, और दूसरी ओर एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी भी है और उसका एक बेटा है। तो ये यहाँ पर कुछ मुश्किलें खड़ी होती हैं, लेकिन प्रेम, कर्तव्य और ईमानदारी की इस कहानी में रोमांस के साथ साथ देशभक्ति की भावना भी देखने को मिलती है। अब फुल डिटेल में अगर आपको कहानी जाननी है तो उसके लिए देखनी पड़ेगी आपको फिल्म सलामी। और उस फिल्म में, हालांकि मैं जानती हूँ कि इस फिल्म को आपने ज़रूर देखा होगा, क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जिसको शायद उस दौर के हम जैसे जो साथी हैं उन्होंने नहीं छोड़ा होगा। इतनी सुपर डुपर हिट फिल्म रही है और एक नई जोड़ी आई थी, उस जोड़ी ने ऐसा कमाल किया जिसकी उम्मीद शायद फिल्म के जो निर्देशक हैं उनको भी नहीं थी। बहुत ही खूबसूरत ये जोड़ी रही थी। हाँ, वो बात अलग है कि इस जोड़ी ने आगे किसी और फिल्म में काम नहीं किया, लेकिन अगर इस फिल्म में उन्होंने काम किया, इतनी खूबसूरत फिल्म रही है, तो इसी जोड़ी पर पिक्चराइज इस फिल्म का एक और गीत आप तक पहुंचाते हैं।

सगे भतीजे हैं। इस फिल्म से अयूब रातों रात स्टार बन गए थे। लड़कियों के खत उनके घर खून से लिखे हुए आने लगे थे। फिल्म की खूबसूरत सी एक्ट्रेस संयुक्ता सिंह सलामी जैसी मेगा हिट फिल्म देने के बाद हर किसी को लगा था कि वो बॉलीवुड पर राज करेंगी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इस बम्पर कामयाबी के बाद भी उन्होंने बहुत जल्द चकाचौंध की इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। और अब आपको भी इंतज़ार होगा इस फिल्म का उस गीत, सुपर डुपर जो गीत है उसका, जिससे कुमार सानू और आशा भोसले जी की आवाज़ ने रातों रात सबके दिलों पर राज करने वाले गीत बना दिया था। जी हाँ, 90 के दशक के सबसे लोकप्रिय प्रेम गीतों में इस गीत को गिना जाता है। फिल्म के रिलीज़ के समय ये गीत रेडियो, कैसेट्स और संगीत प्रेमियों की पहली पसंद बन गया था। और ये आपको बता दें कि अयूब खान के करियर की वैसे तो ये फिल्म सबसे चर्चित फिल्म मानी जाती है, और साथ ही साथ इस गीत ने भी उनको एक अलग ही पहचान दिखाई थी। आज जब मल्टीप्लेक्स है, इसका दौर है, तो शायद आज के बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि 90 के दशक में जब सिंगल स्क्रीन थिएटर्स होते थे, तब अगर कोई फिल्म रिलीज हो और वो एक सा कमाल कर दे तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और जब ये गीत बजता था, जब सिनेमा हॉल के अंधेरे में कुमार सानू और आशा जी की आवाज़ में ये गीत लोग सुनते थे, तो अपनी सीटों पर खड़े होकर नाचने लगते थे। थिएटर्स के मालिक ने बताया था उस टाइम कि हर शो के बाद स्क्रीन के पास से सिक्कों की बोरियाँ भरी जाती थी, लोग स्क्रीन पर पैसों की बारिश कर देते थे। ये दौर था वो। तो सुनते हैं हम भी इस खूबसूरत से गीत को।

चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखना। जी हाँ, फिल्म का संगीत 1994 के सबसे अधिक बिकने वाले एल्बमों में से शामिल था, और खासकर इस फिल्म का ये वाला गीत और दूसरा मिले तुमसे बिछड़ के, दोनों ने ही अपार लोकप्रियता हासिल की थी। ये फिल्म, जानते हैं इसका शुरुआती नाम क्या था? गुलफाम। जी हाँ, शुरुआत में इस फिल्म का नाम गुलफाम रखने की योजना थी, जिसे बाद में बदल कर सलामी कर दिया गया। इस फिल्म ने वो तहलका युवाओं के बीच में मचाया था कि वो इस तरीके की जो जोड़ी थी, लोगों ने, जो युवा जो लोग थे, उन्होंने इस जोड़ी को हाथों हाथ लिया और इतना प्यार दिया कि शायद इतना प्यार उस वक्त, जबकि एक नए चेहरे के लिए बहुत कमाल की बात होती थी कि अपने आप को वो साबित करे, जब उसके सामने एक ऐसे ऐसे धुरंधर अभिनेता हैं और वो एक नया चेहरा आकर अपनी एक ख़ास जगह बनाए श्रोताओं के बीच में, दर्शकों के बीच में, वो सब इस जोड़ी ने करके दिखाया था। तो अब आपको सुनवाते हैं एक और खूबसूरत सा गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में।

आपके संदेश भी पहुंच गए हैं। पहाड़ा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत जी जुड़े हुए हैं। अगला संदेश सैयद मसरूर शाइना हसन जी का आया है। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवानगन, कौशल्ला, डिम्पल, हेमलता जी हैं। पलारी से नितेश जी का एक और संदेश हमारे पास है। ज्योति मक्कर, संदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोवर्धन, माफ़ कीजिएगा, ये पिंगा वाला चौक जालन।

बीरंगाव गुजरात से अजीत भापसर, प्रमिला भापसर जी हमारे साथ हमेशा की तरह ढेर सारी जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संदीप मक्कर जी, ज्योति मक्कर जी का एक और संदेश है। गुरमीत सिंह बीता साउथ एक्सटेंशन से हैं। शाली मार्ग से अशोक कुमार सहगल जी हैं। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख रहीम मुन्ना जी हमारे साथ हैं। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुलरकर, रत्ना ओम प्रकाश हमारे साथ हैं। सुनील पाठक जी हमारे साथ, कमल पाठक के साथ अनारकली बाजार जगराव पंजाब से जुड़े हुए हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी जी हमारे साथ हैं। लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद गुलाम साबिर महराज जी हैं। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता हमारे साथ हैं। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, समडी नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा अदिति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला संदेश सुरेश राठौड़, गांधीनगर गुजरात से इनका पहुंचा है। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से जुड़ चुके हैं। अगला ये जो है मैसेज वो डीवी राणा नेहरू विहार दिल्ली से हमें भेजते हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवरगन जी का एक और संदेश हम तक पहुंचा है। जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त केरब ज्योति रानी गुरमत जी हैं। बटिंगखेड़ा पंजाब से मिंची टॉमस, पिंकी लवली आरती हैं। आनंद पर्वत दिल्ली से लखपत राज, वेद प्रकाश चौहान, सूबेदार अमर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवशंकर तामुरी, अजय देव, तुषार, बेबी डॉली पूजा, कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंजी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से हैं। श्रीनगर कश्मीर से साहिल डार उर्फी जी हमारे साथ हैं। नागरकोरा जिला राजनांदगांव से बबलू जामुन देवी पूजा पूजा दुष्यंत जी हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सैद अब्बासी निगत, परवीन श्रीनिवास, सरफराज फरदीन, अरदान और परिवार के सभी सदस्य हैं। भोपाल का राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, पूजा परिहार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संबलपुर कांकेर से फागुन राम यादव, ज्योति ओजस्वी जी हैं। बागपत से संजय डिंगिया, नमन अपार डिंगिया जी हमारे साथ हैं। मयूरी परिसर भोपाल से श्रवण सिंह गिन्नारे जी हमारे साथ हैं। लिखते हैं कि ये मैंने फिल्म को दो बार देखा था। सुरेश जागा, बनीता सोनल प्रसाद जी नेहरू चौक पैठण से जुड़े हैं। अगला संदेश हमारे पास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ जी का आया है। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुलरकर, रतन माला जी हमारे साथ हैं। और सुनीता यादव, सुमन जी दुर्ग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रनगर भवरपुर से राधेश्याम देवानगन चंपा जी हमारे साथ हैं। ये संदेश हमारे पास पहुंचा है नोहर राजस्थान से नरेंद्र, मनोज और हिमांशु सुधार जी का। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक, श्याम, प्रमिला जी हमारे साथ हैं। गांव फरासी से राजकुमार डूंडी जी हैं। बीरनगांव से अजीत भापसर जी जुड़े हैं। इंद्रनगर भवरपुर से राधेश्याम जी का संदेश है। पहाड़गंज मुल्तानी ढाना से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक जी हमारे साथ हैं। भोईनापारा जिला बालोद से देवनारायण साहू, योगिता जी हमारे साथ हैं। रामशरण विश्वकर्मा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। और यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से, विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे सफ़र में हमारे साथ जुड़े और हमारे हम सफ़र बने।

चिरमिरी कुरासिया कालरी सिंद्रभान सिंह अनुभव ऋषभ राम सहोदर जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अगला संदेश हमारे पास पहुंचा है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा जी का। दोस्तों सलामी शायद बॉक्स ऑफिस पर उस दौर की सबसे बड़ी हिट फिल्म ना रही हो, लेकिन इसका संगीत समय की कसौटी पर आज भी खरा उतरता है। 90 के दशक की रोमांटिक धुनों की बात हो और नदीम श्रवण का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। उम्मीद करते हैं कि आज की फिल्म आपको जरूर पसंद आई होगी। अगली मुलाकात में एक नई फिल्म के साथ फिर हाजिर होंगी। 3 बजे आप कहीं मत जाइए, जी हाँ घड़ी में और डायरी में लिख लीजिए, 3 बजे आपसे मेरी मुलाकात फिर होगी और प्रोग्राम होगा मैटिनी मेलोडीज। तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है, कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया मुहिम दे 11 साल पूरे होने मौके किया कि डिजिटल इंडिया मुहिम ने सुशासन में एक नवी दिशा दिती है। विकसित भारत रोजगार ते आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण कानून आज तो लागू हो गया है। देहाती विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कानून के लागू होने नु इतिहासक प्राप्ति दसिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कहना है कि नौजवानों की ऊर्जा, हुनर ते वचनबद्धता एक समावेशी ते खुशहाल राष्ट्र के निर्माण विच फैसलाकुन भूमिका निभाउणगे। फौज मुखी जनरल धीरज सेठ ने कहा कि बदलते सुरक्षा माहौल नूं प्रभावशाली ढंग नाल हल करन लई फौज के आधुनिकीकरण नूं तेज किया जाएगा ते पासपोर्ट अर्जी फीस विच वाधा अज तो लागू हो गया है। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया मुहिम ने सुशासन नूं एक नवी दिशा दित्ती है अते देश दे समुचे विकास नूं तेज कीता है। इसने नागरिकां नूं मजबूत भी बनाया है। डिजिटल इंडिया मुहिम दे 11 साल पूरे होण ते श्री मोदी ने कहा कि इस पहल दा प्रभाव लोकां दे जीवन दे हर पहलू विच दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान ते सीधे लाभ तबादले राही सरकारी सहायता पारदर्शिता नाल सीधे लाभपात्रियों तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने देश के हर कोने विच नवीनता ल्यांदी है। श्री मोदी ने कहा कि इस पहल ने सिक्ख्या, सेहत, खेतीबाड़ी, व्यापार ते सरकारी सेवावां विच भी सुधार कीता है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भारत एआई, सेमीकंडक्टर अते क्वांटम कंप्यूटिंग वर्गियां नवीं तकनालोजियां दे खेतर विच तेजी नाल तरक्की कर रहा है। विकसित भारत रोजगार ते आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण कानून आज तो लागू हो गया है। देहाती विकास मंत्रालय ने कहा है कि बीबी जी राम जी कानून तहत हरेक माली साल विच 125 दिनां दी रोजगार दी गारंटी दित्ती जाएगी। ए देहाती भारत नूं मजबूत बनाएगा। देहाती विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी कानून दे लागू होण नूं एक इतिहासक प्राप्ति दस्या है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच चौहान ने कहा कि यह कानून लखां देहाती कामियां लई स्वै माण अते उपजीविका नूं यकीनी बनाउण विच एक नवां अध्याय दर्शाउंदा है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: उन्होंने कहा कि यह कानून हरेक देहाती परिवार नूं 125 दिनों के रोजगार का कानूनी अधिकार दिंदा है। इस पहलकदमी विच भरोसा प्रगट करते हुए श्री चौहान ने कहा कि यह पिंडां विच उपजीविका के नवे मौके पैदा करेगा। भाजपा ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने शुरुआत विच विरोध करने तो बाद विकसित भारत जी राम जी योजना लागू कर दिती है। नवी दिल्ली विच मीडिया नूं संबोधन करदे हां भाजपा के बुलारे प्रेम शुक्ला ने केंद्र की देहाती रोजगार योजना नूं लागू करने दे पंजाब सरकार दे अचानक फैसले ते सवाल उठाए। उन्होंने इल्जाम लाया कि भगवंत मान सरकार हुण विधानसभा चोण हारन दे डरो बी जी राम जी योजना की शलाघा कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज नौजवानों नूं 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण नूं साकार करन लई समर्पण, ईमानदारी अते मजबूत नैतिक कदरां कीमतां नाल मुहारत हासिल करन दा सदा दित्ता है। आनंदपुर विखे आंध्र प्रदेश केंद्रीय यूनिवर्सिटी दे पहले कन्वोकेशन विच मुख मेहमान वजो संबोधन करदिआं राष्ट्रपति ने कहा कि नौजवानों की ऊर्जा ते वचनबद्धता एक समावेशी अते खुशहाल राष्ट्र दे निर्माण विच फैसलाकुन भूमिका निभाएगी। राष्ट्रपति ने ग्रेजुएट होने वाले विद्यार्थियों नूं जिंदगी भर सिखते रहने लई प्रेरित किया ते कहा कि तेज तकनीकी तरक्की हर खेतर नूं बदल रही है। उन्होंने कहा कि डिग्री प्राप्त करना सीखने का अंत नहीं होना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों नूं उभर रही तकनालोजियां मुताबक टलन, नवे विचारां दी पड़चोल करन अते लगन नाल नवीं काढ़ां नूं अपनाउण लई उत्साहित किया।

0: ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AARNewsJalandhar फौज मुखी जनरल तीरथ सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल नूं प्रभावशाली ढंग नाल हल करन लई फौज दे आधुनिकीकरण नूं तेज कीता जाएगा। 31वें फौज मुखी वजों अहुदा संभालण तों बाद जनरल सेठ ने मीडिया नूं दस्सिया है कि भारतीय फौज दा टीचा एक आधुनिक अते तकनीकी तौर ते मजबूत फौज विकसित करना है जो भविख दीआं चुनौतियां दा सामना करन दे पूरी तरह समर्थ होवे।
1: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: उन्हें कहा कि भारतीय फौज सरहदां ते उभर रहे खतरियां की लगातार निगरानी कर रही है अते किसी भी सुरक्षा चुनौती का सामना करने लिए पूरी तरह तैयार है। जनरल सेठ ने कहा कि उन्हें मुख ध्यान फौजी रणनीति अते नवीं तकनालोजियां की वध तो वध वरतों करन ते होगा। उन्हें कहा कि नवीनता नूं फौज के संचालन पहुंच मानसिकता अते समर्था विकास विच जोड़िया जाएगा।
1: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
0: पंजाब विच सवेरे बठिंडा डब वाली राष्ट्रीय शाहराह ते राजस्थान दे 4 श्रद्धालुआं दी मौत हो गई है ते 8 होर मामूली रूप च जख्मी हो गए ने। उन्हां दी गड्डी इक खड़े ट्रक नाल टकरा गई। ए तीरथ यात्री अमृतसर दे हरिमंदर साहिब ते उस तों बाद अमरनाथ जी यात्रा ते जा रहे सन जदों इह हादसा वापरिया। बठिंडा पुलिस दे हलकियां ने दस्सिया कि जख्मियां दा इलाज चल रिहा, मामले दी जांच जारी है। तेल मार्केटिंग कंपनियां ने 19 किलोग्राम दे व्यापारक एलपीजी सिलेंडर दी कीमत 183 रुपए 50 पैसे घटा दिती है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड मुताबिक नवीं दरां आज तो लागू हो गई ने। इस कटौती तो बाद हुण दिल्ली विच 19 किलोग्राम दा व्यापारक एलपीजी सिलेंडर 2930 रुपए विच उपलब्ध होगा। इस फैसले नाल रेस्टोरेंटां, ढाबियां, होटलां ते खाण पीण दे होर कारोबारां नूं फायदा होगा। अज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जा रहा है। ए दिन जनतक सेहत की रक्षा लई डॉक्टरां दे समर्पण अते अनमोल योगदान नूं उजागर करदा है। ए दिन हर साल 1 जुलाई नूं डॉक्टर विधान चंद्र राय दे जन्म अते बरसी दी याद विच मनाया जांदा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ते सेहत मंत्री जेपी नड्डा ने डॉक्टर दिवस ते देश भर दे सारे डॉक्टरां नूं शुभकामनावां दित्तियां ने। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद तहत वेनेजुएला विच राहत कार्यां विच लगे भारतीय डॉक्टरां ते मेडिकल मुलाजमां दी शलाघा कीती है। एक सोशल मीडिया संदेश विच प्रधानमंत्री ने कहा कि मुश्किल समय विच लोड़वंदां दी सेवा करन लई उन्हां दा समर्पण प्रेरणादायक है। उन्हां कहा कि मेडिकल मुलाजम हर संकट विच पूरे समर्पण नाल अपने फर्ज निभांदे ने। सेहत मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने डॉक्टर दिवस के मौके ते सेहत संभाल पेशे नाल जुड़े लोगों नूं उन्हां दे अटुट समर्पण लई वधाई दित्ती है। एक वीडियो संदेश विच श्री नड्डा ने देश भर के डॉक्टरां दी उन्हां दे शानदार पेशेवराना रवैये अते मनुखता दी सेवा लई शलाघा कीती। उत्तराखंड दे मदरसा सिक्ख्या सिलसिले विच अज तो एक वड्डा बदलाव लागू होया। नवे सिलसिले तहत उत्तराखंड मदरसा सिक्ख्या बोर्ड नूं खत्म कर दिता जाएगा। राज दे सारे घट गिणती विद्यक अदारे नवे ढांचे अधीन काम करनगे। उत्तराखंड सरकार ने सिक्ख्या सिलसिले नूं होर आधुनिक, पारदर्शी ते बराबर बनाउण वल इक अहम कदम चुक्या। समाज भलाई ते घट गिणती भलाई मंत्री खजान दास ने दस्सिया कि सारे मौजूदा मानता प्राप्त मदरसिया नूं उत्तराखंड घट गिणती सिक्ख्या अथारिटी अधीन लियांदा जाएगा। उन्हां इह वी कहा कि यह प्रबंध सिर्फ मुस्लिम भाईचारे तक सीमित नहीं होगा सगो सिख, जैन, बोधी, ईसाई ते पारसी भाईचारे नाल संबंधित घट गिणती विद्यक संस्थावां ते भी बराबर लागू होगा। आज देश भर में 78वां राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में आज के ही दिन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। पासपोर्ट अर्जी फीस विच वाधा अज तो लागू हो गया है। यह वादा नवे पासपोर्ट सोध नियम 2026 के मुताबिक है। इन्हां नवीं तब्दीलियां तहत नवे 36 पन्नियां दे पासपोर्ट जां दोबारा जारी कीते पासपोर्ट की लागत हुण 2500 रुपए होगी। 60 पन्नियां दे आम पासपोर्ट जां दोबारा जारी कीते पासपोर्ट की कीमत हुण 3500 रुपए होगी, जदों कि तत्काल स्कीम तहत ए फीस 6000 रुपए होगी। 36 पन्नियां दे पासपोर्ट दे गुम होण जां खराब होण दी स्थिति विच इक बदलवे पासपोर्ट नूं जारी करन दी लागत 5000 होगी अते अजिहे ही 60 पन्नियां दे पासपोर्ट दी लागत 6000 रुपए होगी। आखिर च खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डिजिटल इंडिया मुहिम के 11 साल पूरे होने मौके कहा कि डिजिटल इंडिया मुहिम ने सुशासन नूं इक नवीं दिशा दित्ती है। विकसित भारत रोजगार

0: आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण कानून अज तों लागू हो गया। देहाती विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कानून के लागू होने नूं इतिहासक प्राप्ति दस्या है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कहना है कि नौजवानों की ऊर्जा हुनर ते वचनबद्धता एक समावेशी ते खुशहाल राष्ट्र के निर्माण विच फैसलाकुन भूमिका निभाउणगे। इस दे नाल ही साडा यह बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:20 ते होगा। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 11 बरस के दौरान डिजिटल इंडिया ने गरीबों और महरूम तबकात को बाख्तियार बनाया है और लाखों अफराद के रहन सहन में आसानी पैदा की है। विकसित भारत जी राम जी एक्ट के तहत उजरतों में इजाफा आज से लागू हो रहा है। फौजी अमले के सरबराह जनरल धीरज सेठ ने फौज के 31वें सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। उन्होंने बदलती हुई सिक्योरिटी की सूरतहाल के चैलेंजों से निपटने के लिए फौज की जदीदकारी पर जोर दिया। मरकजी ओदरा शिवराज सिंह चौहान और किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में सैलाब से मुतासरा इलाकों का फजाई मुआयना किया। भारतीय मौसमियात महकमे ने कहा है कि आइंदा 2 रोज के दौरान मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की जानिब बढ़ने का इम्कान है। और फीफा आलमी कप में मैक्सिको इक्वाडोर को 2-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया मुहिम ने हुक्मरानी के निजाम को नई शक्ल दी है, शहरियों को बाइख्तियार बनाया है और हमाजहत तरक्की को तेज किया है। मुहिम के 11 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर-ए-आज़म ने डिजिटल इंडिया ने जिंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आसान डिजिटल अदायगी और फवायद की बराह रास्त मुंतकली DBT के जरिए मुस्तफिदीन तक शफाफ अंदाज में सरकारी स्कीमों के फवायद पहुंच रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि टेक्नोलॉजी आवाम की जिंदगी को आसान बनाने का एक मुअस्सर जरिया बन चुकी है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने गुज़श्ता 11 बरसों में मुल्क भर के शहरियों के लिए राबते, तालीम, माली लेन देन और सरकारी खिदमात तक रसाई के तरीकों को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। इस अरसे में भारत ने दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे DPI निजाम में से एक कायम किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने खुसूसन देही और पसमानदा इलाकों में सेहत, तालीम, हुनरमंदी, ज़राअत और फलाही खिदमात तक रसाई को उसत दी है। पेश एक रिपोर्ट।
2: भारत तेजी से डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे DPI के शोबे में एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभर रहा है। इस कामयाबी की बुनियाद काबिले तौसी और शहरियों पर मरकूज डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स हैं। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल बुनियादी ढांचे के निजाम में ताउन के लिए 24 मुल्कों के साथ मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल शनाख्त, डिजिटल अदायगी, डेटा के तबादले और सरकारी खदमात की फराहमी जैसे शोबे शामिल हैं। अदायगियों का यकसा इंटरफेस UPI अब 8 से ज्यादा मुल्कों में काम कर रहा है, जिनमें मुत्तहदा अरब अमारात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशियस और श्रीलंका शामिल हैं। इससे आलमी सतह पर मालियाती टेक्नोलॉजी के शोबे में भारत की मौजूदगी मजीद मुस्तहकम हुई है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे प्लेटफॉर्म्स आलमी सतह पर डिजिटल हुक्मरानी के नए मॉडल की तश्कील में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 के तहत नजरसानी शुदा योमिया उजरत आज से नाफिज हो गई है। देही तरक्यात की वजारत के मुताबिक तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में उजरतों में इजाफा किया गया है। वजारत ने कहा कि पहली बार 300 रुपये योमिया उबूरी बुनियादी उजरत मुकर्रर की गई है, ताकि इस स्कीम के तहत किसी भी रियासत में मजदूरी इस हद से कम न हो। MG नरेगा के तहत उजरत की कौमी औसत योमिया 298.80 रुपये थी, जो कि विकसित भारत जी राम जी एक्ट के तहत 327.40 रुपये हो गई है। इसके अलावा 21 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में जहां पहले योमिया उजरत 300 रुपये से कम थी, अब उसे भी नए मेयार तक बढ़ा दिया गया है। फौजी अमले के नए सरबराह जनरल धीरज सेठ ने सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरतहाल के चैलेंजों से निपटने के लिए फौज की जदीदकारी की जरूरत पर जोर दिया है। फौजी अमले के 31वें सरबराह की जिम्मेदारी संभालने के बाद आज मीडिया से खिताब करते हुए जनरल सेठ ने टेक्नोलॉजी से लैस और मुस्तकबिल के लिए तैयार एक ऐसी भारतीय फौज के मकसद को उजागर किया जो हर मामले में

0: अख्तियार हो और हर सूरत हाल में कार्रवाई करने की सलाहियत रखती हो।
1: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: उन्होंने कहा कि फौज सरहदों और उभरते हुए खतरात के सिलसिले में मुसलसल चौकसी बरकरार रखेगी और कौमी सलामती को लाहक किसी भी चैलेंज से मुअसर तौर पर निमटने के लिए कार्रवाई की आला सतही तैयारी रखेगी। जनरल सेठ ने कहा कि उनकी तवज्जो नजरियाती और तकनीकी दोनों हल पर रहेगी।
1: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
0: पासपोर्ट से मुतालिक तरमीमी जाब्तों 2026 के तहत नए पासपोर्ट की दरखास्त की फीस में आज से इजाफा कर दिया गया है। फीस के नजरसानी शुदा निजाम के तहत 36 सफहात के नए पासपोर्ट या पासपोर्ट दोबारा हासिल करने के लिए अब 2500 रुपये अदा करने होंगे। 60 सफहात के नए आम पासपोर्ट या उसे दोबारा हासिल करने के लिए 3500 रुपये मुकर्रर किए गए हैं, जबकि तत्काल स्कीम के तहत 6000 रुपये देने होंगे। 36 सफात के पासपोर्ट के खो जाने या उसे नुकसान पहुंचने की सूरत में उसकी जगह आम पासपोर्ट फिर से हासिल करने के लिए फीस 5000 रुपये होगी। 60 सफात के पासपोर्ट के खो जाने या उसकी जगह आम पासपोर्ट फिर से हासिल करने के लिए 6000 रुपये फीस तय की गई है। पानी के पायदार बंदोबस्त और आबपाशी में काबिल जिक्र तौसी के जरिए जरी तब्दीली में पेशरफ्त के सिलसिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 से ज्यादा साल मुकम्मल हो गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आगाज 1 जुलाई 2015 को हुआ था और इस स्कीम के तहत मुल्क भर में आबपाशी को मुस्तहकम, पानी के मुअसर इस्तेमाल में बेहतरी और पानी की बचत को फरोग देने को यकीनी बनाया गया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वज़रा शिवराज सिंह चौहान और किरण रिजिजू ने सैलाब से मुतासरा इलाकों के मुआयने के दूसरे रोज वजीर आला पेमा खांडू के हमराह आज मुतासरा इलाकों का फजाई सर्वे किया। टीम ने पहले मशरकी सियांग जिले के शहर पासीघाट का दौरा किया, जो सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में शामिल है। इसके बाद बोइंग गांव पहुंचकर जमीनी सतह पर नुकसान का जायजा लिया। अचानक आने वाले सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने के बायस गांव में 20 से ज्यादा मकान तबाह हो गए, जबकि धान के खेत, खड़ी फसलें और मवेशी भी शदीद तौर पर मुतासर हुए, जिससे कई खानदान मुश्किलात का शिकार हैं। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने बेघर होने वाले मुतासरीन से मुलाकात की और उनकी मुश्किलात मालूम की। अब तक रियासत में 4 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए हैं। 90,499 अफराद मुतासर हैं। तकरीबन तमाम 28 जिले इस आफत से मुतासिर हैं। दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 आज से नाफिज हो गई है। इस नई पॉलिसी के तहत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स नहीं होगा। इस नई पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करते हुए नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर 1 लाख रुपये की रियायत भी दी जाएगी और ये पॉलिसी इस बात को भी लाजमी बनाती है कि अप्रैल 2028 से सिर्फ इलेक्ट्रिक दोपहिया गाड़ियां ही रजिस्टर होंगी। 4 साल में मरहलावार तरीके से नाफिज होने वाले इस अहम तरीके कार पर 15,000 करोड़ रुपये के माली अखराजात होंगे। अशिया और खिदमात टैक्स GST की वसूलियाबी गुज़श्ता महीने बढ़कर 1,94,812 करोड़ रुपये हो गई, जो जून 2025 में 1,71,105 करोड़ रुपये से साल ब साल 13.9% का इजाफा है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कहा है कि आइंदा 2 रोज के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की जानिब बढ़ने का इम्कान है। फीफा आलमी कप में आज सुबह मैक्सिको सिटी स्टेडियम में मैक्सिको ने नॉकआउट मुकाबले में इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया और प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये 40 बरस में आलमी कप में नॉकआउट मरहले में मैक्सिको की पहली जीत है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 11 बरस के दौरान डिजिटल इंडिया ने गरीबों और महरूम तबकात को बाइख्तियार बनाया है और लाखों अफराद के रहन सहन में आसानी पैदा की है। विकसित भारत जी राम जी एक्ट के तहत उजरतों में इजाफा आज से लागू हो रहा है। फौजी अमले के सरबराह जनरल धीरज सेठ ने फौज के 31वें सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। उन्होंने बदलती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल के चैलेंजों से निपटने के लिए फौज की जदीदकारी पर जोर दिया। मरकजी उदरा शिवराज सिंह चौहान और किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में सैलाब से मुतासरा इलाकों का फजाई मुआयना किया और फीफा आलमी कप में मैक्सिको इक्वाडोर को 2-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says 11 years of Digital India empowered the poor and the underprivileged, making life easier for millions. Increased wages under Viksit Bharat Ji Ram Ji Act become effective from today. Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju undertake aerial survey of flooded areas of Arunachal Pradesh. Newly appointed Army Chief General Dhiraj Seth stresses on modernization of army to tackle challenges of evolving security environment. Afghanistan attacks ISIS targets in Pakistan. Monsoon likely to advance to Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab in the next 2 days. And in FIFA World Cup, Mexico defeat Ecuador 2-0 to enter round of 16. Prime Minister Narendra Modi has said Digital India initiative has redefined governance, empowered citizens and accelerated all-round development. The Prime Minister said 11 years of Digital India empowered the poor and the underprivileged and made life easier for millions. He said Digital India has touched every aspect of life. He underscored the seamless digital payments and direct benefit transfers are reaching beneficiaries with transparency. Mr. Modi said that technology has become a powerful instrument for furthering ease of living. The ambitious Digital India program of the government was launched this day in 2015. Since then, it has shaped how citizens connect, learn, transact and access public services across the country. India has built one of the world's largest digital public infrastructure ecosystems. We have more from a correspondent.
3: India is emerging as a global leader in digital public infrastructure DPI driven by scalable and citizen-centric digital governance platforms. India has signed Memorandum of Understanding with 24 countries for cooperation on India's stack and DPI systems covering digital identity, payments, data exchange and service delivery. UPI now lives in over 8 countries including the UAE, Singapore, France, Mauritius and Sri Lanka, strengthening India's global fintech presence. Platforms such as Aadhaar, DigiLocker, Cowin, Government e-Marketplace, Diksha, Umang and eSanjeevani are increasingly shaping international digital governance models. India also launched India Stack Global and the Global DPI repository during its G20 presidency in 2023, expanding global access to Indian digital solutions. As Digital India enters its next decade, India is positioning technology as a tool for inclusive growth, digital empowerment and global cooperation. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
2: The Unified Payments Interface UPI transaction volumes rose 23% to over 22 billion in June on year-on-year basis, while UPI transaction value surged 20% to over 28 lakh crore last month. According to data released today by the National Payments Corporation of India, on an average basis, UPI processed around 757 million transactions daily in June. UPI is now live in more than 8 countries, including the UAE, Singapore, France, Mauritius and Sri Lanka, strengthening India's global fintech presence. Increased wages under the Viksit Bharat Ji Ram Ji Act 2025 have become effective across the country from today. According to the notification issued by the Rural Development Ministry, wage rates have been enhanced across all states and union territories. The ministry said for the first time an interim base wage rate of 300 rupees per day has been introduced, ensuring that no notified wage under the program falls below this level. We have more from a correspondent.
4: The national average wage has risen from 298.8 rupees per day under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act to 327.4 rupees per day under VBG Ramji, marking an average increase of over 10%. 21 states and administrative units, which previously had wages below 300 rupees, have now been brought up to the new benchmark. The states of Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Assam, Arunachal Pradesh and Himachal Pradesh are among those witnessing significant hikes ranging between 15 and 25%. The ministry highlighted that Arunachal Pradesh and Nagaland have received the highest percentage increase of nearly 24.5%. States with already higher wages have also seen upward revisions. Haryana will now have a wage rate of 409 rupees, Goa 406 rupees and Kerala 401 rupees per day. In Sikkim's high altitude gram panchayats, the rate has been set at 450 rupees per day. Union Minister for Rural Development Shivraj Singh Chauhan described the revision as a historic step towards building a Viksit Bharat through prosperous villages. With Saklain Akhtar, this is Vishnu PS for Akashwani News, Delhi.
2: Goods and services tax, GST, has strengthened India's vision of Ek Bharat Shreshth Bharat over the past 9 years. It has brought transparency, accountability and economic growth through rationalized tax rates and standardized procedures. Launched on 1st of July 2017, this day is marked as a historic achievement in India's reform journey. GST subsumes 17 different taxes and 13 cesses into a common framework. Meanwhile, GST collections in the month of June witnessed a rise to 1,94,812 crore rupees, marking a 13.9% year-on-year increase from 1,71,105 crore rupees in corresponding month last year. Pradhan Mantri Krishi Sichai Yojana PMKSY has also completed 11 years today. Launched on the 1st of July 2015, PMKSY scheme has assured irrigation, improved on-farm water efficiency and promoted sustainable water conservation across the country. Over the past decade, it has strengthened irrigation through rainwater harvesting and efficient farm-level water distribution under rainwater storage and efficient water application. The latest passport application hike fee has been implemented under the Passports Amendment Rules 2026 from today. Under the revised fee structure, a 36-page fresh passport or reissue of a passport will now cost 2,500 rupees. The fee for a 60-page ordinary passport or its reissue has now been fixed at 3,500 rupees, while under the Tatkal scheme, it will cost 6,000 rupees. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. President Draupadi Murmu today called upon the youth to pursue excellence with dedication, integrity and strong ethical values to help realize the vision of a developed Bharat by 2047. Addressing the first convocation of the Central University of Andhra Pradesh at Anantapur, as the chief guest, the president said, the energy, talent and commitment of the young people will play a decisive role in building an inclusive and prosperous nation.
5: Dear students, as you celebrate your achievements today, I urge you to pause for a moment to remember the people who made your journey possible. Your success is the result of your own hard work, but it has also been shaped by the sacrifices of your parents, the guidance of your teachers, and the support of society. Therefore, you have a responsibility to give back to the society.
2: The president noted that girls outperform boys in securing the medals, reflecting the growing aspirations and determination of young women in the country. She urged the graduates to continue learning throughout their lives and urged the students to use their knowledge for the benefit of society, particularly the underprivileged. Newly appointed Chief of Army Staff General Dheeraj Seth has stressed the need to advance the modernization of the army to tackle the challenges of the evolving security environment. Addressing the media today after assuming charge as the 31st Chief of the Army Staff, General Seth highlighted that the Indian Army's objective is to build a technology-enabled, future-ready army that is empowered in every respect and capable of operating across multiple domains.
6: Our objective is to build a technology-enabled, future-ready army that is empowered in every respect and capable of operating across multiple domains. Keeping these objectives in mind and drawing attention from the guidance provided by the Defense Minister under the Decade of Transformation, I have identified my key focus areas. I have consolidated them into an acronym VIJAY, that is V-I-J-A-Y. Each letter of VIJAY represents one of my priorities and I will briefly
2: On the second day of the higher-level assessment tour, Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju, accompanied by Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu, conducted an

0: province of Arunachal Pradesh, newly appointed Army Chief General Dheeraj Seth stresses on modernization of army to tackle challenges of evolving security environment, Afghanistan attacks ISIS targets in Pakistan, monsoon likely to advance to Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab in the next 2 days, and in FIFA World Cup, Mexico defeat Ecuador 2-0 to enter round of 16. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मॉनसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में UPI के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि VBG रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
3: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित देशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
4: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
4: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
1: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
5: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
1: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
5: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
1: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया

0: कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
1: भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
2: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर GST ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। GST से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे

0: हो गए हैं कि योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। पहली जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में ISIS और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 6-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 2:30 हुए हैं और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। एक ही कलाकार कार्यक्रम में आप सभी सुनने वाले श्रोताओं का स्वागत खैर मकदम करती हूँ। मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम है एक ही कलाकार, जिसमें हम आप सभी को रूबरू कराते हैं हर रोज एक अलग शख्सियत से। और आज हमारे इस कार्यक्रम में जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं, जिनका जिक्र हम करने जा रहे हैं, वो अदब की दुनिया के वो चमकते सितारे हैं जिन्होंने ना सिर्फ गज़लों को एक नया मिजाज दिया बल्कि फिल्मी गीतों को भी शायरी जैसी पाकीजगी बख्शी। जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी सदियों में पैदा होने वाले अजीम शायर खतील शिफाई साहब की।

0: के अब।
1: जी दोस्तों, जगजीत सिंह की आवाज में आपने सुनी है खूबसूरत सी गजल, जिसके शब्द लिखे कतील शफी साहब ने। कतील शफी साहब के लिए हम क्या कहें, उन्हीं की एक लाइन, कुछ लाइन है जो कि बहुत ही मशहूर है, उसको हम ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। उन्होंने लिखा था, तुम पूछो और मैं ना बताऊं, तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं हैं। तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं हैं, एक ज़रा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम एक ही कलाकार में हम बात करें कतील शफी साहब के बारे में। और कतील शफी साहब, जिनका जन्म हुआ 24 दिसंबर सन 1919 को मौजूदा पाकिस्तान के हज़ारा में, वहाँ पैदा हुए मोहम्मद औरंगज़ेब, जिनको आगे चलकर हम सब ने जाना कतील शफी के नाम से, शफी के नाम से। कतील उनका तखल्लुस था और शफी उन्होंने अपने उस्ताद हकीम मोहम्मद शिफा के सम्मान में अपने नाम के साथ जोड़ा था। बचपन उनका बहुत ही ज़्यादा तंगियों में गुजरा, लेकिन उन तंगियों में, उन गरीबी में भी वो जो उनके अंदर का शायर था, वो कभी चुप नहीं हुआ, खामोश नहीं हुआ। और उन्होंने उस दौर में लिखना शुरू किया जब उर्दू अदब में बड़े बड़े दिग्गजों का बोलबाला था। लेकिन कतील साहब ने अपनी सादगी और सीधे दिल को छू लेने वाले अल्फाजों से अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो लीजिए, उनके इसी रूमानी अंदाज को महसूस करते हैं और सुनते हैं ये एक बहुत ही प्यारी सी, खूबसूरत सी गजल चित्रा सिंह की आवाज़ में।

जी हाँ, परेशान रात सारी है सितारों, तुम तो सो जाओ। इस सादगी में जो दर्द है वही कतील साहब की पहचान है। जी हाँ दोस्तों, कतील शिफाई साहब की खासियत ये थी कि वो सिर्फ मुशायरे के मंच तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री यानी कि लॉलीवुड को एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने दिए। लेकिन उनकी लेखनी का जादू ऐसा था कि वो सरहदों को तो मानता ही नहीं था, और शायद यही वजह थी कि भारत में भी उनकी शायरी को बेहद पसंद किया गया। जब उन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में यानी कि बॉलीवुड के लिए गीत लिखे तो वो भी सीधे लोगों की जुबान पर चढ़ गए और दिल में समा गए। याद कीजिए फिल्म नाराज के गीत। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं 90 के दशक के उस दौर में, जहां कतील साहब के लफ्जों ने हर आशिक के दिल को बयां किया।

जैसे। जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ और आज हम बात कर रहे हैं इस सफर में कातिल शिफाई साहब के बारे में। वैसे अक्सर लोग सोचते हैं कि कातिल साहब सिर्फ हुस्न इश्क या फिर जुदाई के शायर थे, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने ज़िंदगी के कुछ कड़वे सच, गरीबी, समाज के नाइंसाफियों पर भी बहुत कुछ लिखा और वो भी पूरी बेबाकी के साथ लिखा। उन्होंने लिखा, अपने साए से भी अशकों को छुपा कर रोना, अपने साए से भी अशकों को छुपा कर रोना, जब भी रोना तो चिरागों को बुझा कर रोना। और अगर जब बात हम करें इंसानी रिश्तों और दुनिया के बदलते रंगों की, तो उन्होंने कहा था, दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। तो यही वजह है कि उनकी जो शायरी है वो हर आम और खास इंसान को अपनी कहानी सी लगी। तो लीजिए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ और आज हम बात कर रहे हैं कतल शिफाई साहब के साथ के बारे में। हम बात कर रहे हैं कतल शिफाई साहब का जो फिल्मी सफ़र है वो एक किसी मतलब कहें ना कि एक ड्रामे से कम नहीं है, पूरा एक उसमें एक कहानी बन सकती है। बंटवारा जब हुआ तो कतल साहब जो है वो पाकिस्तान चले गए और वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री में सबसे मजबूत वहाँ के स्तंभ बने। पहली फिल्म उनकी साल सन 1947 में आई जो कि पाकिस्तान में थी और उसका नाम था तेरी याद, और उसमें उन्होंने बहुत से गीत लिखे। फिल्म तो नहीं चली लेकिन हाँ कतल साहब की जो कलम थी वो

ज़रूर चल पड़ी। पहली फिल्म आई उनकी 1948 में शहला, जिसमें उन्हें एक गीतकार के रूप में स्थापित किया, और पहला नेशनल अवार्ड भी मिला उनको 1956 में, वहाँ का निगार अवार्ड अनारकली फिल्म के लिए उन्हें मिला ये। लेकिन अब बात करते हैं कि बॉलीवुड में, या कहें कि यहाँ भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में वो किस तरह से आए। तो कथिल साहब जो हैं, उनकी जो शायरी है, वो उनकी जो गज़लें हैं, वो सरहदों के पार यहाँ तक पहुँची। और 70 और 80 के दशक में जगजीत साहब ने कथिल साहब की बहुत सी गज़लों को घर घर में पहुँचाया, और इसके बाद बॉलीवुड के दरवाजे भी उनके लिए पूरी तरह से खुल गए। यानी कि जिस तरह से हमारे कार्यक्रम का आगाज़ जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में हुआ, उसी तरह से कथिल साहब का जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सफ़र है, वो भी उन्हीं दोनों के ज़रिए हुआ। और 90 के दशक में निर्देशक महेश भट्ट ने अपनी फिल्म में कथिल साहब को शायरी के लिए बोला, और फिर तेरी कहानी याद आई, नाराज जैसी जो फिल्में थी वो उन्होंने उसमें उनके गीतों को लिया, और वो दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और अगर हम देखें तो उनके पूरे फिल्मी सफ़र को, तो उन्होंने पूरे जीवन में 200 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया, और तकरीबन 2500 यानी कि 2500 से भी ज़्यादा गाने उन्होंने लिखे। और अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो वो भी उनको बहुत सारे मिले, और पाकिस्तान सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया था। कथिल साहब के जो फिल्मी गाने हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उसमें मुशायरे की पाकिस्की, और फिल्मों की सादगी को बेहतरीन तरीके से वो कॉम्बिनेशन बनाते थे और उससे वो गीत तैयार करते थे। और भी बहुत सी गज़लें हैं जो कि उनकी बहुत ही ज़्यादा मशहूर रही है, चाहे वो पंकज उदास की चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, या और भी बहुत सारी गज़लें हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी हम सुनते हैं एक और ये खूबसूरत सा गीत, फिर तेरी कहानी याद आई से।

दोस्तों हमारे साथ जुड़े हमारे कुछ श्रोताओं के संदेश जिन्हें भी हम शामिल कर लेते हैं। महांदा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, निशान देवांगन, लखन सावित्री बाई देवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वर्ण सिंघिल, तलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज सिंह हमारे साथ जुड़े हैं गाँव लोहागढ़ ठाकुरावाला से, गाँव पंजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक आलोकिक चंसौलिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बागपत से ममता और संजय डिंगिया हमारे साथ जुड़े हैं। मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गोड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद यासीन अंजन, साइमा नवाज, हसन बाबू अहद, मिफ्रा और बेबी चाहत हमारे साथ जुड़े हैं दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से। नाजिया इब्राहिम, शाइना हसन, सैयद मसरूर हमारे साथ जुड़े हैं सहारनपुर से। छत्तीसगढ़ पलारी से जुड़े हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा के साथ। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशाक, खदीजा बेगम, अशफाक, आफरीन, कौशर, अल्ताफ, नीलोफर, फातिमा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आदि अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता और केशु रिधान खुराना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गाँव की टोरनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिरासी, अमीना बेगम और तबस्सुम तरन्नुम तराना हिना सीमा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव नथाना पंजाब से अरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता जुड़े हैं। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा हनुमान और उत्तम जमदाड़े हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक के साथ पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हीरामणि वर्मा जुड़े हैं दतरंगी भट्टापारा से, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान अनुभव, ऋषभ राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्री लहरे हमारे साथ जुड़े हैं। अगला संदेश आया अनिल मोहन जी का पीटीआई संसद मार्ग से, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से, संतोष खर से, विनोद खत से हमारे साथ जुड़े हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, पूजा परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन मुखी, अनिता सिमरन जी हमारे साथ जुड़े हैं शांतिनगर सोनीपत से, संजय डिंगिया, नमन अपार हमारे साथ जुड़े हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, और ये जुड़े हैं ज्योति मकर, मन्नत भारत और कमल सहानी पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद जावेद, बेगम सवीना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देव शंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कभी रेडियो श्रोता संघ टोनी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से, महाराज दरवाज़ा ईटा, मरहरा दरवाज़ा ईटा से जुड़े हैं नबी हसन अब्बासी। और ये अगला संदेश जो है हम तक पहुँचाने वाले हैं, ये है, इनका नाम स्वर्ण सिंह है। तो दोस्तों आज कार्यक्रम एक ही कलाकार में हमने बात की सफाई साहब के बारे में। ये कार्यक्रम अब यहीं ख़त्म करने की आपसे अनुमति चाहूँगी, तो मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति। छोड़े जाते हैं खूबसूरत सा गीत, इसी के साथ नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। स्टूडियो की घड़ी में 3 बजने को हैं, वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज़ का। तो मैटिनी मेलोडीज़ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगी अंजू पांडे, लेकिन शुरुआत में हम सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: लेकिन यहाँ पर प्रिया नहीं, आपके साथ हूँ मैं अंजू। जी हाँ, अंजू पांडे प्रोग्राम लेकर आई हूँ मैटिनी मेलोडीज, जिसमें आपको हम उस युग में लेके जाते हैं, उस फिल्मी दुनिया के उस खूबसूरत से दौर में लेकर जाते हैं, जब वो गीत केवल गीत नहीं होते थे, दिल की आवाज़ हुआ करते थे। 1960 का वो दशक जब बॉलीवुड का गोल्डन एरा माना जाता था। इस दौर में ऐसी कई फिल्मी जोड़ियां ऑन स्क्रीन कपल्स बने जिन्होंने अपनी केमिस्ट्री से पर्दे पर आग लगा दी थी और उन पर फिल्माए गए गाने आज भी सदाबहार हैं। तो कुछ जोड़ियों को आज हम चुनकर लेकर आए हैं और उनके ऊपर फिल्माए गीत आप तक पहुंचाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये गीत आपको ज़रूर पसंद आएंगे। उस दौर का अगर आपका भी कोई फेवरेट कपल फिल्मी जोड़ी है तो ज़रूर आप संदेश के जरिए हम तक अपनी बात पहुंचा दीजिए। हमारा हम तक बात पहुंचाने का जो रास्ता है वो मेल है और मेल भेजने का जो पता है वो है ipradiodelhi@gmail.com। तो ये खूबसूरत सा गीत अभी आपने जो सुना, फिल्म झुक गया आसमां, इसके बाद हम आपके लिए जो जोड़ी लेकर आए हैं वो है दिलीप कुमार और बैजंती माला। आ गई ना आपकी चेहरे पर भी वो खूबसूरत सी मुस्कुराहट, जो खूबसूरत सी जोड़ी ये वाली थी। जी हाँ, 1950 और 1960 के दशक की सबसे पावर हाउस जोड़ियों में से एक मानी जाती है। दोनों की एक्टिंग और डांसिंग केमिस्ट्री लाजवाब थी। बहुत सारी फिल्में इन्होंने की, लेकिन अभी हाल फिलहाल हमने जो फिल्म चुनी है वो है गंगा जमुना। सुनते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत।
1: लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होई गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।

और ऐसा ही जादू है अगली जोड़ी का जो हम लेकर आए हैं देवानंद साहब। देवानंद साहब के साथ में पता है कौन है? जिनकी खूबसूरती पे लाखों दिल फिदा थे, जिनका जो हेयर स्टाइल था उसकी एक अलग ही अंदाज था, वो थी साधना। देवानंद का रोमांटिक अंदाज और साधना की खूबसूरती, इस जोड़ी ने पर्दे पर जादू बिखेरा। बहुत सारी फिल्में, बड़ा मुश्किल था कि क्या चुने क्या नहीं चुने, तो हमने चुनी इन दोनों के ऊपर फिल्माया एक खूबसूरत सा गीत जो था फिल्म हम दोनों से। सुनते हैं रफी साहब की आवाज़ में फिर से एक बार ये खूबसूरत सा गीत।

मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। इतनी खूबसूरत अदाएं थी, इतनी खूबसूरत जोड़ियां थी जो हर फिल्म में अपना एक कमाल उन्होंने छोड़ा है। तो चलिए अब अगला जो गीत हमने आपके लिए चुना है वो हमने लिया है फिल्म तीसरी मंजिल से। लेकिन जानते हैं आप इस फिल्म में कौन था? बिल्कुल जानते होंगे, शमी कपूर, और उनका साथ दिया था आशा पारेख ने। 60 का दशक संगीत, डांस और एनर्जी का दौर था। शमी और आशा की जोड़ी इस मामले में सबसे आगे थी। नासिर हुसैन की फिल्मों में इस जोड़ी ने कमाल किया था और वही कमाल दिखाई दिया था फिल्म तीसरी मंजिल में। तो सुनते हैं इस फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत।

हम भी आपको बिल्कुल मायूस नहीं करेंगे, आपके जो संदेश हैं हम तक पहुंचे उनको हम ज़रूर शामिल करने वाले हैं। और हमारे पास मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, बागपत से ममता और संजय डिंगिया जी का प्रोग्राम आया है, लिख रहे हैं कि आज ये प्रोग्राम, इसके गाने बहुत ही अच्छे हैं और दिल को छू रहे हैं, हमें पुराने दिन याद आ गए हैं। हमारी कोशिश बस यही है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको उस गोल्डन युग में लेके जाएं, जब वो गीत ऐसे थे जो सीधे दिल में उतर जाते थे। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श बेगम राबिया जी और शेख रहीम मुन्ना जी भी हमें सुन रहे हैं। बीरंगाव गुजरात से अजीत भापसर, प्रमिला भापसर जी लिखते हैं कि बेजंती माला और दिलीप कुमार का जो पहला गाना आपने सुनाया गंगा जमुना फिल्म से, ये बहुत ही खूबसूरत गीत था। और अगला जो संदेश है वो लिख रहे हैं देवशंकर तामुरिया जयदेव जी, लिखते हैं कि इनकी मनपसंद जोड़ी जो है राज कपूर और नरगिस की जोड़ी है। ये डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन मुखी अनीता जी, सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हैं, और आपकी शशि कपूर और नंदा की जो जोड़ी है वो फेवरेट जोड़ी आपकी है, बहुत खूबसूरत बात है। और बाकी बड़ी खूबसूरत सी जोड़ी थी ये भी। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद से देवासी निगत परवीन शेनवास सरफराज फर्दी नरजान और परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ हैं। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन बीना आशीष और चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता केशु जी हैं और लिख रहे हैं कि हमें आप जो गीत हैं वो बहुत पसंद आ रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि जो भी गीत हम आप तक पहुंचाएं वो सीधे आपके दिल में उतर जाए। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुगेरी से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोग्राम आप भी पसंद कर रहे हैं। बेजंती माला और दिलीप कुमार के फिल्माया जो गीत अभी हमने सुनवाया, इन पर फिल्माया गीत, वो इनको बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी हमारे साथ हैं और ये राज कपूर और नरगिस के ऊपर फिल्माया गीत सुना चाहते हैं। कोशिश रहेगी ज़रूर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जोड़ियां हैं जिन्हें अभी हम आज लेंगे और कुछ जोड़ियों को अगले प्रोग्राम में लेंगे। साधना और जॉय मुखर्जी, एक मुसाफिर एक हसीना, ये गीत अजीत भापसर जी सुनना चाहते हैं। कोशिश ज़रूर रहेगी कि अगर हमें समय मिला तो हम ज़रूर ये सुनवा पाएँ। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन बीना आशीष राजा चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी जुड़े रहिए, क्योंकि अभी कुछ जोड़ियां और बची हैं जिनके गीत हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। जो अगली जोड़ी है वो है धर्मेंद्र और मीना कुमारी की। धर्मेंद्र ने शुरुआती करियर को संवारने में मीना कुमारी के साथ जोड़ी बनाई और दोनों का एक बहुत बड़ा अहम रोल था जो सुपरहिट फिल्म देने का। दोनों ने सीरियस और रोमांटिक केमिस्ट्री दोनों ही तरीके की फिल्में की जो लोगों ने बहुत पसंद की। तो इस जोड़ी की हमने फिल्म चुनी है आपकी परछाइयाँ। सुनते हैं इसी फिल्म से इस गीत को।

गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूंडी प्रमोद कुमार डूंडी कहते हैं कि कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है और हम फिल्म जगत के 1960 की विभिन्न जोड़ियों के बारे में जान रहे हैं जो बहुत अच्छा महसूस करा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगली जो जोड़ी हमने चुन के ली है, मैं एक दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी जो फेवरेट जोड़ी की लिस्ट है उसमें ये जोड़ी ज़रूर शामिल होगी। ये हैं राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर। आ गई ना आपकी भी चेहरे पर मुस्कुराहट। वैसे तो ये जोड़ी 1960 के दशक के बिल्कुल आखिरी साल यानी कि 1960

तो दोस्तों, आज आप मैटिनी मेलोडीज में सुन रहे थे कुछ खूबसूरत सी जोड़ियों पे फिल्माए खूबसूरत से सुपरहिट गीत। उम्मीद करते हैं कि ये गीत आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगली मुलाकात में फिर हम कुछ ऐसा ही चुनकर लेकर आएंगे आप तक। और आज अगर कोई जोड़ी रह गई है, वैसे तो बहुत सारी जोड़ियां रह गई हैं, आपकी फरमाइश भी उन जोड़ियों के बारे में आई थी, अगले प्रोग्राम में उनको पूरा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। फिलहाल अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। वक्त हुआ है दोपहर के 3:30। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: कहानी को जन्म देता है। जो वाकया हुआ उसको सिलसिलेवार बयान कर दिया गया। जदीद अफसाना कहानी की बदली हुई शक्ल है। कहानी में जहां ठहराव पाया जाता था, आज अफसाना उसके मुकाबले में मुआशरे में तब्दीली चाहता है। अफसाने का मकसद ये होता है कि कोई कैफियत ऐसी जगा दे जो मुआशरे में एक नई रूह फूंक दे। और जिस तरफ अफसाना निगार अपने कारी या सामे को ले जाना चाहता है, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। आइए एक अफसाना सुनते हैं और देखते हैं कि अफसाना निगार ने अपने किस जाविया निगाह को पेश किया है। अफसाने का उन्वान है दहशत का बोझ, और पेश कर रही हैं मोहतरमा शमीम जहरा।
1: कस्बे के उस छोटे से प्लेटफॉर्म पर अक्सर सन्नाटा ही रहता था। दिन भर में 2-3 ट्रेनें रुकती थीं, 2-4 मुसाफिर उतरते चढ़ते और ट्रेन कुछ पल रुककर धुआं उड़ाती रवाना हो जाती। कुछ एक्सप्रेस ट्रेनें धड़धड़ाती हुई सीधे बिना रुके निकल जाती। कस्बे के लोगों का यहाँ ज्यादा आना जाना न रहता था। वही लोग यहाँ आते थे जिनको कहीं बाहर जाना होता था। नवंबर महीने के आखिरी दिन थे। छठी क्लास में पढ़ने वाले 10-11 साल उम्र के 2 खूबसूरत बच्चों इरफान और नवेद को छिपने और खेलने के लिए 3 दिन पहले ये जगह ठीक लगी थी, जहाँ प्लेटफॉर्म की ऊंची पट्टी खत्म होने के बाद कच्ची जमीन पर लाइन से कुछ पेड़ खड़े थे। वहीं एक पेड़ के नीचे उन्होंने अपना ठिकाना बनाया था। 2 बच्चों में अष्टाचंदा से अच्छा खेल क्या हो सकता था। जमीन पर लकीरें खींचकर बिसात बनाई गई, इमली के बीज इकट्ठे किए और उकड़ू बैठकर खेल जम गया। खेल शुरू होने के बाद पिछले 2 दिनों में वक्त गुजारने का कुछ पता ही नहीं चलता था। आमतौर पर खेल अक्सर झगड़े पर ख़त्म होते हैं, लेकिन झगड़े की अभी गुंजाइश न थी कि ये दोनों दोस्त इन दिनों साथ साथ किए गए जुर्म में फरारी काट रहे थे, जिसमें एक दूसरे का साथ बहुत अहम था। शुरू दिन तो ट्रेनों का गुजरना भी उनके लिए बहुत मज़ेदार रहा था। ट्रेन आने पर ये दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़ते और कभी कभी दोनों कान उंगलियों से बंद करके एक दूसरे को देखकर हंसते और ट्रेन को दूर तक जाते देखते थे। ट्रेन गुजर जाने पर कान से उंगली निकालकर फिर खेल में लग जाते, लेकिन धीरे धीरे ये खुशी कम होती गई और अब कल से तो उनको यहाँ मज़ा ही नहीं आ रहा था। रोज़ की तरह धूप ढलने लगी और दोपहर बाद वाली गाड़ी आकर गुजर गई तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और खेल बंद कर दिया कि घर जाने का वक्त हो गया था। सीधे रास्ते से हटकर बागों वाले रास्ते से वो घर की तरफ चल दिए। मोहल्ले भर में घर की तरफ मुड़ने वाली गली के मोड़ से दोनों ने चौकन्ने होकर जायज़ा लिया कि कोई है तो नहीं। फिर नवैद पहरे पर रुका और किसी को न पाकर इरफान बहुत फुर्ती से घर से लगी हुई बैठक के कमरे में घुसा और वहाँ कोठरी में बनी नीचे रखी मेज़ पर चढ़कर ऊपर मचान पर छुपाए गए बस्ते उतार लिए। बस्ता लेकर नवैद के अपने घर की तरफ रवाना हो जाने पर इरफान अपने घर के अंदर दाखिल हो गया। इस तरह एक और दिन बिना किसी आफत के गुजर गया। घर पर अब्बा को देखा तो इरफान का दिल धक से हो गया। ओह, अगर इनको पता चल जाए कि वो पिछले हफ्ते से स्कूल नहीं जा रहा है तो क्या हो। वो सिर से पैर तक कांप गया। घर में आते ही दहशत ने उसे घेर लिया, इसलिए जल्दी जल्दी खाना खाकर वो फिर बाहर निकल गया। अम्मी और अब्बा की नज़र में क्योंकि वो अभी स्कूल से आया था तो बाहर खेलने जाने पर रोक न थी। बाहर आकर वो आसपास के बच्चों के साथ खेल में लग गया। अंधेरा घिरने के साथ घर लौटना भी ज़रूरी था और दरवाजे से अंदर आते ही वो फिर खौफ की गिरफ्त में था, जिससे घबरा कर शाम होते ही वो खाना खाकर बिस्तर में घुसकर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन 2 दिन से नींद तो देर से ही आती थी, बस पिछले दिनों की बातें एक एक कर याद आने लगीं। घर के पास के प्राइमरी स्कूल से 5वीं पास करने के बाद इरफान का 6ठी क्लास में कस्बे के इंटर कॉलेज में एडमिशन हो गया था, जहां उसे एक प्यारा दोस्त नवेद मिल गया था, जो सुबह 9 बजे यूनिफॉर्म में तैयार होकर बस्ता लटकाए आ जाता था और उसके पुकारते ही दोनों साथ साथ कॉलेज के लिए रवाना हो जाते थे। ये कॉलेज रेलवे स्टेशन से कुछ पहले कस्बे की हलचल से ज़रा हटकर था, जहाँ पहुँचने में 20-25 मिनट लग जाते हैं। मोहल्ले के उसके हम उम्र पिछड़ी जातियों के बच्चे स्कूल नहीं आते थे। वो कंचे खेलते, पतंग उड़ाते,

उर्दू मजलिस के सभी सामईन की खिदमत में मोहम्मद अली कमाल का पुरखलूस आदाब। पेश है प्रोग्राम अक्स अदब। सामईन, वाक़यात के मंतकी तसलसल का बयान एक

0: गिल्ली डंडे के खेल के मज़े लूटते और वक्त गुजारते थे। ये खेल इरफान को भी लुभाते, खासकर रंग बिरंगे कंचे और आसमान में उड़ान भरती पतंगें तो जादू का सा असर करती। हालांकि उनके साथ उसका खेलना अब्बा को पसंद न था, फिर भी आम हालात में उनके साथ खेलने का मौका भी अक्सर शाम को मिल ही जाता था। बस सुबह को स्कूल जाना लाजमी था। उस दिन भी नवेद ने 9 बजे से कुछ पहले दरवाजे पर पुकारा था और वो अपना बस्ता उठाकर बाहर आ गया था। दोनों मोहल्ले की सड़कों से गुजरकर मेन रोड पर आए ही थे कि सड़क के किनारे खुली जगह पर जमा भीड़ दिखाई दी। एक गोल घेरा था जिसमें से डुगडुगी बजने की आवाज आ रही थी और लोग जैसे उस तमाशे को देखने के लिए खींचे चले आ रहे थे। आज वो दोनों घर से कुछ जल्दी निकले थे। आपस में बात हुई कि चलो देखते हैं क्या हो रहा है और दोनों के कदम उस तरफ बढ़ गए। भीड़ बहुत ज्यादा थी, दोनों को तमाशा देखने के लिए धक्का मुक्की करके घुसना पड़ा। गोल घेरे के बीच अजीबोगरीब कपड़े पहने एक आदमी और एक लड़का था। आदमी डुगडुगी बजाता था और लड़का कलाबाजी जैसे खेल दिखाता था। बोल जमूरे, हाँ उस्ताद, बोल नाच दिखाएगा, हाँ उस्ताद दिखाएगा। फिर उस्ताद हारमोनियम बजाता, गाना गाता और जमूरा नाच दिखाने के बाद अपनी फुंदनेदार टोपी जमा हुए लोगों के सामने ले जाता और सब उसमें पैसे डाल। फिर नया खेल शुरू हो जाता। नवेद और इरफान को इसे देखते हुए अचानक कॉलेज जाना याद आया तो वो भीड़ को चीरते फाड़ते उस घेरे से बाहर निकले और लगभग दौड़ते हुए कॉलेज पहुँचे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कॉलेज के मैदान में सन्नाटा था और सब बच्चे क्लास में जा चुके थे। छठी क्लास का दूसरा पीरियड शमीम मास साहब ले रहे थे। ओह, ये जालिम शमीम मास साहब, उनके क्लास टीचर और उनका हथेली पे पड़ने वाला स्केल। नवेद और इरफान की रूह कांप गई। दोनों बच्चे आड़ में खड़े होकर कुछ देर देखते रहे। फिर इरफान ने नवेद का हाथ पकड़ा और वो चुपके से कॉलेज के गेट से बाहर निकल आए। अब क्या किया जाए, इंटरवल के बाद फिर शमीम मास साहब की क्लास होगी। ये तय हुआ कि आज जाने का तो अब कोई मतलब ही नहीं है। वो कंधे पर बस्ता लटकाए बागों की तरफ के रास्ते से घर के लिए लौट पड़े। रास्ते में बाग पार करते ही मैदान था जहाँ कुछ लड़के पतंग के पेंच लड़ा रहे थे। घर पहुँचने की कोई जल्दी न थी। कुछ देर पतंगबाजी देखी, पता भी न चला और कॉलेज की छुट्टी का वक्त हो गया। घर लौटकर किसी को आज की रुदात बताने की हिम्मत किसी में न थी। इरफान ने बस्ता रखा, हाथ धोए, खाना खाया और रोज की तरह मोहल्ले में खेलने चला गया। घर लौटा तो चुपचाप सा फिरता रहा क्योंकि एक डर जैसे घेरे था कि अब क्या होगा। अगली सुबह हसबे मामूल वो वक्त पर स्कूल के लिए तैयार हुआ। नवेद ने आवाज लगाई और दोनों कॉलेज की तरफ रवाना तो हुए, लेकिन शमीम मास साहब की दहशत और रास्ते में लड़कों के खेलों की कशिश कि वो कॉलेज के अंदर पहुंच ही न सके। आज खेलों में उन्हें कल से ज्यादा मजा आया। बस्ते जरूर मुसीबत हो रहे थे जिन्हें टांगे टांगे वो एक तो थक जाते, दूसरे पहचानने वाले लोगों का खतरा कि बात अब्बा तक न पहुंच जाए। छोटे से कस्बे में लोग एक दूसरे को और उनके बच्चों तक को अक्सर पहचानते थे। उस पर कंधे पर लटके बस्ते स्कूल से भागे होने का ख्वामखा शक पैदा कर सकते थे। तीसरे दिन तय हुआ कि बस्ते छिपा दिए जाएं। महफूज जगह की तलाश की गई। घर से लगी हुई बैठक में एक कोठरी है जिसमें मचान बना है। वहाँ कई बार जंगली कबूतर घोंसला रखकर अंडे देते हैं और बच्चे भी निकालते हैं। वही जगह सबसे अच्छी ठहरी। तीसरे दिन वहाँ रखी मेज पर चढ़कर बस्ते मचान पर रख दिए गए और लड़कों के साथ खेलने में इस बोझ से आज़ादी मिली। लेकिन मुश्किल ये हुई कि कंचे खेलने में दूर से आते हुए अनवर चचा दिखाई दे गए। वो तो खैर हुई कि दोनों छिप गए और उन्होंने इन दोनों को नहीं देखा, लेकिन अब डर बहुत बढ़ गया था। कोई पहचानने वाला मिल जाए तो कुछ भी हो सकता था। उन दिनों घर पर रहते वक्त इरफान हर वक्त सहमा सा ही रहता। इतना वक्त गुजरने से स्कूल जाना तो अब नामुमकिन हो चुका था। घर पर भी बात खुलने की दहशत बढ़ती ही चली जा रही थी। कोई रास्ता नजर न आता था। खासकर शाम और सुबह को अब्बा के सामने पढ़ना तो बहुत मुश्किल हो गया। वो चुपके चुपके नजर बचाकर उन्हें देखता तो उनका वो पहले जैसा चेहरा न लगता, बल्कि बहुत डरावना लगता। चौथे दिन दोनों की दिन में लड़कों के साथ खेलने की हिम्मत जवाब दे गई क्योंकि नज्जू धीवर एक लड़के से खेल में बहस हो गई जिसने अब्बा को स्कूल न जाने की बात बता देने की धमकी दे डाली। दोनों बुरी तरह डर गए और पांचवें दिन से बस्ता छिपाने के बाद लड़कों के साथ खेलना छोड़कर उन्होंने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के पास की जगह तलाश ली जहां किसी के आने जाने का खदशा कम था। नीचे जगह होने से दूर से दिखाई भी न देते थे और वहां अष्टाचंदा पौ की बाजी जमने लगी। पिछले 8 दिन ने आहिस्ता आहिस्ता उसका अजब हाल कर दिया था। स्टेशन जाने और इमली के बीजों से ज़मीन पर अष्टाचंदा खेलने में भी जैसे मज़ा ख़त्म हो गया। घर में इरफान बिल्कुल गुमसुम रहने लगा। कोई आवाज़ भी देता तो वो डर जाता। एक अनहोनी सी दहशत थी कि जैसे अचानक आसमान से कुछ गिरने वाला हो। फिर भी सुबह उठकर स्कूल के नाम पर तैयार होने और बस्ते बैठक की कोठरी के मचान पर छिपाकर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के साथ की कच्ची जगह छिपकर रोज़ का खेल खेलने के अलावा किया भी क्या जा सकता था। उस दिन भी शाम ढले गली के कोने से झांकने के बाद नवेद वहीं पहरेदारी पर रुका और इरफान बैठक में जाकर मेज़ पर चढ़कर मचान से बस्ते उतार ही रहा था कि सटाक से पीछे एक संटी पड़ी। बस्ते हाथ से छूटकर गिर गया। सामने अब्बा गुस्से से लाल आंखों के साथ हाथ में संटी लिए खड़े थे। वो शायद काफ़ी देर से उसको रंगे हाथ पकड़ने के मुंतजिर थे और अब उसे मेज़ से नीचे उतरने का इशारा कर रहे थे। वो हाथ पकड़कर घसीटते हुए उसे घर के अंदर लाए। सारा मामला खुल चुका था। पिटाई तो हुई लेकिन पिटने के बाद तकलीफ के साथ साथ तूफान के गुजर जाने का एहसास हो रहा था। शाम के तूफान के गुजर जाने के बाद रात को उन मासूम आँखों में जब नींद ने डेरा डाला तब बाप की डांट और पिटाई की वो तकलीफ उस दहशत से बहुत कम हो चुकी थी जिसने कई दिन से उसका जीना मुश्किल कर रखा था। अगले दिन सुबह काफ़ी रोशन थी। इरफान और नवेद के अब्बा दोनों को शमीम माँ साहब के हवाले कर आए थे जिन्होंने इन्हें बिना मारे पीटे क्लास में सीट पर बैठा लिया था, जैसे एक पहाड़ था जो बच्चों के सीने से हट गया था।
1: दहशत का बोझ, अभी आपने ये अफसाना सुना मोहतरमा शमीम जहरा से। समीन, गज़ल में जहाँ दिल की बात की जाती है वहीं मौसीकी के तार कल्ब को एक सुकून फराहम करते हैं। आइए सुनते हैं गज़ल। कलाम है मंसूर अनवर का, गुलकार हैं मेहदी हसन।

0: सामईन, अभी आप मेहदी हसन की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे, शायरी सुन रहे थे। कदीम शायरी या रिवायती शायरी का एक लंबे अरसे तक चलन रहा, उसके बाद जदीद शायरी का जन्म होता है जो रिवायती शायरी के शाना बशाना कदम ब कदम साथ चलने लगी। महबूब के हुस्न और इश्क मजामीन के साथ साथ अपने दामन में वसअतें पैदा कीं और लामहदूद मौजूआत को अपने दामन में समेट लिया। आज शायरी में समाजी मामलात की तर्जुमानी भी होती है, कौमी मसाइल का बयान भी होता है। प्रोग्राम नवाए शायर के तहत आइए कुछ ऐसी ही शायरी सुनते हैं जनाब शाहिद अंजुम से।
1: गज़ल का मतला मुलाहिजा करें। अर्ज़ क्या है कि रांझे के आंसुओं में जो देखा था हीर ने, रांझे के आंसुओं में जो देखा था हीर ने, उस दर्द को गज़ल में उतारा है मीर ने। रांझे के आंसुओं में जो देखा था हीर ने, उस दर्द को गज़ल में उतारा है मीर ने। और शेर मुलाजा करें, उसने मुझे छुआ तो मेरे दिन बदल गए, उसने मुझे छुआ तो मेरे दिन बदल गए, पत्थर में जान डाल दी एक राहगीर ने। उसने मुझे छुआ तो मेरे दिन बदल गए, पत्थर में जान डाल दी एक राहगीर ने। और ये शेर ख़ासतौर से कि जिसके लिए कहीं कोई जाए अमां नहीं, जिसके लिए कहीं कोई जाए अमां नहीं, उस आदमी के गम को जिया है कबीर ने। जिसके लिए कहीं कोई जाए अमां नहीं, उस आदमी के गम को जिया है कबीर ने। दुश्मन की ज़िंदगी के लिए सोचना पड़ा, दुश्मन की ज़िंदगी के लिए सोचना पड़ा, मजबूर कर दिया मुझे मेरे ज़मीर ने, मजबूर कर दिया मुझे मेरे ज़मीर ने। और ये ख़ास तौर से कि माँ ने मेरे गुनाहों को अश्कों से धो दिया, माँ ने मेरे गुनाहों को अश्कों से धो दिया, पाकीज़ा कर दिया मुझे गंगा के नीर ने।

माँ ने मेरे गुनाहों को अश्कों से धो दिया, पाकीज़ा कर दिया मुझे गंगा के नीर ने, रांझे के आंसुओं में जो देखा था हीर ने, उस दर्द को गज़ल में उतारा है मीर ने। आएंगे कुछ लुटेरे भी साधु के भेष में, आएंगे कुछ लुटेरे भी साधु के भेष में, ये बात साफ कर दी है लक्ष्मण लकीर ने, ये बात साफ कर दी है लक्ष्मण लकीर ने। रखी है हमसे खाना बदोशों की आबरू, रखी है हमसे खाना बदोशों की आबरू, कुटिया को अपनी आग लगा कर कबीर ने, रांझे के आंसुओं में जो देखा था हीर ने, उस दर्द को गज़ल में उतारा है मीर ने। एक गज़ल के चंद अशआर में मुलाहिज़ा करें कि कोई हमारे लिए देर तक संवरता है। गज़ल का मतलब, कोई हमारे लिए देर तक संवरता है, इस अहतमाम से अब आईना भी डरता है, इस अहतमाम से अब आईना भी डरता है। और शेर मुलाहिज़ा करें कि हमें तो और कई काम करने पड़ते हैं, हमें तो और कई काम करने पड़ते हैं, गज़ल से दूसरे लोगों का पेट भरता है, हमें तो और कई काम करने पड़ते हैं, गज़ल से दूसरे लोगों का पेट भरता है। और शेर मुलाहिज़ा करें कि गरीब माओ के बच्चे लहू पे पलते हैं, गरीब माओ के बच्चे लहू पे पलते हैं, बगैर खाए पिए दूध कब उतरता है, गरीब माओ के बच्चे लहू पे पलते हैं, बगैर खाए पिए दूध कब उतरता है। शेर मुलाहिज़ा करें कि चिराग इश्क के दम पर चिराग जलता है, चिराग इश्क के दम पर चिराग जलता है, चिराग इश्क हवाओं के पर कतरता है, चिराग इश्क हवाओं के पर कतरता है। और एक और शेर देखिए कि मेरी तरह कभी बेमौत मारा जाएगा, मेरी तरह कभी बेमौत मारा जाएगा, वो दोस्तों पे बहुत एतबार करता है, वो दोस्तों पे बहुत एतबार करता है, कोई हमारे लिए देर तक संवरता है, इस अहतमाम से अब आईना भी डरता है। और एक और गज़ल के चंद अशआर मुलाहिज़ा करें, उड़ा है भीगे परों से भी जस्तजू क्या है, उड़ा है भीगे परों से भी जस्तजू क्या है, लहूलुहान परिंदे की आरजू क्या है, लहूलुहान परिंदे की आरजू क्या है। और शेर मुलाहिज़ा करें, बड़े बड़े यहाँ बैसाखियों पे चलते हैं, बड़े बड़े यहाँ बैसाखियों पे चलते हैं, तेरा वजूद तो कुछ भी नहीं है तू क्या है, बड़े बड़े यहाँ बैसाखियों पे चलते हैं, तेरा वजूद तो कुछ भी नहीं है तू क्या है। और ये शेर ख़ासतौर से, हमारी आँख का आंसू कुरेत कर देखो, हमारी आँख का आंसू कुरेत कर देखो, किसी की याद के जंगल का गोखरू क्या है, हमारी आँख का आंसू कुरेत कर देखो, किसी की याद के जंगल का गोखरू क्या है। और ये शेर भी ख़ासतौर से, मैं तेरे वास्ते दिल्ली तो छोड़ दूँ लेकिन, मैं तेरे वास्ते दिल्ली तो छोड़ दूँ लेकिन, महाजिरों की कराची में आबरू क्या है, महाजिरों की कराची में आबरू क्या है। और इसी सिलसिले का एक शेर ये है कि मेरे तो ख्वाब भी नीलाम होने वाले हैं, मेरे तो ख्वाब भी नीलाम होने वाले हैं, लहू खरीदने वाले मेरा लहू क्या है, मेरे तो ख्वाब भी नीलाम होने वाले हैं, लहू खरीदने वाले मेरा लहू क्या है। आखिरी शेर गज़ल का, तुम्हारे लम्स की खुशबू हवा में फैल गई, तुम्हारे लम्स की खुशबू हवा में फैल गई, किसी ने पूछ लिया था कि आरजू क्या है, किसी ने पूछ लिया था कि आरजू क्या है। और एक गज़ल, उसका मतलब मुलाहिज़ा करें, अर्ज़ क्या है कि चाँद से चेहरे पे गहरे दुख का बादल रख दिया, चाँद से चेहरे पे गहरे दुख का बादल रख दिया, किसने तेरी नरगिस

0: आंखों में जलथल रख दिया, किसने तेरी नरगिसी आंखों में जलथल रख दिया। और शेख मुलादक ने पूछती है वो मुझे अब देवताओं की तरह, पूछती है वो मुझे अब देवताओं की तरह, उसने मेरी याद का भी नाम पीपल रख दिया, उसने मेरी याद का भी नाम पीपल रख दिया। और शेर यूँ अर्ज़ किया है कि छोड़कर आसाम की गलियों को जब आने लगा, छोड़कर आसाम की गलियों को जब आने लगा, एक लड़की ने मेरे पैरों पर आंचल रख दिया, एक लड़की ने मेरे पैरों पर आंचल रख दिया। जहन से लिपटे हुए हैं अनगिनत यादों के नाग, जहन से लिपटे हुए हैं अनगिनत यादों के नाग, इस मोहब्बत ने बनाकर मुझको संदल रख दिया, इस मोहब्बत ने बनाकर मुझको संदल रख दिया। और जनवरी का ये शेर के सर्दियों के साए से महफूज रखने के लिए, सर्दियों के साए से महफूज रखने के लिए, उसने मेरे जिस्म पे होंठों का कंबल रख दिया, उसने मेरे जिस्म पे होंठों का कंबल रख दिया। पूछती है वो मुझे अब देवताओं की तरह, उसने मेरी याद का भी नाम पीपल रख दिया, उसने मेरी याद का भी नाम पीपल रख दिया। और एक गज़ल, गज़ल का मतलब मुलाहिज़ा करें कि अदालतों के सितम की अपील कोई नहीं, अदालतों के सितम की अपील कोई नहीं, मेरा खुदा के अलावा वकील कोई नहीं, मेरा खुदा के अलावा वकील कोई नहीं। अशे मुलाहिज़ा करें, हमारे कत्ल को देखा है सारी दुनिया ने, हमारे कत्ल को देखा है सारी दुनिया ने, हमारे कत्ल को देखा है सारी दुनिया ने, सबूत कोई नहीं है दलील कोई नहीं, सबूत कोई नहीं है दलील कोई नहीं। ये शेर ख़ास तौर से मुलाहिज़ा करें कि किसी बुज़ुर्ग की तस्वीर टांगने के लिए, किसी बुज़ुर्ग की तस्वीर टांगने के लिए, नए घरों में मोहब्बत की कील कोई नहीं, नए घरों में मोहब्बत की कील कोई नहीं। और ये शेर, हमें तो जंग में फिरौन को हराना है, हमें तो जंग में फिरौन को हराना है, हमारी राह में दरियाए नील कोई नहीं, हमें तो जंग में फिरौन को हराना है, हमारी राह में दरियाए नील कोई नहीं। आखिरी शेर गज़ल का, हम आज भी तेरे रहमो करम पे जिंदा हैं, हम आज भी तेरे रहमो करम पे जिंदा हैं, हमारे जैसा यहाँ खुद कफील कोई नहीं, हम आज भी तेरे रहमो करम पे जिंदा हैं, हमारे जैसा यहाँ खुद कफील कोई नहीं।
1: अभी आप जनाब शाहिद अंजुम से उनका कलाम सुन रहे थे। तो सामिन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम अक्से अदब। अब अपने मेज़बान मोहम्मद अली कमाल को आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।

आकाशवाणी दिल्ली का ये प्रेस चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। स्टूडियो की घड़ी में 4 बजने को हैं। आपसे कुछ ही देर में समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्र सरकार ने दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज के नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH-148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी।
1: कई सारे पीछे प्रयास किए गए थे, फाइनली आज जो प्रयास अप्रूव हुआ है वो है 6 लेन द्वारका टनल। ये 6,970 करोड़ रुपीस की है। और दूसरा, उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन, उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे 7,145 करोड़, और उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है।
0: डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीकों को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना क्षेत्र में एक को तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थल सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने करियर में एयर मार्शल दीक्षित ने कई महत्वपूर्ण अभियानों और अभ्यासों में भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े दान में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही विशेष जांच टीम SIT को 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। राज्य सरकार ने 15 जून को 3 सदस्यीय SIT का गठन किया था। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
2: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मेक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को स्कूल जाने के लिए मुफ्त इलेक्ट्रिक साइकिल देने की घोषणा की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. The government today approved the construction of 6-lane road tunnel for National Highway 148AE in Delhi, connecting Dwarka Expressway with Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj. Briefing media in the national capital today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the government has also approved the construction of the 117.7-kilometre Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a 4-lane access-controlled corridor with structures designed to easily upgrade to 6 lanes.
1: आज कैबिनेट में दो बड़े फैसले लिए गए।
4: टुडे द कैबिनेट अप्रूव्ड टू मेजर डिसीजंस बोथ रिलेटेड टू हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। द फर्स्ट एड्रेसेस अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड इन दिल्ली फॉर इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी बिटवीन द नेशनल हाईवे कॉरिडोर एंड वसंत कुंज। सेवरल एफर्ट्स हैड बीन मेड ओवर द इयर्स एंड टुडे दोज प्रपोजल्स हैव फाइनली बीन अप्रूव्ड। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6-लेन द्वारका टनल एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 6,970 करोड़ रुपीज। The second decision is related to Uttar Pradesh. The cabinet has approved the construction of 4-lane access-controlled highway between Kanpur and Kabrai, forming part of the corridor connecting Kanpur with Bhopal. Project has an estimated cost of 7,145 crore rupees. In addition, significant improvements have also been planned for the subsequent sections of the corridor.
1: Section ka bhi usme bahut sara improvement hai.
3: Union Home Minister Amit Shah has asked the High-Level Committee on Demographic Changes to submit its recommendations at the earliest. Mr. Shah gave the direction during a meeting with the committee in New Delhi. The committee informed the Home Minister that they will visit various states and union territories to obtain first-hand information on demographic changes and interact with the various administrations. They will also hold consultations with central government ministries to gather feedback on issues related to demographic changes. Prime Minister of Japan, Sanai Takaichi, will arrive in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. This will be the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit tomorrow with Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Narendra Modi has said Digital India Initiative has redefined governance, empowered citizens and accelerated all-round development. On completion of 11 years of the initiative, the Prime Minister said Digital India empowered the poor and the underprivileged and made life easier for millions. The ambitious Digital India programme of the government was launched on this day in 2015. Increased wages under the Viksit Bharat Ji Ramji Act 2025 became effective across the country from today. According to the notification issued by the Rural Development Ministry, wage rates have been enhanced across all states and union territories. The ministry said for the first time, an interim base wage rate of 300 rupees per day has been introduced, ensuring that no notified wage under the program falls below this level. Union Ministers Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju, accompanied by Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu, conducted an aerial survey of flood-hit areas in the state on the second day of their high-level assessment tour today. The team first surveyed Pasighat in East Siang District, one of the worst affected regions, before visiting Boeing Village to assess the damage on the ground. Following their evaluation in Arunachal Pradesh, Union Ministers Chauhan and Rijiju crossed over into neighbouring Assam to inspect flood-ravaged sectors in that state. Maharashtra's capital Mumbai is witnessing heavy rainfall. Waterlogging has been reported from several low-lying areas. Heavy showers in the eastern and western suburbs have disrupted traffic. The Maharashtra Mantrale has issued a warning of heavy rainfall at isolated places in Mumbai city, Mumbai suburbs, Palghar and Thane districts over the next few hours. The India Meteorological Department has said that the southwest monsoon is likely to advance over Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab during the next 2 days. The IMD has also issued an orange alert for heavy rainfall in Uttar Pradesh and Bihar. India wicketkeeper batter Ishan Kishan has replaced teammate Abhishek Sharma as the world's number one T20 international batter in the latest ICC player rankings update released today. The left-handed batter's rise to the summit has been fueled by his outstanding performances at the ICC T20 World Cup earlier this year. And that is the end of this news bulletin.
5: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 4:10 हुए हैं और वक्त हुआ है गुमशुदा व्यक्तियों की जानकारी का। टीपी नगर थाना मेरठ से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुमशुदा व्यक्ति दिव्या रानी, जो कि टीपी नगर निवासी हैं, इनकी उम्र 22 साल है, बालों का रंग काला, कद 5 फीट 4 इंच, इन्होंने सूट सलवार पहना हुआ है और ये अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। इनके विषय में अगर कोई भी जानकारी आपको प्राप्त होती है तो आप संपर्क कर सकते हैं

थाना टीपी नगर मेरठ से। अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है शिखा, पत्नी राहुल। इनकी उम्र 31 वर्ष है। कद 5 फीट 1 इंच। चेहरा सामान्य, शरीर की बनावट सामान्य, रंग गोरा। काले रंग का फ्रॉक और काले रंग का पैंट इन्होंने पहना हुआ है। इनके विषय में अगर कोई भी आपको सूचना प्राप्त होती है तो आप संपर्क कर सकते हैं थाना प्रभारी, थाना इंचौली मेरठ से। नौचंदी मेरठ थाना से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुमशुदा व्यक्ति विमला देवी, इनकी उम्र 34 वर्ष, कद 5 फीट 5 इंच, रंग सांवला, इकहरा बदन, बाएं हाथ की हथेली के पीछे पुराना चोट का निशान है, नीला लोअर, सफ़ेद टी शर्ट इन्होंने पहनी है। इनके विषय में अगर कोई भी जानकारी मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं थाना नौचंदी मेरठ से। गुमशुदा व्यक्ति जिनका नाम है, ये पुरुष हैं और ये ब्रह्मपुरी से गुम हुए हैं, क्षमा चाहती हूँ, गुम नहीं हुए बल्कि इनका शव प्राप्त हुआ है। इनकी उम्र तकरीबन 55 वर्ष है। कद 5 फीट 4 इंच, काले और सफ़ेद इनके बाल हैं। करा बदन, हल्के हरे रंग की बटन बंद शर्ट इन्होंने पहनी हुई है और ग्रे कलर की जीन्स इन्होंने पहनी है। इनके विषय में अगर आप कोई भी सूचना देना चाहते हैं, अगर आप जानते हैं तो संपर्क कर सकते हैं राजेश जी से, जो कि थानाध्यक्ष है ब्रह्मपुरी जनपद मेरठ में। अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है श्रीमती भगवती, उम्र 85 वर्ष, पत्नी मांगचंद, निवासी रुड़की रोड, थाना लाल कुर्ती। इनकी उम्र 85 वर्ष है। सफ़ेद बाल छोटे हैं, शरीर की बनावट सामान्य, इनका शरीर कमज़ोर है, रंग सांवला। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इन्होंने हरा सूट, गुलाबी सलवार, ग्रे कलर की चुन्नी पहनी हुई है। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती है तो आप संपर्क कर सकते हैं थाना लाल कुर्ती जनपद मेरठ से। गुमशुदा व्यक्ति का नाम है बाबूराम, पुत्र गंगाराम, निवासी कसेरूखेड़ा, थाना लाल कुर्ती। इनकी उम्र 42 वर्ष, कद 5 फीट 7 इंच, इनके बाल आगे से उड़े हुए हैं, चेहरा कमज़ोर, शरीर की बनावट पतली और शरीर से ये कमज़ोर हैं। इन्होंने स्काई ब्लू शर्ट और कैपरी पहनी हुई है। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती है तो आप संपर्क कर सकते हैं थाना लाल कुर्ती मेरठ से। अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है रिया, पुत्री सुरेश, निवासी इकड़ी, थाना सरथना। इनकी उम्र 20 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, बालों का रंग काला, रंग गोरा, कुर्ता और सलवार इन्होंने पहना हुआ है। इनके विषय में अगर आपको कोई भी सूचना मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं उपनिरीक्षक सागर सिंह, थाना सरधना मेरठ से। अगले गुमशुदा व्यक्ति हैं विवेक, इनके उम्र 12 वर्ष है, कद 3 फुट 5 इंच, काले रंग की इनकी आंखें, रंग सांवला, आंख नाक कान औसत, लाल रंग की टी शर्ट और जीन्स पैंट इन्होंने पहनी है, जूते पहने हुए हैं। इनके विषय में अगर कोई भी जानकारी आपको प्राप्त होती है तो आप संपर्क कर सकते हैं टीपी नगर थाने में। ये थी गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानकारी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 4:15 होने को हैं, आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम के लिए प्रतीक्षा करें।

0: दिल की पहचान, हर नई सोच को देते हैं एक नया आसमान। जहाँ ख्याल भी चमके और हौसले भी बोले, वहीं से तो बदलते हैं कल के सारे रोले।
1: जोश भी है, जज्बा भी है, हर कहानी में एक नया रास्ता भी है। कभी सवाल, कभी जवाब, कभी एक नई मिसाल। यही तो है युवा की ताकत, यही तो है असली कमाल। इसी के साथ नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ आपकी होस्ट अमेया।
0: और मैं हूँ खुशी, और आप सुन रहे हैं युववाणी। युववाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अमेया, क्या तुम्हें पता है दुनिया भर में भारत के युवाओं की आबादी सबसे ज़्यादा है, जहाँ दुनिया का कुल युवा वर्ग का लगभग 20% हिस्सा रहता है।
1: यही नहीं खुशी, बल्कि इस समय दुनिया में 1.3 बिलियन युवा हैं। जानती हो इसका क्या मतलब है?
0: क्या मैं?
1: ढेर सारी ऊर्जा, बहुत सारा जोश, और सच कहूँ तो ढेर सारा ज़बरदस्त म्यूजिक। कार्यक्रम के शुरू होने से पहले श्रोताओं को इसकी एक झलक दे ही देते हैं, क्या कहती हो?
0: वाह, इससे खूबसूरत इब्तिदा भला और क्या हो सकती है। तो पेश है फिल्म रॉक स्टार से ये गीत। परिंदे घर आ जा, नादान परिंदे बाय रॉक स्टार।

0: और अब वक्त है हमारे पसंदीदा सेगमेंट आज की बात का, जहां हम जानते हैं कि आज का दिन आखिर क्यों है खास।
1: बिल्कुल सही, कैलेंडर की हर डेट अपनी एक कहानी लेकर आती है और 1 जुलाई भी उनमें से एक है।
0: तो खुशी, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट टुडे?
1: मियां, आज का दिन तो कई मायनों में खास है, पर सबसे पहले बात करते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे की। आज का दिन उन डॉक्टर्स को डेडिकेट किया जाता है जो दिन रात हमारी हेल्थ का ख्याल रखते हैं।
0: जी हाँ, उस सफेद कोट के पीछे सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं बल्कि समर्पण, धैर्य और इंसानियत होती है। इमरजेंसी हो या रूटीन चेकअप, डॉक्टर्स हर सिचुएशन में अपना बेस्ट ही देते हैं।
1: क्या बात कही मियां, अब एक इंटरेस्टिंग बात।
0: क्या इंटरेस्टिंग बात खुशी?
1: 1 जुलाई से साल का सेकेंड हाफ ऑफिशियली शुरू हो जाता है।
0: वाओ, मतलब जनवरी में जो रेजोल्यूशंस बनाए थे उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट निकालने का समय आ गया।
1: हाँ मैं, जिम मेंबरशिप अभी भी एक्टिव है या महज कार्ड में वॉलेट घूम रहा है?
0: या फिर इस साल खूब सारी बुक्स पढ़ूंगी वाली लिस्ट अभी भी फर्स्ट चैप्टर पे ही है।
1: कोई बात नहीं दोस्तों, लाइफ हमें हर दिन एक फ्रेश स्टार्ट देती है। अगर पहले 6 मंथ्स प्लान के मुताबिक नहीं गए तो अगले 6 मंथ्स को बेहतर बनाया जा सकता है।
0: बिल्कुल, नया मंथ, नए गोल्स और नई ऊर्जा। यू डोंट हैव टू वेट फॉर अ न्यू ईयर टू स्टार्ट, समटाइम्स अ न्यू डे कैन बी जस्ट एज सिग्निफिकेंट।
1: और रम्या, आज का दिन सिर्फ डॉक्टर्स डे के लिए ही नहीं जाना जाता।
0: एकदम सही कहा, 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी मनाया जाता है।
1: वैसे बहुत लोगों को लगता है कि सीए का काम केवल नंबर्स और बैलेंस शीट्स तक ही सीमित है,
0: बट रियलिटी इज मच बिगर। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बिजनेसेस को फाइनेंशियली मजबूत बनाने में, टैक्सेस को सही तरह मैनेज करने में और इकोनॉमी को ट्रांसपेरेंट बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं।
1: आज सीए डे के अवसर पर हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं सीए गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के साथ संतोष द्विवेदी जी की ये बातचीत। सुनते रहिए ऑन योर वाणी।
2: एक मजबूत देश की नींव सिर्फ उसकी सीमाओं से नहीं बल्कि उसकी मजबूत अर्थव्यवस्था से तय होती है, और उस अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनकर संभालने वाले जाबाजों को हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहते हैं। जी हाँ, आज है चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस और हमारे सभी युवा श्रोताओं को, हम जो हमें सुन रहे हैं उनको हम चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस की बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और जो बडिंग सीएज हैं उनको भी हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि वो देश के विकास में अपना बहुत योगदान देने वाले हैं। इस विशेष अवसर पर हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी को। गोपाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार सभी श्रोताओं को, मेरा नमस्कार।
2: गोपाल जी, हमारा जो ये कार्यक्रम है ये बिल्कुल युवा श्रोताओं के लिए विशेषकर है, तो जो युवा आपको सुन रहे हैं उनमें बहुत सारे ऐसे युवा भी होंगे जो कि बडिंग सीएज हैं, जो आगे चल करके आपके जैसा देश का नाम रोशन करने वाले हैं, देश की अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान देने वाले हैं, तो मैं आपसे चाहूंगा उनको आप एड्रेस करें और चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो आपका अनुभव है उस अनुभव से जो बडिंग सीएस है उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
3: बडिंग सीएस को यही कहना चाहता हूं कि देश आर्थिक रूप से बहुत तेजी से प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2047 में विकसित भारत का जो लक्ष्य हमारे सामने रखा है उसके रास्ते पे हम चल पड़े हैं, और आर्थिक रूप से सशक्त भारत खड़ा करने के रास्ते पे पूरा देश चल पड़ा है। तो उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज बड़ी महत्वपूर्ण है, कॉरपोरेट वर्ल्ड का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इंडस्ट्री, बिजनेस कम्युनिटी, व्यापारी वर्ग, यही रीढ़ की हड्डी बनेंगे भारत के आर्थिक विकास के लिए। तो वह एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के अंतर्गत ये सब लोग काम करें, कंप्लायंट एनवायरमेंट में काम करें, सरकार की पॉलिसीज के साथ अपनी एक्टिविटी को अलाइन करें, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी चार्टर्ड अकाउंटेंट के कंधों पे है। सरकार इस बात को पूरी तरह से मानती भी है और कहती भी है प्रधानमंत्री जी। तो मुझे लगता है कि अपनी कैपेसिटी

0: सकती हूँ। एक फिगर प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में भी एक दो बार बोली है कि पिछले साल ग्लोबल कंसल्टेशन फर्म्स जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को कंसल्ट करते हैं विद वेरियस इश्यूज में, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन में, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में, कंप्लायंसेस के लेवल पे, तो लगभग 50,000 करोड़ का जो रेवेन्यू है उन फर्म्स के माध्यम से बाहर देश के गया है। वो उन्होंने काम किया, उन्होंने फीस अर्न की और उन्होंने रिपेट्रिएट किया ग्लोबली। तो अगर डोमेस्टिक कंपनीज अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर लेती हैं, मल्टीडिसिप्लिनरी फर्म्स बन जाती हैं और वह इस मॉडर्न एआई टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने मल्टीडिसिप्लिनरी, चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे वैल्यूअर्स हों, चाहे जो डेटा एनालिटिक्स हों और कंपनी सेक्रेटरीज हों, कॉस्ट अकाउंटेंट्स हों, इन सबको मिला के ग्लोबली कॉम्पिटेंट कंसल्टेशन फर्म्स बना लेते हैं, तो एक तो हम ये पैसा जो बाहर जा रहा है उसको हम डोमेस्टिक फर्म्स के माध्यम से अपने देश में ही रखने में सफल होंगे, और दूसरा ये डेटा भी बहुत बाहर जा रहा है। बहुत सारा डेटा जो हमारे देश का, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं नाउ डेटा इज अवर गोल्ड, तो वह डेटा जो बाहर चला जाता है वह भी देश में ही रहेगा। तो डेटा का जो बहुत बड़ा एक वैल्यूएशन के माध्यम से एक रिसोर्स देश का जनरेट होता है वो बाहर जाने से रुक जाएगा, और लगभग 50,000 करोड़ की जो एनुअल आउटफ्लो है फीस के माध्यम से वो डोमेस्टिकली रहेगी। अब इसके लिए करना क्या है, एक तो हमें कैपेसिटी बिल्ड करनी है, जो मैंने मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट तो इनिशिएटिव ले रहा है उसके साथ अलाइन करना है अपने आप को, और एक अपने प्रोफेशन में यंग लोगों को तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप जो काम करते हो हैव प्राइड इन इट। आज हम कहते हैं कि मुझे अपने देश के ऊपर स्वाभिमान है, तो हम देश को कंट्रीब्यूट करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो अगर आप इस फील्ड में हो तो इसकी इम्पोर्टेंस आने वाले समय में और भी बढ़ने वाली है। अगर देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो हम लोगों के एज ए प्रोफेशनल्स रोल भी बढ़ेगा और अपनी इंडिविजुअल अर्निंग्स भी हम जो फाइनेंशियली स्टेब्लिश करना चाहते हैं वह भी हम अच्छी तरह से स्टेब्लिश करेंगे, परिवार के लिए भी हम अच्छा संपन्नता प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अपने गोल्स को देश के ऑब्जेक्टिव और लक्ष्य के साथ अलाइन करना और अपने प्रोफेशन के साथ स्वाभिमान के रूप से जुड़ना, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी को बढ़ाना, और जो हमसे एक्सपेक्टेड है, जो हमारा वॉचडॉग का बहुत बड़ा रोल है, उस रोल का महत्व देश की अर्थव्यवस्था में समझते हुए कॉरपोरेट वर्ल्ड को कंप्लायंस और रेगुलेशंस के साथ जोड़ के रखने का वो काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि वह जो एस्टेब्लिश हुई थी इंस्टीट्यूट अपनी, जिस मोटो और लोगों के साथ हम लोग ये जो इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट के एक्ट के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट बना, पार्लियामेंट ने पास किया था, उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे।
1: जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा, और मुझे लगता है जो हमारे युवा श्रोता, विशेषकर जो ऐसे हमारे श्रोता जो कि बडिंग सीएस हैं, उनके लिए एक बहुत ही पथ प्रदर्शन का काम करेगी आपकी ये बात। जैसे आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो हमारा पैसा है और जो बहुमूल्य डेटा है उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करके उसको हम रोक पाएंगे, ये बहुत ही अच्छी बात है। हमें लगता है कि जो नीति नियंता इससे जुड़े होंगे वो भी इस बात पर ध्यान देंगे। अग्रवाल साहब, आपने जैसे कहा, तो जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि आज हमें देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, आज हमें देश के लिए करने की जरूरत है, तो हमें लगता है जो श्रोता हमें सुन रहे हैं आपने भी लगभग वही बात कही है कि आज देश के लिए जो हमें करना है, अपनी जो कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, हमें जो मल्टी डायमेंशनल वे में काम करते हुए देश को आगे बढ़ाना है, उसमें मुझे लगता है आपका ये जो संदेश है बहुत ही प्रेरणाप्रद रहेगा उनके लिए। आपने हमारे युवाओं के लिए, विशेषकर युवा जो हमारे बडिंग सीएस हैं, उनके लिए इतनी बहुमूल्य जानकारी हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद। इसी के साथ आई विश यू हैप्पी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे टू एवरीवन हु इज मेकिंग एवरी नंबर काउंट एंड एवरी डिसीजन मैटर।
3: वैसे खुशी, एक फनी क्वेश्चन जहन में आ रहा है।
2: पूछिए मैया।
3: अगर लाइफ की भी कोई बैलेंस शीट बनती
2: तो मैया सिंपल, मैं एसेट्स में फैमिली, फ्रेंड्स और हैप्पीनेस लिखती।
3: और लाइबिलिटीज में?
2: लाइबिलिटीज में ओवरथिंकिंग, प्रोकास्टिनेशन और मंडे मॉर्निंग ब्लूज।
3: बिल्कुल, तो दोस्तों जिंदगी का बैलेंस भी हमेशा पॉजिटिव रखिए।
2: इसी पॉजिटिविटी के साथ सुनते रहिए हमारा अगला गीत, ओ बेखबर फ्रॉम एक्शन रिप्ले।

0: इसी के साथ वक्त हो चला है हमारे दूसरे सेगमेंट का, जिसका नाम है मन से माइक्रोफोन तक। खुशी फीफा वर्ल्ड कप के बारे में तो सब जानते ही होंगे और खूब दिलचस्पी से उसे फॉलो भी कर रहे होंगे, पर ये बेहद कम लोगों को मालूम होगा कि इसी वर्ल्ड कप में एक ऐसा सितारा खेल रहा है जो आज तो सफलता की बुलंदियों को छू रहा है, लेकिन कल तक गरीबी और मजबूरी ने उसका हाथ थाम रखा था।
1: बिल्कुल सही कहा मियां। दोस्तों जरा सोचिए, एक लड़का जिसके पास कभी तेहरान के सड़कों पर सोने के अलावा कोई ठिकाना नहीं था, आज वो पूरी दुनिया में छा चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान की स्टार गोलकीपर अलीरेज़ा बेरनवान की।
0: क्या आपको मालूम है श्रोताओं, अलीरेज़ा का जन्म एक गरीब चरवाहा परिवार में हुआ था। बचपन में वे भेड़े चराते थे और खाली वक्त में एक लोकल गेम खेला करते थे जिसका नाम था दालपरान, जिसमें पत्थरों को दूर तक फेंकना होता था।
1: वो पत्थर फेंकने की प्रैक्टिस ही तो आज उनका सुपर पावर बन गई है मियां। अलीरेज़ा के नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है दुनिया का सबसे लंबा फुटबॉल थ्रो फेंकने का।
0: सचमुच इस खिलाड़ी ने साबित कर ही दिया कि अगर हौसला फौलाद का हो तो किस्मत को भी घुटने टेकने पड़ते हैं।
1: बिल्कुल, अलीरेज़ा के पिता को उनका फुटबॉल खेलना एकदम नामंजूर था। दोस्तों आपको जान के आश्चर्य होगा कि उनके पिता ने उनकी जर्सी और यहाँ तक उनके ग्लव्स भी फाड़ दिए थे।
0: पर वो तो धुन के पक्के थे, वो घर से भागकर बिना पैसों के राजधानी तेहरान आ गए और यहीं से शुरू हुई उनके सपनों की उड़ान।
1: और दोस्तों अगली बार जब आपको लगे कि मुश्किलें बहुत बड़ी है तो अलीरेज़ा बेरनवान की इस कहानी को याद कर लीजिएगा।
0: चलिए इसी मोटिवेशन के साथ बढ़ाते हैं शो को आगे और सुनते हैं एक शानदार गीत। खुशी गैस करो ये कौन सा गाना है।
2: सपना
1: बावरा मन।
0: हाँ जी,

0: दोस्तों, आज हम अपने वीकली सेगमेंट में बताने वाले हैं उन सरकारी योजनाओं के बारे में जिनका लाभ हमारे युवा साथी उठा सकते हैं,
1: क्योंकि आज के समय में बस मेहनत करना ही काफी नहीं है बल्कि सही जानकारी होना भी उतना ही जरूरी है। कई बार एक छोटी सी जानकारी हमारे लिए एक बड़ा मौका बन सकती है।
0: तो आइए जानते हैं आज की पहली ऐसी योजना के बारे में।
1: श्रोताओं, आज के समय में डिग्री के साथ साथ स्किल यानी हुनर होना भी बहुत जरूरी है।
0: अगर आपको कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, फैशन डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट या किसी भी अन्य काम में रुचि है तो स्किल इंडिया मिशन आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है।
1: यहाँ कई तरह के ट्रेनिंग कोर्सेज कराए जाते हैं ताकि युवा अपनी नौकरी के लिए तैयार हो सकें या अपना खुद का काम शुरू कर सकें।
0: याद रखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हर नया हुनर आपको आगे बढ़ने में ही मदद करता है।

0: बात करते हैं उन युवाओं की जो पढ़ाई पूरी कर चुके हैं या कॉलेज में हैं।
1: किताबों से केवल नॉलेज आती है, पर काम करने से एक्सपीरियंस मिलता है। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना युवाओं को बड़ी कंपनियों में सीखने का अवसर प्रदान कर रही है।
0: इससे युवाओं को अनुभव तो मिलता ही है, साथ साथ उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और नौकरी मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है।
1: अमेया, अगर मुझे मौका मिले तो मैं ऐसी इंटर्नशिप जरूर करना चाहूंगी।
0: बिल्कुल खुशी, छोटी शुरुआत भी आगे चलकर बड़ा अनुभव बन जाती है।
1: अपनी बातों को हम और आगे बढ़ाएंगे, पर उससे पहले ये रहा एक छोटा सा गीत।

0: दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो सरकार ने आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है।
1: सचमुच ये बड़े कमाल की चीज है। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी मिलती है, साथ ही करियर से जुड़ी सलाह और रोजगार मेलों की जानकारी भी दी जाती है।
0: खुशी, सबसे अच्छी बात तो ये है कि सही और भरोसेमंद जानकारी एक ही जगह पर मिल जाती है।
1: लेकिन हाँ दोस्तों, हर युवा नौकरी ही करे ऐसा जरूरी नहीं।
0: अगर आपके पास कोई नया बिजनेस आइडिया है तो उसे आगे बढ़ाने के लिए भी सरकार की कई योजनाएं हैं।
1: आज कई युवा अपने छोटे बड़े आइडिया से कई प्रकार के कारोबार शुरू कर रहे हैं,
0: इसलिए अगर आपके पास भी कोई अच्छा विचार है तो उसे सिर्फ सोचिए मत, बल्कि उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। चलिए अब कुछ छोटे लेकिन काम के सुझाव।
1: हर दिन कम से कम आधा घंटा कुछ नया सीखने की कोशिश करें।
0: अपना बायोडेटा यानी रेज्यूमे हमेशा अपडेटेड रखें।
1: किसी भी नौकरी के लिए आवेदन देने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से जान लें।
0: सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, सीखने के लिए भी करें। और सबसे जरूरी बात, खुद पर भरोसा रखें, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।
1: तो दोस्तों, आज के क्विक बस सेगमेंट में बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आगे आने वाले समय में आपके काम जरूर आएगी। सुनते हैं हमारा अगला गीत।

0: बार की बात है, बीमार राजू को देखने उसकी टीचर उसके घर आई। टीचर ने देखा कि राजू बिस्तर पर सिर के बल खड़ा हुआ है। तब टीचर ने बोला, मैंने तो सुना था कि तुम बीमार हो, पर तुम तो यहाँ शीर्षासन कर रहे हो। ये सुनते ही राजू बोल पड़ा, मैडम बीमार ही हूँ, अभी सर दर्द की गोली खाई है, कहीं सर की जगह पेट में ना चली जाए, इसलिए सर के बल खड़ा हूँ।
1: अमिया, पर अचानक चुटकुला सुनाने का तुम्हें क्या सूझा?
0: दरअसल आज इंटरनेशनल जोक डे है।
1: ओहो, इसे तो सबसे पहले 1994 में अमेरिकी लेखक वेन रेनेगल ने शुरू किया था।
0: बिल्कुल सही, ये दिन साल के ठीक बीच में आता है और साल के बीच में अनवाइंड करने, मुस्कुराने और ह्यूमर सेलिब्रेट करने का मौका देता है।
1: अच्छा ये सब छोड़ो, तुम गानों की बहुत शौकीन हो ना?
0: हाँ बिल्कुल हूँ।
1: तो मुझे ये बताओ कि तुम गाने किस पे सुनती हो?
0: स्पॉटिफाई पे। एक बार जो मेरे हाथ में मेरा फ़ोन और मेरे ईयरफोन्स लग गए, तो फिर तो मैं एक अलग ही दुनिया में मसरूफ़ हो जाती हूँ।
1: आज जो तुम फ़ोन में स्पॉटिफाई या यूट्यूब पर गाने सुनती हो ना, उस पोर्टेबल म्यूज़िक की क्रांति इसी 1 जुलाई को शुरू हुई थी।
0: कैसे?
1: आज ही के दिन यानी 1 जुलाई 1979 को सोनी ने दुनिया का पहला वॉकमैन लॉन्च किया था, जिससे म्यूजिक की दुनिया में हमेशा के लिए रेवोल्यूशनाइज हो गया। बॉस वो भी क्या दिन थे, जेब में डालो वॉकमैन, कान में लगाओ ईयरफोन और बन जाओ अपने रास्ते के रॉकस्टार।
0: दोस्तों इसी के साथ सुनते हैं हमारा आज का अगला गीत।

0: खूब गाना था, मजा आ गया
1: है ना खुशी। आज रात तो यही गाना रिपीट पर रहेगा।
0: वो सब तो ठीक है मैया, पर आज की सक्सेस स्टोरी तो जैसे मेरे मन से निकलने का नाम ही नहीं ले रही।
1: सही कहा खुशी, अली रेजा की कहानी थी ही कुछ ऐसी। दोस्तों, अगर आज आपने कुछ नया सीखा या जाना, आपको किसी बात से प्रेरणा मिली या बस कुछ पल मुस्कुराने का मौका मिल पाया, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है।
0: याद रखिए, हर नया दिन अपने साथ एक नया मौका लेकर आता है, इसलिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों पर भरोसा बनाए रखिए।
1: आज के कार्यक्रम को इसी खूबसूरत मोड़ पे छोड़ते हुए मैं अमेया
0: और मैं खुशी
1: कल इसी समय आपसे फिर मिलने का वादा करते हैं। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। नमस्कार।

0: commissioni delle clienti per questo genere, mi chiamo il tizio c'è a 700 invece, a trattare su 1 kHz, DRM 800 kHz, per 5 vecini con il tizio, su 10 samacciar.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH-148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। उन्होंने बताया कि परियोजना से लगभग 75 लाख मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 98 लाख व्यक्ति दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय

0: मार्ग संख्या NH34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे 4 से 6 लेन वाले एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल पूंजी लागत 7,145 करोड़ रुपए है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये परियोजना कानपुर और कबराई के बीच निर्बाध उच्च गति संपर्क प्रदान करेगी, साथ ही सागर, भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों के लिए आगे की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। इसके अलावा समिति केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श करेगी। समिति ने गृह मंत्री को बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आवश्यक अग्रिम जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की है। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेनदेन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और उत्तर पूर्वी क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े दान में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही विशेष जांच टीम SIT को 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। राज्य सरकार ने 15 जून को 3 सदस्यीय SIT का गठन किया था। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। कल मैक्सिको, फ्रांस और नॉर्वे के अंतिम 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.

0: कार्यक्रम लोक रंजनी सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
0: मैं हूं प्रीति
1: और मैं हूं लोकेंद्र,
0: लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम जो कि लोक संगीत पर आधारित होता है। और क्योंकि लोक संगीत है तो इसमें लोक संगीत की तो भाषा ही बड़ी लोक हो जाती है।
1: देखिए, हर ये लोकगीत जो होते हैं प्रीति बहन, हर मौके के अलग अलग होते हैं, जिसमें एक मैसेज छुपा होता है।

0: नोक झोंक होती है तो उसी का लुत्फ़ उठाया जाता है। तो हमारी जो श्रोता इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो सबसे पहले आप किसको सुनवा रहे हैं?
1: सबसे पहले सुनवा रहे हैं हम सविता शर्मा को। आइए देखते हैं कि ये अपनी संगीत के माध्यम से हमसे क्या कहना चाहती हैं।
0: बिल्कुल।

0: प्रीति
1: जी,
0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे सविता शर्मा को,
1: और हमने कहा था कि लोक संगीत की भाषा ही ऐसी होती है कि अपने शब्दों के माध्यम से कुछ बोलती हैं वो।
0: हाँ।
1: तो हम अगला भी लोकगीत जो लेकर आए हैं पुष्पा गोसाई हैं, और वो भी एक शिकायती अंदाज में कुछ कह रही हैं। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: प्रीति
1: जी,
0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे पुष्पा गुसाई की आवाज में ये लोकगीत, और देखिए इतना प्यारा सा लोकगीत था कि इसमें आप भी झूमने पर मजबूर हो गई। मैं देख रहा था आपने पूरा आनंद लिया इस लोकगीत का।
1: तो अब अगले लोकगीत का आनंद लेते हैं रचना शर्मा की आवाज में, और वो कह रही है अपने पति से कुछ,
0: तो
1: थोड़ा सा लहजा भी थोड़ा सा धमकाने वाला है।
0: हाँ तो सुन लेते हैं,
1: आइए सुनते हैं।

0: प्रीति
1: जी,
0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे राखी नागर की आवाज में ये लोकगीत और घड़ी भी इशारा करी अपने भाइयों से। इसी के साथ आज का हमारा लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5:30 होने को हैं, आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार शर्मा और आप सुन रहे हैं खेल और खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ आपका पसंदीदा कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मेरे साथ हैं सहयोगी चंद्र आलोक। चंद्र, आपका स्वागत है।
3: जी श्रोताओ, बहुत बहुत नमस्कार सबका, और हमारे साथ बने रहिए, अगले आधे घंटे तक खेल जगत से तमाम खबरों के साथ आपको रूबरू कराएंगे।
2: जी बिल्कुल, आज के इस अंक में चर्चा होगी फीफा विश्व कप की, जिसमें राउंड ऑफ 32 के मुकाबलों में फ्रांस, नॉर्वे और सह मेजबान मैक्सिको की टीम ने प्री क्वार्टर में जगह बना ली है। बात महिला T20 विश्व कप के सेमीफाइनल की होगी, जहां ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को हराकर 8वीं बार फाइनल में प्रवेश किया है। चर्चा विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम की होगी, जहां जोकोविच और जैसे खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं। सेरेना ने एक लंबे समय बाद वापसी की है, हालांकि उन्हें एकल में हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा बात कनाडा ओपन बैडमिंटन की होगी और टेबल टेनिस की भी होगी। आयरलैंड से T20 सीरीज में हार के बाद अब भारतीय T20 टीम को इंग्लैंड से 5 की सीरीज खेलनी है। पहला मुकाबला आज खेला जाएगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं फीफा विश्व कप की।

0: विश्व कप इतिहास में पहली बार राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। फ्रांस की टीम का अभियान शानदार ढंग से आगे बढ़ रहा है। फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। जीत के नायक काइलिन एम्बापे रहे, जिन्होंने 2 गोल किए, जबकि 1 गोल ब्रैडली बारकोलो ने किया। पिछली बार की विजेता फ्रांस की टीम विश्व कप इतिहास में ऐसी पहली टीम बन गई है जिसने लगातार 5 मैचों में 3 या ज्यादा गोल किए हैं। पूरे मैच में फ्रांस का दबदबा रहा। स्वीडन के खिलाड़ी तो बिल्कुल ऑफ कलर दिखाई दिए। एम्बापे की कितनी भी मार्किंग की जाए, लेकिन फ्रांस का ये 27 साल का फुटबॉलर गोल करने का अवसर तलाश ही लेता है। उन्होंने 45वें मिनट में गोल कर फ्रांस को शुरुआती बढ़त दिलाई।
1: He's got two on a string here. Now the defender knows which way he's going to go. He's got the ability to go both ways. And Mbappe! Warning shots and they across Sweden's bows. And when he's in these positions and when he does this, he's just unstoppable, Kylian Mbappe.
2: Oh, sweet, sweet, Mbappe, so sweet!
0: एम्बापे के अब तक विश्व कप के 18 मैचों में 18 गोल हो गए हैं और वह दिग्गज लियोनल मेसी के रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहे हैं, जिनके 29 मैचों में 19 गोल हैं। इस विश्व कप में अभी तक एम्बापे के 6 गोल हो चुके हैं। नॉकआउट दौर की बात करें तो एम्बापे के 10 गोल हो गए हैं। उन्होंने ब्राजील के रोनाल्डो नजारियो को पीछे छोड़ दिया है। स्वीडन के खिलाफ हाफ टाइम तक फ्रांस की टीम 1-0 से आगे थी, लेकिन उसके बाद 53वें मिनट में ब्रैडली बारकोलो ने माइकल ओलिसी के पास पर बढ़त 2-0 कर दी। एम्बापे ने अपना दूसरा गोल 74वें मिनट में किया था। ओलिसी ने बेशक गोल नहीं किया, लेकिन टीम के गोलों में उनकी खास भूमिका रही है। अब तक उन्होंने 5 गोल करने में साथियों की मदद की है। उन्होंने 4 अलग-अलग मैचों में असिस्ट किया है, 1 सेनेगल के खिलाफ, 2 इराक के खिलाफ, कल स्वीडन के खिलाफ। एम्बापे के दोनों गोलों में उनकी भूमिका रही। लेस ब्लू के नाम से मशहूर फ्रांस की टीम का सामना अब पराग्वे से होगा। बात नॉर्वे और आइवरी कोस्ट के मैच की। नॉर्वे की टीम फीफा विश्व कप के इतिहास में पहली बार राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर गई है। जीत के बाद पूरी टीम ने ड्रम की धुन पर दर्शकों के साथ मिलकर जश्न मनाया। टीम के स्टार ऑलराउंडर अर्लिंग हॉलैंड ने निर्णायक गोल किया, लेकिन उससे पहले एंटोनियो नूसा ने गोल करके नॉर्वे को शुरुआती बढ़त दिला दी थी।
3: There is a wonderful sense of expectation, anticipation. The overlapping run from Pedersen. Clever play. Now Nusser tries for it and delivers. Well, by far the most outstanding piece of play Norway have produced in this tie. And it's given us a glorious opening goal.
0: मध्यांतर तक नॉर्वे इसी गोल से आगे था। अमाड डियालो ने 74वें मिनट में आइवरी कोस्ट को बराबरी दिला दी। पहले इक्वाडोर के खिलाफ डिमालो ने अंतिम क्षणों में गोल किया था और 15 नंबर की जर्सी वाले इस खिलाड़ी ने एक बार फिर आइवरी कोस्ट की उम्मीदें जगा दी थी।
3: Here goes again. He might provide more. He's still going. Oh, sensational. Absolutely sensational goal. Amad Diallo.
4: What a goal. What a brilliant bit of play. And how did they need this?
0: लेकिन 86वें मिनट में अर्लिंग हॉलैंड ने गोल करके स्कोर 2-1 कर दिया।
3: It's a lovely ball. For Berg. For Haaland.
4: Oh, what a goal. Had to be him.
0: पैट्रिक बेर्गे ने उन्हें बॉक्स में सटीक पास फेंका, जिस पर मौके की ताक में खड़े हॉलैंड ने पांव से गेंद को गोल पोस्ट की दिशा दे दी। अब हॉलैंड के 5 गोल हो गए हैं। अर्जेंटीना के लियोनल मेसी और फ्रांस के काइलिन एम्बापे के 6-6 गोल हैं। हॉलैंड ने एक मैच कम भी खेला है। फ्रांस के खिलाफ मैच में उन्हें आराम दिया गया था। हॉलैंड ने 2 गोल इराक के खिलाफ, 2 सेनेगल के खिलाफ किए हैं और 1 गोल अब आइवरी कोस्ट के खिलाफ किया। इस विश्व कप में नॉर्वे अंतिम 16 में पहुंचने वाली पहली यूरोपियन टीम बन गई है, जबकि 4 बार की चैंपियन जर्मनी और नीदरलैंड टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। नॉर्वे के लिए हॉलैंड के अब तक 53 मैचों में 60 गोल हो चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक

फीफा विश्व कप में रोमांच का ज्वार अपने पूरे उफान पर है। राउंड ऑफ 32 में टीमें सफलता के नए अध्याय लिख रही हैं। पिछली फाइनलिस्ट फ्रांस ने प्री क्वार्टर में जगह बना ली है। सह मेजबान मेक्सिको का किला भी अभी तक अभेद है। टीम 40 साल बाद प्री क्वार्टर में पहुंचने में सफल रही है। नॉर्वे ने

0: हॉलैंड औसतन 72वें मिनट में गोल कर देते हैं। इस मैच में आइवरी कोस्ट के खिलाफ वो इतने आक्रामक नजर नहीं आए। 86वें मिनट में उनका गोल आया, वे रक्षण में भी मुस्तैद दिखे। उन्होंने 64वें मिनट में हेडर लगाकर गेंद क्लियर की और एक निश्चित गोल को टाल भी दिया था। तारीफ तो नॉर्वे के गोलकीपर ओरियन निनलैंड की भी करनी होगी, जिन्होंने अंतिम क्षणों में आइवरी कोस्ट का एक हमला बेहतरीन अंदाज में टाला। आइवरी कोस्ट को पेनल्टी एरिया के बाहर फ्री किक मिली थी। अमांडो डियालो ने टॉप कॉर्नर की ओर किक लगाई, जिस पर ओयार ने बेहतरीन बचाव किया और उसके साथ मैच खत्म होने की लंबी सीटी भी बज गई। ओरियन का ये बचाव निर्णायक साबित हुआ, वरना मैच अतिरिक्त समय तक खिंच सकता था। नॉर्वे की टीम 28 साल बाद अंतिम 16 में पहुंची है।
1: In the round of 16.
0: बात से मेजबान मेक्सिको और इक्वाडोर के खिलाफ मुकाबले की, तो मेक्सिको ने शानदार 2-0 से जीत हासिल की और अंतिम 16 में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। सह मेजबान मेक्सिको के दर्शक भी खुशी से झूमते नजर आए। टीम ने अब तक 4 मैच जीते हैं और उसके खिलाफ एक गोल भी नहीं हुआ है, जबकि टीम 4 मैचों में 8 गोल कर चुकी है। जूलियन किनियोनेस ने पहला गोल 22वें मिनट में किया।
2: किनियोनेस, a chance for Mexico, will she rock it home?
0: 29 साल के इस स्ट्राइकर ने बेहतरीन किक लगाकर इक्वाडोर के गोलकीपर को पूरी तरह चखा दिया। इस विश्व कप में उनके 4 मैचों में 3 गोल हो गए हैं। मेक्सिको की टीम में 17 साल के गिल्बर्टो मोरो हैं, जिन्होंने 17 साल 259 दिन में विश्व कप पदार्पण किया है। वे ब्राजील के दिग्गज पेले के बाद दूसरे सबसे युवा फुटबॉलर हैं। पेले ने 17 साल 239 दिन में विश्व कप का पहला मैच खेला था। मेक्सिको की टीम 1986 के बाद राउंड ऑफ 16 में पहुंची है। इससे पहले 1986 में उसने राउंड ऑफ 16 में बुल्गारिया को हराया था। इसके अलावा 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 और 2018 के विश्व कप में अंतिम 16 में उसे 7 बार हार का सामना करना पड़ा। कतर में हुए पिछले विश्व कप में वे ग्रुप चरण में बाहर हो गई थी। दूसरी ओर इक्वाडोर भी अपने रक्षण के लिए मशहूर है, जिसने 26 मैचों के बाद किसी मुकाबले में 2 गोल खाए हैं, लेकिन इस मैच में उसका रक्षण बिखरा नजर आया। मेक्सिको का दूसरा गोल जिमेनेज ने 31वें मिनट में किया। मेक्सिको ने इससे पहले 1970 और 1986 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की है और दोनों बार टीम क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में सफल रही है। फिलहाल वे क्वार्टर फाइनल से 1 जीत दूर है। अब उसका मुकाबला इंग्लैंड और DR कांगो के बीच होने वाले मुकाबले की विजेता टीम से होगा। इस मैच में इक्वाडोर के हिनकैपी को मेक्सिको के जिमेनेज के खिलाफ मुंह पर हाथ रखकर टिप्पणी करने के कारण इंजरी टाइम रेड कार्ड भी दिखाया गया।

0: अब बिल्कुल, ये तो रहे जो कल मुकाबले हुए और इसके अलावा जो अब मुकाबले खेले जाने हैं। आलोक चंद्र आलोक की ये खास रिपोर्ट।
1: अब बात करते हैं आज होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में राउंड अप 32 के मुकाबले की। पहला मुकाबला खेला जाएगा आज इंग्लैंड और डीआर कांगो के बीच। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात के 9:30 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड के डीआर कांगो को हरा करके राउंड अप 16 में पहुंचने की प्रबल संभावना है। हालांकि यह उतना आसान नहीं होगा जितना पहले अनुमान लगाया गया था। इंग्लैंड को राइट बैक के अपने दो शीर्ष विकल्पों के बिना खेलना होगा। रीस जेम्स घाना के खिलाफ ड्रॉ मैच के दौरान हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण बाहर हो गए थे। पनामा के खिलाफ अगले मैच में उनके स्थान पर आए जोरेल क्वांसा को टकने में चोट लग गई। इन दोनों खिलाड़ियों के डीआर कांगो के खिलाफ राउंड ऑफ 32 में खेलने की उम्मीद नहीं है। हैरी केन और जूड बेलिहम जैसे खिलाड़ियों से सजी इंग्लैंड की टीम याओ आनो विस्सा और ऑथर मासुआकू के नेतृत्व वाली डीआर कांगो की टीम को हराने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इंग्लैंड ने 2026 विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की थी जिसमें स्ट्राइकर और इंग्लैंड के सर्वकालिक विश्व कप के अग्रणी गोल स्कोरर हैरी केन ने 2 गोलों की बदौलत क्रोएशिया को 4-2 से हराया। इस प्रदर्शन के बाद उन्होंने घाना के खिलाफ करा मुकाबला खेला और 0-0 से ड्रॉ खेला, जिसके बाद उन्होंने पनामा पर 2-0 की जीत दर्ज कर ग्रुप चरण का समापन किया। इंग्लैंड की टीम में प्रतिभा और गहराई भरपूर है। अगर वो डीआर कांगो को हरा देते हैं तो इस टूर्नामेंट में काफ़ी आगे तक जाने की क्षमता रखते हैं। वही डीआर कांगो ने ग्रुप के में 4 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रह करके और उज्बेकिस्तान के खिलाफ विश्व कप में अपनी पहली जीत हासिल की थी। उज्बेकिस्तान पर उसकी जीत ने नॉकआउट चरण में उसकी जगह पक्की कर दी। वहीं पुर्तगाल के खिलाफ उनका 1-1 का ड्रॉ टूर्नामेंट के सबसे आश्चर्यजनक परिणामों में से एक था। इससे डीआर कांगो को इंग्लैंड के खिलाफ एक और उलटफेर करने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास मिल सकता है। डीआर कांगो के योआनो विसा ने अब तक 3 गोल किए हैं और वो इस टूर्नामेंट में सबसे बड़े उलटफेरों में से एक को अंजाम देने के लिए इतिहास रचने के प्रयास में अपने गोलों की संख्या में इजाफा करना चाहेंगे। इंग्लैंड और डीआर कांगो के विजेता का मुकाबला राउंड ऑफ 16 में मेक्सिको से होगा। वही बात करते हैं दूसरे मुकाबले की, जहां बेल्जियम की टीम का मुकाबला होगा सेनेगल के साथ। यह मैच भारतीय समय अनुसार 1:30 सुबह में शुरू होगा। यानी कि इस मैच की अगर बात किया जाए तो दोनों टीम रेड डेविल्स का जो है सामना होगा तेरंगा लायंस से। तीसरे स्थान पर रहने वाली सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीमों में से एक के रूप में नॉकआउट चरण में जगह बनाने के बाद सेनेगल अब बेल्जियम को पछाड़कर राउंड ऑफ 16 में पहुंचने का लक्ष्य बना रहा है। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के पूर्व चैंपियन सेनेगल ने इस गर्मी में होने वाले विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद थी। हालांकि उनका ग्रुप काफ़ी कठिन था, लेकिन पहले 2 मैचों में फ्रांस और नॉर्वे से मिली हार के बाद सेनेगल ने सामने तीसरे मैच में इराक के खिलाफ एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। हालांकि 13वें मिनट में मिले रेड कार्ड ने अहम आर्नेल्ड की टीम को कमजोर कर दिया। दूसरे हाफ में सेनेगल ने शानदार खेल दिखाया। 5-0 की जीत से उन्होंने क्वालिफाई करने में सफलता मिली और वो 3 अंकों के साथ आगे बढ़ने वाली एकमात्र टीम थी। बेल्जियम जैसा आसान ग्रुप शायद ही किसी देश को मिला हो। आखिर टूर्नामेंट शुरू होने से पहले वो फीफा रैंकिंग में 90वें स्थान पे थे। ईरान 20वें नंबर पे और उससे सबसे करीबी प्रतिद्वंदी था, लेकिन उसकी टीम ने लगभग 2/3 खिलाड़ियों ने फरवरी से कोई प्रतिस्पर्धा मैच नहीं खेला था। मिस्र जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग 29वीं पर नजर रखने की जरूरत थी क्योंकि उसमें दिग्गज मोहम्मद सलाह थे। न्यूजीलैंड जिनका रैंकिंग 85वीं है पूरे टूर्नामेंट में सबसे कम रैंकिंग वाली टीम थी। बेल्जियम की टीम 16 मैचों में अपराजित रहते हुए पहुंची है। इस दौरान उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका क्रोएशिया टूनिसिया न्यूजीलैंड पर जीत हासिल की, साथ ही मेक्सिको मिस्र और ईरान के खिलाफ ड्रॉ भी खेले। उनके आक्रमण ने उस लय को बरकरार रखा है। गार्सिया की टीम ने 8 मैचों में से 7 गोल किए हैं जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में 5 गोल और ट्यूनिसिया के खिलाफ मैच में 5 गोल शामिल है। केविन डी ब्रून टीम के रक्षात्मक केंद्र बिंदु के रूप में अपनी भूमिका निभाते रहे। उन्होंने 122 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 38 अंतर्राष्ट्रीय गोल इस बात को रेखांकित करते हैं कि 35 वर्ष के आयु में भी इस टीम में उनका कितना प्रभाव है। रोमेलू लुकाकू उपकप्तान के रूप में टीम की अगुवाई करेंगे जिन्होंने अपने लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर में राष्ट्रीय टीम के लिए 129 मैचों में 91 गोल किए हैं। रक्षात्मक रूप से बेल्जियम को इस दौरान भेदना मुश्किल रहा है। उन्होंने अपने पिछले 5 मैचों में केवल 2 गोल खाए हैं और इस अवधि में 3 क्लीन सीट रखी है। एकमात्र चिंता का विषय जेनो डेबस्टार्ट की चोट है। अब बात करते हैं दिन के अंतिम मुकाबले जिसमें मेजबान अमेरिका का मुकाबला होगा बोस्निया और हर्जेगोवेनिया से। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार कल सुबह 5:30 बजे से शुरू होगा। यह मुकाबले सैन फ्रांसिस्को के वे एरिया स्टेडियम में खेला जाएगा। ग्रुप डी से आगे बढ़ते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका नॉकआउट चरण में पहुंच गया। अमेरिका ने 2 जीत और 1 हार के साथ की बोस्निया और हर्जेगोवेनिया ने 1 जीत 1 ड्रॉ और 1 हार के साथ ग्रुप बी से नॉकआउट राउंड में प्रवेश किया है। 2026 विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका और बोस्निया और हर्जेगोवेनिया के बीच होने वाले एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है जिसमें घरेलू टीम के पास दबदबा बनाने का मजबूत आधार है। हमले कॉर्नर किक का अहम स्रोत होंगे जबकि विरोधी टीम रक्षात्मक खेलती है तो अक्सर ब्लॉक किए गए क्रॉस और लंबी दूरी के शॉट या क्रॉस के कारण बाउंड्री से बाहर की जाने वाली शॉट की संख्या बढ़ सकती है। बोस्निया और हर्जेगोवेनिया को हराना आसान नहीं है लेकिन उनकी व्यवहारिक खेल शैली ने अपने डिफेंस पर लंबे समय तक दबाव बना रखा है।

हाँ बिल्कुल चंद्रालोक, ये तो थी फुटबॉल की बात। फीफा विश्व कप, जैसे अब आपने बताया कि राउंड ऑफ 32 के मुकाबले चल रहे हैं और पुराने सितारे चमक रहे हैं वहाँ, मेसी, एम्बापे, और इसके अलावा जो पहली बार विश्व कप में हिस्सा ले रहे हॉलैंड, वो अपनी छाप छोड़ रहे हैं। बहरहाल अब फुटबॉल के मैदान से चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर और बात करते हैं महिला T20 विश्व कप की, जिसका सेमीफाइनल कल खेला गया और ऑस्ट्रेलिया की टीम, जो 6 बार की चैंपियन है, उसने अपना दबदबा दिखाते हुए वेस्टइंडीज की टीम को पराजित कर दिया है 8 विकेट से। वेस्टइंडीज की टीम ने 7 विकेट पर 125 रन बनाए थे।

0: लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने महज 13 ओवर में 2 विकेट पर 127 रन बनाकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया है, और 126 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने शानदार जीत हासिल की। 42 गेंद शेष रहते ही ये मैच अपने नाम कर लिया। बैत मुनी ने 36 गेंदों पर नाबाद 61 रन बनाए, और जबकि एशली गार्डनर ने 20 गेंदों पर नाबाद 35 रन की पारी खेली और अपनी टीम की जीत सुनिश्चित कर दी। एलिसे बैरी चोटिल होने के कारण 2 रन बनाकर रिटायर्ड हट हो गई थी। इसके अलावा इससे पहले अगर वेस्ट इंडीज की बात करें तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी सौंपी थी और वेस्ट इंडीज ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन ही बना पाई थी। कप्तान हेली मैथ्यूज ने 30, चैम्पियन कैंपबेल ने 22 और डियाड्रा डॉटिन ने 16 गेंदों में नाबाद 26 रन बनाए, लेकिन अन्य बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं कर सके, इसलिए टीम कोई खास बड़ा लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया को नहीं दे सकी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से एशली गार्डनर और जॉर्जिया वेयरनेम ने 2-2 विकेट लेकर गेंदबाजी में भी अपनी टीम का एक शानदार सहयोग किया, और सोफी मोलिनी और एनाबल सदरलैंड ने भी 1-1 विकेट लिया। पूरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अपना दबदबा बनाए रखा। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप चरण में भी अजय रही थी, अब फाइनल में वे इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो कल दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा उसके विजेता टीम के साथ उसका मुकाबला होगा। ऑस्ट्रेलिया ने 8वीं बार फाइनल में जगह बनाई है चंद्र, और जिस तरह दबदबा है ऑस्ट्रेलिया टीम का, हालांकि भारतीय टीम की चुनौती समाप्त हो गई, लेकिन अभी ये क्लाइमेक्स पर है और ऑस्ट्रेलिया और एक दमदार दावेदार नजर आती है। और बात अब क्रिकेट की ही जारी रखें और बात करते हैं T20 सीरीज की, क्योंकि बात इंग्लैंड में चल रहे महिला T20 विश्व कप की हो रही है। भारतीय टीम को इंग्लैंड के साथ अब 5 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है। आज पहला मुकाबला खेला जाना है और यहाँ एक चैलेंज भारतीय टीम के लिए इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ जो T20 सीरीज थी वहाँ भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, और ये अपने आप में काफ़ी एक उलटफेर कहा जा सकता है। और अब भारतीय टीम की कोशिश होगी कि इंग्लैंड के खिलाफ वो जो उसका एक शानदार रिकॉर्ड रहा है वो उसको जारी रखे, और जो आयरलैंड के खिलाफ हार मिली थी उनकी खामियों से सीख कर यहाँ एक शानदार प्रदर्शन करे। पहला मुकाबला आज खेला जाएगा, रात 10 बजे से ये प्रारंभ होगा चेस्टरली स्ट्रीट में। अभी तक 2017 से रिकॉर्ड की बात करें तो 5 T20 श्रृंखलाएं भारत ने द्विपक्षीय इंग्लैंड के खिलाफ जीती हैं, और अभी और अन्य रिकॉर्ड की बात करें तो 30 T20 मुकाबले अब तक दोनों देशों के बीच खेले गए हैं। 18 में भारत ने जबकि 12 में इंग्लैंड ने जीत हासिल की है। 6 पिछले मुकाबले में 5 में भारतीय टीम ने जीत हासिल की है, 1 इंग्लैंड ने जीता है। और चंद्र बात वैभव सूर्यवंशी की भी हो रही है, एक ऐसा टैलेंट जिन्होंने IPL में धमाका किया। बात ए टीम की बात हो, U19 की बात हो, लगातार बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ एक सवाल है कि क्या उनको मौका मिल सकता है, क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ नहीं मिला। अभी भी उनके चयन को लेकर एक चर्चा है और वो दावे अपने प्रदर्शन से उन्होंने दावा भी अपना दमदार किया है, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर क्या कहते हैं, उनका मानना है कि टीम के पास एक कम्बिनेशन है, वो उसके आधार पर चल रहे हैं। और क्या कहा श्रेयस अय्यर ने इस जो इंग्लैंड के खिलाफ 20 सीरीज उन्होंने है आज से, और वैभव सूर्यवंशी और अन्य विषयों पर आइए जानते हैं।
1: ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग, और डेफिनेटली लास्ट सीरीज हमारे हिसाब से नहीं गया, बट ये सीरीज everyone is in good mind space and we are definitely looking forward to have an intense games and great mindset is involved within each other the group so hum log jitna kaam rahenge pressure situation mein it's going to be beneficial for us dekhiye abhi har ek individual jo team mein khel rahe sabne performance kiya hai aisa nahi ki ek akele individual ne kiya hai but हर एक को अपॉर्चुनिटी और एक तरीके का सिक्योरिटी हमें बिल्ड करना है ताकि हर एक इंडिविजुअल में कॉन्फिडेंस रहे गोइंग फॉरवर्ड इनटू द टूर्नामेंट्स। एंड जो जो लोगों ने पिछला वर्ल्ड कप जीता है डेफिनेटली उनको एक तरीके का आइडिया भी है कि कैसा खेले T20, और कंटिन्यूसली वो फॉर्मेट के एक तरीके के मेन पिलर्स रहे, तो फिर बैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी डेफिनेटली डिडंट एक्सपेक्ट आयरलैंड टू प्ले दैट वेल, they outplayed us in every department, they had brilliant ideas about the dimensions of the ground and we fell short in terms of analyzing and planning the ground and the dimensions and how the wicket would be playing, so kudos to them, credit to them, but we learned a

0: Apart from that series, this is completely a new chapter for us coming in here. We have played, couple of us have played in England before, and we know the conditions, we know the ideas, we know the dimensions over here. So looking forward for an intense and challenging series, this one. I mean, as I mentioned earlier, a couple of us, we have played in England before. We know how the wickets are. Usually we see it on TV as well. Belfast, we played after so many years. It's not a reason, but I'm just saying that turning up over there and then getting acclimatized to the wicket, to the conditions, we fell a bit short in terms of reading the outfield and getting accustomed to the conditions over there.
1: जी हाँ, इन शॉटों की गूंज से आप समझ गए होंगे कि अब चर्चा विंबलडन टेनिस की होगी। और चंद्रालोक, क्या रहा है खास, क्योंकि ये एक ऐसा प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम है टेनिस पे जिसपे टेनिस प्रेमियों को बड़ा इंतजार रहता है नतीजों का, और क्या नतीजे रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे?
2: जी बता रहे हैं कि विंबलडन के 139वें संस्करण यानी इस वर्ष हो रहे साल के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम का दूसरा दिन काफी उतार चढ़ाव वाला रहा, जहां कई बड़े नामों को संघर्ष करना पड़ा तथा कई वरीयतापरत खिलाड़ियों को हार झेलनी पड़ी, तो उनका सफर खत्म हो गया। अब बात करते हैं कल खेले के मुकाबले की। सबसे पहले, हाल में ही अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को काफी मशक्कत करनी पड़ी। उनका मुकाबला था बेल्जियम के अलेक्जेंडर ब्लॉक्स बॉक्स से। यह मैच ज्वेरेव ने जीता, लेकिन इस मैच की इस जीत के लिए उनको 2 घंटा 59 मिनटों तक कोर्ट पर पसीना बहाना पड़ा। स्कोर रहा 6-4, 6-7, 7-6, 7-6। टूर्नामेंट की 19वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी और टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले रूस के करेन खचानोव को ब्रिटेन के विली हैरिस को पराजित करने के लिए 4 सेटों तक संघर्ष करना पड़ा। खचानोव ने यह मुकाबला जीता। स्कोर रहा 6-3, 5-7, 6-3, 6-3। अमेरिका के 23 वर्षीय बेन सेल्टन, जिनकी विश्व रैंकिंग 5वीं है, उनको उलटफेर का शिकार होना पड़ा। 2 बार के ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनलिस्ट सेल्टन को एक गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी फिनलैंड के ओटो वेट्सनेन, जो कभी भी ग्रैंड स्लैम में दूसरे दौर से आगे तक का सफर तय नहीं किया, उन्होंने 4 घंटे 24 मिनट तक चले मैराथन मुकाबले में हरा करके सफलता दर्ज की। मैच में फिनलैंड के खिलाड़ी 2-1 से पीछे चल रहे थे, इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। 5वें सेट में टाई ब्रेकर में स्कोर था 5-8 का, उसके बावजूद भी अमेरिका के सेल्टन फायदा उठाने में नाकाम रहे और फिनलैंड के खिलाड़ी को सफलता हाथ मिली। इसके अलावा जो मैच का स्कोर रहा उसकी बात करते हैं, तो 6-4, 3-6, 6-7, 6-2, 7-6। कोर्ट 3 पर खेले गए एक अन्य मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के 27 वर्षीय एलेक्स डी मेन्योर, जो 2024 विंबलडन के अंतिम 8 तक पहुंचे थे, उनको पहला सेट जीतने में खासी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद उन्होंने लय पकड़ ली और विश्व रैंकिंग में 6ठे नंबर पर कब्जित द डेमन के नाम से प्रचलित इस ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी ने अर्जेंटीना के रोमन एड्रेस ब्रूचांग को 7-6, 6-1 और 6-0 से हराया। अब जानते हैं महिला एकल वर्ग के कल के मैच की क्या दशा रही। ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने वाले कजाकिस्तान की एलिना रवाकिना को खासा परेशान किया फ्रांस की 23 वर्षीय लोइस बाइसन ने। हालांकि 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन को तीसरे और निर्णायक सेट में अपने कौशल और प्रतिभा का अनुपम उदाहरण पेश किया। 2022 में अपनी करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली रवाकिना ने पहला राउंड का यह मुकाबला 6-4, 1-6 और 6-3 से जीता। श्रोताओं, गौर करने वाली यहाँ की ये बात है कि कजाकिस्तान की एलिना रवाकिना, जिन्होंने 2022 में विंबलडन का खिताब जीता था, उन्होंने फाइनल में टूनिशिया की ओन्स जेनबुर को शिकस्त दी थी। वही बात करते हैं 2 बार की विंबलडन सेमीफाइनलिस्ट और टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता यूक्रेन की एलिना स्वीटोलिना को हमवतन डारिया सिनेगोर के हाथों सीधे सेट में हार झेलनी पड़ी। सिनेगोर ने यह मैच 7-5, 6-2 से जीता। इससे पहले डारिया ने 2022 में यूएस ओपन में बड़ा अपसेट किया था, जब उन्होंने रोमानिया की पूर्व ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिमोना हालिप को हराया था। 4 साल के बाद टेनिस कोर्ट पर वापसी कर रही 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन और अमेरिका की सेरेना विलियम्स को निराशा हाथ लगी। ऑस्ट्रेलिया के उभरते हुए स्टार माया जॉइंट ने 7 बार की विंबलडन चैंपियन को मैच में 6-3, 7-6 से हरा दिया। 2025 विंबलडन में विजेता आसानी से अपना मुकाबला जीत लिया, उन्होंने नॉर्थ मेलेडोनिया की लीना गर्जनका को 6-3, 6-2 से हराया।
1: बिल्कुल, और कुछ ताज़ा नतीजों पर भी अब नज़र डालें तो कामिल मजारेक ने अलेक्जेंडर टैबिलो को 6-3, 7-5, 7-5 से हरा दिया। इसी तरह शो फॉरिया के खिलाफ 4 सेट तक चले मुकाबले में पराजित हो गए। फॉरिया ने 7-6, 6-3, 6-7, 6-3 से जीत हासिल की, और इसके अलावा मनेरियो भी जीतने में सफल रहे, उन्होंने ड्रोगेट को हराया। पुरुष एकल की बात हो रही है, 6-2, 6-4, 6-1 से 3 सेट में ये मुकाबला जीतने में सफल रहे। चलिए अब बात हमने टेनिस की तो एक और रैकेट गेम की बात करते हैं, और बात टेबल टेनिस की करेंगे और कनाडा ओपन बैडमिंटन की भी करेंगे। क्यों चंद्र, क्या अब
2: जी टेबल टेनिस की बात कर रहे हैं। यूएस ओपन जो स्मैश है इस साल का दूसरा स्मैश, से पहले जो खेला गया था सिंगापुर स्मैश के, पिछले वर्ष चेन्नई कंटेंडर में सेमीफाइनल तक का सफर तय करके इतिहास रचने वाले भारत के शीर्ष पुरुष एकल खिलाड़ी मानव ठक्कर को राउंड ऑफ 32 में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी चीन के वांग चुकिन के खिलाफ सीधे सेटों में हार झेलनी पड़ी। हालांकि भारतीय खिलाड़ी ने तीसरे सेट में कुछ संघर्ष किया, स्कोर रहा 11-3, 11-5 और 11-9 का। महिला युगल में भारत की दिया चितले और यशस्विनी घोरपड़े की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल का टिकट कटा लिया। इस भारतीय जोड़ी ने तीनी ताइपे की चोंग आइंग चिंग और येंग यिंग टियन को एक संघर्षपूर्ण मुकाबले में 11-13, 12-10, 11-4, 6-11, 11-7 से हराया। काफी उठापटक रही इस मैच में। पहला सेट नजदीकी मामूली अंतर से गंवाने के बाद भारतीय जोड़ी ने अगले 2 सेट जीत करके स्कोर 2-1 कर दिया, लेकिन चाइनीज ताइपे ने पलटवार करते हुए 4th सेट जीत लिया। निर्णायक सेट में भारतीय खिलाड़ी भारी पड़े। अब उनका मुकाबला अंतिम 8 में दूसरी वरीयता प्राप्त जापान की मिया हारामोतो और हीना हायाता से होगा, लिहाजा यह मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। जापान की जो प्रतिद्वंदी है उनकी मजबूत मानी जाती है, काफी मुश्किल होगा यह मुकाबला। अब देखना है कि भारतीय जोड़ी किस तरह का प्रदर्शन करते। वही पुरुष डबल्स में भी भारतीय जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं।
1: बात कनाडा ओपन बैडमिंटन की करें
2: जी, कनाडा ओपन बैडमिंटन की अगर बात करें तो अभी भारत के श्रीकांत कदम्बी, जिससे इससे पहले उन्होंने यूएस ओपन में पिछले सप्ताह ही वहां पे रनर अप रहे थे, उनका मुकाबला एक बार फिर से ली जिलजिया से है। दोनों के बीच अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात किया जाए तो श्रीकांत कदम्बी ने 8 मैचों में से 3 मैच जीते हैं, जबकि 5 मैच में ली जिलजिया को सफलता मिली। जिलजिया श्रोताओं में बताना चाहूंगा कि उन्होंने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वही वर्ल्ड जूनियर सिल्वर मेडलिस्ट शंकर मुथुस्वामी का मुकाबला यू ताक बीन जो कि साउथ कोरिया से उनसे होगा।
1: बेलाल, घड़ी की सुइयां हमें ज्यादा अनुमति प्रदान नहीं कर रही हैं। चलते चलते बता दें कि इंडिया ओपन बैडमिंटन की बात हो रही है। इंडिया ओपन अगले साल फरवरी में खेला जाएगा और ये 2 से 7 फरवरी तक होगा। अब कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे यानी नवीन कुमार शर्मा को अपने साथी चंद्र आलोक के साथ अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है।
5: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है। ये प्रपोजल है जो आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है।
4: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 मानव दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
5: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में, कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको, कानपुर हमीरपुर महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
4: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The government today approved the construction of a 6-lane road tunnel for National Highway 148AE in Delhi, connecting Dwarka Expressway with Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj. Briefing media in the national capital today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has also approved the construction of the 117.7-kilometre Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh.
5: आज कैबिनेट में दो बड़े फैसले लिए गए।
7: टुडे द कैबिनेट अप्रूव्ड टू मेजर डिसीजंस बोथ रिलेटेड टू हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। द फर्स्ट एड्रेसेस अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड इन दिल्ली फॉर इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी बिटवीन द नेशनल हाईवे कॉरिडोर एंड वसंत कुंज। सेवरल एफर्ट्स हैड बीन मेड ओवर द इयर्स एंड टुडे दोज प्रपोजल्स हैव फाइनली बीन अप्रूव्ड। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6-lane द्वारका टनल एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 6,970 करोड़ रुपीज। The second decision is related to Uttar Pradesh. The cabinet has approved the construction of 4-lane access controlled highway between Kanpur and Kabrai, forming part of the corridor connecting Kanpur with Bhopal. Project has an estimated cost of 7145 crore rupees. In addition, significant improvements have also been planned for the subsequent sections of the corridor.
5: Section ka bhi usme bahut sara improvement hai.
6: Union Home Minister Amit Shah has asked the High-Level Committee on Demographic Changes to submit its recommendations at the earliest. Mr. Shah gave the direction during a meeting with the committee in New Delhi. The committee informed the Home Minister that they will visit various states and union territories to obtain first-hand information on demographic changes and interact with the various administrations. The panel informed Mr. Shah that a detailed questionnaire has been prepared to see

0: relevant information from states and union territories in advance, making its field visits more meaningful and interactive. Chairperson of the Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election, P.P. Chaudhary, today stressed the need for holding simultaneous elections to the Lok Sabha and state legislative assemblies. Addressing a press conference in New Delhi, he said conducting elections together would strengthen governance, reduce disruptions caused by frequent polls, and benefit the economy. India and Pakistan today exchanged lists of civil prisoners and fishermen in each other's custody through diplomatic channels in New Delhi and Islamabad. The External Affairs Ministry said in a statement that India has shared lists of 386 civil prisoners and 53 fishermen in its custody who are Pakistani or believed to be Pakistani. Pakistan has shared lists of 52 civil prisoners and 198 fishermen in its custody who are Indian or believed to be Indian. India has consistently called for early release and repatriation of civil prisoners, fishermen, along with their boats, and missing Indian defence personnel from Pakistan's custody. The first batch of pilgrims for the Sri Amarnath Ji Yatra has reached the Bhagwati Nagar base camp in Jammu and is all set to begin the annual pilgrimage tomorrow. All necessary arrangements, including enhanced security and accommodation for pilgrims, have been put in place for the 57-day Yatra scheduled to take place through the Nunwan, Pahalgam and Baltal routes under tight security. Akashvani today unveiled its broadcasting house photo gallery Swar Prerna Vithika at Rang Bhavan Auditorium in Akashvani Bhavan, New Delhi. The photo gallery was inaugurated by Padma Vibhushan flautist Pandit Hariprasad Chaurasia. The gallery features portraits of Bharat Ratna awardees including Vidushi M.S. Subbalakshmi, Ustad Bismillah Khan, Pandit Bhimsen Joshi, Pandit Ravi Shankar, Lata Mangeshkar and Dr. Bhupen Hazarika. During the event, a musical concert was organized in which a flute recital was performed by Pandit Rupak Kulkarni, Chief Executive Officer of Prasar Bharati Gaurav Dwivedi, and Director General of Akashvani and DD News, Rajiv Kumar Jain, were also present at the event. In men's cricket, India will take on England in the first T20 international of the five-match series in Chesterler Street tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. The Shreyas Iyer-led Indian side will look to bounce back from their shocking 2-0 defeat to Ireland in the last series. In FIFA World Cup, England will face Democratic Republic of Congo, Belgium will meet Senegal, and USA will clash with Bosnia and Herzegovina in round of 32 matches tonight. And with that, we end this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं हिंदी वार्ता।
2: हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है भेंट वार्ता, जिसका विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय प्रहरी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। वार्ताकार हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट गोपाल कृष्ण अग्रवाल, भेंटकर्ता संतोष द्विवेदी मनुज।
3: श्रोताओं नमस्कार, हिंदी वार्ता के इस अंक में आपका स्वागत है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस की बहुत शुभकामनाएं और हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है।
4: धन्यवाद, नमस्कार संतोष जी, और सभी सीएस को भी मेरी शुभकामनाएं।
3: गोपाल जी, सबसे पहले आज सीए दिवस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस है, तो इस पे मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय प्रहरी हैं, तो इसे एक आम आदमी क्या समझे, वित्तीय प्रहरी का क्या तात्पर्य है?
4: जैसे जैसे देश प्रगति के मार्ग पे अग्रसर हो रहा है, पिछले 12 साल में मोदी जी ने कई इनिशिएटिव लिए हैं और आज आर्थिक रूप से भारत बहुत संपन्नता की स्थिति पे पहुंच गया है, तो उसमें अर्थ जगत में कॉरपोरेट जो कंपनीज हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे अगर हम देखें, देश में एक इंडिविजुअल सिटीजन होता है, वह देश के लिए काम करता है, देश के अंदर रह के देश के विकास के लिए काम करता है, देश की प्रगति में काम करता है। उसी तरह कॉरपोरेट वर्ल्ड में, इकोनॉमिक वर्ल्ड में कॉरपोरेट सिटीजन्स होते हैं, तो इंडिविजुअल सिटीजन्स की जो एक्सपेक्टेशन है, उसी तरह कॉरपोरेट सिटीजन से भी लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है, देश की रहती है, तो उस कॉरपोरेट सिटीजन्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, उनके जो प्रोसीजर्स हैं वह सही इंफॉर्मेशन जनता

0: तक पहुंचे, उनके अंदर कॉरपोरेट गवर्नेंस के इश्यूज जो है वह पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो, कंप्लायंसेस जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, चाहे कंपनी लॉ के हैं या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उन सबको वो पूरी तरह से मान्यता के साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं, तो यह सब देखने का काम एक तरीके से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। तो एक एफिशिएंट इफेक्टिव कॉरपोरेट सिटीजन्स के लिए वॉचडॉग के रूप में जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है। और मैं तो कई बार कहता भी हूं कि जैसे इंडिविजुअल में हमने लोकपाल एक महत्वपूर्ण संस्था है, उसी तरह का एक कॉरपोरेट सिटीजन के लिए चार्टर्ड
1: चार्टेड
0: अकाउंटेंट्स
1: अकाउंटेंट्स
0: वॉचडॉग की तरह एक इंस्टीट्यूशन है।
1: जी बिल्कुल, जैसे कि हम अपनी सेहत के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, वैसे देश की अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए एक तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते हैं कि देश की सेहत अच्छी रहे। गोपाल जी, पिछले कुछ वर्षों में भारत की कर प्रणाली में डिजिटलाइजेशन, जीएसटी और फेसलेस असेसमेंट जैसे बड़े बदलाव आए हैं। इन बदलावों में एक सीए की पारंपरिक भूमिका को कितना बदला है?
0: इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी जो है कॉरपोरेट वर्ल्ड और सरकार के रेगुलेशंस के अंतर्गत वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट का, जो पूरा इम्प्लीमेंटेशन का रेगुलेशंस का जो आवश्यकता है वो है उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस की, कंपनी की एक्टिविटीज की मिले, तो उसको थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन, जैसे कंपनी अपने डेटा देती है लेकिन कोई थर्ड पर्सन उसको एनालाइज करके उसको ऑथेंटिकेट कर दे, वह काम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं जीएसटी के रूप में लेना चाहता हूँ। 2016 में जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ हमारे देश में,
1: जी
0: लागू करने के लिए सरकार ने अधिनियम लागू किया। बड़े बड़े कंट्रीज में जो हमसे साइज में छोटे भी थे, वहां भी जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन में कई कई दशक लग गए, लेकिन भारत में 2016 के बाद लगभग 2 साल में जीएसटी पूरा इम्प्लीमेंट हो गया। इतना बड़ा बदलाव था, वन नेशन
1: वन
0: वन
1: टैक्स,
0: टैक्स, यानी लगभग 13 सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स मिला के 13 से 15 टैक्सों का कंबाइन करके एक नया टैक्सेशन सिस्टम सरकार ने लागू किया। उसको इजीली इम्प्लीमेंट करने का काम
1: चार्टर्ड
0: चार्टर्ड
1: अकाउंटेंट्स
0: अकाउंटेंट्स
1: के।
0: के माध्यम से होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट इनिशिएट नहीं लेते, उसको अच्छी तरह से लोगों तक नहीं पहुंचाते, उसकी अपने आप की कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोफेशनलिज्म नहीं लेके आते, तो जीएसटी इतनी अच्छी तरह से सुचारू रूप से इतने कम समय में इम्प्लीमेंट नहीं होता। और इसको भारत में ही नहीं, वैश्विक स्तर पे एक्नॉलेज किया गया। इंडिया में जीएसटी इतनी फास्ट तरीके से इम्प्लीमेंट जो हुआ है वो अपने आप में एग्जाम्पल है। तो जीएसटी है, वर्चुअल असेसमेंट है, आईबीसी जैसे बड़े बदलाव, ये बड़े रिफॉर्म्स, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के जो रिफॉर्म्स हैं, ये सब तब तक नहीं सक्सेसफुल होते जब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्टिवली इनकी एक्सेप्टेंस के साथ, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम नहीं करते। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बहुत महती भूमिका है। ये जो नए आपने डिजिटल ट्रांजेक्शन की बात है, बैंकों के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी ला के उनकी एफिशिएंसी, रिकवरी की एफिशिएंसी के अंदर काम करना है, तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है जो कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं उनको ऑथेंटिकेट करने का काम चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। सरकार की पॉलिसीज और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको उन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंप्लायंस के रूप में उन कंपनी में लागू करने का काम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। तो यह एक तरीके से सरकार के एजेंट के रूप में भी काम करते हैं और थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन के लिए कंपनीज के डॉक्यूमेंट्स के लिए सर्टिफाई भी करते हैं।
1: गोपाल जी, जैसे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचे, तो निश्चित तौर पर इसमें सभी का योगदान होगा, पर एक वित्तीय प्रहरी के तौर पर चार्टेड अकाउंटेंट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसमें जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, तो इसको अगर हम देखें तो इसमें जैसे आपने कहा भी कि वो एक सेतु का काम कर रहे हैं, तो इसको और अगर हम समझना चाहें तो ये एग्जैक्ट कैसे, उनका क्या वर्किंग प्रोफाइल होता है, कैसे काम करते हैं चार्टेड अकाउंटेंट?
0: इसमें इंस्टीट्यूट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, अब लगभग 5.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्वालिफाइड देश में हैं और 185 ब्रांचेस जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है उसके इस देश में 185 ब्रांचेस हैं, 5 रीजन में काम करते हैं और 50 से ज्यादा देशों में चैप्टर्स हैं हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के। तो पूरे विश्व में हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फैले हुए हैं, वो लोग काम करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था को, ग्लोबल लेवल पे भी एमएनसीज जो इंडिया की डेवलप हो रही है उनको भी बाहर ले जाने के लिए भी हेल्प करते हैं। बाहर की कंपनीज जो भारत में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, उन लोगों के साथ भी वो कंसल्टेशन के रूप में काम करते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को

0: इम्प्लीमेंट करना, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है कंपनीज की वो ग्लोबल लेवल पे एक अलाइंड तरीके से उनका प्रेजेंटेशंस करना, इन सब में काम करते हैं। और आने वाले समय में अपकमिंग कई तरह के चुनौतियां सामने आती हैं, जैसे एनवायरमेंटल इश्यूज को लेके कि क्या कंपनीज एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए कंप्लायंस कर रही है, ESG कंप्लायंस है, एनवायरमेंटल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड गवर्नेंस के इश्यूज को बैलेंस शीट में कंपनीज अपने आप इम्प्लीमेंट करती है कि नहीं, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की बातें हैं। तो ये जो अपकमिंग नए नए सेक्टर्स हैं इनको कंप्लायंस के रूप में कंपनीज को गाइड करना, और अगर गाइड करने के साथ उनको वो अपने ऑपरेशंस और प्रोसीजर्स में इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं, उन सबको देखने का काम चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। और हमारी कंपनियों को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने का काम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है। फॉरेन इन्वेस्टर्स को अगर डोमेस्टिक कंपनीज के अंदर उनको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो हमारे जो बैलेंस शीट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचे, ये सारा काम इंस्टीट्यूट करता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इंडस्ट्री हमारी आगे मजबूत हो, हमारा कॉरपोरेट वर्ल्ड मजबूत हो, हमारा फाइनेंशियल मार्केट्स मजबूत हो, हमारा बैंकिंग सेक्टर मजबूत हो, RBI के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए सारा काम जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। 5.5 लाख से ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी है पूरे वर्ल्ड की, अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स।
1: और साथ ही साथ चार्टेड अकाउंटेंट हमारे सजग प्रहरी हैं अर्थव्यवस्था के, यानी कि वॉचडॉग हैं, हमारी अर्थव्यवस्था सही से पटरी पर चले और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि भारत 2047 तक विकसित बने, उसमें हमारे चार्टेड अकाउंटेंट का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आपने श्रोताओं को इतनी बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, जिसका विषय था भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय प्रहरी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। वार्ताकार थे गोपाल कृष्ण अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। भेंटकर्ता एवं प्रस्तुतकर्ता संतोष द्विवेदी मनुज।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये हिंदी भेंट वार्ता, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा।

0: कर्तुं च समर्थं भवेत।
1: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: दिल्ल्यां वसंतकुंज क्षेत्रस्य नेल्सन मंडेला मार्गेण सह द्वारिका दूत मार्गम संयोजयन दिल्ली नगरे 48,100 AE राष्ट्रीय राजमार्गस्य कृते षड्मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय अद्य सर्वकारेण अनुमतिः प्रदत्ता। अद्य राष्ट्रीय राजधान्यां वार्ताहरान् संबोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् उत्तर प्रदेशे राष्ट्रीय राजमार्गस्य 34 इत्यस्य 17.7 किलोमीटर सुदीर्घस्य कानपुर कवराई खंडस्य चतुर्मार्गीय अभिगम नियंत्रित मार्गस्य निर्माणमपि सर्वकारेण अनुमोदितमस्ति। यत्र संरचनाः षड्मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पनाः सन्ति।
2: कई सारे पीछे प्रयास किए गए थे, फाइनली आज जो प्रयास अप्रूव हुआ है वो है 6 लेन द्वारका टनल, ये 6,970 करोड़ रुपीस की है। और दूसरा उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन, उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे 7,145 करोड़, और उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है।
0: भारतीय ऋतु विभाग अवदत् यत् आगामी दिनेषु दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब इत्येतेषु प्रदेशेषु दक्षिण पश्चिम प्रावृत कालः अग्रे गमिष्यति। आगामी दिनद्वयोः उत्तर प्रदेशे बिहारे उत्तराखंडे ओडिशा प्रदेशे विदर्भ क्षेत्रे च प्रचंडतः अतिवृष्टेः ऋतु विभागेन नारंगवर्णीया पूर्व संचेतना प्रसारिता। फीफा विश्वकप क्रीडायां मेक्सिको देशः अद्य प्रातः मेक्सिको सिटी क्रीडांगणे राउंड ऑफ 32 क्रीडायां इक्वाडोर देशं 2-0 पराजित्य राउंड ऑफ 16 इत्यस्मिन् प्रविष्टवान्। नॉर्वे देशः अपि टेक्सास नगरे आइवरी कोस्ट देशं 2-1 इत्यंकैः पराजित्य 16 चरणे प्रविष्टवान् इति वार्ताः।
3: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुने कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: कार्यक्रम ग्राम संसार सुनने वाले हमारे सभी भाइयों और बहनों को
1: राम राम, राम।
0: मैं हूं आपके साथ प्रीति
1: और मैं हूं लोकेंद्र।
0: कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं जिसका इंतजार रहता है हमारे भाइयों और बहनों को। और क्योंकि इस कार्यक्रम में हम बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, बहुत सारी जानकारी लेकर आते हैं और साथ में जो हमारी सरकारी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में भी बताते हैं।
1: बिल्कुल प्रीति बहन, क्योंकि हमारा जो ये कार्यक्रम है इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं हमारे भाई बहन, क्योंकि इसकी जो पॉपुलरिटी है वो काफ़ी है। और देखिए आज हम अपने भाइयों के लिए ऐसी जानकारी भी लेके आए हैं और साथ साथ मनोरंजन भी करेंगे
0: जी। और साथ में हमारे पास ना कुछ रागिनी भी होती हैं, उपदेश हाँ। भी होते हैं, भजन भी होते हैं जो कि समय के अनुसार हम अपने साथियों को सुनवाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और आज तो एक खास दिन है और वो ये है कि सेहत से जुड़ा एक खास दिन है कि आज जो है अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस है।
1: हाँ।
0: और फलों का जितना हमारे जीवन में योगदान है वो तो खैर सबको पता है, हमारे किसान भाई हैं, हमारे ग्रामीण भाइयों ने सब पता रहता है। फलों का सेवन हमारे लिए हमेशा ज़रूरी होता है। जब हम जाते हैं किसी से मिलने के लिए जाते हैं, कोई बीमार है तो हम सबसे पहले क्या लिखे जाते हैं, फल। तो उनकी तो उपयोगिता बहुत ज़्यादा है।
1: बिल्कुल प्रीति बहन, इसके साथ साथ देखिए इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है, फलों का महत्व, संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना। फल प्राकृतिक रूप से विटामिन, खनिज, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में तथा हृदय, मधुमेह और मोटापे जैसी अनेक बीमारियों को

0: जोखिम को कम करने में सहायक होते हैं।
1: जी बिल्कुल, और इस दिन का तो खास उद्देश्य ही यही होता है कि फलों के बारे में हमारे जितने भी लोग हैं उन्हें जागरूक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और रोज़ाना फल खाने के लिए प्रेरित करें और बच्चों को इसकी आदत डलवाएं।
0: बिल्कुल, देखिए आजकल क्या होता है प्रीतिबहन, जो हमारे बच्चे हैं आजकल फ्रूट्स को पसंद नहीं करते और बाहर की जो चीज़ें होती हैं उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उनको ये इसके प्रति जागरूक करना है, क्योंकि सारा कुछ बाहर की चीज़ों में नहीं है, फल में जो हमें मिलती हैं विटामिन्स वगैरह, उससे बहुत सारा हमें शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं।
1: जी, और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार क्या होता है कि हम बेमौसमी फल भी खाने लग जाते हैं,
0: हाँ
1: और जो मौसम के अनुरूप यानी कि जो प्रकृति हमें जिस समय में जो फल उपलब्ध कराती है ना, हमें उन्हीं का सेवन करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: कई बार हम बाहर मार्केट में जाते हैं तो अगर अक्टूबर के महीने में हमें आम का फल दिख रहा होता है तो हम सोचते हैं कि अरे ये तो आम है, चलो लेके चलते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कुदरत जो होती है ना वो आपकी सबसे बड़ी डॉक्टर होती है, वो
0: बिल्कुल,
1: आपको उसी समय पर वो चीज़ मुहैया कराती है, उपलब्ध कराती है जिसकी कि आपके शरीर को ज़रूरत हो।
0: बिल्कुल
1: तो ऐसे ही हम दिवस मनाएंगे फल
0: बिल्कुल,
1: का और मनोरंजन करवाते हैं। शीशपाल सिंह भाटी की आवाज़ में ये रागिनी सुनवाते हैं।

0: प्रीति बहन
1: जी,
0: अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे ये रागनी, कलाकार थे शीशपाल सिंह भाटी और किस्सा था महाराणा प्रताप से।
1: और जैसा कि हमने बताया था कि कार्यक्रम में जानकारी भी दिलवाएंगे, तो आज हम सुनवाने जा रहे हैं बातचीत महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर, उसके लक्षण और उपचार। इस पर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर उर्वशी मेघलानी, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में। आइए सुनते हैं ये बातचीत।
2: नमस्कार, हमारे साथ हैं आज डॉक्टर उर्वशी मेघलानी, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में। स्वागत है मैम आपका।
3: धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब, जो हमारा विषय है आज का, जिस पर हम ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, वो है गर्भाशय का कैंसर। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि गर्भाशय का कैंसर वो असल में होता क्या है?
4: गर्भाशय के दो भाग रहते हैं, गर्भाशय जिसे हम यूट्रस कहते हैं उसका कैंसर भी हो सकता है, या गर्भाशय ग्रीवा जिसे गर्भाशय का मुख कहते हैं सर्विक्स, उसका कैंसर। तो गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर है जो कि बहुत ही जरूरी है जिसके बारे में समझना। शुरुआती चरण में तो हम उसका उपचार सिर्फ सर्जरी से कर सकते हैं, लेकिन जैसे वो फैलता जाता है तो फिर हमें दवाइयाँ और रेडियोथेरेपी देनी पड़ती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि गर्भाशय ग्रीवा जो हमारे जिसमें बच्चा पनपता है उसके मुख का कैंसर के साइन क्या हो सकते हैं।
2: बहुत सारे कैंसर के विषय में हम सुनते हैं कि पता इतनी देर में चलता है कि जहां पर इलाज मुश्किल ही होता चला जाता है। तो ऐसे केस में गर्भाशय का जो कैंसर है उसके जो अर्ली साइंस जिसे हम कहते हैं, एकदम शुरुआत में पता चल सके, ऐसे क्या सिम्टम होते हैं?
4: हाँ, ये बहुत ही जरूरी है हमारी ग्रामीण महिलाओं को समझना। महावारी हर महिला को हर माह में आती है। अगर वो महावारी दो माह के बीच में आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है, संबंध बनाने के बाद जरा सा भी खून का दाग लगना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि ये कैंसर की शुरुआत हो सकती है। महावारी बंद होने के बाद, जिसे हम रजोनिवृत्ति या मीनोपॉज कहते हैं, उसके बाद अगर 6 माह के बाद कभी भी खून का दाग लगे तो उसे कैंसर का साइन माना जाता है। अब ये हमारी ग्रामीण महिलाएं और बहुत ही समझदार एजुकेटेड महिलाओं में भी ये एक प्रवृत्ति है कि जब मीनोपॉज हो रहा होता है उस टाइम महावारी ज्यादा आ सकती है, ऐसा नहीं है। नॉर्मल मीनोपॉज में हमेशा महावारी कुछ ज्यादा समय पे आएगी और कम आएगी। अगर महावारी बंद होने के समय, जैसे 45 साल की उम्र के आसपास किसी को महावारी बहुत ज्यादा आ रही है, या कम समय के बाद, मेरा अर्थ है जैसे 15-15 दिन के बाद आ रही है और ज्यादा आ रही है, ये भी शुरुआती कैंसर का चरण हो सकता है। तो इसलिए अगर ऐसा सिम्टम हो तो आपने सबसे पहले डॉक्टर के पास जाके दिखाना है। डॉक्टर जाते ही ये नहीं है कि आपको लगेगा कि ये कैंसर हो गया है, हम जांचें करेंगे, कुछ टेस्ट होते हैं जो करेंगे जिससे पता चलेगा कि वो इन्फेक्शन के कारण है या हॉर्मोन्स में कुछ गड़बड़ के कारण है या कैंसर का शुरुआती चरण है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये सब सिम्टम है तो आपने ये सोच के डर के बैठ जाना है कि कैंसर है। ये हो सकता है, ये एक संकेत है कि आप अपने घर से निकलें और अस्पताल में दिखाएं।
2: इसी बिंदु से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है डॉक्टर, कि क्या कोई खास उम्र है जिसमें इस तरह की सावधानी, मतलब जांच को लेकर ज्यादा बरतनी चाहिए, कि अगर लक्षण आ रहे हैं तो किस उम्र के बाद और ज्यादा सतर्क हो जाने की जरूरत है?
4: बिल्कुल, देखिए जब हम कुछ वर्ष पहले देख रहे थे कि थोड़ी बड़ी उम्र की औरतें, जो 40 के बाद 45 के बाद या और ज्यादा बड़ी उम्र की औरतें, उनमें गर्भाशय कैंसर देखा गया था। जो गर्भाशय का कैंसर है वो तो 50-55 साल के बाद देखा गया था, और गर्भाशय ग्रीवा का थोड़ा 40 और 60 के बीच में। परंतु अब रिसेंटली ये देखा गया है कि ये थोड़ी कम उम्र की औरतों में भी ग्रीवा का और गर्भाशय का कैंसर बढ़ने लग गया है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, पल्यूशन, कुछ कारण जो हमें पता है कि मल्टीपल पार्टनर से कॉन्टैक्ट हो, जिनका विवाह बहुत जल्दी उम्र में हो जाए, जिनका पहला बच्चा बहुत जल्दी हो जाए, ये सब तो रिस्क फैक्टर हैं ही। तो आजकल के टाइम में ऐसा कोई उम्र नहीं है जिसे हम कह सकते हैं कि ये कैंसर मुक्त है। अगर आपको ये सिम्टम किसी भी उम्र में हो तो आपको दिखाना है। फिर भी 30 से कम की उम्र में इसके होने के संभावना बहुत ही कम है, परंतु फिर भी अगर आपको बहुत दिक्कत हो तो आपको जरूर दिखाना चाहिए। स्पेशली जो साइन है वो है संबंध के बाद अगर खून का दाग लग रहा है, ये तो एक ऐसा सिम्टम है जो किसी भी उम्र में आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। और बाकी के जो महीना ज्यादा आने की दिक्कतें हैं वो 30 के बाद।
2: यहाँ पर थोड़ा सा इसमें आपसे विस्तार में जानना चाहेंगे, जिस लक्षण का आप अभी जिक्र कर रही थी कि संपर्क के बाद जो खून का दाग आप बता रही हैं, तो वो क्या, जिसे हम स्पॉटिंग कहते हैं?
4: बिल्कुल,
2: कई बार होता है शायद औरतों को पता ही ना चलता हो इस संबंध में, मतलब और अगर आप थोड़ा प्रकाश डाल सके कैसे वो इस चीज को सुनिश्चित कर सकती है कि हाँ ये लक्षण है या ये नहीं है।
4: देखिए, अगर वो सिग्निफिकेंट होगा या कुछ दाग लग रहा है तो वो पता चल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि गर्भाशय ग्रीवा पे कुछ चोट लगी हुई है, कोई इन्फेक्शन है या कैंसर की शुरुआत है और खून इतना कम जा रहा है कि पता ही नहीं चला। अगर वो दाग भी लग रहा है तो वो पता चल जाएगा, और अगर एक बार नहीं तो अगले संपर्क में पता चल जाएगा। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखना है, और ये ऐसी चीज नहीं है जो मिस हो जाती है।
2: अभी जिन लक्षण

0: कार्यक्रमों की बात कर रहे थे, तो अब बात आती है जांच की। कौन कौन सी जांच है और खासकर हमारी जो ग्रामीण और कस्बों की जो महिलाएं हैं उनके लिए किस तरह की जांच अभी उपलब्ध है ताकि इसका जल्दी से जल्दी पता लगाया जा सके, उसके विषय में आप थोड़ा बताइए।
1: देखिए, महिलाओं को ये बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि कोई भी आपको फाइनेंशियल या पैसा देने की ज़रूरत होगी। सारे सरकारी अस्पतालों में कैंसर की जांच फ्री है, छोटे अस्पताल से लेके बड़े अस्पताल में। सबसे पहली जांच जो गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की है वो है पैप्समियर। पैप्समियर हम बच्चेदानी के मुंह, जैसे गर्भाशय ग्रीवा का मुख है, उसे थोड़ा स्राव लेते हैं। इसमें कोई तकलीफ नहीं होती है, आपको कोई बेहोश नहीं करना है, आपके साथ किसी भी रिश्तेदार को आने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 1 या 2 मिनट में ये टेस्ट हो जाता है। इसका रिजल्ट 2 हफ्ते में आ जाता है और उसे हमें पता चल आता है कि सब नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है। अगर नॉर्मल है तो आपको 3 वर्ष तक ये टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा अपने मरीजों को कहती हूँ कि प्रकृति ने हमारी बहुत मदद की है इस चीज में कि जो गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर है उसकी शुरुआती चरण से आखिरी चरण तक जाने में 15 से 20 वर्ष लगते हैं, जो कि नॉर्मल से कैंसर बनने के बीच में भी 3 चरण है जिसको 15 वर्ष लगते हैं। तो हम अगर उस 15 वर्ष में एक बार भी पैप्समेयर करा लेते हैं और उस चरण को पकड़ लेते हैं तो हम उसको कैंसर बनने से पहले ही उसका रोक लेते हैं और उसमें बच्चेदानी नहीं निकालनी पड़ती। हम सिर्फ गर्भाशय ग्रीवा के मुख का इलाज करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि पैप्समेयर कराने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आपका नॉर्मल आ गया पैप्समियर तो 3 वर्ष तक आपको कुछ नहीं कराना है। एक और टेस्ट है जो HPV टेस्ट है, जो कि अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। हम काफी कोशिश कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आ जाए। अगर वो टेस्ट, जैसे हमारे कुछ मरीज जो करा पाते हैं, अगर वो टेस्ट बाहर से पैप्समियर के साथ कराते हैं, वो किट ले आते हैं और हम कर देते हैं और वो टेस्ट नॉर्मल है, तो आपको 5 वर्ष तक कुछ नहीं कराना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर 6 महीने में अस्पताल जाने की जरूरत है। आप एक बार वो टेस्ट कराएं और 3 वर्ष या 5 वर्ष तक आपको दोबारा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कैंसर के बारे में, अगर वो नॉर्मल आया है।
0: जब हम ग्रामीण और कस्बों की महिलाओं की बात करते हैं या कुछ अर्बन महिलाओं की भी बात कर सकते हैं, इसमें एक थोड़ा संकोच का एक तत्व होता है। जैसे इस तरह का जो टेस्ट है उनको लगता है दिमाग में ऐसा कि जो प्राइवेसी है वो कहीं भंग हो रही है, तो उस विषय में अगर आप थोड़ा सा हमारी सुनने वाली महिलाओं को अगर आप थोड़ा जागरूक करना चाहें।
1: हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है क्योंकि ये हमने भी महसूस किया। हमने बहुत सर्वे किए तो हमने ये देखा कि सबसे ज्यादा महिलाओं को अस्पताल आने में यही डर और संकोच होता है कि वो दिखाना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए HPV टेस्ट की ही एक किट आ गई है जिसे हम सेल्फ सैंपलिंग किट कहते हैं। वो किट अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं आई है, हम काफी कोशिश कर रहे हैं उसको लाने की। काफी कैंप्स वगैरह में और प्रोजेक्ट्स में उसे यूज किया गया है। उसमें महिला को हम समझा देते हैं कि कैसे टेस्ट लेना है और मोबाइल वैन्स हैं जो चलती हैं, उनको किट दे देते हैं, वो खुद ही टेस्ट लेके हमें दे देते हैं और वो टेस्ट प्रोसेस हो जाता है लैब में, उनके पास रिपोर्ट आ जाती है। तो इससे उसकी रिपोर्ट भी उतनी ही अच्छी है जितनी हमारे टेस्ट लेने की है।
0: अगर हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, थाम पहले ही होने से पहले, जैसे हम HPV वैक्सीन के बारे में बहुत सुनते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए क्योंकि कई सारी भ्रांतियां, कौन सी सही एज है, किस एज के बाद बिल्कुल काम नहीं करेगा, इस तरह के विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर या गर्भाशय ग्रीवा एक इकलौता कैंसर है हमारे पूरे शरीर में जिसके लिए हमारे पास वैक्सीन है और एक ऐसा टेस्ट है। वो सिर्फ तब नहीं कराना है टेस्ट जब आपके पास कोई लक्षण हो रहे हैं, वो नॉर्मल महिला को भी कराना है। इट्स अ स्क्रीनिंग टेस्ट। जो वैक्सीन है उसकी सही एज है 9 से 14 वर्ष की लड़कियां, लड़कों को भी लगाया जा सकता है। 9 से 14 वर्ष में पहले हम 2 डोजेज लगा रहे थे, अब WHO ने कह दिया कि आप 1 डोज भी लगा सकते हो। अभी हम काफी उस पर काम कर रहे हैं कि वो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आ जाए, तो जैसे आपके बच्चों को नॉर्मल सारे पोलियो DPT वैक्सीन लगते हैं वैसे ही ये भी लग जाएगा। अगर आप तब नहीं लगा रहे हैं तो 14 वर्ष के बाद उसे हमारे इंडिया में हम 45 वर्ष तक लगा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा तब होगा अगर मैरिज से पहले या संपर्क से पहले उसे लगाया जाए। अगर पहले संपर्क के 20 साल की महिला है जिसका एक बच्चा है और अब उसको लग रहा है कि उसको लगाना है, तो वो डेफिनेटली वो लगवा सकती है। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि उसका जो असर है वैक्सीन का वो उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि एक 15 साल की कन्या में होगा जिसने कभी भी, क्योंकि ये वैक्सीन है HPV इन्फेक्शन के अगेंस्ट। जिस मरीज को HPV इन्फेक्शन या कॉन्टेक्ट हो चुका है उस पर ये उतना ज्यादा असर नहीं करता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम बच्चों को पहले लगा दें, लेकिन अगर वो मिस हो गया है तो इसे बाद में भी लगाया जा सकता है और इंडिया में ये 45 साल तक अलाउड है, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी।
0: तो ऐसा कोई डेटा है डॉक्टर जहाँ पे 40 से 45 के बीच की मान ली या 35 से 45 के बीच की जो औरतें लगाती हैं तो वाकई ये प्रिवेंशन में मदद करता है?
1: देखिए, यही डेटा है कि उसका इफेक्ट बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू यंग फीमेल्स। लेकिन हम आजकल पूरे ग्लोबल लेवल पे ये हो रहा है कि अगर किसी को कैंसर से पहले के शुरुआती चरण डायग्नोज हुए हैं तो उसमें इलाज के साथ हम साथ में भी ये वैक्सीन लगा देते हैं, जो शुरुआती चरण बन गया उस

0: को सही नहीं करेगा लेकिन वो बाकी के और इन्फेक्शन में प्रोटेक्ट करेगा. तो उसमें भी हम लगाते हैं, मरीज को बता देते हैं कि ये आप लगा सकते हो, ये आपको इलाज तो कराना पड़ेगा लेकिन ये आपको बाकी इन्फेक्शन से बचा सकता है. लेकिन ये समझना जरूरी है कि वो उतना असरदार नहीं होगा जितना कि वो 14 वर्ष के बच्चे में होगा. और वैक्सीन जो है आजकल 20 साल की उम्र तक हम एक या दो वैक्सीन, अगर पैसे की दिक्कत है अभी हमें खरीदना पड़ रहा है तो अगर हम एक डोज भी लगा लेंगे 20 वर्ष तक वो भी सही है, और 20 वर्ष के बाद 2 डोज. अभी WHO ने उसको 3 डोज बोला हुआ है. इंडिया में अभी अलाउड ये है कि 20 वर्ष तक हम एक डोज भी लगा सकते हैं, 2 डोज भी लगा सकते हैं.
1: जैसा कि अंतरराष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ जो ये मिशन चला रहा है उसमें जो इस साल की उन्होंने थीम रखी यूनिकनेस, जो हम बात कर रहे हैं कि कैंसर अवेयरनेस में जो इस बीमारी की जो यूनिकनेस है उससे जुड़ा हुआ है. यहाँ पर ये सवाल आता है मैम कि मान लीजिए किसी महिला को ये बीमारी हो जाती है, उसका इलाज चल रहा है, तो हमारी सुनने वाली जो ग्रामीण और कस्बाई महिलाएं हैं, आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी कैसे वो उनके इस संघर्ष को, उनकी इस यात्रा को जो वो अपनी बीमारी से जूझ रही है, इलाज करवा रही है, उसमें वो कैसे मदद कर सकते हैं?
0: हमें ये समझना जरूरी है कि महिला वो बिंदु है जिसके ऊपर सारा परिवार टिका है और महिला का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है. तो बहुत बार ऐसे होता है हम कभी भी महिला को कुछ बताना हो, मैं हमेशा उनके पति से या उनके घर में जो भी है बच्चे आए हैं उनसे हमेशा बात करूंगी ताकि वो समझें कि उनका भर्ती होना बहुत जरूरी है. काफी बार महिला अपने स्वास्थ्य को इग्नोर कर देगी और वो उसको टालने की कोशिश करेगी कि मैं 1 माह के बाद या 2 सप्ताह के बाद भर्ती होंगी, जिससे कि वो कैंसर प्रोग्रेस हो सकता है. तो सारे परिवार को समझने की जरूरत है कि इस मुश्किल दौर में उन्हें महिला के साथ, चाहे वो बीवी है, माँ है, उसके साथ खड़े रहना है और सब काम छोड़कर सबसे पहले इलाज कराना है. इसमें मरीज को एक मानसिक सपोर्ट की जरूरत है कि वो इलाज से आराम से सबकी सपोर्ट और प्यार के साथ निकल जाएंगे, क्योंकि मरीज को खून चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, मरीज को उस चीज का भय होगा कि मेरा ऑपरेशन होना है, मेरा इलाज होना है. इसलिए हमने एक साइको ऑन्कोलॉजी होता है कि हमने अपने अस्पताल के जो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट है उनके साथ भी टाई अप किया है. तो जब भी डायग्नोज होता है, जब मरीज तैयार होता है, तो हमारे काउंसलर मरीज को भी समझाते हैं और मरीज के घर वाले जो हैं उनकी भी अलग से हम काउंसलिंग कराते हैं ताकि वो भी अपने आप को इक्विप्ड समझें कि हम कैसे इस चीज से डील कर सकते. हमें देखने में लगा है कि उसे बहुत फायदा होता है, हम तो समझाते ही हैं पर एक काउंसलर भी उनसे बात करता है ताकि उन्हें स्ट्रेंथ मिले, ये जज्बा मिले कि हाँ हम इस सफर से इकट्ठे निकल सकते हैं.
1: एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि आपने भी बताया जो साइको ऑन्कोलॉजी जो आप कह रही हैं, क्या ये सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स पर भी उपलब्ध है?
0: सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे ये नहीं होगी, वहां ही होगी जहां साइकेट्री सेंटर है. पर उसमें ऐसे है कि जो डॉक्टर डायग्नोज कर रहे हैं, निदान कर रहे हैं, वो ही समझा देते हैं. जैसे जब हमारे पास अगर लगता है कई बार कोई मरीज हिचक रहे हैं, ऐसी हम किसी और से नहीं बात करना चाहते, तो मैं ही या मेरी जो टीम है वो ही मरीज को और उनके रिश्तेदारों को समझा देती है और वो उपयुक्त होता है ताकि वो समझ पाए कि क्या करना है. बिकॉज बात करने से मरीज भी अपनी जो सारी शंकाएं हैं वो हमारे साथ शेयर कर लेता है और जो भी उनको समझना है वो हम उन्हें समझा सकते हैं. लेकिन सेकेंडरी सेंटर पे स्पेसिफिकली काउंसलर अवेलेबल नहीं होगा, पर डॉक्टर भी काफी हद तक उनकी सारी शंकाएं दूर कर सकता है.
1: अंत में आप हमारी सुनने वाली महिलाओं को या उनके परिवार के सदस्यों को, जो भी ये कार्यक्रम सुन रहा है, कोई खास संदेश आप देना चाहेंगी?
0: मैं ये कहना चाहूंगी कि गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के बारे में तो आपने बहुत विस्तार में हमारी ग्रामीण महिलाओं को बता दिया है, लेकिन कुछ ऐसे और सिम्टम हैं जो मैं बताना चाहूंगी महिलाओं को, जिनके बारे में भी ध्यान रखें, जो कि अंडाशय कैंसर के कारण हो सकते हैं, जैसे कि बड़ी उम्र में पेट फूलना, थोड़ा सा खाना खाने पे पेट भर जाना, पेट में दर्द होना, या बहुत ज्यादा थकावट लगना, जो शौचालय है या यूरिन की है उसकी आदत में बहुत ज्यादा बदलाव आना, ये वाले जो लक्षण है अगर किसी को 12 या 13 दिन से ज्यादा हो रहे हैं एक माह में और 2-3 माह लगातार हो रहे हैं, इनफैक्ट 1 या 2 माह भी हो, तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. 1 या 2 दिन होने से चिंता की जरूरत नहीं है. ये सब अंडाशय कैंसर के लक्षण हो सकते हैं.
1: जैसे कि पैप स्मियर है हमारे गर्भाशय ग्रीवा के लिए, तो क्या ऐसी कोई जांच इस केस में है या इसके लिए फिर हमें सीधे?
0: नहीं, अंडाशय कैंसर की विडंबना है कि हमारे पास उसका कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, इसलिए मैं अपने मरीजों को हमेशा यही समझाती हूँ कि आपको अगर ये कुछ भी लगे तो पहले डॉक्टर के पास जाएं. दूसरा, जिनके परिवार में किसी को भी आंत या अंडाशय का कैंसर हुआ है उनमें ये होने के चांसेस ज्यादा हैं, उनको शुरू से ही अपना चेकअप कराते रहना चाहिए.
1: तो सुनने वालों को यही कहना चाहेंगे कि बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, बस लापरवाही नहीं बरतनी है, जांच समय पर कराते रहनी है और किसी भी परेशानी को छुपाने की जरूरत नहीं है। सबसे पास आपका जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां जाएं, डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे बात करें, क्योंकि ये याद रखने की जरूरत है हमें कि जागरूकता से ही हमें इन स्थितियों में जीत मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उर्वशी, आपका

0: हमारे आकाशवाणी के स्टूडियोज में आने के लिए और हमारे साथ इस विषय पर जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर लक्षण और उपचार पर जानकारी, जो कि दे रही थी डॉक्टर उर्वशी मेघलानी, स्त्री विशेषज्ञ, रोग विशेषज्ञ दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में हैं, और इनसे बातचीत कर रही थी नवोदिता मिश्रा।
1: बिल्कुल प्रीति बहन, ये तो रही जानकारी। और देखिए, हमारे भाइयों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिसमें से एक योजना है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इस योजना की शुभ ये योजना 27 सितंबर 2021 को शुरुआत की गई थी। इस योजना का जो उद्देश्य है प्रीति बहन, प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित, पारदर्शी और आसान डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, यानी कि ये इस तरह की एक नाम के 14 अंगों का एक डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई जाती है। इसके माध्यम से अपने जो हमारे जो व्यक्ति वो सहायता से व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, जैसे डॉक्टर की पर्ची, जांच रिपोर्ट, दवाओं का विवरण और उपचार का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रख सकते हैं। इसके ज़रिए नागरिक अपने जो हमारे लोग हैं वो उसके अनुमति के सही जानकारी निकाल सकते हैं और कभी भी अस्पताल में दिखा सकते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का जो उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाना, मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना, अस्पतालों और डॉक्टरों को एक साझा डिजिटल नेटवर्क प्रदान करना है। और देखिए, घड़ी भी इशारा कर रही है प्रीति बहन। इसी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम, राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। आइए अब सुने हिंदी समाचार।
1: समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और 9,80,000 का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
2: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर्स का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर्स का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेंगी और प्रशासनों के

0: साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरे के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यह यात्रा 3 जुलाई से नुनवान पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: या आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुने कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को
1: राम राम, राम।
0: लोकेंद्र भाई,
1: हाँ प्रीति,
0: कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और कार्यक्रम में जानकारियां भी होंगी, मनोरंजन भी होगा। और आज जो है हमारे किसानों से जुड़ा ही दिन है, कृषि दिवस। भारत में कई हिस्सों में कृषि दिवस मनाया जा रहा है। कहते हैं ना कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां आज भी करोड़ों लोगों की आजीविका जो है खेती पर ही निर्भर है।
1: बिल्कुल।
0: और कृषि तो हमारे कहते ना भोजन पर ही नहीं आधारित नहीं है, बल्कि देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ भी है।
1: बिल्कुल। और देखिए प्रीति बहन, आज का जो समय कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों, उन्नत बीजों, डिप एवं सिंचाई, मृदा परीक्षण, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, कृषि यंत्रीकरण लगातार बढ़ रहे हैं, और साथ ही जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और जलवायु परिवर्तन के अनुरूप खेती अपनाना समय की आवश्यकता हो गया है।
0: जी बिल्कुल।
1: और इसके साथ साथ ये भी हम अपने भाइयों को बता दें कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के और कृषि को सशक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई हुई हैं, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तथा किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये इनमें से मुख्य हैं।
0: जी बिल्कुल। और साथ में ये कहना भी मैं तो कहना चाहूँगी कि कृषि दिवस जो है हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारे जो किसान हैं वो कितनी कठिन परिस्थितियों में भी देश के लिए अन्न उत्पादन करते हैं। उनका सम्मान करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना और कृषि को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाना हम सभी की एक कहते हैं सामूहिक जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल। और देखिए इसके साथ साथ ये अपने भाइयों को हम ये भी बता दें कि कृषि

0: समय ये भी संदेश देता है कि किसान देश का अन्नदाता है और उसके परिश्रम जो मेहनत करता है उसका सम्मान हमें करना चाहिए और कर्तव्य भी उनको उनका कर्तव्य भी है। और इसके इस अवसर पर हम कृषि को अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुरूप अनुकूल बनाने तथा किसानों को सम्मान और समृद्धि के लिए मिलकर कार्य करने के लिए संकल्प करना चाहिए।
1: जी, और इसमें हमारी जो महिला किसान है उनका भी बहुत बड़ा योगदान है और हम ऐसे ही कार्यक्रम लेकर आए हैं कृषि समाचार दर्शन के तहत, जिसमें हमारी जो महिला किसान है उनसे बातचीत की गई है और उस आधार पर उनके अनुभव को हम साझा कर रहे हैं। प्रस्तुति है संध्या गुप्ता की, आइए सुनते हैं कृषि समाचार दर्शन।
2: नमस्कार, कृषि समाचार दर्शन के एक नए अंक में मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। आज के अंक में हमारे साथ भी कुछ ऐसी किसान महिलाएं जुड़ रही हैं जो विविध प्रकार की खेती कर रही हैं और खेतों को बचाने के लिए भी प्रयास कर रही हैं।
3: मैं सरोज सैनी, गांव फतेहपुर बिलोस से, एक सरपंच भी हूँ महिला और मैं एक महिला किसान भी हूँ। हम फूलों की खेती ज्यादा करते हैं, जैसे रजनीगंधा है, ग्लाइड है, सनफ्लावर है और गोल्डन घास है, डंडेला है। यहाँ पर दरअसल फूलों की खेती ही काफी हुई थी शुरुआत में। मेरे पति दिल्ली गए थे तो वहाँ फूलों की टीप रजनीगंधा, जिसको टीप रोज बोलते हैं यहाँ पर, उन्होंने थोड़ा सा लगाया था तो अच्छा लगा। मार्केट में भी काफी फ्लावर्स का काम है और इस वजह से ही हमारा धीरे धीरे रुझान फूलों की खेती पे गया। मेरे परिवार का सबका पूरा सहयोग रहा है। मेरी जो देवरानी है वो मथुरा की है, उनके वहाँ भी खेती होती थी और वो सब्जियों की खेती करती थी, तो हमने आपस में सबने मिल के पूरे परिवार ने करी है। चुनौती तो आती है, कई बार ऐसा होता है कि माल निकल जाता है और वहाँ रेट नहीं मिलता तो लागत भी नहीं निकल पाती, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही कि कभी ना कभी तो कामयाबी मिलेगी ही। महिलाओं का तो ज्यादातर सब्जी की खेती में रुझान ज्यादा रहता है और जो अपना मोटा है जैसे गेहूं बो दिया, धान बो दिया, ज्वार बाजरा बो दिया, मेन सब्जी में और मोटे अनाज में रहता है रुझान। आपस में मिलके हम लोग काम करते हैं मिलजुल के, तो भजन गाते हुए गीत गाते हुए ये नहीं पता चलता समय कब हो गया और काम भी कितनी जल्दी हो गया। काफी महिलाएं हैं वो सब्जी के कामों में ज्यादा रुचि रखती है, मौसम वाइज सब्जी। कई बार अपनी यहाँ कैंप भी लगवाई, ऑर्गेनिक खेती की तरफ ज्यादा रुझान दे रहे हैं। खाद बीज की जितनी ज्यादा आज के टाइम में मांग कर रखी है ना, इस तरीके से हम जहर ज्यादा खा रहे हैं, तो मेरी कोशिश ये अपनी गाँव की महिलाओं को और जो किसान है उनको भी इस दवाइयों से बचाकर ऑर्गेनिक खेती की तरफ ले जाना और कम से कम खाद और दवाइयों का इस्तेमाल करवाना। पूसा इंस्टीट्यूट से डॉक्टर और वैज्ञानिक बुलाती रहती हूँ और उनको जानकारी दिलवाती रहती हूँ इस विषय में। खेत बचाओ अभियान में मेरी विचारधारा यह है कि अगर हमारी कृषि योग्य भूमि को ही हम इंडस्ट्री को बेच देंगे तो एक आने वाला समय ऐसा होगा कि जैसे हम बाहर से और चीजें मंगा रहे, हम अपने खाने के लिए सब्जी अनाज सब विदेशों से लेंगे। तो मेरी तो सरकार से ये प्रार्थना है कि खेतों को छोड़ करके बंजर भूमि को बेचा जाए, खेती को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा बचाया जाए, उसका संरक्षण करा जाए। और मैं तो लोगों को भी यही कहती हूँ, सलाह मशवरा देती हूँ कि अपनी खेती को बचाओ। जमीन बेच के तो हम चार दिन में पैसों को बराबर कर लेंगे, लेकिन अगर खेती है तो हमारी इनकम हमेशा बरकरार रहेगी और कृषि के माध्यम से हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, अपने परिवार को पाल सकते हैं। महिला किसान होने के नाते मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ। कृषि में नई तकनीकों को अपनाने के लिए मैं अपने गांव में समय समय पर कैंप लगवाती रहती हूँ, डॉक्टरों को इंजीनियरों को बुलवाती हूँ, वो खेतों में भी जाते हैं, वहां बताते हैं कि आप इस चीज के बजाय इस चीज को इस्तेमाल कीजिए जिससे आपकी पैदावार हो। लोग जैसे धान की खेती ज्यादा करते हैं तो कि धान के बजाय कपास बो, कोई और बो, दलहन बो, सब्जियां बो, इस तरीके से अदल बदल के मतलब खेती करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अपनी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए कम से कम खर्चे में बढ़िया कृषि करें, बढ़िया खेती करें, बढ़िया आमदनी, इन चीजों की जानकारी समय समय पर दिलवाती रहती हूँ। उन्हें नई नई तकनीकियों से जोड़ती हूँ और नए नए सुझाव उनके लिए लेके आती हूँ मैं।
4: जी, मेरा नाम रैनावती है, मैं ग्राम पंचायत लोधौरा रमुआपुर में रहती हूँ। जी, हम औषधि खेती कर रहे हैं, अपराजिता का सीजन है तो हमने अपराजिता लगाई हुई है, 2 साल से हम कर रहे हैं। हम लोग कृषक ही हैं, हमारे वहाँ अन्नदाता है, वहाँ से हम लोगों को सहायता मिली। आगे के लिए बताया गया कि ये करो, इससे आपको लाभ मिलेगा, तो हम लोगों ने करना स्टार्ट किया, तो हम लोगों को फायदा भी है। KBK कृषि विज्ञान केंद्र कटिया से हुआ था, और उसके बाद से हम लोगों को ग्राम पंचायत मनिकापुर मिला है, उसमें लोगों को प्राकृतिक खेती की पे मतलब काम भी करना है और किसानों से करवाना है। तो हम लोग उनके अंडर में 125 किसान दिए गए थे कि स्वयं करो और उनको भी सिखाओ। तो हम लोग खुद करते हैं, किसान हैं हमारे, उनको भी हम लोग सिखाते हैं। गोबर की खाद और जैसे जीवामृत है, घन जीवामृत है, दसपर्णी अर्घ है, इनको डाला जाता है, रासायनिक का प्रयोग नहीं किया जाता। मेरे पति, मेरे बच्चे हमारे साथ खेती में सब सहयोग करते हैं, साथ में काम करते हैं। लागत समझ लो जीरो पे ही आती है, क्योंकि हम लोग दवाई अपने हाथ से बना के डालते हैं, गोबर की खाद और गौमूत्र से बनाते हैं हम लोग दवाई, मतलब मुनाफा हो जाता है। हमने एक सीजन में 1 बीघे लगाया था ब्लू कार्न, हमें 50,000 रुपए मिले थे, लागत आई थी मात्र 6,000 रुपए। इससे हमें बहुत खुशी मिलती है, खुद काम करती हूँ, परिवार का भी भरण पोषण चलाती हूँ और अपने पति का हाथ भी बटाती हूँ साथ में। इससे मुझे खुशी मिलती है और हमारे परिवार वालों को भी खुशी मिलती है। जी, 2026 महिला किसानों के नाम समर्पित है। खेत बचाओ अभियान में हमें अपने खेत की मिट्टी पे ज्यादा ध्यान देना होता है, तो हमारे खेत की मिट्टी अच्छी होगी, उसमें जो जीवाणु होते हैं वो अधिक मात्रा में होंगे, जिससे हमारी मिट्टी को भुरभुरी बनाएंगे, लागत कम लगेगी और मुनाफा हमें अधिक मिलेगा। हम लोग अपने किसानों को जो बताते हैं, हमारे किसान हम लोगों की बात सुनते हैं और अच्छे से करते भी हैं। जब हम प्रशिक्षण देते हैं और लेते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें प्रशिक्षण देते हैं तो अपने किसानों से सम्मान मिलता है, और लेते हैं तो हम लोग भी अपने वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं उनको भी सम्मान देते हैं।
5: मैं मीना शुक्ला गोरखपुर से बोल रही हूँ। मेडिसिनल प्लांट की खेती करती हूँ और किसानों को करवाती भी हूँ। मेडिसिनल प्लांट में जैसे शतावरी, अश्वगंधा, मुसली, काली हल्दी, अम्बा हल्दी, अकरकरा, जो हमारे पूर्वांचल के बेल्ट में अच्छी तरह से हो जाता हो, उस पर मैं काम करती हूँ और प्लस उसका मार्केटिंग भी करवाती हूँ। उसी वजह से एक अपनी कंपनी डेवलप की है, उस कंपनी का नाम है MBS एग्री बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इसकी ब्रांच ऑफिस मऊ में है और हेड ऑफिस हमारा लखनऊ में है। आए किसान का दूधी करना चाहते हैं तो मेडिसिनल प्लांट के साथ साथ में अगर बागवानी की खेती हम कर रहे हैं, मेड़ पर जैसे चारों तरफ हम मेड़ पर बागवानी का पौधा लगा दिए और बीच में मेडिसिनल प्लांट की खेती कर दिए, उससे अच्छा खासा इनकम किसान को हो जाता है। योजना चल रहा है PMSME योजना, गवर्नमेंट इसमें सुविधा भी ये दे रही है। जैसे कि PMSME योजना में ये है कि 35% कोई भी आप लोन लेने जा रहे हैं तो 35% आपको सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट है। उसमें क्या क्या ले सकते हैं, जैसे कि आप खेती करने जा रहे हैं, मेडिसिनल प्लांट का पैसा नहीं है किसी महिला के पास, किसी भी महिला किसान के पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट से लोन लेकर के ये काम कर सकती है। अभी तक मैं 500 महिलाओं को PMSME योजना में जोड़ चुकी हूँ और एक नई तरह की रोजगार स्थापित मैं कर चुकी हूँ। हर महिलाओं का यही भाव रहता है कि हम कैसे आए को अपने हम कुछ कमाए कमाने की कोशिश करती हैं। उसके लिए एक प्लान किया जाता है कि आप ऐसे ऐसे ऐसे करना है, तो जाकर के खेती में भी करती हूँ। उनको आए चाहिए, आर्थिक स्थिति महिलाओं का मजबूत हो जाए तो हमारी भारत की जो आधी जनसंख्या है, 50% जनसंख्या है महिलाओं को, वो समर्थ हो जाएगा। खेत बचाओ अभियान केमिकल फर्टिलाइजर है, हम न उसको यूज कराएं, और ये जीवामृत घन जीवामृत को बना करके अपने खेत में डालने से उससे आर्थिक स्थिति किसान की मजबूत भी होगी और खेत बच भी जाएगा अपना। तो अगर खेत तभी बचेगा कि जब हम गौ माता को पालेंगे, गौ माता को पालेंगे उसकी जो खाद होती है वो खेत तक जाएगा। बहुत अच्छा लगता है कि एक सशक्त महिला होकर के और फील्ड में जाकर के काम करना। मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, क्योंकि 21,000 रुपए का डेली का ऑक्सीजन की जरूरत होती है हर व्यक्ति के लिए। समाज को बहुत कुछ दे रहे हैं, पेड़ लगाते हैं, उसको बड़ा करवाते हैं, फिर जैसे बहुत सारे काम किए हैं, तो अच्छा लगता है ना। किसी चीज की कमी नहीं है जो हमारे पास नहीं है, अब मैं बहुत अच्छा उसको फील करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज की महिलाएं आगे आकर करके और एक काम करें।

0: उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए। आर्थिक अगर स्थिति मजबूत हो जाती है तो उससे वो स्वावलंबी बन जाएंगे। मुझे महिला किसान होने का मुझे बहुत गर्व है कि मैं महिला किसान हूँ और मैं देश के लिए समाज के लिए कुछ दे रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मेरा नाम सीता देवी, ग्राम पंचायत भिनेनी, ब्लॉक बिस्मा, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। मैं इस वक्त अपराजिता की खेती कर रही हूँ और महिला किसान होने पर मुझे गर्व इस बात का है कि मैं महिला होके जो है सफल कृषक का कार्य कर रही हूँ। हमारे पास एरिया है 1.5 बीघा, इसमें जो है हमारे घर वालों का सहयोग है, हमारे FPO वालों का सहयोग है। अप्रैल में हमने नर्सरी डाली थी और नर्सरी डालने के बाद मई में हमने रोपाई कर दी। निकाई से लेकर गुड़ाई तक की जो है सहयोग हमारे घर वाले करते हैं, सब भाई और माँ पिताजी। हमने प्रशिक्षण इसका 2 साल पहले लिया था। इसकी तुड़ाई इस वक्त चल रही है। इसको तोड़ने के बाद इसकी सुखाई की जाती, सुखाने के बाद इसको बोरी में पैक कर दिया जाता है। 10 महिलाओं को हमने रोजगार दिया है। इस बार हमने एक नई योजना बना रखी है इसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए, जिससे हम इसको जो है मार्केट में अच्छे दामों में बेच सकते हैं। मुझे एक योजना बनानी पड़ती है कि कहाँ कितना पैसा खर्च करना है, कितना हमें खेत में खर्च करना है, कितना घर पे खर्च करना है और कितनी हमें बचत करनी है, जिससे हमारे परिवार का संतुलन बना रहे। खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत हमारे यहाँ प्रक्रिया यही हुई है कि जिस प्रकार से लोग ज्यादा से ज्यादा DAP यूरिया यानी कि रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, उस प्रयोग से हमारे खेत की मिट्टी जो है अस्वस्थ होती जा रही है। और इसको जो है हमें सुधारने के लिए जैविक खेती यानी कि प्राकृतिक खेती, जो कि बोलचाल की भाषा में गौ आधारित खेती का नाम से जानी जाती है, उसे हम अपना करके अपने खेत की मिट्टी को हम बचा सकते हैं। जब हमारे खेत की मिट्टी स्वस्थ रहेगी, हम भी स्वस्थ रहेंगे और हमारा खेत भी स्वस्थ रहेगा। किसी प्रकार की बीमारी ना हमारे खेत को लगने पाएगी, ना हमारे शरीर को लगने पाएगी। यही हमारे खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत चल रहा है। मेरे पास 3 गोवंश हैं, यानी कि मैं पशुपालन भी करती हूँ और उनकी देखभाल जो है मैं और मेरी मम्मी मिल करके दोनों लोग एक साथ में उनकी देखभाल करते हैं, चारे पानी की व्यवस्था करते हैं, गोबर और गौमूत्र का प्रयोग हम खेत में करते हैं। जब एक साथ में पैसा आता है हाथ में तो ऐसा होता है कि मैं किसी सरकारी नौकरी वाले से कम नहीं हूँ, मैं भी कुछ आगे कर सकती हूँ। इतना पैसा मैं बचा लूंगी तो आगे मेरा भविष्य जो है और भी अच्छा हो जाएगा, किसी पर आश्रित ना होकर के मैं अपना स्वयं पर निर्भर होकर कार्य कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता कि मैं अब आर्थिक रूप से सशक्त हो गई हूँ।
2: हमारा नाम आरती है, मैं ग्राम पंचायत पुरैनी ब्लॉक बिस्मा जिला सीतापुर से हूँ। प्राकृतिक खेती करवा रही हूँ। हम उसमें जीवामृत, घन जीवामृत बनवा करके वहाँ डलवा रही हूँ खेत में कि उपजाऊ ज्यादा हो, लाभ ज्यादा हो, खेत भी स्वस्थ हो। खेत की मिट्टी को बचाएंगे तभी हम स्वस्थ होंगे, आगे हम तभी बढ़ पाएंगे, हमारा भविष्य आगे तभी बढ़ पाएगा जो हमारे खेत की मिट्टी बचेगी। जैसे बाजरा है, मक्का है, कोदो है, रागी है, मड़ुआ है, ये हमको सब कुछ बो करके हमको खेत की मिट्टी बचाना है, कम लागत में पैदा करना है, उसी में हमको लाभ मिलेगा। हम महिलाओं का समूह बनाए, हमको कुछ नहीं आता जाता था, हमने समूह बनाए, समूह से ऋण लिया। अब पहले RF आया था, फिर CIF आया था, उसी से हमने कृषि आधारित खेती धरी। हमारे पास खेत भी नहीं था, हमने खेती धरी, हमको बहुत अच्छा लगा। खेत धर के हमने फूलों की खेती करी, औषधि, उसमें लागत भी कम लगी और हमको उपज भी ज्यादा हुआ। 1 बीघे में हमने 25-30 हजार का फायदा मुनाफा उठाया हमने। और समूह की महिलाओं को भी यही करा रहे हैं। जैसे हमारा APO बना हुआ है, APO के द्वारा हम बेच देते हैं, तो हम ही अभी लगा रहे हैं फूल की खेती। समूह को महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं कि आप भी लगाएं। महिलाओं से भी कह रहे हैं कि किचन गार्डन, पोषण वाटिका बनाइए, अपनी आजीविका बढ़ाएं, पशुपालन करें, बकरी पालन करें। इसकी योजनाएं हमको कटिया केंद्र से मिलती है, जो छूट पे जो कुछ मिलता है, यंत्र मिलते हैं, बीज मिलता है, अरहर है और लाही है, धान है, सब चीज ब्लॉक से मिलता है, हम सबको दिलवाते हैं मैम, किसानों को जी। हम लोग सबों की महिलाएं जब मिलकर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हिल मिल के बात है करते हैं, हिल मिल के फूल तोड़ते हैं, हिल मिल के वहाँ खड़े होकर के खेत की जुताई है और सब कुछ करते हैं मैम। कृषि आधारित हम बैलों से जुताई करके और प्राकृतिक खेती विधि से हम करते हैं।
3: कृषि समाचार दर्शन का यह अंक यही संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम संयोजक शिवनंद

0: मदनलाल के साथ मैं संध्या आपसे विदा लेती हूँ, अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: प्रीति बहन
2: जी,
1: अभी हमारे किसान भाई बहन सुन रहे थे कृषि समाचार दर्शन के अंतर्गत महिला किसान से बातचीत, और बातचीत कर रही थी संध्या गुप्ता, उन्होंने अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं ओमवीर आर्या की आवाज में ये उपदेश।

0: तो अभी आप सुन रहे थे ओमवीर आर्या की आवाज़ में ये उपदेश, और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को
1: राम राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, और आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति। और आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पे आप सुनवाते हैं गीत गजल कार्यक्रम के अंतर्गत ये चंद खूबसूरत सी गजलें।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीत गजल के अंतर्गत ये चंद खूबसूरत सी गजलें। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से कुछ ही पलों में सुने प्रादेशिक समाचार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत 6 लेन के सुरंग निर्माण को मंजूरी दी। दिल्ली में आज से नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 लागू। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से राहत के लिए प्रतिवर्ष लागू होने वाले दिशा निर्देश अधिसूचित किए और दिल्ली प्रीमियर लीग क्रिकेट के लिए खिलाड़ियों की आज नीलामी की गई। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण इसको मंजूरी दे दी गई है।
4: 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
3: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और 9,80,000 का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। दिल्ली में आज से नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल ईवी पॉलिसी 2026 लागू हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति केवल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि मार्च 2030 तक परिवहन व्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव, चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार और विभिन्न वाहन श्रेणियों के चरणबद्ध विद्युतीकरण का व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि नई ईवी पॉलिसी में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने वालों को 30,000 रुपये, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर खरीदने वालों को 50,000 रुपये और N1 कैटेगरी के हल्के कमर्शियल वाहनों के लिए 1,00,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
5: N1 उस पे 1,00,000 रुपए की सब्सिडी सरकार ने देना मंजूर किया है और जितनी भी हमारी 30,00,000 रुपए से नीचे की गाड़ियां हैं उस पे रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स पूरी तरीके से माफ है। और किसी को अपना पुराना व्हीकल चेंज करना है नई व्हीकल में तो स्क्रैपिंग पे भी इंसेंटिव दे रही है सरकार, टू व्हीलर पे भी, थ्री व्हीलर पे भी, फोर व्हीलर पे भी, सब पे इंसेंटिव मिल रहा है।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2028 की 1 अप्रैल से दिल्ली में नए दोपहिया वाहनों का पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में किया जाएगा। साथ ही वर्ष 2027 की 1 जनवरी से L5 श्रेणी के नए ऑटो रिक्शा का पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज राष्ट्र निर्माण की सेवा में निरंतर समर्पित सभी डाक कर्मियों को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी डाक कर्मियों के परिश्रम से देश में संचार सुविधा निरंतर मजबूत हो रही है। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने आज लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर बल दिया। दिल्ली विधानसभा में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में श्री चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, बार बार होने वाले चुनावों से होने वाली रुकावटें कम होंगी और अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने का विचार नया नहीं है और निर्वाचन आयोग, विधि आयोग तथा अन्य विशेषज्ञ निकायों ने समय समय पर इसकी सिफारिश की है। एक देश एक चुनाव पर श्री चौधरी ने कहा कि इससे आदर्श आचार संहिता के बार बार लागू होने की स्थिति भी कम होगी।
6: राष्ट्र प्रथम की नीति सोच करके आज देश को वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है कि लोकसभा और विधानसभा के सारे चुनाव साथ हों। ये सोच जो है बहुत लंबे समय से चल रही, लेकिन उसको बिल के रूप में लाने का काम पहली बार हुआ।
3: सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव भारत के लोकतंत्र को अधिक सशक्त, सुव्यवस्थित, प्रभावी और स्थिर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इससे समय, धन और संसाधनों की बचत होगी तथा शासन व्यवस्था में निरंतरता और दक्षता को नई मजबूती मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से राहत के लिए प्रतिवर्ष 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहने वाले व्यापक और स्थायी दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं। इस कड़ी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि विभिन्न आदेशों को एकीकृत कर एक स्पष्ट, सरल और सख्त व्यवस्था बनाई गई है, जिससे सभी विभाग, संस्थान और नागरिक निर्धारित नियमों के अनुसार समयबद्ध कार्रवाई कर सकें। एक रिपोर्ट।
7: नई व्यवस्था के अंतर्गत पूरे वर्ष केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों का ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 के नीचे के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं उन्होंने बताया कि सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा और सरकारी तथा निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू रहेगी। बड़े वाणिज्यिक भवनों और निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन और मिस्ट सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है। मतिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
3: दिल्ली सरकार में शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज वन महोत्सव सप्ताह के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण सभी की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर अधिक से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लें और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, हरित और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। श्री सूद ने आज जन सुनवाई के दौरान नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव भी सुने। उन्होंने जन सुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम करने के निर्देश दिए। दक्षिणी दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आज मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान में हिस्सा लेते हुए अपना गणना प्रपत्र जमा किया। उन्होंने लोगों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का अनुरोध किया। दिल्ली में SIR 30 जून से शुरू हुआ है। श्री बिधूड़ी ने दिल्ली के सभी मतदाताओं से अनुरोध किया कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सभी SIR अभियान में हिस्सा लें और अधिकारियों को सहयोग करें। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज

0: राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ मानहानि वाले सोशल मीडिया पोस्टों को हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने पोस्ट हटाने के लिए कोई व्यापक अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने उन 5 पोस्ट को हटाने का आदेश दिया जिन पर श्री चड्ढा ने आपत्ति व्यक्त की थी। न्यायालय ने कहा कि ये मुकदमा व्यक्तित्व अधिकारियों से संबंधित नहीं है। श्री चड्ढा ने इससे पहले कथित दुर्भावनापूर्ण और मनगढ़ंत सोशल मीडिया पोस्टों के प्रकाशन के खिलाफ उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ. निखिल टंडन ने आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर इस वर्ष के विषय हीलर को हील पर बताया कि चिकित्सा सिर्फ एक पेशा या कमाई का माध्यम नहीं है। डॉ. टंडन ने कहा कि इसमें मेहनत, लगन और डटे रहने की आवश्यकता है और इसके लिए व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को भी ये समझना चाहिए कि डॉक्टर भी उन्हीं की तरह इंसान हैं और उनसे फैसले लेने में गलतियां हो सकती हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री चौहान ने बताया कि ये अधिनियम लाखों श्रमिक ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेनदेन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके बदल दिए हैं। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी के रंग भवन सभागार में आज प्रसारण भवन ने फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा वीथिका का अनावरण किया। इस फोटो गैलरी का उद्घाटन पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने किया। इस गैलरी में विदुषी एमएस सुब्बुलक्ष्मी, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर, लता मंगेशकर और डॉ. भूपेन हजारिका सहित भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं के चित्र शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान संगीत समारोह का आयोजन किया गया जिसमें पंडित रूपक कुलकर्णी द्वारा बांसुरी वादन प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए श्री द्विवेदी ने कहा कि भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने और उसे बढ़ावा देने में आकाशवाणी ने मुख्य भूमिका निभाई है। श्री द्विवेदी ने बताया कि आकाशवाणी अपने समर्पित चैनलों के माध्यम से भारतीय शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्मी संगीत, रवींद्र संगीत और संगीत की अन्य विधाओं के लिए मंच प्रदान कर रही है जिससे भारत की सांस्कृतिक पहचान और एकता मजबूत हो रही है।
2: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: दिल्ली पुलिस ने आज किंग्सवे कैंप में न्यू पुलिस लाइंस के परेड ग्राउंड में औपचारिक परेड के साथ कमिश्नरेट डे मनाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपराज्यपाल तरणजीत सिंह

संधु और दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने पुलिस कमिश्नर और दिल्ली पुलिस को बधाई दी। दिल्ली पुलिस ने आज चाइल्ड सेफ्टी मंथ पहल के तहत 2 दिवसीय ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कार्यक्रम का भी आयोजन किया। ये पहल दिल्ली के शिक्षण संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा और बचाव को मजबूत करने के लिए लागू की जा रही है। ये कार्यक्रम हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली प्रीमियर लीग क्रिकेट के तीसरे संस्करण के लिए आज खिलाड़ियों की नीलामी की गई। नीलामी में 8 पुरुष और 4 महिला फ्रेंचाइजी अपनी टीमें तैयार करेंगी। इस नीलामी में 400 से ज्यादा पुरुष और 200 से अधिक महिला खिलाड़ी शामिल हैं। ऋषभ पंत, मयंक यादव, सुयश शर्मा, हिम्मत सिंह और कुलदीप यादव इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे। और बात मौसम की, दिल्ली में आज बादल छाए रहे जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आज का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल के दौरान बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत 6 लेन के सुरंग निर्माण को मंजूरी दी। दिल्ली में आज से नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 लागू। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से राहत के लिए प्रतिवर्ष लागू होने वाले दिशा निर्देश अधिसूचित किए। और दिल्ली प्रीमियर लीग क्रिकेट के लिए खिलाड़ियों की आज नीलामी की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी वक्त बता रही है ठीक 8:00 ये लीजिए पूरे हुए 15 सेकंड। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका, जिसके अंतर्गत हम आप सभी के लिए सजा कर लाए हैं चंद खूबसूरत से फिल्मी गीत। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म बागबां के इस खूबसूरत से गीत के साथ।

बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदिया जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होठों को छू लूंगी।

0: श्रोताओं, भी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका का, जिसके अंतर्गत हम लेकर आए आप सभी के लिए ये प्यारे से फिल्मी गीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब से कुछ ही पलों में सुने इस समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची, कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
2: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
3: VBG रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298 रुपए 80 पैसे प्रतिदिन से बढ़कर 327 रुपए 40 पैसे प्रतिदिन

0: हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फर्रुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने

0: कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
1: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर GST से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा वीथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक

0: व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves 2 major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat G. Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a 3-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 international 5-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight.

0: of 5,000 youth from the state in Japan over 5 years. Assam Chief Minister visited Japan in January last year, and an MOU was signed between Assam and ASEAN One for the training of 20,000 youth over a period of 5 years. Japan and the northeastern states have acknowledged similarities in culture and cuisine, as well as the potential for cultural exchange and cooperation. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
1: India and Pakistan today exchanged lists of civil prisoners and fishermen in each other's custody through diplomatic channels in New Delhi and Islamabad. The External Affairs Ministry said in a statement that India has shared lists of 386 civil prisoners and 53 fishermen in its custody who are Pakistani or believed to be Pakistani. Pakistan has shared lists of 52 civil prisoners and 198 fishermen in its custody who are Indian or believed to be Indian. India has strongly condemned the demolition of the historic 125-year-old sacred Gurdwara Sri Guru Singh Sabha Sahib in Farrukhabad, Pakistan, calling it highly deplorable and a targeted act of vandalism. In response to media queries regarding the reported demolition, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the systemic targeting of religious minorities and their places of worship in Pakistan continues unabated. India has called upon Pakistan to expeditiously investigate the matter and bring the perpetrators of the act to justice. The government today issued a notice to Meta regarding rollout of the username feature on WhatsApp in India. Sources said the Ministry of Information and Technology directed Meta to furnish a detailed explanation on the usernames feature within 3 days. The ministry also directed Meta to not roll out the usernames feature until consultation on the matter is over. Sources said there are concerns about the feature may increase incidents of online frauds, phishing, digital arrest scams and impersonation attacks. Concerns have also been raised that the feature may facilitate impersonation and identity spoofing. Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju today visited the flood-hit Dhemaji district in Assam to assess the damage and review relief measures. The ministers inspected the worst-affected Arunachalpuri area as part of their tour of flood-affected regions in Assam and Arunachal Pradesh. Addressing the media, Mr. Chauhan said the floods had caused extensive damage with rivers changing course, destroying homes, crops and power infrastructure. He assured full support from the centre and said a long-term strategy would be prepared to tackle the recurring flood problem in the region. Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu today said a ground assessment of flood-affected areas is underway and a detailed report will be submitted to the centre after it is completed. It comes as the Chief Minister, along with Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju, conducted an aerial survey of the flood-hit districts. Maharashtra's capital Mumbai has been witnessing heavy rainfall since yesterday, with intense showers continuing across the city and the Mumbai metropolitan region. More from our correspondent.
2: The heavy downpour led to waterlogging in several low-lying areas of Mumbai, including Andheri and Dadar, disrupting traffic and daily life. Heavy rain also reduced visibility across several parts, affecting vehicular movement. The India Meteorological Department has warned of thunderstorm accompanied by lightning, gusty winds of up to 60 km per hour and heavy rainfall over Mumbai, Thane and Palghar today. The IMD has issued red alert for Palghar district for tomorrow. In the view of the warning, the Palghar district administration has declared a holiday for all schools and colleges tomorrow. Shailaja Tiule, AIR, Mumbai.
1: Akashwani today unveiled its broadcasting house photo gallery Swar Prerna Vithika at Rang Bhavan Auditorium in Akashwani Bhavan, New Delhi. The photo gallery was inaugurated by Padma Vibhushan flautist Pandit Hari Prasad Chaurasia. Chief Executive Officer of Prasar Bharati Gaurav Dwivedi and Director General of Akashwani and DD News Rajiv Kumar Jain were also present at the event. Addressing the gathering, Mr. Dwivedi said, Akashwani has played a pivotal role in preserving and promoting India's rich musical heritage. Now to sports. In men's cricket, India will take on England in the first T20 International of the five-match series in Chesterlow Street tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. The Shreyas Iyer-led Indian side will look to bounce back from their shocking 2-0 defeat to Ireland in the last series. In football, England will clash with Democratic Republic of Congo, DR Congo, in a round of 32 match of the FIFA World Cup at Atlanta in US tonight. In other round of 32 matches, Belgium will take on Senegal at Seattle, while hosts United States will face Bosnia-Herzegovina in California. So far, Mexico, France and Norway have qualified for the round of 16. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Government approves two major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat Ji Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a three-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 International, a five-match series tonight, and in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight. That is all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। हुकूमत ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए की मालियत के शहराओं के बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक दो बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। विकसित भारत जी रामजी एक्ट आज से मुल्क भर में नाफिज हो गया है। मरकज ने इस स्कीम के तहत उजरत की नजरे सानी शुदा शरहों को नोटिफाई किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे के दावों में यकसानियत लाने की गरज से गाड़ियों के हादसे के मुतासरीन की आमदनी का तायुन करने के सिलसिले में रहनुमा खतूत जारी किए हैं। जापान की वजीर आजम सनाई तकाईची भारत के 3 रोज़ा दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। वो कल 16वें भारत जापान सालाना समिट में हिस्सा लेंगी। मर्दों के क्रिकेट में आज रात 5 मैचों की सीरीज में भारत और मेज़बान इंग्लैंड पहले T20 बैन अवी मैच में आमने सामने होंगे। और फीफा आलमी कप में आज रात अमरीका के अटलांटा में इंग्लैंड और DR कॉन्गो प्री क्वार्टर फाइनल में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने आज शाहराओं के बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक दो बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है, जिस पर मुश्तरका तौर पर 14,114.81 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन प्रोजेक्टों में 6,969 करोड़ रुपए का दिल्ली में सुरंग से मुताल्लिक एक प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद बहुत ज़्यादा ट्रैफिक को कम करना है। दूसरा प्रोजेक्ट 7,145 करोड़ रुपये के ग्रीन फील्ड शाहरा से मुतालिक है। ये शाहरा उत्तर प्रदेश में बनाई जाएगी। मरकजी काबीना के फैसलों के बारे में कौमी राजधानी में मीडिया से बात करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने बताया कि इन प्रोजेक्टों का मकसद PM गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान के तहत कनेक्टिविटी को बढ़ाना, सफ़र के वक्त को कम करना और इकतसादी सरगर्मियों को फ़रोग देना है। काबीना ने दिल्ली में कौमी शाहरा 148 AE पर 6 लेन वाली 8.1 किलोमीटर तवील सुरंग की तामीर को मंजूरी दी है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज में नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ेगी। काबीना ने उत्तर प्रदेश में कौमी शाहरा नंबर 34 पर 117.7 किलोमीटर कानपुर कबरई सेक्शन की तामीर को भी मंजूरी दी है, जो 4 लेन वाली एक्सेस कंट्रोल राहदारी होगी, जिसका ढांचा इस तरह वजा किया जाएगा कि इसे आसानी से 6 लेन वाला बनाया जा सके।
4: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
3: विकसित भारत जी रामजी एक्ट 2025 के तहत बढ़ी हुई उजरतों का इतलाक आज से मुल्क भर में हो गया है। देही तरक्यात की वजारत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरत की शरहें तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में बढ़ा दी गई हैं। वजारत ने कहा है कि पहली मरतबा 300 रुपये यौमिया की उजरत की एक अबूरी बुनियादी शरह मुतारफ कराई गई है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इस प्रोग्राम के तहत कोई भी नोटिफाइड उजरत इस सतह से कम न हो। विकसित भारत जी राम जी के तहत कौमी औसत उजरत एम जी

0: मनरेगा के तहत 298 रुपये 80 पैसे योमिया से बढ़कर 327 रुपये 40 पैसे योमिया हो गई है, जो कि 10% का औसत इजाफा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज रहनुमा खतूत जारी किए हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न की बुनियाद पर गाड़ी के हादसे में हलाक होने वाले मुतासरीन या दावा पेश करने वाले जख्मियों की सालाना आमदनी का तायुन अदालतें किस तरह करें। गाड़ियों के हादसे की सूरत में मुआवजों में यकसानियत लाने की गरज से एक अहम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तनख्वाह पाने वाले अफराद के लिए पिछले बरस की इनकम टैक्स रिटर्न ही सालाना इनकम का तायुन करने के लिए काफी होगी। अपना रोजगार आप चलाने वाले अफराद के सिलसिले में अदालत ने कहा है कि पिछले 3 बरस में दाखिल की गई आईटीआर में बताई गई औसत आमदनी को ही आमतौर पर रेफरेंस पॉइंट बनाया जाएगा। जस्टिस संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह ने कहा कि मोटर गाड़ियों के एक्ट के तहत सालाना आमदनी का हिसाब किताब लगाने के लिए कोई एक तयशुदा फार्मूला नहीं हो सकता, इसलिए उसने तनख्वाह पाने वाले मुलाजमीन और अपना रोजगार खुद चलाने वाले अफराद के दरमियान वाजह तफरीक कायम की है ताकि उनकी अपनी अपनी आईटीआर की बुनियाद पर मुआवजे का तायुन किया जा सके। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आबादी से मुतालिक तब्दीलियों के सिलसिले में आला सतह की कमेटी से कहा है कि वो जल्द अज जल्द अपनी सिफारिशात पेश करे। नई दिल्ली में कमेटी के साथ एक मीटिंग के दौरान जनाब शाह ने यह हिदायत दी। कमेटी ने वजीर दाखला को मुत्तला किया कि वह मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों का दौरा करेगी ताकि आबादी से मुतालिक तब्दीलियों के बारे में बर मौका इत्तलात हासिल कर सके और मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सके। कमेटी ने जनाब शाह को बताया कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से मुतालिका मालूमात हासिल करने की गरज से एक तफसीली सवालनामा पहले ही तैयार किया जा चुका है, जिससे उनके ये दौरे ज्यादा बामानी और ज्यादा तामुल पर मबनी हो सकेंगे। एक मुल्क एक इंतखाब से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के चेयरपर्सन पीपी चौधरी ने लोकसभा और रियासती कानून साज असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ मुनक्किद करने की ज़रूरत पर जोर दिया। नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात का एक साथ इनेकाद करने से हुक्मरानी का निज़ाम मुस्तहकम होगा, बार बार होने वाले चुनाव से खलल अंदाजी में कमी आएगी और ये मुल्क की मईशत के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जनाब चौधरी ने कहा कि इंतखाबात का एक साथ इनेकाद कराने का ख्याल नहीं है और इंतखाबी कमीशन, लॉ कमीशन और माहिरीन पर मुश्तमिल दीगर इदारे बरसों से इसकी तजवीज़ पेश करते रहे हैं। एक मुल्क एक इंतखाब के फवाइद बयान करते हुए जनाब चौधरी ने कहा कि इससे मिसाली जाब्ता अखलाक के बार बार निफाज में कमी आएगी।
1: राष्ट्र प्रथम की नीति सोच करके आज देश को वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है कि लोकसभा और विधानसभा के सारे चुनाव साथ हों। ये सोच जो है बहुत लंबे समय से चल रही, लेकिन उसको बिल के रूप में लाने का काम पहली बार हुआ।
0: मरकजी वजीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा ने डेंगू से मुतालिक तैयारियों के बारे में दिल्ली सरकार के साथ एक जायजा मीटिंग के दौरान अवामी शराकत दारी को मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया ताकि टीबी मुक्त भारत अभियान में तेजी आ सके। वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि इस मुहिम से मुतालिक तमाम इत्तलात और मालूमात सादा और आसानी से समझ में आने वाली जबान में होनी चाहिए ताकि अवाम तक वसी तर रसाई को यकीनी बनाया जा सके। भारतीय बहरिया के बहरी जहाज़ों INS तरकश और INS इक्षक ने सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया पर लंगर अंदाज होने का अपना दौरानिया मुकम्मल किया। वजारत दिफा ने आज बताया कि इन बहरी जहाज़ों का यह दौरा बहरे हिंद खित्ते में दोस्ताना बहरी मुल्कों के साथ बहरी तआवुन को मुस्तहकम करने के भारतीय बहरिया के अज़्म को दोहराता है। यह दौरा विजन महासागर से भी मुताबिकत रखता है। इस दौरान सेशल्स के कौमी दिन और गोल्डन जुबली तकरीबात के तहत मुख्तलिफ पेशे वराना इस्तकबालिया और कम्यूनिटी की शिरकत पर मबनी सरगर्मियों को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया। अपने दौरे के दौरान INS तरकश के बहरी बैंड और मार्चिंग दस्ते ने 28 जून को मुनक्किद सेशल्स के कौमी दिन की परेड में हिस्सा लिया, जो भारत और सेशल्स के दरमियान करीबी और दीरीना बहरी साझेदारी की अक्कासी करता है। ये आकाशवाणी है। जापान की वजीर आजम सनाई ताकाइची अपने 3 रोजा भारत दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। وزیر مملکت ڈاکٹر جیتین سنگھ نے وزیر اعظم تاکائچی کا خیر مقدم کیا. جاپان کی وزیر اعظم سنائی تاکائچی کا یہ بھارت کا پہلا سرکاری دورہ ہے. اس دوران وہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ کل سول

0: भारत जापान सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। ये चोटी कॉन्फ्रेंस फरीकैन को दो तरफा तआवुन के सभी पहलुओं का जायज़ा लेने, उन्हें मुस्तहकम करने और बाहमी मफादात के इलाकाई और आलमी मामलात पर नज़रियात का तबादला करने का मौका फराहम करेगी। वज़ीर आज़म मोदी और जापान की वज़ीर आज़म के दरमियान बातचीत के बाद कई मुफाहमत नामों के तबादले की उम्मीद है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत और जापान बुनियादी ढांचे, शहरी जदीदकारी, तवानाई, ज़राअत, सियाहत और हुनरमंदी प्रोजेक्टों समेत शुमाल मशरक़ी भारत में कनेक्टिविटी और तरक्की में शराकत दार हैं। शुमाल मशरक़ी खित्ता खुले और आज़ाद भारत बहरुल काहिल के जापान के नज़रिए से मुताबिकत रखता है और जुनूबी एशिया को जुनूब मशरक़ी एशिया से जोड़ने में पुल का काम करता है। शुमाल मशरक़ी खित्ते और जापान के दरमियान साल 2025 तक अब तक कई आला सतह के दौरे हुए हैं, जिनमें जापान के खारजी उमूर के वजीर ममलकत इवाओ होरी का इस साल फरवरी का भारत दौरा शामिल है। इस दौरान उन्होंने मेघालय और आसाम के वज़ीर आला से मुलाकात की थी। इसी तरह आसाम के वज़ीर आला ने भी गुज़िश्ता साल जनवरी के महीने में जापान का दौरा किया और आसाम और आसियान के दरमियान अगले 5 साल के दौरान 20,000 नौजवानों को तरबियत देने से मुतालिक मफाहमत नामे पर दस्तखत किए गए। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: भारत ने पाकिस्तान के फारूकाबाद में तारीखी 125 साल पुराने मुकद्दस गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को मुनहदिम किए जाने की सख्त मजम्मत की है और कहा है कि यह इंतहाई अफसोसनाक और तहजीबी विरासत को ख़त्म करने की एक तयशुदा कार्रवाई है। मुबैना इनदामी कार्रवाई के मुतालिक मीडिया के सवालात के जवाब में वजारत खारजा में तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने इस इनहदामी कार्रवाई पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया और मकामी हुक्काम या इवैक्यूट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की जानिब से कोई बामानी कार्रवाई न किए जाने की रिपोर्टों पर भी तशवीश जाहिर की। भारत ने पाकिस्तान से जोर देकर कहा है कि वो इस मामले की तेज़ी से तहकीकात करे और कसूरवारों को कैफर किरदार तक पहुँचाए। जनाब जायसवाल ने जोर देकर कहा कि गुरुद्वारा साहिब के मुनहदिम किए गए हिस्सों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए और उनकी तामीर नौ की जाए। भारत ने इस्लामाबाद से जोर देकर यह भी कहा है कि वह अकलियती फ़िरकों और उनकी इबादतगाहों के तहफ़ सलामती और ठीक ठाक रहने को यकीनी बनाए जाने से मुतालिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और पाकिस्तान में फिरके वारियत पर मबनी तशद्दुद और मजहबी अदम रवादारी के मौजूदा माहौल को फैसला कुन इख्तिताम तक पहुंचाए। भारत और पाकिस्तान ने आज नई दिल्ली और इस्लामाबाद में सिफारती चैनलों के जरिए एक दूसरे के मुल्कों में जेर हिरासत शहरी कैदियों और माही गिरों की फहरिस्तें एक दूसरे को पेश की। वजारत खारजा ने एक बयान में बताया कि भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 ऐसे शहरी कैदियों और 53 माही गिरों की फहरिस्त उन्हें सौंपी जो पाकिस्तानी हैं या जिनके मुतालिक ख्याल है कि वो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 सिविल कैदियों और 198 माही गिरों की फहरिस्त सुपुर्द की जो भारतीय हैं या जिनके मुतालिक ख्याल है कि वो भारतीय हैं। भारत पाकिस्तान के जेर हिरासत शहरी कैदियों, माहीगीरों और उनकी कश्तियों और लापता भारतीय दिफाई अहलकारों की जल्द अज जल्द रिहाई के लिए लगातार जोर देता रहा है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के यात्रियों का पहला जत्था जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप में पहुंच चुका है और कल से सालाना यात्रा शुरू होने की तमाम तैयारियां हो गई हैं। तमाम ज़रूरी तैयारियां जिनमें बढ़ी हुई सिक्योरिटी और यात्रियों की रिहाइश के इंतजाम शामिल हैं पूरी हो गई हैं। ये 57 रोज़ा यात्रा ननवान, पहलगाम और बालतल के रास्ते सख्त सिक्योरिटी में जारी रहेगी। आकाशवाणी ने आज नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में वाक़े रंग भवन ऑडिटोरियम में अपनी नशरियाती हाउस की फ़ोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का इफ्तिताह किया। इस फोटो गैलरी का इफ्तिताह पद्म विभूषण बांसुरी नवाज पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने किया। इस तकरीब के दौरान एक मौसीकी रेस कॉन्सर्ट का इनेकाद किया गया जिसमें पंडित रूपक कुलकर्णी ने बाँसुरी की धुनों से मन मोह लिया। इस तकरीब के दौरान प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी और दूरदर्शन न्यूज़ के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन मौजूद थे। इस मौके पर मौजूद अफराद से खिताब करते हुए जनाब द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की फरावा मौसीकी की विरासत को महफूज रखने और फ़रोग देने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है।
2: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म

करोड़ रुपए की मालियत के शाहराओं के बुनियादी ढांचे से मुतालिक दो बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। विकसित भारत जी राम जी एक्ट आज से मुल्क भर में नाफिज हो गया है। मरकज ने इस स्कीम के तहत उजरत की नजरसानी शुदा शरहों को नोटिफाई किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे के दावों में यकसानियत लाने की गरज से गाड़ियों के हादसे के मुतासरीन की आमदनी का तयन करने के सिलसिले में रहनुमा खतूत जारी किए हैं। जापान की वजीर आजम सनाई तकाईची भारत के 3 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, चर्चा का विषय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें हम बात करेंगे एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, जिनमें एक हैं प्रसून शर्मा जो एआई एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: और श्रोताओं हमारे साथ जुड़े हैं एआई एंड टेक एक्सपर्ट उत्पल चक्रवर्ती जी। उत्पल जी, कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार जी।
1: उत्पल जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे कि 2015 से लेकर के आज तक की इस पूरी यात्रा को अगर हम देखते हैं तो भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही और किस तरह ये जो उपलब्धि हासिल हुई है, जो भी हमने कार्य किए हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
3: जो ये टाइम फ्रेम जो है, इसके अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी फ्रंट पे बहुत एडवांसमेंट किया है, चाहे वो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम हो, या हम लोग ये भी देखे है कोरोना के टाइम पे अपना कोइन जो है, ये जो नया अभी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो कि सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, ये क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत एडवांसमेंट हुआ है, जो कि खाली देश के अंदर ही नहीं, ये विदेशों में भी ये एक मॉडल बन के आया है बाकी डेवलपिंग कंट्री के लिए, इवन की डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। क्योंकि हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है और इतना वर्सेटाइल है कि अभी हम लोग कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी, चाहे एआई हो, चाहे क्वांटम हो, या कोई भी डेटा इकोसिस्टम हो, सब कुछ हम लोग बना सकते हैं इसके। तो ये जो ग्राउंड वर्क किया गया है, ये 11 साल में मतलब रिमार्केबल मतलब उपलब्धि है।
1: प्रसून जी, अगर आपसे मैं बात करूं, आपसे जानना चाहूं तो डिजिटल इंडिया की जब शुरुआत हुई 2015 में, तब शायद किसी ने इतना नहीं सोचा होगा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में तैयार होगा। तो आपके हिसाब से इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी सोच क्या रही और कौन से ऐसे अहम फैसले थे जो इस बदलाव के भागीदार बने?
2: डिजिटल इंडिया के ये 11 वर्षों को ऐसा देखता हूँ कि लाइन में लगने वाली अर्थव्यवस्था को ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 वर्षों में। और उसके तीन महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां या माइलस्टोन मैं कहूँगा, पहला डिजिटल पहचान जो हमारा आधार है, दूसरा हमारा डिजिटल भुगतान जो यूपीआई है, तीसरा जो सरकार की सेवाएं हैं, चाहे वो आप पासपोर्ट देख लीजिए, टैक्स देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, मेडिकल सर्विसेज, उसका डिजिटाइजेशन, ये तीन बड़े स्तंभ हमने ना सिर्फ खड़े किए, उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करके एक ग्लोबल बेस्ट केस सिनारियो हमने क्रिएट किया है।
1: डिजिटल इंडिया के स्तंभों की अक्सर चर्चा की जाती है। श्रोताओं आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय में क्या कहा।
4: डिजिटल इंडिया के चार पिलर्स की पहचान की थी। डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए, दूसरा डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचे, तीसरा डेटा सबकी पहुंच में होना, और चौथा डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
1: और हर स्तंभ की अपनी एक विशेष भूमिका रही है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे प्रभावशाली स्तंभ कौन सा रहेगा, किसे आप चुनना पसंद करेंगे?
2: मुझे लगता है सबसे पहला है डिजिटल पहचान, वो सबसे बड़ा स्तंभ था और वो जिस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी पूरे विश्व में इतने बड़े लार्ज स्केल पे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रोजेक्ट हुआ है सक्सेसफुली। जब हमें डिजिटल पहचान मिली, उसी के बेस पे

0: हम सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो भुगतान हो, चाहे वो सब्सिडीज हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो मतलब आजकल हेल्थ इंश्योरेंस हो या पेंशन्स हो, तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो डिजिटल पहचान हमने दी है अपने सारे नागरिकों को, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहेगा इसका।
1: उत्पल जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
2: मैं सहमत हूँ सुन जी से, क्योंकि डिजिटल पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो भुगतान जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो मॉडल है ये मॉडल कोई भी जगह नहीं है। इतना यूपीआई जैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा खराब हुआ है, और आज खाली यूपीआई नहीं, फ्यूचरिस्टिकली अगर हम लोग देखें तो अगर कोई भी अगर ऐसा जो कि कंट्री को एंटायर पॉपुलेशन को सर्विस देने जैसा अगर कुछ बनाना है कल को, तो वो कर सकते हैं। और वो एग्जाम्पल मैं बोला कि हम लोग कोरोना के टाइम पे देखा कि हम लोग कितना जल्दी, मतलब ये जो कोविन एप्लीकेशन है उसको हम लोग लॉन्च कर दिए, और हमारा जितना भी वैक्सीनेशन है ये कितना अच्छी तरीके से हो गया, और ये भी एक बहुत बड़े मॉडल के जैसे बाकी देशों के सामने आ गया।
1: प्रसून जी, आज भारत में अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत ही लार्ज स्केल पर फैल चुकी है, गांव-गांव तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच रही है, 5G पहुंच चुका है लोगों के पास तक, तो असली चुनौती सिर्फ कनेक्टिविटी देना तो नहीं रहा होगा। हालांकि जो डिजिटल सेवाएं हैं हमारी, जिनको हमने शुरू किया है, जो आज बड़े पैमाने पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको सिखाने में खासतौर पर जो सरकार की भूमिका रही, उसे आप किस तरह देखते हैं कि सरकार ने कितना बढ़ चढ़ कर किस चीज को किया?
0: सरकार ने इसकी नींव रखी, जैसे सड़कें हमारी फिजिकल अर्थव्यवस्था को चलाती हैं, वैसे ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने क्रिएट किया, उसके ऊपर चाहे वो सरकारी सुविधाएं हों या हमारे तकरीबन 2 लाख स्टार्टअप्स हैं जो उसमें सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सरकार का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और वो फ्यूचरिस्टिक रहा है, और वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रहा है। ना सिर्फ कनेक्टिविटी, कंप्यूट एप्लीकेशंस भी रीजनल भाषाओं में दी जाए ताकि वो एकदम लास्ट माइल तक पहुंच सके, और लोकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स जो कि स्टार्टअप या एमएसएमई के थ्रू हो। तो मेरे हिसाब से सरकार ने एक बहुत अच्छा अगले 100 साल के लिए एक बेस प्रोवाइड किया है डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए।
1: डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि पहले एक दशक पहले की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो सरकारी काम कराने या किसी भी तरह के काम कराने के लिए लंबी कतारें देखी जाती थी, कई सारे कागज हमें इस्तेमाल करने होते थे, पेपर वर्क बहुत सारा होता था, चक्कर भी लोगों को लगाने पड़ते हैं। आज जो हमारे पास डिजी लॉकर की हम बात करते हैं, सीएससी की बात करते हैं, सिंगल ऑन स्क्रीन की बात करते हैं, सिंगल विंडो की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल गवर्नेंस ने आज हमारे जीवन को पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान बना दिया है?
0: जी बिल्कुल, ना सिर्फ आसान बना दिया है, अब हम उसमें एक लीडिंग एग्जांपल्स भी दे रहे हैं। हम डिजिटल इंडिया से अब एआई इंडिया मिशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें एआई से हमें समय कम लगेगा, हमारे काम जल्दी होंगे, और जो रूटीन काम थे जैसे पेपर वर्क वाले, और वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, उसमें जो भी खर्चा था या समय था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ना सिर्फ भारतीयों के लिए, ये पूरे विश्व के लिए। ये पहले अगर आप डिजिटल अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की बात करें, सिर्फ 2 ही डिजिटल इकोनॉमी थी पूरे ग्लोब में। पहला था यूएस ओरिएंटेड, जिसको हम गैफैम बोलते हैं, गूगल एप्पल वो प्रोवाइड करते थे। तीसरा चाइना सपोर्टेड था, जिसमें बायदू अलीबाबा आते हैं दूसरा, और तीसरा अब हमारा है भारत का जो ऑप्शन उन्होंने दिया है, जिसमें जो मेन कोर भारत के डिजिटल इकोसिस्टम का जो कोर है वो है टू बेनिफिट कॉमन मैन। हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड एम नहीं है। इसके बेस पे ना सिर्फ हम भारत के कॉमन सिटीजन्स को इंक्लूड कर रहे हैं डिजिटल, फाइनेंशियल और अदर एस्पेक्ट में, हम ग्लोबली भी ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपिंग नेशंस को, कि कॉमन सिटीजन्स को हम इंक्लूड कर सके बाकी सारी सर्विसेज।
1: इसमें एक चीज अगर ये हम जोड़े कि जैसे कुछ समय पहले तक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना सभी के लिए बहुत आसान नहीं था, लोग घबराते थे कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें या ना करें, इससे हमारा नुकसान ना हो, लेकिन अभी बीते एक दशक की हम बात करते हैं भारत सरकार के जो डिजिटल प्रयास हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये उसी का असर है कि आज टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा एडॉप्ट कर रहे हैं? आपने एआई का जिक्र किया था, बहुत ही तेजी से काम करने में बहुत सहायता हमारी ये पहुंचाता है, आज आम आदमी भी एआई को बड़ी तेजी से एडॉप्ट कर रहा है।
0: अगर आप सब्जी खरीदने भी जाते हैं और अगर आप QR कोड पे पेमेंट करते हैं और वो उस पे एक वॉइस कमांड आता है कि जिसमें आपका 200 रुपए का भुगतान हुआ, वो भी AI है। वो भी हमारे गांव में अभी जाने अनजाने में लोग यूज कर रहे हैं, वो भी AI का एक एप्लीकेशन है। ऐसे ही अगर आप किसानों के लिए कुछ एप्लीकेशन है जिसमें वो मतलब अपने AI बॉट से बातचीत करके पता कर सकते हैं कि भी किस तरीके का खाद डालना है, किस तरीके के बीज और कहां से लेना है। तो भारतीय सरकार ने ना सिर्फ इकोसिस्टम प्रोवाइड किया, उन्होंने जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स है उनको अनेबल भी किया, और इसमें जो नॉलेज एस्पेक्ट था, जैसे भारत ही एक सबसे विभिन्न तरीके से जीपीयू प्रोवाइड करा जो सबसे सस्ता है
1: जी।
0: पूरे विश्व में वो एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारा जो एआई कोश है उसमें जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस के जो एलएलएम्स या उसके रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अनेबलमेंट भी है और सॉल्यूशन एक्सेस भी है, नॉलेज शेयरिंग ग्लोबल लेवल पे, वो जो भी बेस्ट चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं उनको भारत यहाँ ला रहा है।
1: उत्पल जी, स्वास्थ्य और न्याय की अगर हम बात करते हैं तो ई हॉस्पिटल, ई संजीवनी और ई कोर्ट्स जैसी पहल आज हमारे सामने बहुत ही आसानी से उपलब्ध हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इन सारी चीजों ने आम लोगों के जीवन पर किस तरह से असर डाला, आप कैसे देखते हैं इसे?
2: ये तो बहुत ही अच्छी चीजें है, बिकॉज हम अगर इंडिया का बात करें तो हमारा जो दूर दराज का एरिया है जिधर की मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम लोग, वो स्टार्ट हुआ टेलीमेडिसिन से, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ऐसा भी स्टार्टअप्स और ऐसा भी इनिशिएटिव्स है जो कि डिजिटली उधर से डायग्नोसिस कर सकता है कुछ कुछ डिजीजेस का, और वो रिमोटली डॉक्टर के साथ उसको कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट होता है। हमारा एक स्टार्टअप को जिसको कि यूनाइटेड नेशंस एआई फॉर गुड में जिसको भी किया गया है, जो कि प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन को वो लोग डिटेक्ट कर सकता है एक छोटा सा डिवाइस, अफोर्डेबल डिवाइस से, और वो गांव का दूर दराज एरिया में लेके जा सकता है और उसको ये कर सकता है। और इसका पूरा श्रेय जाता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि वो बैकबोन अगर नहीं होते तो हम लोग ये बाकी जितना भी चीज है ये करने, तो बहुत ऐसा कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है जो कि बिट्स एंड पीसेस में स्टार्ट किया और मैक्सिमम जो काम किया वो प्राइवेट सेक्टर ने किया या प्राइवेट बड़ा बड़ा कंपनी ने किया। लेकिन इंडिया का जो मॉडल है ये एक यूनिक मॉडल है। इसमें क्या किया, जो बेस लाइन है और जो बेस है और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया और इसको ओपन कर दिया पब्लिक के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, बाकी कंपनीज के लिए कि इसको एक्सेस करें। तो इसीलिए आप अगर देखोगे आज ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम लोग आधार का सर्विस यूज कर सकते, तो इट इज ए ओपन प्लेटफॉर्म, हम कोई भी एपीआई कॉल करके आधार से ऑथेंटिकेट, जो कि सबसे अच्छा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। ऐसा कोई भी हमारा अगर कुछ भी जरूरत है, पेमेंट्स का, मैं अगर ई कॉमर्स साइट करना चाहता हूँ या कोई भी चीज ऐसा करना चाहता हूँ, अगर पेमेंट इको सिस्टम चाहिए तो मेरे पास यूपीआई है, मैं इजिली इंटीग्रेट करके कर सकता हूँ। तो ये मॉडल जो है इट्स ए यूनिक मॉडल कि गवर्नमेंट ने आपको पूरा का पूरा बेसलाइन प्रोवाइड किया, इको सिस्टम प्रोवाइड किया, ऑन टॉप ऑफ द इको सिस्टम आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। एंड वही एआई का अभी सुन जी ने बात किया कि एआई कोशा में जो सब्सिडाइज रेट में जीपीयूस दे रहे थे, एंड ऑल अदर थिंग्स आर ऑल पार्ट ऑफ दैट।
1: उत्पल जी, जब सरकार की व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं तो आज कितना आसान हो गया है कि MyGov जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ी आसानी से हमें जानकारी उपलब्ध करा देते हैं सरकार की चीजों के बारे में, और ये कितना आसान है कि लोग सीधे सरकार से जुड़ सकते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार ने अब तकनीकी रूप से अपने नागरिकों के बीच संवाद करने की पहल को और ज्यादा खुला, पारदर्शी और सहभागी बनाया है?
2: डेमोक्रेसी में जो होता है, जो सिटीजन है सरकार के पास रहना चाहिए, तो वो पास का जो जरिया है वो है कम्युनिकेशन, वो कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ऐसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो होता है कि सरकार से जो जनता है वो दूर में चला जाता है, क्योंकि उसका वो जो जरिया है वो नहीं है। लेकिन ये जो सरकार हमारा है बीते 11-12 साल में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप जो सिटीजन है वो सरकार के साथ जोड़ सके। और ये जितना भी है MyGov आप देख रहे हो, बाकी जितना भी है, ये चैनल्स है सरकार के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अपना कोई भी जो प्रॉब्लम्स है या कोई भी आइडियाज है या कुछ भी है उसको सरकार के पास तक के लेके जाना। तो मैं समझता हूँ ये जो दीज आर ओनली चैनल्स, आप देखोगे फ्यूचर में और भी ऐसा चैनल आएगा जो कि सिटीजन को सरकार के और पास लेके जाए, एंड दैट्स द रियल डेमोक्रेसी।
1: प्रसून जी, उमंग, GSTN, पोषण ट्रैकर और पीएम गति शक्ति जैसे जो प्लेटफॉर्म है आज अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सरकारी व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी सहायता करते हैं, तो ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है सरकारी सेवाओं को आगे पहुंचाने का, आपको क्या लगता है कि काफी आगे तक बढ़ चुका है या इसमें भी और भी काम करने की जरूरत है?
0: काफी आगे तक बढ़ चुका है और आगे डेफिनेटली और इवॉल्व होगा, क्योंकि एक ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप देखिए इसमें काफी सर्विसेज हैं, इवन प्रोक्योरमेंट जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी और अनेबलमेंट चाहिए थी, हमारे स्टार्टअप्स अब किसी भी सरकारी टेंडर में भाग ले सकते हैं, हमारे स्टार्टअप्स को जो भी ग्रांट्स हैं वो सब ऑनलाइन हो चुका है, इवन जो आपको सर्टिफिकेशन, उद्यम सर्टिफिकेट चाहिए, DPIT रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और आपको निश्चित समय में वो उसका जवाब मिलता है, और अगर कोई क्लैरिफिकेशन भी होता है तो वो डिजिटल माध्यम से ही होता है। तो तकरीबन अगर आप देख रहे हैं, हम दुनिया की टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसीलिए ही आए हैं क्योंकि ये अनेबलमेंट हुआ है, ग्रांट डिसबर्समेंट हो रही है, प्रोजेक्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। अब हम डिजिटल यूजर से डिजिटल

0: सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो गए हैं ग्लोबल इकोसिस्टम में, ना सिर्फ कॉमन सर्विसेज में, अब रिसर्च ओरिएंटेड सर्विसेज में, जिसमें आप आजकल डीप टेक, जैसे हमारे भारत इनोवेट में प्रधानमंत्री ने भी कई फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सॉल्यूशन दिखाए हैं, जैसे 3D प्रिंटेड हमारा पहला रॉकेट दिखाया गया वहां पे। तो ये तभी संभव हुआ जब हमारे पास डिजिटल एक्सेस आया, ट्रांसपेरेंसी थी, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हुए इस डिजिटल एक्सेस के थ्रू, और पार्टिसिपेशन मिला रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप्स और MSME को।
1: जी उत्पल जी, जनधन, आधार और मोबाइल यानी कि जैम ट्रिनिटी जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी डिजिटल इंडिया की एक तरह से मेरुदंड है। तो आपके हिसाब से इस मॉडल ने आम नागरिक तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो तो किस तरह से इसमें बदलाव लाया है?
2: पहला जो है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आइडेंटिटी जब भी हो जाएगा तभी मिडिल मैन कोई नहीं रहेगा बीच में। और इसीलिए क्या हो रहा है, जितना भी गवर्नमेंट का बेनिफिट्स है, जितना कुछ है, डायरेक्टली सिटीजन तक के पहुंच रहा है। तो ये तो डायरेक्ट चैनल एस्टेब्लिश तभी हो पाया जब भी हम लोग आइडेंटिटी किया। सेकेंड थिंग है कि जो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम को, बैंकिंग इकोसिस्टम जो है, और इसमें हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लस हमारा RBI का एंड हमारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि ये जो इकोसिस्टम बनाया है, ये इकोसिस्टम को यूटिलाइज करके अभी पेमेंट्स या जो ट्रांसफर हम लोग बोलते हैं कि बहुत इजी हो गया है, वेदर डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर से। और भी बहुत बेनिफिट हो रहा है कि हम लोगों का जो पहले बहुत कुछ जो ये हो रहा था, मतलब कि पैसे के लेन देन में बहुत कुछ जो गड़बड़ी हो रहा था, वो सब भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जितना भी है, अभी वो इजीली कोई भी फ्रॉडुलेंट केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस को आइडेंटिफाई कर सकता है। क्योंकि क्या है, जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो पूरा क्लीन हो गया है। उसके साथ साथ डिमोनिटाइजेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हमारा पूरा डिजिटल इकोनॉमी लाने जो आ गया, उससे बहुत कुछ करप्शन छोटे लेवल पे जो कुछ भी करप्शन ये सब है वो सब हट गया। तो ये जितना भी बेनिफिट्स आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल सिटीजन सेंट्रिक, मतलब एक पहल है जो कि सिटीजन को मतलब मिडिल में रखते, सेंटर स्टेज में रखते हुए सब कुछ बनाया गया है। और आई थिंक इससे बहुत बड़ी दूरदर्शिता का काम किया है, जो कि अभी प्रसून जी ने बताया कि 100 साल के बारे में सोच के बनाया है, तो मैं भी सहमत हूँ उनसे।
1: अब प्रसून जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेमिकॉन की हम बात करते हैं। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में क्या जानकारी दी।
3: सेमीकंडक्टर चिप जो होती है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर, इस डिजाइन को इसके ऊपर सिलिकॉन वेफर के ऊपर कंप्लीट फैब्रिकेशन किया जाता है, और उसके बाद में इसमें से इंडिविजुअल चिप्स को निकाल के सेमीकंडक्टर की चिप्स का उपयोग किया जाता है। तो बहुत खुशी की बात है कि भारत में पूरा इकोसिस्टम आ गया है। ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, सेमीकंडक्टर है, तो आप बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। हर चीज के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए, तो देश के लिए बहुत बड़ी एक जरूरत है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत फोकस दिया, और अब अपने 10 प्लांट में से 4 प्लांट की पायलट लाइन रेडी है। टीजी सेमी में प्रोडक्शन चालू हो गया, पहली मेड इन इंडिया चिप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई, और साथ ही साथ भारत में टैलेंट को डेवलप करने के लिए बड़ा काम चल रहा है। 278 यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग दी जा रही है, और बहुत ही खुशी की बात है कि जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लिए हुए स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 20 चिप्स ऑलरेडी डिजाइन की है, डिजाइन करके उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है।
1: डिजिटल इंडिया को हम पूरा का पूरा तकनीक से जोड़कर देखते हैं, और इसका कहीं ना कहीं एक पहलू रोजगार भी है। तो IT, AI, सेमीकॉन और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए जो अवसर निकल रहे हैं, उन पर आपके क्या विचार हैं?
0: डिजिटल इंडिया ने हमें डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किया, AI, सेमीकंडक्टर हमें डिजिटल इंटेलिजेंस और सोवर्निटी प्रोवाइड करेंगे। और आपने बात की साइबर सिक्योरिटी और सेमीकॉन जैसे, इसका मूल है कि चिप, अगर आप देखिए मोबाइल, कार और जितने भी होम अप्लायंसेस है, उसका जो भी प्रोसेसिंग है या इंटेलिजेंस यूनिट, वो चिप होता है। तो पहले हम ऑलमोस्ट सारे ही चिप हम आयात करते थे, अब हम खुद बनाने लगे। नॉर्मली चिप बनाने में भी 10 से 15 साल लगते हैं, पर जिस स्पीड से भारतीय इकोसिस्टम में वो डेवलप हुआ है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो लिया था भारत सरकार ने, वो सक्सेसफुली डिलीवर किया। अब हम चिप बना रहे हैं यहाँ पे, और उसके साथ जो पूरी सप्लाई चेन है वो भी हमने खड़ी करी। तो ये एक इंटेलिजेंस युग में हम जा रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ हम यूजर हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, ना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए पर पूरे विश्व के लिए। और अब सबसे बड़ी बात आजकल चल रही है टेक सोवरेनिटी की, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट में अगर आप देखिए, तो इन डिजिटल एक्सेस के थ्रू ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इंक्लूशन एम्पावरमेंट की कहानी है। अब हमारा खुद ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक स्टार्टअप था जिसने एंटी ड्रोन एक सॉल्यूशन बनाया जो यूज हुआ, वो इंडिजीनियस है, भारत में बना है। ऐसे ही जो डिफेंस रिलेटेड जो स्टार्टअप चैलेंजेस है,

0: आईडेक्स के थ्रू, वो भी इस इकोसिस्टम के थ्रू अनेबल हो रहे हैं. उनको ट्रायल्स के लिए फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है और वो सारा ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप अप्लाई करते हैं, अपना सॉल्यूशन दिखाते हैं, फिर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट असाइन होती है और अगर आपका वो सॉल्यूशन चल रहा है तो आपका प्रोक्योरमेंट भी किया जाता है. तो ये सारा एक एम्पावरमेंट की तरफ जो पूरा इकोसिस्टम गया है वो एक सराहनीय कदम है, ना सिर्फ भारत के लिए, अब हमारी टेक बाहर के देशों में भी उसकी डिमांड हो रही है. अगर आप देखिए डिफेंस रिलेटेड एस्पेक्ट में हमारे ड्रोन्स, हमारे सर्वेलेंस की मांग काफी बढ़ रही है, हमारे स्पेस टेक की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है.
1: कर रहे हैं हम
0: जी, और अभी जब प्रधानमंत्री यूरोप की यात्रा में थे तो काफी MOU साइन हुए स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स के जरिए. तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, भारत को एज अ डीप टेक रिसर्च ओरिएंटेड प्लेयर के रूप में स्थापित करने के.
1: उत्पल जी, अगर भारत की संभावनाओं को थोड़ा सा ध्यान में रखें तो एक समय था जब भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आयात पर सबसे ज्यादा निर्भर करता था, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता बन चुके हैं. तो ये जो डिजिटल इंडिया की सफलता हमने प्राप्त की है, इसके पीछे आप किन चीजों को मानते हैं, कि आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से बदलाव हुए जो ये सफलता हमारे देश को अर्जित हुई?
2: ये पॉलिसीज में है, पॉलिसीज में सुधार हुआ है. उसके बाद स्टार्टअप और बाकी कंपनीज को वो जो एनकरेजमेंट, ओके एंडोर्समेंट जो मिलते हैं उसके वजह से भी हुआ है. तो आप देखिए अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट कर दिए हैं, काम इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है, AI में ऑलरेडी हो रहा है. हम लोग सोवरेन AI का बात कर रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है कि हम लोग खुद का हमारा इंडिपेंडेंट मॉडल्स रहे, एटलीस्ट हमारा क्रिटिकल सेक्टर जो है, चाहे डिफेंस हो, चाहे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट कुछ कुछ सेक्टर हो, हेल्थ केयर सेक्टर्स हो, तो ये सब में सोवरेन AI का आ गया है. और जो भी सोवरेनिटी का बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं. उसके बाद अभी क्वांटम आ रहा है, अभी क्वांटम के लिए भी बहुत जगह पे क्वांटम प्रोसेसर, क्वांटम चिप्स जो है वो बनाने का काम चालू हो गया. हमारा जो क्वांटम इंडियन, क्वांटम नेशनल क्वांटम मिशन है, उसके तहत हम लोग क्वांटम हब्स बनाए हैं, जिसमें कि अलग अलग तरीके का क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च हो रहा है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है या क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है ये नेक्स्ट फ्रंटियर है, मतलब और ये AI के साथ कॉन्वर्ज होगा, मतलब AI के साथ एक साथ होके एक हम लोगों को नई दुनिया देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वांटम वो स्पीड लेके आएगा, वो पैरालिज्म लेके आएगा, उतना सिक्योरिटी लेके आएगा जो कि आज हम लोग सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कोई भी जगह सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए. तो क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, ये जितना कुछ भी चीज है, ये पूरा सब कुछ ये इकोसिस्टम के ऊपर ही बनेगा. और मैं इसके लिए गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज जो चेंजेस हुआ है, ये बाकी सब कुछ बाई प्रोडक्ट है पॉलिसीज. आप जो भी पॉलिसी चेंजेस करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली इसको बढ़ावा मिलेगा.
1: अभी मैंने प्रसून जी से बात की थी सेमीकॉन पर, तो आपको क्या लगता है कि सेमीकॉन की जो संभावनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन हमारे लिए बढ़ती जा रही हैं?
2: सेमीकंडक्टर पे हम लोग निर्भर नहीं रह सकते हैं बाहर के कंपनीज को ऑलवेज, क्योंकि क्या हो गया अभी AI के लिए भी हम लोगों को GPU चाहिए. अभी GPU अगर जो देखा जाए तो 2-3 कंपनी है जो कि बाहर का कंपनी है, उनके ऊपर हम लोग निर्भर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को खुद का GPU चाहिए. हम लोगों को वो माइक्रो चिप्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो नैनो लेवल पे जो भी अभी काम हो रहा है, वो सब वो फैब्रिकेशन का जरूरत है. अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो AI तो शायद हमारा खुद का हो जाएगा, हमारा बाकी भी चीज शायद खुद का हो जाएगा, लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो रन करता है, जो GPU पे रन करता है, वो फिर भी बाहर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रह जाएंगे. तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिवोल्यूशन एक इंडिया में आया है और इसको आगे लेके जाए और इसको पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिपेंडेंस के तक के जाए, तो सो दैट कि हम लोग किसी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिपेंडेंट ना रहे.
1: जी, अब प्रसून जी, जैसे भी डिजिटल व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब जिक्र होता है तो तमाम चीजें हमारे सामने आती है, किस तरह से हम अपने काम को करेंगे, जो सेफ्टी एक बड़ा पैरामीटर हमारे लिए, खासतौर पे जब हम बैंकिंग की बात करते हैं या फिर जहां पर पैसे से रिलेटेड चीजें होती हैं, वहां पर किस तरह की चीजें आपको लगती है कि और ऐड की जा सकती है या फिर उन पर हम काम कर रहे हैं?
0: तो ये डिजिटल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड एस्पेक्ट, आई थिंक काफ़ी इनिशिएटिव भारत सरकार ले रही है, खासकर अवेयरनेस रिलेटेड कि कैसे इसको यूज़ किया जाए. जैसे अगर आप देखिए सरल भाषा में, हमें एड्स या वॉइस एड्स आते हैं कि OTP शेयर नहीं करना है या ऐसे में वो आ रहे हैं, पर उसको आगे और सुदृढ़ करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन करना चाहिए. जैसे इनिशिएटिव हुआ है कि जो बैंक्स भी आपको ट्रांजैक्शंस या SMS या वॉइस बेसिस भेजते हैं, क्या वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भेज सकते हैं क्या, बंगाली, मराठी, गुजराती? क्योंकि जो भी ये हैकर्स हैं मोस्टली वो इंग्लिश या जो प्रेवलेंट लैंग्वेजेस हैं, थोड़ी बहुत हिंदी में वो अटैक कर सकते हैं, पर हमारे पास एक इनहेरिट स्ट्रेंथ है डिफरेंट लैंग्वेजेस की, हम उसको अगर यूज करने लगे तो वो हमारी सोवरेनिटी, सिक्योरिटी और ट्रस्ट के लिए

0: ये बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी, और आई थिंक ये रिकॉग्नाइज हुआ भी है हमारे कुछ इकोसिस्टम में। रीजनल लैंग्वेजेस को डिजिटल कम्युनिकेशन में और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में यूज करना शुरू कर दिया गया है। तो आई थिंक ओवरऑल इसमें भारत सरकार काफ़ी इनिशिएटिव्स ले रही है। जैसे हमने भी एक IITs के थ्रू MSMEs को अवेयर करने के लिए कि इनको कैसे यूज़ किया जा सकता है और बेसिक साइबर सिक्योरिटी के क्या प्रैक्टिसेज हैं वो ली जा सकती है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। पर उसमें मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे आके उसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए अवेयरनेस में। ये सिर्फ गवर्नमेंट पे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, यूजर प्राइवेट कॉरपोरेट्स को भी आना चाहिए इसके आगे और कंट्रीब्यूट करना चाहिए।
1: आपने MSME का जिक्र किया, तो जब MSME की हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि छोटे कारोबारियों को ज्यादा मौके देने की बात होती है। इसमें ONDC जैसी पहल हो या फिर GEM जिसे हम जेम भी बोलते हैं, उस तरह की पहल हो, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको लगता है कि सभी को अब आज के समय में पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं और बराबर के अवसर दिए जा रहे हैं?
0: जी बिल्कुल, और ये सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट है। अगर आप देखिए, पहले उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाया, वहाँ पे उन प्रोडक्ट्स के जो MSMEs हैं उनको अनेबल किया। अब उनके प्रोडक्ट्स को वो डिजिटल कैटलॉग्स में ONDC पे ला रहे हैं। फिर अगर आप देखिए, हमारी सरकार ने मल्टीपल FTAs साइन करे हैं। अब
1: जी
0: ONDC के थ्रू वो अपना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और जो एक्सपोर्ट के लिए उनको चीज़ें चाहिए, जैसे वहाँ की सर्टिफिकेशन चाहिए, क्वालिटी चेक्स चाहिए, उनके रीजनल भाषाओं में कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि चाहे वो हमारे फार्मर्स हो या हमारे हैंडीक्राफ्ट मेकर्स हो, वो समझ सकें और उनके ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिक सकें। तो ये अगर आप देखिए, सारे लेयर्स पे अनेबलमेंट सरकार कर रही है। पहले उनके प्रोडक्ट को हाईलाइट और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ला रही है, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले कर रही है, फिर बाहर के मुल्कों के साथ FTA कर रही है, और उसके थ्रू उनको एक नई मार्केट का एक्सेस दे रही है।
1: इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, आज का दिन पहले जुलाई का दिन है और आज से कुछ साल पहले GST हमारे देश में आज के दिन ही पेश किया गया था। इसी से मैं इसको जोड़ना चाहूंगा कि GST जैसी पहल जो पूरी तरह से डिजिटल थी, या उसके साथ में जो टैक्सेशन की जितनी भी चीजें थी, इस तरह से उनको डिजिटल किया गया कि कारोबार करना हमारे देश में आसान हो जाए, चाहे छोटा व्यापारी हो बड़ा व्यापारी हो, पूरे देश में कहीं भी व्यापार कर सके और आसानी से अपनी चीजों को फैला सके और उससे अपनी अर्निंग कर सके।
0: जी, टैक्सेशन और खासकर MSMEs को ये कंप्लायंस के बर्डन से काफ़ी हद तक मुक्त किया गया है, काफ़ी हद तक उन चैलेंजेस को हटाया गया, बट अभी भी काफ़ी चैलेंजेस हैं। पर आई थिंक वो इवॉल्व हो रहा है सिस्टम, एंड सरकार आई थिंक ओपन है डिस्कशंस या इम्प्रूवमेंट्स के सजेशन के लिए, और वो मल्टीपल फोरम्स में एंगेज हो रही है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो MSME हो, चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, और चाहे वो जैसे आप पॉलिसी एडवोकेसी वाले लोग हों। क्योंकि अगर आप हमारे MSME के जो प्रोडक्ट्स हमें बाहर बेचने हैं, FTA के थ्रू बेचने हैं, तो उसमें भी कुछ ट्वीकिंग चाहिए होंगी हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। तो आई थिंक काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ होना बाकी है, पर उसके लिए सरकार इंगेज है ग्राउंड लेवल पे।
1: उत्पल जी, माई भारत जो हमारी पहल है वो युवाओं को, और एग्री स्टैक जो किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, इनको आप इस तरह से देखते हैं कि लोगों के पास अब नए अवसर बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं और ये एक तरह से व्यापक अभियान का रूप ले चुके हैं?
2: हाँ जी, जरूर। जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, उसका जो ऑल्टरनेटिव्स है, हम लोग को ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना पड़ेगा, और वो हमारे जो सरकार है वो बहुत अच्छी तरीके से ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है कि हमारा जो स्किल्ड, अगर आपके पास स्किल है तो आपको खाली जॉब का जरूरत नहीं है, आप जॉब के सिवा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वो फ्रीलांसिंग हो, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो, या एंटरप्रेन्योरशिप हो, बाकी जो कुछ भी आप कर सकते हैं स्किल। सो मेरे ख्याल से जो स्किल के ऊपर अगर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, जो कि
1: जी
2: ऑलरेडी वो हो रहा है ये सब पहल के माध्यम से, तो क्या होगा, हमारा जो जॉब के ऊपर जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग जॉब सीकर्स से जॉब प्रोड्यूसर्स ज्यादा बन जाएंगे, और क्या करेंगे, हमारा स्किल को हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे कि बाहर का काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ऑनलाइन जॉब्स है, बहुत कुछ ये है
1: जी
2: जो कि हम लोग ये करते। तो दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स, ये सब कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है, जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से हमारा जो यूथ है, यूथ को एम्पावर करने का कोशिश किया जाता है, और इसका जो सेंटर स्टेज पे है वो है स्किल। क्योंकि अगर स्किल है तो हमारा जो एंटायर जो इकोसिस्टम है वो डिग्री बेस्ड या सर्टिफिकेशन बेस्ड इकोसिस्टम से अभी स्किल बेस्ड इकोसिस्टम पे ट्रांसफर हो रहा है, और ये खाली इंडिया का नहीं है, पूरा दुनिया में ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है एक सिस्टम से। नाउ कमिंग टू हेल्थ केयर, जो आपने बात किया उसमें भी बहुत कुछ चीजें हमारा हो रहा है जो कि एक मॉडल होके निकलेगा। इंडिया ये अभी अलग तरीके से कर रहा है, बिकॉज मैं क्या देखता हूँ, इंडिया का जो मॉडल है ये यूनिक मॉडल देखता हूँ, ये कॉपी पेस्ट नहीं है कोई भी कंट्री के साथ, तो ये तो मैं बोल सकता हूँ।
1: श्रोताओं, चर्चा का विषय में आज बस इतना ही। हमने आज बात की डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें चर्चा की गई AI, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हमारे साथ खास मेहमान, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे

0: डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष एआई सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: चर्चा का विषय है
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजना को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेस को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
3: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
3: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबरई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
2: विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेंगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेंगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हो। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और DR कांगो के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The government today approved 2 major highway infrastructure projects worth a combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the Cabinet has approved the construction of an 8.1 kilometre long 6-lane road tunnel in Delhi on NH-148AE, connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Marg in Vasant Kunj. Mr. Vaishnav said the Cabinet also approved the construction of the 117.7-kilometre long Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a 4-lane access-controlled corridor. The Vikasit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Vikasit Bharat G. Ramji Act 2025 has come into force across the country today. Under the Act, eligible rural households will now have a statutory entitlement to 125 days of guaranteed wage employment. The government also notified revised wage rates under the VBG Ramji Act 2025 for all states and union territories. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan described today as an unprecedented day for rural India. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrived in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. Prime Minister Takaichi was received by Minister of State Dr. Jitendra Singh. This is her first official visit to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit tomorrow with Prime Minister Narendra Modi. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between the two leaders. The government today gave a 1-year extension to Foreign Secretary Vikram Misri till the 14th of July next year. The Appointments Committee of the Cabinet approved a 1-year extension in service for Foreign Secretary Vikram Misri, who is a 1989 batch IFS officer. Mr. Misri assumed charge as Foreign Secretary on the 15th of July 2024. Earlier, he was also India's ambassador to China from January 2019 to December 2021. He also served as private secretary to 3 prime ministers of India, I.K. Gujral, Dr. Manmohan Singh and Narendra Modi. The government today issued a notice to Meta regarding rollout of the username feature on WhatsApp in India. Sources said the Ministry of Information and Technology directed Meta to furnish a detailed explanation on the usernames feature within 3 days. The ministry also directed Meta to not roll out the feature until consultation on the matter is over. Sources said the ministry has taken note of a public announcement by WhatsApp that it has commenced a phased global rollout, including in India, of its usernames feature. It said once the feature is enabled, the recipient's phone number will no longer be visible to a first-time contact and that an optional username key may be set as an additional control. The Office of the Chief Electoral Officer of Delhi has informed that over 32,000 enumeration forms across the national capital have been digitized as of today. About 9,99,000 forms have been distributed as part of the Special Intensive Revision SIR of electoral rolls in Delhi. The house-to-house distribution of electoral enumeration forms is currently underway. As part of the exercise, over 13,000 booth-level officers will visit every household till the 29th of this month to distribute pre-printed enumeration forms in duplicate to all existing electors for verification and updation of the electoral rolls. Claims and objections can be filed from the 5th of August to the 4th of September. The final electoral roll will be published on the 7th of October. Electors can fill the enumeration form online at www.voters.eci.gov.in. In men's cricket,

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम माटी के रंग, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे सुश्री महेश्वरी प्रकाश के गाए गढ़वाली गीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम राग रंजन। इसके अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आज हम सुनेंगे श्री अब्दुल सामी खां का सरोद पर बजाया गया राग रागेश्री।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राग रंजन के अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में श्री अब्दुल सामी खान का राग रागेश्री में सरोद वादन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपये है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज AP मॉलर मॉर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और DR कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक DR कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं और समय हो चला है कार्यक्रम फिल्म संगीत का, जिसे लेकर हाजिर हैं आपके दो दोस्त। कार्यक्रम में मैं हूं आज आपके साथ सविता, और मेरे साथ हैं
1: मैं हूं आपकी साथी वंदना, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।
0: और वंदना, स्वागत करते हैं शब्दों के साथ उन बूंदों का भी जो बरसने को तैयार हैं और कहीं पर बरस कर मौसम को खुशनुमार कर रही हैं।
1: बिल्कुल ठीक कहा सविता भाई, दिल्ली तो कम से कम इंतज़ार कर रही है, और आज कुछ घटा बन भी गई है कि बूंदें बेताब हैं धरती से मिलने को, लेकिन बहुत से राज्यों में बारिश हो गई है। और हम भी चाहेंगे हमारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े और बताएं किसके यहाँ पर सबसे पहले मानसून की बारिश पड़ चुकी है।
0: और अगर बारिश से जुड़ी उनकी कोई बात है, कोई याद है, तो उसे भी साझा कर सकते हैं। हमें इंतजार रहेगा आपके ऐसे ही संदेशों का। कार्यक्रम में आज वही संदेश लेंगे जिसमें बरसात का जिक्र होगा। फिलहाल जब बरसात की बात आ रही है, तो बरसात के दिन शुरू हो गए हैं, तो ऐसे दिनों में गीत कुछ ऐसे ही पसंद आते हैं।

0: कुमार सानू की आवाज़ में बड़ा ही खूबसूरत सा ये गीत। और वाकई बरसात के दिन आते हैं तो वंदना मन बड़ा ही उत्साहित हो जाता है। कभी कभार बादलों को देखकर ऐसा लगता है कि ये टूट कर बरस जाएं, और कभी लगता है कि अपनी प्यारी सी फुहार के साथ ये धीमे धीमे से भिगोएं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने सविता। और बरसात का मौसम मुझे लगता है चंद कोई ऐसे ही होंगे जिन्हें प्रकृति से प्रेम नहीं होगा, जिन्हें पसंद ना हो। हर किसी को बरसात का मौसम पसंद है, और ये एक ऐसा मौसम जो कहते हैं ना, जो प्यार में डूबे हुए हैं उनके लिए भी उतनी अहमियत रखता है, तो जिनके दिल टूटे हुए हैं उनके लिए भी उतनी ही अहमियत रखता है ना।
0: बिल्कुल सही कहा। टूटा दिल हो या फिर प्यार से सराबोर दिल हो, ये जो बरसात है ना, सभी के दिल को भिगो कर चली जाती है।
1: और दिल्ली के बारे में तो फिलहाल अभी जो मौसम बना हुआ तो इतना ही कहूंगी कि जो अहमद फराज साहब कहते हैं कि अब के सावन में तो ये शरारत हमारे साथ हुई, अब के सावन में तो ये शरारत हमारे साथ हुई, हमारा घर छोड़कर पूरे शहर में बरसात हुई।
0: वाह क्या बात है। शहर में जब बरसात हो और वहाँ पर हमारे जो कुछ साथी रहते हों और वो बताएं कि भाई बरसात उनके शहर में हो रही है और किस कदर उन्हें भिगो रही है, तो भाई क्या बात है। ये कार्यक्रम जो है वो आप सभी के साथ बनता है जब आप अपनी बात से बात जोड़ते हैं, जब हम कोई बात कहते हैं और आपके जो संदेश हैं वो हम तक पहुंचते हैं। तो पहला संदेश वंदना लेने का वक्त आ चला है।
1: बिल्कुल,
0: हमारे पास पहला संदेश मिला है, ये लिखकर भेजने वाले हैं सतीश अनेजा जी, जो हमें संदेश भेजते हैं। इन्होंने हमें संदेश भेजा है चंडीगढ़ सिटी से, और इन्होंने लिखकर भेजा है कि मानसून ने कई राज्यों में दस्तक दे दी है और पहली बौछार जो है वो इनके शहर चंडीगढ़ को भी भिगो चुकी है। पहली बारिश में घर में बने मंदिर में मानसून की पूजा करते हैं, और इनके यहाँ पर शायद ये रिवाज है कि उसके बाद पूजा करने के बाद प्रसाद बांटा जाता है और दुआएं मांगी जाती हैं कि जो बारिश है वो अपनी रहमत हमेशा बरकरार रखे और किसी को नुकसान हो। वाकई ये बात बहुत ज़रूरी है वंदना कि हम बारिश का इंतज़ार बेइंतहा करते हैं, लेकिन ये बरसात कभी कभार जितनी हमारे लिए बेहतरीन रहती है, किसी किसी के लिए एक मुश्किल का सबब भी बन जाती है। ये कहते हैं कि पिछले साल हिमाचल और पंजाब में काफ़ी बाढ़ आई थी और मानसून की वजह से वहाँ पे काफ़ी नुकसान भी हो गया था, तो इस बार ऐसा ना हो यही उम्मीद करते हैं। और वाकई हम भी वंदना यही उम्मीद करते हैं कि कोई भी ऐसा ही जगह ना रहे जहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ हो जाए। बरसात का मौसम आए तो सबके चेहरे खिल जाएं, किसी के चेहरे पर किसी तरह की उदासी की शिकन ना नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सतीश अनेजा जी और बिमला अनेजा जी, जिन्होंने संदेश लिखकर भेजा और हमारे कार्यक्रम के साथ अपनी बात को जोड़ा। वैसे तो देखिए बहुत सारे संदेश मिल रहे हैं, लेकिन अच्छा लगता है जब आप हमारी बात के साथ बात जोड़ते हैं। आपके संदेश भी कार्यक्रम में शामिल कर ही लेंगे, लेकिन मज़ा जब आएगा जब आप हमारी बात के साथ बात जोड़ेंगे, यानी बरसात के साथ आपका किस तरह का अनुभव रहा है, आपको बरसात किस रूप में पसंद है, या कोई बचपन का या आज का भी कोई ऐसा किस्सा

जो आपको बहुत याद रहता है, तो वो उस याद को आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं, अपनी बात को संदेश के माध्यम तक माध्यम बनाकर हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल वंदना, जब तक हमारे दोस्त हैं ये अपना संदेशा हम तक भेजते हैं, हम अगले गीत की तरफ बढ़ लेते हैं।

0: दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया ना था, इस तरह बरसात का मौसम कभी आया ना था। वाकई कभी कभार बरसात का मौसम वंदना ऐसा लगता है कि मानो इस तरह से बरसात ने कभी अपना रंग दिखाया ही ना था। और जब बरसात आने के बाद पूरी फिजा एक अजीब ही रंग में रंग जाती है, एक ऐसा रंग जिसे शायद हम ये कह सकते हैं कि वो कुदरती रंग है।
1: कुदरती रंग है, बिल्कुल तुमने सही कहा सविता। और मुझे याद आया इसी बात पे कि मैं जब ऑफिस जाती हूँ, एक जो मेरा ऑफिस है प्रकृति के बहुत करीब है वो
0: जी,
1: और तपती धूप में अभी 2-3 दिन पहले ही जब मेरा वहाँ जाना हुआ तो बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि तुम जानती हो दिल्ली की गर्मी तो अपने चरम पर रहती है। और जाते जाते ही पता नहीं कैसे कुछ बादलों में साठ गांठ हुई कि चलो बहुत परेशान है लड़की, मुझे ऐसा लग रहा था। और मैं जब तक कैंपस पहुंची तो बादल बरस गए और ऐसा लग रहा था कि ऊपर वाला ना बहुत बखूबी माली का काम कर रहा है। सारे पौधे जो हैं वो इतने हरे भरे हो गए, फूल मुस्कुरा रहे थे, और मुझे लगा मेरे साथ साथ प्रकृति ने भी बारिश को खूब इंजॉय किया।
0: बिल्कुल, और प्रकृति कुछ इस तरह से अपने बूंदों को धरती पर उतारती है मानो पूरी की पूरी प्रकृति अपने आप में खिल जाती है। हर पेड़, हर पत्ता ऐसा लगता है एक नए ही रंग में रंग गया होगा, मानो सब तरह की धूल छट गई है, यानी रिश्तों पर पड़ी धूल भी छट जाती है बरसात से।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि
1: बिल्कुल।
0: जब बरसात के मौसम में कोई भीगता हुआ घर के अंदर दाखिल होता है तो सबसे पहले उसे कहा जाता है कि अपने आप को सुखाओ, बैठो, हम चाय परोसते हैं।
1: हाँ, और ये चाय का जो भाव है ना, वो लगता है कि सिर्फ एक कप चाय नहीं दे रहे
0: जी,
1: वो प्रेम, वो अभिवादन या फिर वो बीच की जो कड़वाहट थी वो दूर करने का काम वो एक कप चाय का प्याला कर रहा है।
0: और कुछ कुछ बरसात की रात कभी भुलाई नहीं जाती हैं। फिलहाल तो भुलाया नहीं जा रहा, हमारे पास ये संदेश है। ये संदेश हमें मिला है सुनील कुमार गुंद का, जो कि लिख रहे हैं हमें पंजाब से। इनके साथ हैं श्रुचिता नैनशीश और इन्होंने हमें लिखा है संगरूर पंजाब से, संदेशा भेजा है। ये लिखते हैं कि मेरी एक गज़ल है, उसके चंद शेर आप तक भेज रहे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, बरसात से ही संबंधित हैं। इन्होंने लिखा है, बड़ी ही तेज़ जा रहे हैं बादल, कहीं बरस के आ रहे हैं बादल, सुनकर पुकार किसी पपीहे की, कहीं बरसने जा रहे हैं बादल। भाई कहीं मत जाने दीजिए, इन बादलों को अपने यहाँ पर बरसाइए, इस बरसात में खुद भी भीग जाइए।

0: वाकई कुछ कुछ बरसात ऐसी होती है जो जिंदगी भर नहीं भूलती है, और ये जो बरसात का मौसम होता है ये दिलों में एक अलग सी ठंडक, एक अलग सी दस्तक देकर जाता है। ये दस्तक कुछ ऐसी वंदना जहाँ पर दिल कुछ कहने को बेताब होता है तो वहीं दिल कुछ सुनना भी चाहता है।
1: और जानती है सविता, अगर हम फिल्मों की बात करें तो बहुत सारी प्रेम कहानियां इस
0: बरसात में ही
1: बरसात में ही शुरू होती हैं। वो भीगा भागा सा नायक या फिर वो नायिका छतरी लेकर जाती हुई, है ना। और कुल मिलाकर कहें कि दो दिलों को मिलाने का काम बारिश बखूबी कर जाती
0: हाँ,
1: है।
0: और वो जो जिस तरह से उसको फिल्माया जाता है वो और भी रोमांचक लगता है, और कहीं ना कहीं हम उसको देखकर इसलिए खुश होते हैं। शायद वंदना वो सारी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखिए फिल्मी दुनिया है, वो रियल और रील का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमेशा ही रहता है। लेकिन जब ऐसे वक्त में आप कुछ ऐसा देख रहे हैं पर्दे पर जो आप खुद करना चाहते हैं, तो उसके साथ अपने आप को जोड़ना एक अलग और नायाब अनूठा सा रिश्ता बन जाता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने, और इसीलिए चाहे ना चाहे जो बारिश है ना वो विशेष लगने लग जाती है।
0: ये कहिए कि फिल्मों ने भी बरसात को कुछ खास बना दिया है। वैसे खास आपके संदेशे भी बना रहे हैं इस कार्यक्रम को, और संदेशों में सबसे पहला आप संदेशा ले लेते हैं। ये लिखकर भेज रहे हैं हमें अश्विनी चुंग, जिन्होंने कहाँ से लिखा ये तो नहीं लिखा है, लेकिन ये इन्होंने कहा कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम बारिश का लुत्फ बहुत उठाते थे, साइकिल लेकर निकल जाते थे और इधर उधर घूमते थे। लेकिन अब जैसे जैसे बड़े हुए हैं तो समय भी बदल गया है। अब आपने एक बात ऐसी कही है कि अब हवा उतनी साफ उतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से कई तरह की समस्याएं भी हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बरसात का मौसम जहां वंदना बड़ा ही खुशनुमा माहौल लेकर आता है, वहीं कुछ कुछ बीमारियां भी साथ ले आता
1: हाँ,
0: है।
1: और पहली बारिश को अगर हम घर के अंदर बैठकर एंजॉय करते हैं तो उसका एक अलग ही मजा है चाय पकौड़ों के साथ, क्योंकि कहा जाता है पहली बारिश में नहाने से थोड़ा सा बचना
0: बचना चाहिए,
1: चाहिए।
0: लेकिन आपके संदेशों की बरसात में हम भीगना चाहते हैं। ये संदेश हम तक पहुंचा है आदिल कमर का, जो कि गुन्नौर से हमें संदेशा भेज रहे हैं। कह रहे हैं, न रात से डरता हूँ न बरसात से डरता हूँ, जो धोखा देकर चला जाता है यार, ऐसे यार से डरता हूँ। भाई बिल्कुल मत डरिए, कोई आपको धोखा नहीं देगा, उम्मीद हम यही करते हैं। तो वहीं ये हैं श्रोता हमारे रघुवीर नगर दिल्ली से संदेशा भेज रहे हैं। दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायाब और लड्डू ये कहते हैं, आज बादल काले घने हैं, आज चांद पे लाखों पहरे हैं, कुछ टुकड़े तुम्हारी यादों के बड़ी देर से दिल में ठहरे हैं, ठहराए रखे, कुछ यादें दिल के अंदर सजो कर रखनी बहुत खास हो जाती हैं, क्योंकि ये जो दिल में छुपी यादें होती हैं ना, ये आपको जीने के लिए एक मकसद भी दे देती हैं। तो चलिए बरसात

0: आज के समय की बात करें तो ये गीत जो है अपने आप में बहुत ही चर्चित और बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, और जब भी बरसात का मौसम आता है ये गीत सबसे पहले रिसाइटल यानी कि एक बार गुनगुनाने का मन करता है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने सविता, बहुत ही खूबसूरत सी पेशकश तुमने सुनाई। और बारिश की जब तुम बात कर रही थी ना, तो बारिश में रोमांस की बात करें, या फिर कहते हैं ना, एक सैड स्टोरी, किसी की दिल रोता है तो कहते हैं कि मौसम रो रहा है आज हमारे साथ।
0: जी
1: उसके इतर कुछ चीज़ें जो हैं वो है एक प्याली चाय और चंद पकोड़े, ठीक है,
0: दोस्तों का साथ और गपशप की हो
1: गपशप की
0: बात।
1: बात, या फिर टपरी पर बैठकर एक कप चाय, और फिर क्यों ना गर्मा गर्म भुट्टे भी हो जाए, है ना।
0: और कुछ ऐसे स्वाद होते हैं वंदना जो कि सिर्फ और सिर्फ बरसात के मौसम में अच्छे लगते हैं। यूँ तो लोग ये कहते हैं कि बरसात में जो है तला भुना नहीं खाना चाहिए, वो नुकसान दे जाता है शरीर को, लेकिन अगर देखे तो असली स्वाद इस समय पर ही इन चीजों के खाने का आता है।
1: खाने का आता है ना। तो और भी संदेशे हैं आप सभी के, बेसब्री के साथ आपको इंतजार होगा, सबको लेते हैं, लेकिन फिर एक खूबसूरत सी पेशकश सविता कौन सी सुनवाने वाली हो?
0: बिल्कुल, गीत बहुत ही सुंदर सा सुनवाएंगे क्योंकि कभी कभार किसी के होने से ही समा खूबसूरत हो जाता है, और जब मनपसंद शख्स आपके साथ हो तो लगता है कि हर मौसम सुहावना है, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो। और बरसात में जब हो कोई अपना ऐसा साथ जो कि मनचाहा हो, जिसके साथ जिंदगी का सुकून हो, तो फिर क्या बात है। फिलहाल तो आपके संदेश भी हमें सुकून दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात। लिखकर भेजिए, कुछ लाइनें लिखकर भेजिए। हमारे ये श्रोता हैं जो कि चंडीगढ़ से हमें संदेशा भेज रहे हैं, सतीश अनेजा जी। इन्होंने लिखा है, कल तक उड़ती थी जो मुंह तक, आज पैरों से लिपट गई। चंद बूंदे क्या बरसी बरसात की, धूल की फितरत ही बदल गई। वाकई कुछ चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ कैसे बदल जाती है ये हम समझ ही नहीं पाते हैं, और शायद ये बात आप हमें इस तरह से लिखकर भेज रहे हैं। वैसे कई लोग और भी हमें संदेशा भेज रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर काले बादल छाए हुए हैं और बरसात के इस मौसम को हम जो हैं खुली आंखों से देखते हुए और अपने घर की छत पर लेटकर इसका आनंद ले रहे हैं। तो ज़रूर लीजिए, क्योंकि हम भी यही कोशिश करते हैं कि जो भी गीत लेकर आए हैं, जो भी बात हो, उसमें आपका हमें ज़रूर साथ मिले।

0: जी हाँ, ऐसा समय ना होता अगर आप यहाँ ना होते, क्योंकि आपके संदेशों से भी ये समय बड़ा खूबसूरत हो रहा है।
1: हाँ, और बिल्कुल बिना किसी देरी के मैं चाहूंगी कि जो बरसते हुए जो छींटे हैं ना खूबसूरत से संदेशों के, सविता एक एक करके उन सभी को भी हम ले लें।
0: हमारे पास ये संदेशा मिला है नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से। ये हैं लिखने वाले नरेंद्र सुथार, मनोज और हिमांशु, जो कहते हैं कि आज हमारे यहाँ पर बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, शायद ये दिल्ली की तरफ से आ रही है, और बहुत ही खूबसूरत पेशकश है आपकी, और हम छत पर लेटे हुए इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने लिखकर भेजी, जो छत पर लेटने की जो आपने बात की है, ये अब लगभग शहरों की बात करें तो ये पुराने समय की बात हो गई, अब छतों पर सोने का जमाना तो रहा नहीं है, लेकिन आपने ये बात कह के एक बार फिर से हमें उस जगह पर भेज दिया जब वो पुराने दिन हमें भी याद आते हैं, जब छत पर सोते थे।
1: बिल्कुल सविता, और मुझे याद है कि सभी अपने अपने गद्दे लगाते थे और जल्दी सो जाते थे, कि क्योंकि सुबह हम नहीं उठते थे, उससे पहले मक्खियां आकर हमें उठा
0: जगा
1: दिया
0: देती
1: करती
0: थी।
1: थी।
0: और जब छत पर सोते थे तो जो सूरज चाचू है ना, वो भी टाइम पर दस्तक दे देते थे और आंखों को खुलने पर मजबूर कर दिया करते थे। फिलहाल तुम्हारे पास एक और संदेश आया है, ये लिखकर भेज रहे हैं हमें शीशपाल वर्धन जी, जो कहते हैं कि जब बरसात का मौसम होता है तो बिजली से मुझे डर लगता है। तो देखिए, किसी को बरसात का मौसम ऐसे बहुत अच्छा लगता है, किसी को बिजली से डर लगता है, किसी किसी को पानी से भी वंदना डर लगता है। कुछ लोग चाहते हैं कि बरसात तो आए लेकिन इतनी भयंकर बारिश कभी ना आए। ये एक कह रहे हैं गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी और प्रमोद जी, जो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर मौसम बहुत सुहाना हो गया है, हो सकता है कि आज बरसात हो जाए। वैसे अब बरसात तो हो रही है, आप सभी के संदेशों की। हमारे पास ये संदेशा मिला है हमें हाजी मजहर का, संदेशी के साथ भारती नागपुरे है हमारे साथ, और हमारे साथ हैं नवी हुसैन, साथ में हैं हमारे सुदर्शन मुखी जी, देवेंद्र भटकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और देवेंद्र भटकर के साथ इनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। साथ हैं हमारे बसंत कुमार सिन्हा जी, आर्यन राज, नंदन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नंद किशोर घाटे हमारे साथ है, रियासत हुसैन सद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हमारे साथ नवी हुसैन, और साथ में हैं दुर्गेश नागनपुरे और निसार शेख। इसके अलावा हमारे पास संदेश मिले हैं हमें नारायण खर्चे, जो कि पूरे परिवार के साथ कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे पास ये सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा और इनके पूरे परिवार का संदेशा मिला है। साथ में संदेशा हमारे पास आया है ताज मोहम्मद अंसारी का, और हाजी मजहर का भी हमें संदेशा मिला है। बिट्टू गगनेजा, बाबू नागनपुरे, अनिल वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल वर्मा जी अपने पूरे परिवार के साथ हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं और इन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है। मोहम्मद कमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये हैं अहमद भगवान, जो कि हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। सतीश नेजा जी, दारा सिंह, सोमदत्त और महेंद्र प्रसाद मोदी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, जो कि पूरे परिवार के साथ हमारे कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं और कह रहे हैं कि कार्यक्रम इन्हें पसंद आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी के जो संदेश हैं वो हमारा मनोबल बढ़ा देते हैं। हम कोई भी बात करें, जब आपकी बात हमारी बात से जुड़ जाती है तो वो कार्यक्रम का एक अटूट हिस्सा बन जाती है।
1: बिल्कुल ठीक कहा सविता, और मैं देख रही हूँ धीरे धीरे कर हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर भी बढ़ रहा है। तो बारिश का तुमने इतना खूबसूरत आज जिक्र किया और गाने चलाए, तो बस एक ही बात मुझे गुलजार साहब की याद आती है कि कुछ ऐसे रोज बरसती है मुझ पर यादें तेरी, कुछ ऐसे रोज बरसती हैं मुझ पर यादें तेरी, कि जैसे भीगता है मौसम और कोई शाम ढलती हो।
0: और जब शाम ढलती है तो कुछ यादें, कुछ बातें, कुछ नगमे, कुछ जज्बात ज़रूर जहन में आ जाते हैं। चाहे हम जितना भी बचने की, निकलने की कोशिश करें, लेकिन ये यादों के घेरे हमें घेर ही लेते हैं। फिलहाल तो यादों के घेरे हमें जब घेरें तो आप उसमें घिरते चले जाते हैं और हम भी उसकी तरफ मुड़ते चले जाते हैं। फिलहाल मुड़ने की अगर बात आती है तो कहते हैं कि बरसात का जब मौसम आता है तो जो बादल हैं ये कभी कभार आपके आसपास, आपके आंगन के आसपास लगेगा कि काफी गहरे बादल हैं, लेकिन पता नहीं अचानक से ये भी कैसे मुड़ जाते हैं।
1: जैसे कहते हैं ना कि कोई आते आते मिलते मिलते अचानक बेरुखी कर जाए।

0: तो बेरुखी हम नहीं करेंगे, फिलहाल तो आपको कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनवाते हैं और इस गीत के साथ ही अब इस कार्यक्रम से मुझे सविता और मेरे साथ
1: आपकी सहयोगी वंदना को दीजिए इजाजत।
0: आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं बहुत जल्द।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 12 बजने को हैं। अब इन मीटरों पर हमारे प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुभरात्रि। लेकिन AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण अब भी जारी है। रात्रि के 12 बजने को है। लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण

0: मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम कल से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही काफी है। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। यह शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ आज होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और जापान मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साथ काम करते रहेंगे। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। कार्यालय के अनुसार करीब 10 लाख गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। 13,000 से अधिक यूथ बूथ स्तर अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को प्रपत्र वितरित करेंगे। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने इंग्लैंड को 190 रन का लक्ष्य दिया है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट मुकाबले में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The government has approved 2 major highway infrastructure projects worth combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions yesterday, information

आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 12:10 हो चुके हैं। कार्यक्रम सुरों का सफरनामा, आज आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, दिल से अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में हमने चुना है बेहतरीन गीतकार, अंदाजा लगाइए इस गीत के साथ।

दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में जो आपने गीत सुना, उस गीत को जिस गीतकार ने लिखा, हम उनकी बात कर रहे हैं। अब आप समझ गए हैं और बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे से ये कहें कि जान लिया है कि हम साहिर लुधियानवी साहब के बारे में बात करेंगे। भारतीय सिनेमा के दिग्गज गीतकार और उर्दू हिंदी के क्रांतिकारी शायर। उनका वास्तविक नाम अब्दुल हई था। अपनी कलम के जादू से उन्होंने हिंदी फिल्मों में सामाजिक मुद्दों, क्रांति और गहरे प्रेम को बयान करने वाले कालजयी गीत लिखे। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब ने कितनी बेहतरीन आवाज़ दी। जितने बेहतरीन बोल थे इस गीत के, उतनी ही बेहतरीन इसकी प्रस्तुति। साहिर लुधियानवी साहब के बारे में और बहुत सारी बातें करनी हैं, उनके बारे में जो कुछ हम आपको बता पाएंगे बताएंगे। बहुत सारी बातें हैं, उनके जीवन की उपलब्धियां बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ अभी सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अभी आपने वक्त फिल्म से गीत सुना, अमेरी जोहरा जबी। ये फिल्म 1965 में आई थी। इसके गीत शायर लुधियानवी साहब ने लिखे थे। बहुत बेहतरीन शायर थे। आज भी उनकी शायरी का अंदाज उनके कहें कि उनकी शायरी का जो अंदाज है उनकी पहचान को उसी तरह कायम रखता है। उसकी जो खासियत है वो उनकी पहचान को एक मजबूती आज भी प्रदान करती है। उनके जैसा शायर का होना अपने आप में एक बड़ा तजुर्बा रहा होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने उनके साथ को अनुभव किया है, जिन्होंने उनसे कुछ सीखा है, जिन्होंने उनकी शेर व शायरी को पढ़ा है और अपनी यादों में, अपनी ज़िंदगी के लम्हों में कहीं ना कहीं महसूस किया है। साहिर लुधियानवी साहब ने कई बेहतरीन फिल्मों में सदाबहार गीत लिखे, लेकिन उनके कुछ लोकप्रिय गीत प्यासा फिल्म जो 1997 में आई, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, धूल का फूल आई 1959 में, तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, फिर वही दिल लाया हूँ 1963 में, और जैसा कि मैंने आपको बताया वक्त 1965 में, और उसके बाद फिल्म कभी कभी 1976 में।

साहिर लुधियानवी साहब का जन्म 8 मार्च 1921 को लुधियाना में हुआ। उनके परिवार एक जागीरदार घराना था। उनके पिता बेहद अमीर थे। घर में किसी चीज की कमी ना थी, लेकिन माता पिता के अलगाव के बाद वह अपनी माँ के साथ रहे और इस दौरान उन्होंने दिन गुर्बत में गुजारे। उन्होंने लुधियाना के खालसा हाई स्कूल से 10वीं पास की। गवर्नमेंट कॉलेज से 1939 में उन्हें निकाल दिया गया। इसके बाद इसी कॉलेज में वे मुख्य अतिथि बनकर आए। ये एक महत्वपूर्ण किस्सा है दोस्तों। यहाँ से संबंधित उनकी नज्म बहुत मशहूर हुई। इस सरजमी पे आज हम एक बार ही सही, इस सरजमी पे आज हम एक बार ही सही, दुनिया हमारे नाम से बेजार ही सही, लेकिन हम इन फिजाओं के पाले हुए तो हैं, लेकिन हम इन फिजाओं के पाले हुए तो हैं, गर यहाँ नहीं तो यहाँ से निकाले हुए हैं। उन्होंने अपनी बात, अपना दर्द, अपना तजुर्बा, अपना अनुभव अपनी शायरी में कह दिया। ये नज़्म मशहूर हुई और साहिदी लुधियानवी साहब की इस तरह की खासियत उनकी गज़लों को, उनकी शायरी को, उनकी गीतों को बेहद ख़ास बनाता है।

साहिर लुधियानवी साहब की कर्म भूमि लाहौर और मुंबई रही। उनकी प्रमुख कृतियाँ तलखियाँ प्रसिद्ध शायरी संग्रह है परछाइयाँ, जिसमें नज़में हैं। उन्हें फिल्म फेयर का पुरस्कार 1963 में फिल्म ताजमहल के लिए और 1976 में कभी कभी के लिए दिया गया, और साथ ही पद्मश्री का पुरस्कार उन्हें 1971 में मिला। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साहिर साहब की शायरी अपनी बेबाकी और क्रांति के लिए जानी जाती है। उनकी कविता और गीतों में मजदूर का दर्द, समाज की ऊंच नीच और सच्चा रोमांस प्रमुखता से झलकता है। आइए सुनते हैं उन्हीं का लिखा एक और प्यारा।

कितने बेहतरीन बोल हैं, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। इस तरह का असर साहिर लुधियानवी साहब की रचनाओं में, गीतों में, शायरी में, नज़मों में, प्यार, जिंदगी, समाज के ताने बाने, सब कुछ। यह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1943 में साहिर लाहौर आ गए और उनका पहला कविता संग्रह तलखियाँ छपा। तलखियाँ के प्रकाशन के बाद उन्हें ख्याति प्राप्त होने लगी। सन 1945 में वे प्रसिद्ध उर्दू पत्र अदब ए लतीफ और शाहकार लाहौर के संपादक बने। बाद में वे द्विमासिक पत्रिका सवेरा का भी संपादक बने और इस पत्रिका में उनकी किसी रचना को सरकार के विरुद्ध समझे जाने के कारण पाकिस्तान सरकार ने, तत्कालीन पाकिस्तान की सरकार ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया। उनके विचार साम्यवादी थे। सन 1949 में वे दिल्ली आ गए और कुछ दिन दिल्ली में रहकर वे मुंबई, वर्तमान में मुंबई, तत्कालीन बम्बई में गए, जहां पर उर्दू पत्रिका शाहराहा और प्रीत लड़ी के संपादक बने। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं श्रोताओं, भारत सरकार ने सन 2013 में एक डाक टिकट साहिल लुधियानवी के नाम पर जारी किया।

साहिर लुधियानवी साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जितना ध्यान औरों पर दिया उतना खुद पर नहीं। आज़ादी के बाद अपने कई हिंदू और सिख मित्रों की कमी महसूस की जो लाहौर में थे। उनके जीवन में दो प्रेम असफलताएं उनको मिली। पहला कॉलेज के दिनों में अमृता प्रीतम के साथ, जब अमृता के घर वालों ने उनकी शादी ना करने का फैसला ये सोचकर लिया कि साहिर एक तो मुस्लिम है और दूसरे गरीब। दूसरी बार सुधा मल्होत्रा से। वे आजीवन अविवाहित रहे तथा उनके जीवन में कुछ कमियां रही। उन्होंने लिखा है, मैं फूल टांक रहा हूं तुम्हारे जूड़े में, तुम्हारी आंखें मुसरत से झुक जाती हैं, न जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूं, ज़बान खुश्क है आवाज रुक जाती है। तसव्वुर की रात की परछाइयां उभरती हैं, मेरे गले में तुम्हारी खुदाज बाहें हैं, तुम्हारे होठों पे मेरे लब के साए हैं, मुझे यकीन है कि अब हम कभी ना बिछड़ेंगे। इस तरह का शायराना अंदाज उनका। और आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत उनके द्वारा रचित।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे सुरों का सफरनामा कार्यक्रम। श्रोताओं, रात्रि के 1 बजने को हैं, अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000

0: हजार प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विदेश सचिव का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। यह शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ आज होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और जापान मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साथ काम करते रहेंगे। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम कल से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी मामले में हरियाणा के एक आरोपी को गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने बताया कि आरोपी ने खुद को सुरक्षा एजेंसी का अधिकारी बताकर एक वरिष्ठ नागरिक को डिजिटल गिरफ्तारी का डर दिखाया और उनसे 25 लाख रुपए से अधिक की ठगी की। सीबीआई ने लोगों से अपील की है कि वे डिजिटल अरेस्ट, फर्जी निवेश योजनाओं और सरकारी एजेंसियों के नाम पर आने वाली धोखाधड़ी वाली कॉल्स से सतर्क रहें। श्री अमरनाथ जी की तीर्थ यात्रा आज से शुरू होगी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालताल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। भारत ने पाकिस्तान के फारूकाबाद में स्थित 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत और इंग्लैंड का पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 190 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन बाद में तेज बारिश होने के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर पाया, जिसके बाद मैच रद्द करने का फैसला लिया गया। दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The government has approved 2 major highway infrastructure projects worth a combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decision yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the Cabinet has approved the construction of an 8.1-kilometer-long, 6-lane road tunnel in Delhi on NH-148AE connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Marg in Vasant Kunj. Mr. Vaishnaw said that the Cabinet also approved the construction of the 117.7-kilometer-long Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a 4-lane access-controlled corridor. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen, Viksit Bharat Gram G Act 2025, has come into force across the country yesterday. Under the Act, eligible rural households will now have a statutory entitlement to 125 days of guaranteed wage employment.

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 1:10 हुए हैं। सुनते हैं गीत सुनहरे कार्यक्रम अपने दोस्त मोहन के साथ, यानी मेरे साथ। सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है।

श्रोताओं, अभी आपने गीत सुना फिल्म महबूब की मेहंदी से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आइए अब सुनते हैं फिल्म मेरे सनम से एक और प्यारा सा गीत आशा भोंसले की आवाज़ में।

जाइए, आप कहाँ जाएंगे। मेरे सनम फिल्म से आपने सुना इस गीत को आशा भोसले की आवाज़ में। आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे कार्यक्रम अपने दोस्त मोहन के साथ। कार्यक्रम में एक बार फिर से सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है।

जो भी है बस यही एक पल है। जी हाँ दोस्तों, जो समय है, जो वर्तमान का समय है, उसको दिल से जीना चाहिए, अपनी पूरी शिद्दत से जीना चाहिए, अपने पूरे एफर्ट्स प्रयास करने चाहिए, प्रयत्न करने चाहिए, अपनी ज़िंदगी को भरपूर जीना चाहिए, हालात में अच्छाई के लिए, औरों की भलाई के लिए, किसी के सुख दुख के लिए ज़िंदगी को पूरी तरह से जीना चाहिए। किसी के लिए कुछ ना कुछ तो हर इंसान को करना चाहिए, अपने लिए भी, अपने ख्यालों के लिए भी, किसी के सपनों के लिए भी अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। आप सुन रहे हैं अपने दोस्त मोहन के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम। वक्त 1:33 हो गया है। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म मौसम से लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाज में। शब्द गुलजार के हैं और संगीत मदन मोहन का। यह फिल्म 1975 में आई थी। सुनते हैं इस फिल्म का गीत, दिल ढूंढता है।

श्रोताओं, अब सुनते हैं आप तो ऐसे ना थे फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में एक रोमांटिक सॉन्ग तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहां भी जाऊं तो लगता है तेरी महफिल है।

श्रोताओं, कार्यक्रम में थोड़े से व्यवधान का हमें खेद है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में।

श्रोताओं, गीत सुनहरे कार्यक्रम में ये कार्यक्रम का आखिरी गीत। इस गीत के साथ मुझे आपसे लेनी होगी विदा। अगली मुलाकात तक अपने दोस्त मोहन को दीजिए इजाजत अनुमति। फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर आपसे बात होगी। अपना अपनों का ख्याल रखिए, जिंदगी में प्यार बनाए रखिए, भूलिए नहीं अपने दोस्त मोहन को याद रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के 2 बजने को है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ 16वीं भारत जापान वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। बैठक में दोनों देश द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। जापान की प्रधानमंत्री 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा भारत और जापान की विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ आज होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और जापान मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साथ काम करते रहेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट

0: सिक्स लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम कल से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने हेलीकॉप्टर परिचालन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश के पहले निजी पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीजर को आंध्र प्रदेश के उंडावली हेलीपोर्ट के लिए मंजूरी दे दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि ये उपग्रह आधारित आधुनिक तकनीक खराब मौसम और दूर दराज क्षेत्रों में भी हेलीकॉप्टरों की सुरक्षित और सटीक लैंडिंग सुनिश्चित करेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि ये पहल हेलीकॉप्टर सेवाओं को अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और हर मौसम में सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से आपदा राहत, एयर एम्बुलेंस, पर्यटन और क्षेत्रीय संपर्क सेवाओं को भी लाभ मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी मामले में हरियाणा के एक आरोपी को गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने बताया कि आरोपी ने खुद को सुरक्षा एजेंसी का अधिकारी बताकर एक वरिष्ठ नागरिक को डिजिटल गिरफ्तारी का डर दिखाया और उनसे 25 लाख रुपए से अधिक की ठगी की। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला गया पहला T20 क्रिकेट मैच बारिश के कारण रद्द हो गया है। इसके साथ ही 5 मैचों की श्रृंखला 0-0 से बराबरी पर है। फुटबॉल विश्व कप में सिएटल में बेल्जियम और सेनेगल के बीच राउंड ऑफ 32 का मैच जारी है। इससे पहले इंग्लैंड ने शानदार वापसी करते हुए राउंड ऑफ 32 में डीआर कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The government has approved 2 major highway infrastructure projects worth a combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the cabinet has approved the construction of an 8.1-kilometre long 6-lane road tunnel in Delhi on NH-148AE connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Mark in Vasant Kunj. Mr. Vaishnaw said the cabinet also approved the construction of the 117.7-kilometre long Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a 4-lane access-controlled corridor. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Grameen Viksit Bharat Gram G Act 2025, has come into force across the country yesterday. Under the Act, eligible rural households will now have a statutory entitlement to 125 days of guaranteed wage employment. The government has also notified revised wage rates under the VBG Ramji Act 2025 for all the states and union territories. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan described yesterday as an unprecedented day for rural India. Prime Minister Ajit Pant Sanayi Takaichi arrived in New Delhi yesterday on a 3-day visit to India. Prime Minister Takaichi was received by Minister of State Dr. Jitendra Singh. This is the first official visit of Prime Minister Thakai Chidi of India. She will

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, रात्रि के 2:10 हुए हैं। ये वक्त है गीत बहार फिल्म संगीत के कार्यक्रम का, जिसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म संगीत, यानी एक साथ लगातार फिल्मी गाने। सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत बहार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे गीत बहार कार्यक्रम। श्रोताओं, रात्रि के 3 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायुची के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। बैठक में दोनों देश द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। जापान की प्रधानमंत्री 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थीं। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा भारत और जापान की विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायुची के साथ आज होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और जापान मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साथ काम करते रहेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम कल से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार

की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। भारतीय नौसेना का पोत INS सुदर्शनी सेल फोर्थ 250 न्यूयॉर्क और सेल बोस्टन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क रवाना हो गया है। भारतीय नौसेना ने कहा कि ये यात्रा भारत की समृद्ध समुद्री विरासत तथा विभिन्न देशों के साथ समुद्री सहयोग, मित्रता और सद्भाव को मजबूत करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू होगी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 3 और नागरिकों के कथित जबरन लापता किए जाने का मामला सामने आया है। मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पंजगुर और खुजदार जिलों से इन लोगों को हिरासत में लिया, जिसके बाद से इनका कोई अता पता नहीं है। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में सिएटल में बेल्जियम और सेनेगल के बीच राउंड ऑफ 32 का मैच जारी है। इस मुकाबले में सेनेगल ने बेल्जियम पर 2-0 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है रात्रि के 3:10 और ये समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम गजलों और गीतों का, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। आइए श्रोताओं, सुनते हैं ये प्यारी सी गजल जगजीत सिंह के मधुर आवाज में।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में ये मधुर गजल अभी आपने सुनी। आइए सुनते हैं अगली गजल पंकज उधास साहब की आवाज में।

पंकज उदास साहब की आवाज़ में अभी ये मधुर सी गज़ल आपने सुनी। आइए सुनते हैं जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में उनकी एक और गज़ल।

ये प्यारी सी गजल अभी आपने सुनी जगजीत सिंह साहब की आवाज में। आइए सुनते हैं अगला गीत मशहूर गायक हंसराज हंस की आवाज में।

हंसराज हंस की आवाज़ में अभी ये मधुर सा गीत सुना आप लोगों ने अभी। आइए सुनते हैं भारती सिंह की आवाज़ में ये अगली गज़ल।

0: ये मधुर गजल अभी आपने सुनी चित्रा सिंह की आवाज़ में। आइए सुनते हैं अगली गजल भूपेन हजारिका साहब की आवाज़ में।
1: ये शायर जिसका नाम भूपेन हजारिका है, कितनी आसानी से अवाम के दिलों की आहट सुन लेता है। ये रात जो लोगों के दर्द की रात है, अवाम के गम की रात है, जब उसके सीने में गूंजती है तो वो तलाश करने लगता है ये आवाज कहां से आ रही है, इनकलाब किस रास्ते से आ रहा है और दर्द किस रास्ते से आगे बढ़ रहा है। वो कान लगाए सुन रहा है और वक्त से पूछ रहा है ये किसकी सदा है।

इसी के साथ श्रोताओं, गीतों और गज़लों के कार्यक्रम के इस अंत में आइए सुनते हैं ये अंतिम गज़ल भूपेंद्र साहब की आवाज़ में।

0: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। सुबह के 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना। स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है सुबह के 4:20। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़।

डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 जुलाई सन 2026। सुबह के 4:53 और 58 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे सुबह 5 बजे हिंदी में समाचार। उसके बाद 5:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। 5:10 का समय होगा कार्यक्रम आओ योग करें का। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग अश्वत्थासन और तितली क्रिया। पांच बजकर 20 मिनट पर आप सुन सकेंगे देशभक्ति गीत और 5:30 पर समय होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। सुबह 6 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी समाचार। 6:10 का समय होगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। 6:40 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम चिंतन।

0: 6:45 पर आप रामचरितमानस बालकांड का भाग 104 सुन सकते हैं। 6:55 पर समय होगा संस्कृत समाचारों का। 7:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। सुबह 7:00 आप सुन सकेंगे कार्यक्रम संगीतिका। 7:30 पर समय होगा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीतों भरी का और 8:00 आप सुन सकेंगे हिंदी समाचारों का कार्यक्रम समाचार प्रभात। 8:15 पर आप अंग्रेजी समाचार सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 5:00 वाले हैं और 5:00 का समय होगा हिंदी समाचारों का। उसके बाद 5:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार और 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आइए सुनते हैं अंग्रेजी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। बैठक में दोनों देश द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। जापान की प्रधानमंत्री 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत और जापान की विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ आज होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और जापान मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साथ काम करते रहेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। भारतीय नौसेना का पोत INS सुदर्शनी सेल 450 न्यूयॉर्क और सेल बॉस्टन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क रवाना हो गया है। भारतीय नौसेना ने कहा कि ये यात्रा भारत की समृद्ध समुद्री विरासत तथा विभिन्न देशों के साथ समुद्री सहयोग, मित्रता और सद्भाव को मजबूत करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी श्वास भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं, पुनः श्वास भरते हुए दाहिना पांव यानी कि जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी श्वास लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे तीन श्वास पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी तीन श्वास का अभ्यास करें। और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें, कहां शरीर के किस भाग पर इंपैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे तीन श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी एक आवृत्ति। इसी आवृत्ति को दो तीन बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा।

बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी सांस से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। तो आज एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोअर बॉडी के हिप्स के नीचे के हिस्से को, वेस्ट से नीचे के हिस्से को सक्रिय रखती है, अकड़न जकड़न से दूर रखती है। अर्थात आप सब समझ गए होंगे, हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, तितली अभ्यास की बात कर रहे हैं। तितली आसन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट है। तितली वाला अभ्यास हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कुर्सी पर तो हम बैठ नहीं सकते, आवश्यक है एक प्लेन स्थान का चुनाव करके सीधे बैठ जाए। अपने दोनों पैरों को आगे फैलाएं, दोनों हथेलियों को जंघा के बराबर में रखें, पैरों को थोड़ा हिला लें, आगे पीछे मूव कर लें, पैरों में थोड़ी शिथिलता दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। एक दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर उठा के रखें और धीरे धीरे घुटने को पकड़ के, एक दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ के ऊपर नीचे हिलाएं, ऊपर नीचे करें। श्वास के साथ श्वास लेते हुए नीचे की ओर दबाएं, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लाएं। कम से कम 15 आवृत्ति ऊपर नीचे 15 बार उसको घुमाएं, ऊपर नीचे करें। ऊपर करते समय अपने वक्ष तक मिलाएं और नीचे ले जाते समय धरती से मिलाएं। 15 आवृत्ति के बाद वापस आ जाएं। इसी क्रिया को फिर दूसरे पैर से दोहराएं, यानी कि दाहिना पैर सीधा और बायां पांव आप उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर रखें, दाहिने हाथ से पैर के पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ से घुटने के ऊपर दबाएं, प्रेशर डालें। अर्थात श्वास लेते हुए नीचे की ओर ले जाएं घुटने को और श्वास छोड़ते हुए अपने वक्ष की तरफ लाएं। इस आवृत्ति को भी कम से कम 15 बार दोहराएं। ऊपर नीचे करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि खुलने लगा है हमारी जंघाओं का पेल्विक हिस्सा, पेल्विक फ्लोर। फिर पैर को सीधा कर दें। अब दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, धीरे धीरे खींचते हुए अपने पेल्विक रीजन की तरफ, जंघाओं की तरफ लाएं, पैर मोड़ दें। सुखासन जैसे अवस्था, लेकिन दोनों पैर के अग्रभाग मिले हुए, और दोनों हाथों से पकड़ लें अग्रभाग को, पैर के अग्रभाग तो को दोनों हाथों से पकड़ लें। अपने पेल्विक फ्लोर के ज्यादा से ज्यादा एड़ियों को करीब लाएं और सामान्य श्वास के साथ अपने घुटनों को नीचे ऊपर हिलाएं। अर्थात थोड़ी देर के लिए तितली बन जाएं। अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएंगे, धीरे धीरे आपकी जंघा की मांसपेशियां स्वस्थ होती जाएंगी, पैरों की अकड़न जकड़न दूर होती जाएगी। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा अपने देश और विदेश की माता और बहनों से कि उन्हें तो यह अभ्यास रोज करना चाहिए। यह महिला जनित रोगों से मुक्ति दिलाने वाला अभ्यास है। जो महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को प्रॉब्लम होती है मेंसुरेशंस के दौरान, पीरियड

के दौरान और भी कोई महिलाओं के रोग हो सकते हैं, गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब में लाभकारी अभ्यास है ये तितली का अभ्यास। तितली की क्रिया आप दोहराएं और अपने पेल्विक फ्लोर को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाकर पूरे जंघा को, पैरों को शक्तिशाली बनाएं और जीवन का शक्तिशाली होते हुए ही आनंद उठाएं। धन्यवाद।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। समय हुआ है सुबह के 5:20। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 5:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी।